0: अंधेरे से पना, क्योंकि नफ्स इंसान को कहता है मेरी ख्वाहिश पूरी हो, मुझे सब कुछ मिले, मैं ही बड़ा हूँ। दरअसल बात यह, अगर नफ्स काबू में ना हो तो इंसान भटक जाता है। इसी तरह पना मांगी गई कब्र के अंधेरे से, क्योंकि असल कामयाब वो है जिसकी कब्र रोशन हो, और कब्र की रोशनी ईमान, नमाज, कुरान और नेक अमल से आती है। इसी तरह पनाह मांगी गई फिक्र और सोच के अंधेरे से, व ظلمت الفکر, क्योंकि गलत सोच, मायूसी, बदगुमानी, बेमकसद ख्यालात, ये भी अंधेरे हैं। अल्लाह सही सोच अता करे तो जिंदगी संवर जाती है। फिर पनाह मांगी गई व ظلمت القهر, यानी जबर और दबाव के अंधेरे से। मतलब ये है कि कभी इंसान हालात से टूटता है, कभी लोगों के जुल्म से, तो इस वजह से इन मजबूरियों से भी हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मजीद पनाह मांगते हैं ظلمت الاهواء, ख्वाहिशात के अंधेरे से, क्योंकि जब ख्वाहिश हक से बड़ी हो जाए तो इंसान सच्चाई छोड़ देता है। इस वजह से कहते हैं ना, या अल्लाह हमें ख्वाहिशात का गुलाम न बना। अगला जुमला है وظلمت المعاصي, गुनाहों के अंधेरे से भी तेरी पनाह मांगते हैं, क्योंकि हर गुनाह दिल पर एक दाग डालता है और बार बार गुनाह दिल को तारीख कर देता है। फिर आखिर में कहा गया وظلمات الدنيا والآخرة كلها, यानी दुनिया व आखिरत के तमाम अंधेरों से तेरी पनाह मांगते हैं। परेशानी का अंधेरा, तन्हाई का अंधेरा, जहालत का अंधेरा, क़यामत का अंधेरा, सबसे हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर आगे लोगों पर जुल्म करने से भी पनाह मांगी जा रही है, नऊज़ु बिका मिन ज़ुल्मिन नास, चाहे वो जबान से हो, हाथ से हो, हक मार कर हो, बदनाम करके हो, मोमिन किसी पर जुल्म नहीं करता। इसी तरह अपने नफ्स पर जुल्म से भी पना। नफ्स पर जुल्म कैसे? गुनाह करके, नमाज छोड़कर, वक्त जाया करके, दिल खराब करके, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। औ अन नुईन ज़ालिमन, या अल्लाह हमें जालिम का मददगार भी न बना। जालिम की तारीफ, उसके जुल्म में खामोश साथ देना या उसकी मदद, ये खतरनाक बातें हैं। मजीद हमें जालिम पर सहारा लेने से भी बचा। अव नस्तईन बिज़ालिम, क्योंकि इज्जत अल्लाह से मांगनी है, जुल्म के दरवाजे पर नहीं। तो समझने के नाम, आज की दुआ हमें ये बताती है कि असल रोशनी ईमान है, असल अंधेरा गुनाह है। जुल्म कभी फायदा नहीं देता, दिल की सफाई जरूरी है। जालिम न बनो और जालिम का साथ भी न दो। अच्छे के साथ आज के इस हल्के से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट, RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन एफएम 107 107 एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी स्ट्रेस हो बिजी रूटीन हो फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हर हफ्ते एक नई हदीस एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम हदीस टू हैबिट हदीस टू हैबिट दिल से सुनिए जिंदगी में अपनाइए
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन
3: लाइव अपडेट्स बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट
1: गेम ऑन
3: वॉल्यूम अप
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
3: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। टहलकदमी करना, वॉक करना बहुत जरूरी है, मगर फिर ये भी कहा जाता है कि 30 मिनट तक आप वॉक जरूर कीजिए। तो ये किस तरह हम कर सकते हैं, क्या इसके फायदे होते हैं, यानी दिन में 30 मिनट वॉक सेहत के लिए बहुत ज्यादा जो फायदे हैं वो हमें फराहम करती है। ये हमारे दिल की सेहत को बेहतर बनाती है, वजन के इंतजाम में मदद भी कर सकते हैं, यानी कि वजन को कम किया जा सकता है, उसको मेंटेन किया जा सकता है, आपका मूड बहुत बेहतर हो सकता है। इसके अलावा मसल्स और बोन्स को भी मजबूत बना सकते हैं। ये दिल की बीमारी फॉलेज और टाइप 2 डायबिटीज जो कि बहुत ज्यादा आम है, इस जैसी तमाम जो क्रॉनिक डिजीज हैं उनके खतरे को भी कम करते हैं। इसके अलावा वॉक करने से नींद बेहतर होती है, इंतजाम जो है वो भी बेहतर रहता है, यहाँ तक कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं आपकी कंसंट्रेशन आपकी काम करने की सलाहियत को बेहतर बना सकती है। टहलकदमी यानी वॉक करना दिल की सेहत को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। ये ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम कर सकता है और दिल की बीमारी और फालिज के खतरे को कम कर सकते हैं। तेज चलना दिल को ज्यादा तकवीत देता है, यानी ज्यादा ताकत जो है वो फराहम करता है। इसके अलावा हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेहतर बनाता है। 30 मिनट की वॉक काफी तादाद में जो कैलोरीज हैं उन्हें बर्न करती है, जो वजन में कमी या फिर ये कि अपनी सेहत की तरफ जब हम देखते हैं उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये कर सकता है। और किस तरह से, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ज्यादा करता है और जिस्म की जज्बी को कम करने में भी मदद कर सकता है। इसी तरह से जो आर्थराइटिस फाउंडेशन के मुताबिक टहलकदमी जो एंडोर्फिन्स हैं उनको भी जारी करती है और इससे हमारा जो मूड है वो बेहतर होता है। ये डिप्रेशन और जो मुख्तलिफ एंजाइटी की जो अलामत हैं उन्हें कम करने और मजमूई जहनी तंदरुस्ती को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हमारी हड्डियाँ और जो जॉइंट्स हैं वो भी बेहतर होते हैं, यानी कि उनकी सेहत बेहतर होती चली जाती है अगर आप 30 मिनट की वॉक करते हैं तो। ये हड्डियों को यानी मजबूत करती है और इससे ऑस्टियोपोरोसिस और जो फ्रैक्चर्स को रोकने में मदद मिल सकती है, खास तौर पर ऐसे अफराद जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो। 30 मिनट की चहलकदमी भी बहुत हमारे लिए अहम इसलिए है कि नींद जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके मयार को बेहतर बना सकती है। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद देती है और इससे हमारी जो सलाहियत है वो ज्यादा होती चली जाती है। इसका मतलब ये है कि मजमूई तौर पर हमें अपने रोजमर्रा के मामूलात में 30 मिनट की वॉक यानी चहलकदमी को शामिल करना जरूरी है, जिससे हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत को बेहतर बनाने का एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर तरीका है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी। जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
3: हर मंडे सुबह 10 से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहा करते थे। एक का नाम था अली और दूसरे का नाम था हसन। अली और हसन बचपन के दोस्त थे और इनकी दोस्ती इस कदर गहरी थी कि गांव वाले अक्सर इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। अली बहुत ही मेहनती और जहीन लड़का था, जबकि हसन थोड़ा शरारती और खुश मिजाज बच्चा था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वो अक्सर खेलते, पढ़ते और मिलकर वक्त गुजारते थे। इनकी दोस्ती का सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते और किसी भी मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते। एक दिन अली और हसन गांव के करीब एक झील के किनारे खेल रहे थे। वहाँ एक बड़ा दरख्त था जिसकी ठंडी छांव में बैठना बहुत आरामदेह था। अली तो बड़े मजे से जाकर उस दरख्त के नीचे बैठ गया, जबकि हसन कुछ छोटे पत्थरों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान हसन ने अली से कहा, ये झील कितनी अजीब है, कभी कभी यहाँ आना मुझे बहुत आरामदेह महसूस होता है। अली मुस्कुराकर बोला, हाँ हसन, ये वाकई खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ कभी कभार बैठ कर ये फैसला करना चाहिए कि हम किस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हसन ने तजस्सुस से अली की तरफ देखा और पूछा, हैं, किस किस्म का फैसला? अली ने कहा, हसन, मैं सोच रहा हूँ कि हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि जब हम बड़े हों तो अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकें। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दिन हम जरूर अपनी मेहनत का फल हासिल करेंगे। हसन ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर पूछा, तो आपका मतलब है कि हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे? अली ने सर हिलाया, हाँ, यही सच्ची दोस्ती होती है। हसन और अली की दोस्ती का ये जज्बा दोनों दोस्तों के दरमियान हर दिन मजबूत होता चला गया। इन्होंने मिलकर स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल किए, खेलों में हिस्सा लिया और हमेशा एक दूसरे की हौसला अफजाई करने की पूरी कोशिश की। हर मुश्किल में अली और हसन एक दूसरे का साथ देते रहे और हर कामयाबी का जश्न मिलकर मनाते रहे। एक दिन गांव में एक बड़ा खेलों का मुकाबला था। ये मुकाबला शहर के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ था और गांव वाले बहुत खुश थे। अली और हसन ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया। उन्होंने अपनी महारतों को बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। मुकाबले की शुरुआत से पहले अली और हसन ने एक दूसरे की हौसला अफजाई भी की। याद रखो हसन, हमने ये सब मेहनत से हासिल किया है, अब हमें सिर्फ अपने दिल की सुनने की जरूरत है। हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम जानते हो ना अली, मैं हमेशा तुम्हारी वजह से कुवत हासिल करता हूँ, चाहे हम जीतें या हारें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुकाबला शुरू हुआ। अली और हसन ने अपने अपने इवेंट्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। एक साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को फतह दिलाई। जब आखिरकार गांव की टीम जीत गई तो गांव वालों ने खुशी से शोर मचा दिया। अली और हसन ने एक दूसरे को गले लगाया, हमने ये सब मिलकर किया और यही सच्ची दोस्ती है, अली ने कहा। फतह के बाद गांव के बुजुर्गों ने दोनों दोस्तों के लिए मोहब्बत और तारीफ का इजहार किया। ये तुम्हारी सच्ची दोस्ती और मेहनत का नतीजा है। तुमने हमें सिखाया है कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ तब मिलती है जब हम एक दूसरे की मदद करें और साथ चलें। अली और हसन की दोस्ती इस बड़े खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद और भी मजबूत हो गई। इस कामयाबी के बाद दोनों दोस्तों की गांव में शोहरत और एहतराम भी बढ़ गया था। गांव वाले इनके बारे में बात करते हुए मिसालें दिया करते थे और इनकी दोस्ती को मिसाल के तौर पर पेश करते थे। अली और हसन खुश थे कि ना सिर्फ वो एक दूसरे की हिम्मत का बाइस हैं, बल्कि पूरा गांव भी उन्हें बहुत इज्जत से नवाजता है। एक दिन अली और हसन ने गांव के बाहर चलने का फैसला किया।
वहाँ एक खूबसूरत पहाड़।

दोनों दोस्त बिलाखिर थक गए, लेकिन वो एक दूसरे पर हार नहीं मानना चाहते थे। एक मौके पर हसन ने कहा, अली मुझे लगता है कि हम मजीद नहीं जा सकते आगे, मैं बहुत थक चुका हूँ। अली ने हसन की तरफ हमदर्दी से देखा और कहा, अगर तुम थके हुए हो तो तुम आराम कर सकते हो, लेकिन याद रखो अगर हम अभी रुक गए तो हम इस खूबसूरत मंजर को कभी नहीं देख पाएंगे। हसन ने एक गहरा सांस लिया और अली की बात को दिल पर लेते हुए चल पड़ा। वो फिर से उठा और दोनों दोस्तों ने अपने सफर को जारी रखा। आखिरकार वो पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचे। वहां से पूरे गांव का मंजर देखा जा सकता था और मंजर इतना खूबसूरत था कि हसन की थकान तो जैसे गुम ही हो गई। अली तुम ठीक कहते थे, अगर हम रुक जाते तो हम इस मंजर को कभी नहीं देख पाते, हसन ने खुशी से कहा। अली ने मुस्कुराकर कहा, ये सच्ची दोस्ती है, हमने एक दूसरे की मदद की और उसका इनाम इस मंजर की सूरत में मिला। ये लम्हा दोनों दोस्तों की जिंदगी में एक नया सबक था। उन्होंने सीखा कि जब जिंदगी में मुश्किलात पेश आती हैं, तो सच्चे दोस्त एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इनकी दोस्ती ने उन्हें ये सिखाया कि हिम्मत, मेहनत और बाहमी मदद से जिंदगी के बड़े तरीन चैलेंजेस को फेस किया जा सकता है। गांव वापस पहुंचकर दोनों दोस्तों ने अपने वालिदैन और गांव वालों को अपने सफर के बारे में बताया। सबने उनकी बहादुरी और दोस्ती की तारीफ की। ये दोनों बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि सच्ची दोस्ती का मतलब हमेशा एक दूसरे की हिम्मत बने रहना होता है, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। अब अली और हसन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। दोनों ने फैसला किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। उनकी दोस्ती ने पूरे गांव को ये सिखाया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ने का नाम है। जहां मोहब्बत, एहतराम और हिम्मत मौजूद होती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची दोस्ती खुशियों के वक्त ही नहीं बल्कि मुश्किलात के वक्त भी काम आती है। दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी की मुश्किलात पर काबू पाने का राज सच्ची दोस्ती है। साथियों ये याद रखें कि सच्चे दोस्त बड़े चैलेंजेस के मौके पर एक दूसरे की मदद करके कामयाब हो सकते हैं।

स्पोर्ट्स अलर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स एंड बेस्ट क्रिकेटर्स कपिल देव निखंज के बारे में। कपिल देव भारतीय क्रिकेट की तारीख का एक अजीम नाम है। उन्हें इंडिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता है, जिन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में गैर मामूली सलाहियत का मुजाहिरा किया। आई एम टॉकिंग ऑफ द एरा एंड ऑफ 1970s, 1980 और 1990 की दिहाई में। 1994 में कपिल देव ने रिटायरमेंट ले लिया था ऑलरेडी क्रिकेट से, और उस दिन उस वक्त ही वॉज द वर्ल्ड लीडिंग विकेट टेकर, और वो विकेट नंबर था 434 जब उन्होंने रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ा था। कपिल देव ने 1978 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और अपनी तेज बॉलिंग, पावरफुल बैटिंग और जज्बाती लीडरशिप से जल्दी पहचान बना ली। उनका सबसे यादगार कारनामा दोस्तों ये आज भी याद किया जाता है, इसी पे मूवी भी बनी है। 1983 का ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप का जीतना, जहां उन्होंने कप्तान के तौर पर इंडिया को पहली मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बनाया। वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम के खिलाफ फाइनल जीतना क्रिकेट की तारीख का एक बहुत बड़ा अपसेट माना जाता है। इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के खिलाफ ग्रुप स्टेजेस में 175 रन की इनिंग्स आज भी लेजेंड समझी जाती है। कपिल ने अपने करियर में 5000 से ज्यादा टेस्ट रन और 400 से ज्यादा टेस्ट विकेट हासिल किए, जो उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस का वाज़े सबूत है। वो लंबी मुद्दत तक दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले बॉलर भी रहे। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद कपिल देव ने कमेंट्री, कोचिंग और प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स में किरदार अदा किया। उनकी मेहनत, लीडरशिप और जज्बा आज भी नौजवान क्रिकेटर्स के लिए रहनुमाई और इंस्पिरेशन का जरिया है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी एफ और अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम कदर, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता ऑन एफएम 107 पर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ खास लाइफ हैक्स, स्पेशली डिजाइन किए गए हैं हमारे कदर के रहने वालों के लिए। तो चाहे आप दोहा के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा रहे हो या फिर यहाँ की चमकती धूप में रिलैक्स कर रहे हो, ये टिप्स आपकी लाइफ में थोड़ी सी आसानी और ढेर सारा एक्साइटमेंट जरूर लाएगी। सो आर यू रेडी? लेट्स डाइव इन। ओके जी, तो पहला हैक है सैंड फ्री बीच टॉवल ट्रिक। यस, अब जब भी आप कतर के शानदार बीचेस पर जाएं, तो अपने टॉवल को ना रेत से बचाने के लिए क्या करना है इसका ध्यान रखें। बस उसे गोल गोल सिलेंडर जैसा रोल कीजिए और फिर खूब जोर से झटकिए, मतलब शेक इट विग्रेसली। सिंपल है ना, बस इससे आपका टॉवल साफ सुथरा रहेगा और आपका बीच एक्सपीरियंस होगा सुपर कम्फर्टेबल, नो मोर वो खिरखिर वाली फीलिंग। ठीक है, दूसरा हैक है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट इज इंस्टेंट कार कूलर, यानी कि कतर की जबरदस्त गर्मी से बचने का सुपर तरीका। पार्किंग करने से पहले ना आप अपनी कार में कुछ फ्रोजन पानी की बॉटल्स छोड़ दीजिए, फिर जब आप वापस आएंगे उन ठंडी बॉटलों को हटाइए और आराम से सीट पर बैठ जाइए। यस, ये बॉटल्स बेसिकली आपको अपनी सीट्स पर रखनी है और सीट ठंडी होगी तो आपकी ड्राइव एकदम रिफ्रेशिंग एंड कूल होगी, गर्म सीट पर बैठने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। सही है ना, कूल है कि नहीं ये बताओ। तो ये थे आज के कुछ क्विक टिप्स आपकी ए फॉर अमिता की तरफ से, ट्राई जरूर करना और मुझे जरूर बताना। फॉर मोर लाइफ हैक्स टिप्स स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।
2: हवा के झोंके आज मौसमों से उठ गए।
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी, दिल से देसी।
4: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। एफएम 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। एफएम 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में. हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क. तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड. आज हम बात करेंगे कैसे अपनी बिजली के बिल को कम किया जा सकता है बिना किसी मुश्किल तरीके के. सबसे पहले हम सबको ये समझना होगा कि हमारी डेली हैबिट्स ही सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करती हैं। जब आप अपने काम से घर पे ना हो तो अपनी डिवाइसेस को अनप्लग करना शुरू कर दें। हर डिवाइस जब स्टैंड बाय पे होती है तब भी एनर्जी कंज्यूम करती है. LEDs का इस्तेमाल करें जो रेगुलर बल्ब के कंपैरिजन में 80% ज्यादा एफिशिएंट होते हैं. आजकल स्मार्ट थर्मोस्टेट्स अवेलेबल हैं, जो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं. इससे कूलिंग और हीटिंग का बिल कम हो सकता है. गर्मी में एसी चलाना महंगा पड़ सकता है, इसलिए फैन का इस्तेमाल भी काफी एफिशिएंट है. एसी का टेम्परेचर सिर्फ 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखें. याद रखिए, हमारी रोजमर्रा की आदतों में छोटी छोटी तब्दीलियां बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे. अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें. कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज. खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें. अल्लाह हाफिज़.

इस दुनिया में बहुत कुछ जाए हो सकता है, आपकी मेहनत को लोग भूल सकते हैं, आपकी खिदमात का जिक्र न हो, आपकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, किसी और को वो मकाम मिल जाए जिसके लिए आपने जद्दोजहद की थी, लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं होता। वो हर नेकी को जानता है, हर आंसू को देखता है, हर कुर्बानी को शुमार करता है, हर नेक नीयत को महफूज रखता है। इसीलिए अल्लाह ताला एक और मुकाम पर फरमाता है, इन्नी ला उदीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़िकरिन औ उन्सा, मैं तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को ज़ाये नहीं करता, ख़ा वो मर्द हो या औरत। देखिए सामने किराम, कितना प्यारा खिताब है, कितनी बड़ी बशारत है। अल्लाह के यहाँ न जिन्स देखी जाती है, न शोहरत, न मकाम। मर्द को मर्द के लिहाज से अपने आमाल के जो नताइज हैं उसे मिलेंगे, औरत को उसके अपने आमाल के बदले ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह सुबहानहु व तआला तो सिर्फ अखलास और अमल को देखता है। समय के नाम अब आते हैं एक हकीकत पसंद मिसाल की तरफ, यानी हकीकी मिसाल से जब हम इसकी वजाहत पेश करेंगे तो बात ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी बिज़्निल्लाह ताला। तो एक माँ जो अपनी औलाद की तरबियत में अपनी ज़िंदगी गुजार देती है, एक उस्ताद जो दूर दराज गाँव में बच्चों को इल्म सिखाता है। आपने देखा है कि इस तरह के जो असातिज़ा होते हैं उनकी उनको काफ़ी मशक्क़तें झेलनी पड़ती हैं, बिलखसूस जो दूर दराज गाँव में पढ़ाते हैं। वहाँ मोहब्बत तो ज़रूर है, लेकिन रहन सहन में, रिहाइश में, सहूलियात में वो शहर के जो असातिज़ा हैं उनके बराबर कभी नहीं हो पाते। तो एक उस्ताद जो दूर दराज गाँव में बच्चों को इल्म सिखाता है, उसकी कुर्बानियाँ ज़रा इसे तसव्वुर करें। एक दाई जो खामोशी से लोगों तक खैर का पैगाम पहुँचाता है, आज की इस दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जो दावत के मैदान में सरगर्म हैं और लोगों को बताते फिर रहे हैं कि हम ये दावत दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हम उस दाई की बात कर रहे हैं जो खामोशी से लोगों तक खैर का पैगाम पहुंचाता है। एक शख्स जो किसी परेशान इंसान को तसल्ली देता है, एक नौजवान जो गुनाह के माहौल में रहकर भी अल्लाह की इताअत पर कायम रहता है। अय हाय हाय, ये तो बड़ी सख्त बात है, गुनाह के माहौल में रहकर भी अल्लाह की इताअत पर कायम रहना बड़ी चैलेंजिंग है। आजकल तो लोग सब माहौल को कसूरवार ठहराते हैं कि भाई माहौल ही ऐसे, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो नौजवान जो गुनाह के माहौल में रहकर भी अल्लाह की इताअत पर कायम रहता है, शायद दुनिया इनके नाम न जानती हो, लेकिन अल्लाह उन्हें जानता है और यही काफ़ी है। कुरान हमें बताता है, इन्ना ला नुदीउ अजर المصلحين, हम इस्लाह करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करते। अब ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, इस आयत पर अल्लाह सिर्फ बड़े बड़े कारनामों का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि हर शख्स की कदर कर रहा है जो अपने हिस्से की इस्लाह कर रहा है, अपने घर में, अपने महल्ले में, अपनी औलाद के हवाले से, अपने दोस्तों में, अपने माशरे में। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख लीजिए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिनकी कुर्बानियाँ अपने बचपन से लेकर जवानी तक कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी इसी हकीकत का अमली नमूना है। कुएं में डाले गए, गुलाम बनाकर फरोख्त किए गए,
झूठे इल्जाम में कैद किए गए।

दम रहता है, शायद उसके सब्र को कोई न समझे, लेकिन समझने वाली जात एक है जरूर। अल्लाह तो जरूर जानता है, और जब अल्लाह जानता है तो फिर किसी और के जानने ये जानने से क्या फर्क पड़ता है। कुरान हमें कहता है, हम इस्लाह करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करते। गौर कीजिए, अल्लाह ने यहाँ इस्लाह करने वालों का जिक्र किया है, यानी हर इंसान अपने दायरे में मुस्लिह बन सकता है। अपने घर में इस्लाह करें, अपने बच्चों में अच्छे अकदार पैदा करें, अपने दोस्तों को खैर की तरफ बुलाएं, अपने माहौल में अच्छाई फैलाएं। शायद दुनिया इसको मामूली समझे, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये अजीम अमल है। कुरान हमें मजीद एक और हैरत अंगेज हकीकत बताता है कि अल्लाह के रास्ते में लगने वाली प्यास, थकन, भूख और हत्ता के उठाया जाने वाला हर कदम भी महफूज किया जाता है। छोटी छोटी तकलीफें भी, जिन्हें शायद खुद इंसान भूल जाए, अल्लाह के यहाँ लिखी जा रही होती हैं। आप किसी नेकी के लिए घर से निकलते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, वक्त निकालते हैं, अपनी राहत कुर्बान करते हैं। शायद आपको लगे कि ये तो मामूली बात है, कौन देख रहा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये मामूली नहीं। अल्लाह हर लम्हे को शुमार कर रहा है, हर कदम को महफूज कर रहा है, हर नियत को जानता है, और इसी का ऐलान उसने इस आयत के जरिए किया है, इन्ना अल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाय नहीं करता। जैसा कि हमने ब्रेक से पहले भी इस बात की तरफ इशारा किया था, तो सामिन किराम, आज जिस हकीकत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमें नज़र आती है। एक बच्चा जिसे उसके अपने भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, ग़ुलाम बनाकर फरोख्त किया गया, झूठे इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया, बरसों आजमाइशों में रहा। अगर हम सिर्फ दरमियान का मंजर देखते तो शायद कहते कि उसकी ज़िंदगी तो मुश्किलात ही मुश्किलात से भरी हुई है, लेकिन अल्लाह की तदबीर खामोशी से अपना काम कर रही थी। फिर एक दिन वही यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाइख्तियार तरीन लोगों में शामिल हो गए, और जब उनके भाई उनके सामने खड़े थे, जिन्होंने अपनी कामयाबी का राज बयान करते हुए फरमाया, जो तक्वा इख्तियार करे और सब्र करे तो अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करता। तो सामिन किराम, तक्वा इख्तियार कीजिए, सब्र इख्तियार कीजिए, इखलास के साथ नेकी करते रहे, नतायज के बारे में बेचैन न हो, क्योंकि मोमिन का काम बीज बोना है, फल देना अल्लाह का काम है। सामिन किराम, आज अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत नज़रअंदाज हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी कुर्बानियों को कोई नहीं जानता, अगर आपको महसूस होता है कि आपका खैर का काम बहुत छोटा है, तो कुरान का ये पैगाम याद रखिए, अल्लाह के हाँ कुछ भी ज़ाय नहीं होता, ना सूद, न दुआ, न कुर्बानी, न सब्र, न नेकी, और नहीं अल्लाह के लिए उठाया गया कोई भी कदम। बस शर्त यह है कि उसमें इखलास हो, एहसान हो, ईमान हो। इसी वजह से आयत में सराहतन ईमान का जिक्र किया गया है कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। तो तक्वा और सब्र के साथ अपनी मेहनत को जारी रखिए, यही है हमारी आज की गुफ्तगू का खुलासा। वैसे प्रोग्राम के इस मरहले में चले लौटते हैं उस हदीस की तरफ जिसमें किरदार के हवाले से काफ़ी अहम बात आई है कि हमें इन हालात में हमें क्या करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत कायम हो जाए और तुम में से किसी के हाथ में खजूर का दाना हो, फसीला हो, और वो उसे बो सकता हो तो वो उसे ज़रूर बोए। क्या खूबसूरत तालीम है सामिन किराम। जैसा कि हमने ब्रेक से पहले कहा था कि इस हदीस का ताल्लुक सिर्फ दरख्त लगाने से नहीं, ये दरअसल मोमिन की पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, अमली फ़लसफ़ा है। ये हदीस हमें सिखाती है

0: जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: दोस्तों, सड़कों पर मुकर्रर की गई या डेजिग्नेटेड लेन्स में चलना, खास तौर पर चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक की रवानी में मदद फराहम करता है और सड़क हादसात को कम करता है। जब हर शख्स अपनी डेजिग्नेटेड लेन में चलने का एहतमाम करता है तो ना सिर्फ सफर ज्यादा आसान हो जाता है बल्कि सबको अपने रास्ते में चलने की सहूलत मिलती है। इससे ना सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि हादसे और रुकावटों का खतरा भी कम हो जाता है। जब हर शख्स लेन का ख्याल रखता है तो ना सिर्फ सफर में बेहतरी आती है बल्कि सबके लिए सेफ एनवायरनमेंट भी बन जाता है। चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर लेन में चलना रोड रेज को भी कम करता है और सबको अपनी मंजिल तक जल्दी और अहम वक्त में पहुंचने में मदद मिलती है। अगर हम सब अपनी अपनी लेन में चलें तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की भी जान को महफूज रख सकते हैं। रोड सेफ्टी को अपनाकर हम अपने सफर को बेहतर और सिक्योर बना सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है जो सबके अमन और सेफ्टी के लिए जरूरी है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश खान और मैं आ गई हूँ यहाँ पे. 6 बज के हो रहे हैं 1 मिनट. मेरा आपके साथ रहना है 9 बजे तक और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से गुजर रही होगी आपकी ज़िंदगी और सब कुछ अच्छा से चल रहा होगा. सुबह का आगाज़ अगर हो चुका है कुछ लोगों का अर्ली मॉर्निंग तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सा फ्रेश सा आगाज़ हो चुका होगा. और जो अपने अपने कामों पर निकल गए हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो उनको तो हम यही कहेंगे कि ड्राइव केयरफुली, हमेशा देखभाल की गाड़ी चलाइए. और ये कि इसके साथ ही वो लोग जो नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं तो अच्छा सा नाश्ता कीजिए. नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है. अगर थोड़ा सा टाइम है रुक जाइए घर पे और आराम से मतलब सुकून से नाश्ता कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी कॉफ़ी चाय और उसके बाद फिर आप निकलिए, अच्छी सी सुबह का आगाज़ कीजिए. चलिए जी, तो आज मंडे है और आज भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे शेयर करने के लिए और काफ़ी कुछ है. मतलब वेदर भी बताऊंगी. वैसे तो खैर अच्छा ही लग रहा था मुझे सुबह में आते हुए. अच्छी बात वैसे सुबह के शो की ये होती है कि आप सुबह में एक तो बड़ा फ्रेश फील कर रहे होते हैं, ऊपर से ये कि मौसम अच्छा होता है, आपको पूरी मतलब ना राइड पर आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप AC ऑन करो. आप आराम से मतलब चलो के आ सकते हो, सुकून का वक्त है, कोई ऐसी मतलब धूप गर्मी नहीं हो रही. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ना उसके बाद फिर आपको आजकल लग पता जाता है. तो इसलिए ख्याल रखना है अपनी डाइट का खास तौर पे और खाने पीने का, पानी का, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम हमेशा इसलिए बताते रहते हैं ताकि आप भी अपने जहन में रखें और उनका इस्तेमाल करते रहें, जो अच्छी चीज़ें कारामत है ना मतलब मौसम के हिसाब से. अच्छा वैसे मतलब ना हम जब बच्चे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं अंदाज़ा होता. मैं सोचती थी रात की नींद की बड़ी अफादियत होती है ना, सब बताते हैं रात में सोना चाहिए, अर्ली सोना चाहिए. तो मैं सोचती हूँ भाई हमें बॉडी को कैसे पता चलता है रात हो रही है, दिन हो रही है, अंधेरा करके सो जाएंगे. लेकिन भाई पता चलता है सब कुछ, सारे जो निज़ाम है ना वो जुड़े हुए. इसीलिए आप देखें गर्मियों में आपको जो फ्रूट्स और जो सब्जियां वगैरह मिल रही होती हैं उसमें ज़रा ज़्यादा पानी होता है, मौजूद होता है और ठंडी तासीर की जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको मिलती हैं. तो इसलिए भाई जो कुदरत हमें दे रही है वो हमें इस्तेमाल भी करना चाहिए अपनी डाइट में अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं और सुकून से रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि मतलब हमें ना मतलब वो गर्मी का ज़्यादा एहसास ना हो. तो कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें जो है ना आजकल अपनी डाइट में रखें, जैसे मतलब जो एक होता है ना लस्सी का इस्तेमाल जो लोग कर सकते हैं सुबह सुबह. अच्छा लस्सी का जैसे ही जिक्र आता है तो जहन में मतलब बहुत ही कोई ऐसा लगता है कि हैवी चीज़ होती होगी ना, मतलब लस्सी बोल दी है तो बहुत हैवी होती होगी. तो मैं उस वाली लस्सी की बात नहीं कर रही जिसमें मक्खन के पेड़े डाल के पिए जाता है. मैं नॉर्मल आपसे लस्सी की बात कर रही हूँ कि वो जो यहाँ पे इजीली मिल भी जाती है लब्बन, और आप चाहे सॉल्ट वाली पसंद करते हैं चाहे शुगर वाली पसंद करते हैं. लेकिन आजकल थोड़ा सा मतलब ना इस्तेमाल रखिए अपनी डाइट में योगर्ट का, दही का, लस्सी का. ये चीज़ें आपको अंदर से ज़रा कूल डाउन कराएंगी तो आप अच्छा अच्छा सा फील करेंगे, बड़ा ज़रूरी है. खैर जी अभी क्या सिलसिला है? अभी सिलसिला ये है कि हम जो है वो आपसे शेयर करेंगे बहुत सारी चीज़ें और लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम अस्कार की तरफ जाते हैं. और हाँ उससे भी पहले हम जो है वो कुछ चीज़ें आपसे दूसरी भी शेयर करते हैं. आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पे और साथ ही साथ आप हमें कर सकते हैं क्या, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे. और उसके लिए जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 666-22-107. तो आज मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ तो मैं आपको बताती चलूँ भाई कि मैंने आज भी आपके लिए, क्योंकि कल जैसे हुआ था कल भी मैंने आपसे एक तहरीर शेयर की थी, तो आज भी मैंने सोचा कि शुरू में असकार से पहले कोई अच्छी सी बात कोई ऐसी हो ना जो कि हम लोगों को एक तरह से मोटिवेट भी करे और अगर हमारे जहन में कोई अंदेशे हैं, कोई परेशानियाँ हैं, कोई फिक्रें हैं तो वो भी दूर हों. आज भी एक ऐसी ही चीज़ है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है. हम सब लोग ही अपनी ज़िंदगी में ना मतलब अगर आप देखें, हम माने या ना माने लेकिन हम अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रिस्क के पीछे भागते रहते हैं. और हर किसी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक

ख्वाहिश होती है कि उसको इतना मिल जाए कि वो आगे की जिंदगी बिल्कुल पुरसकून होके खुशबाश होके गुजार सके. मतलब हम लोगों को खुशी खुशहाली का मतलब जो है ना वो यही आ रहा होता है कि कहीं अगर आपके पास मतलब इतनी दौलत आ जाए ना कि आपको कुछ करना ना पड़े तो ये खुशहाली मतलब आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी और आगे आप बिल्कुल खुश खुश रहेंगे. तो मैं देख रही थी कल कि कुरान ने तीन ऐसी शख्सियतों का जिक्र किया है जो दौलत हो या ना हो उसके बावजूद मतलब दोनों सूरतों में ना रिस्क के मामले में हमेशा परेशान रहती हैं. तो मैंने सोचा चलें इसके बारे में बात करते हैं और फिर अपने आप को टटोलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ हमें पाई जाती है. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक इंसान बेसब्रा पैदा किया गया है, जब उसे कोई तकलीफ पहुँचती है तो घबरा उठता है और जब उसे खैर और आसाइश मिलती है तो रोक लेने वाला बन जाता है. और ये सूरह अल-मारिज में है. तो अक्सर लोग समझते हैं कि उनका मसला पैसे की कमी है, लेकिन कुरान हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत दिखाता है. बाज़ औक़ात मसला रिज़्क़ की कमी का होता ही नहीं है बल्कि दिल की कैफियत का होता है. कुरान में जो कुछ तीन शख्सियत बयान की गई ना, तो उसमें पहली शख्सियत है अल हलू, जिसको कहा जाता है बेकरार इंसान. और ये वो शख्स है जिसके दिल में सुकून नहीं होता, उसकी कैफियत हालात के साथ बदलती रहती है. नुकसान हो तो टूट जाता है, ताखीर हो तो बेचैन हो जाता है, कामयाबी मिले तो बदल जाता है. मुस्तकबिल का खौफ उसे मुसलसल खाए रखता है और ऐसा इंसान कभी भी मुतमईन नहीं रहता क्योंकि उसकी खुशी और सुकून अल्लाह से जुड़े होने के बजाय हालात से जुड़े होते हैं. अच्छा, फिर दूसरी शख्सियत है, दूसरी शख्सियत को कहते हैं अलजुज़ू, जो कि मुसीबत में घबरा जाने वाला है. जब रिस्क में कमी आती है, तंगी आती है या ज़िंदगी में आजमाइश आती है तो ये शख्स अंदर से बिखर जाता है. उसे लगता है कि शायद अल्लाह ने उसे भुला दिया है और एक बंद दरवाज़ा उसे ज़िंदगी का इख्तिताम महसूस होता है. एक ताखीर उसे नाकामी दिखाई देती है और वो ये भूल जाता है कि जिस रब ने माजी में उसकी मदद की वही रब आज भी उसके मामलात संभाल रहा है. उसकी नज़र आजमाइश पे होती है, आजमाइश देने वाले रब पे नहीं. फिर तीसरी पर्सनैलिटी है और ये है अलमनू, रोक लेने वाला. फिर जब अल्लाह उसे माल आसाइश फरागी अदा करता है तो उसका खौफ ख़त्म नहीं होता बल्कि एक नया खौफ जन्म ले लेता है. अगर ये सब भी मुझसे छिन गया तो ये सवाल आ जाता है. तो चनाचे वो माल पकड़ के बैठ जाता है, सदका कम कर देता है, दूसरों की मदद से कतराने लगता है और दिल उसका दुनिया के साथ बन जाता है. वो माल का मालिक नहीं रहता बल्कि माल उसका मालिक बन जाता है. तो गौर कीजिए, अलहुलू के पास सुकून नहीं है, अलजुज़ू के पास सब्र नहीं है, अलमनू के पास सखावत नहीं है. ये तीनों मुख्तलिफ हालात हैं लेकिन इनकी जड़ एक ही है और वो है अल्लाह पे कामिल भरोसे की कमी. इसीलिए बाज़ लोग गरीब होकर भी मुतमईन होते हैं और बाज़ लोग करोड़ों के मालिक होकर भी खौफ बेचैनी और महरूमी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं. क्योंकि असल दौलत डेफिनेटली मतलब वो जो हमारे बैंक अकाउंट में पड़ी हुई रकम है वो नहीं होती बल्कि दिल के अंदर होती है. अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला जब भी किसी चीज़ का जिक्र करते हैं तो सिर्फ बीमारी नहीं बताते, इलाज भी फौरन बता देते हैं. और आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि सिवाय उन लोगों के जो नमाज की पाबंदी करते हैं. और नमाज क्या सिखाती है इंसान को? नमाज इंसान को ये सिखाती है कि हालात बदलते रहते हैं लेकिन आपका अल्लाह नहीं बदलता. कभी तंगी आए तो सब्र कीजिए, कभी फरागी आए तो शुक्र कीजिए, कभी ताखीर हो तो एतमाद और कभी नेमत मिले तो आजसी. नमाज दिल के इंसान को दिल के जो दुनिया के अतार चढ़ाव से निकाल कर रब्बुल आलमीन के साथ जोड़ देती है. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बाबरकत रिस्क हो तो सिर्फ माल बढ़ाने की कोशिश ना करें, ऐसा दिल बनाएं जो माल को संभाल सके, ऐसा दिल जो तंगी में ना घबराए, फरागी में ना इतराए, नुकसान में ना टूटे और नेमत मिलने पर अल्लाह को ना भूले. क्योंकि असल गरीब जेब का नहीं होता, दिल का होता है. तो असल अमीरी भी माल की नहीं बल्कि अल्लाह के ऊपर भरोसे की होती है. कुरान हमें सिखाता है कि खौफ बेचैनी और दुनिया से हद से ज़्यादा वाबस्तगी इंसान को हमेशा महरूमी के एहसास में रखती है, चाहे उसके पास कितना ही माल क्यों ना हो. तो जब दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाता है तो इंसान को सिर्फ रिस्क नहीं मिलता बल्कि रिस्क में बरकत, सुकून और इत्मीनान भी नसीब होता है. हकीकी खुशहाली जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया वो दौलत जमा करने से नहीं बल्कि ऐसा दिल बनाने से आती है जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता हो. तो ये बात ज़रूर जहन में रखें, चाहे किसी भी तरह के हालात चल रहे हों, बहुत अच्छे हालात हों, शुक्र करना हमारे ऊपर वाजिब है. और अगर थोड़ी सी तंगी है, थोड़ी परेशानी है, कुछ आजमाइशें हैं तो कोई बात नहीं, ये वक्त गुजरेगा लेकिन आपको अल्लाह पर भरोसा रखना पड़ेगा.

من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

जी राइट, जिन लोगों ने अभी अभी ट्यूनिंग किया आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एक दफा फिर से गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महावश खान और मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे। आज का जो वेदर अपडेट है वो हम आपसे शेयर करते चले हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त कतर में, किस तरह का मौसम है। तो भाई मुल्क भर में गर्म और धूप वाला ही मौसम रहने का इम्कान है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की सी हेज या फिर धुंध भी दिखाई जा सकती है आज। मतलब हल्की हल्की सी रहेगी, बादल वादल नहीं होंगे, उसको ये नहीं समझेगा। और दोहा में आज टेम्परेचर तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के वक्त दर्जे हरारत जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का इम्कान है। अगर बिल्कुल इस वक्त की मैं बात करूं तो इस वक्त हो रहा है कुछ 34 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इस वक्त का है वेदर। और अगर देखा जाए इलाकों के हिसाब से तो अलवकरा, लुसेल, अलखोर, उमसलाल तकरीबन मतलब गर्म मौसम ही रहने का इम्कान है। और ह्यूमिडिटी नस्बतन कम रहेगी, लेकिन कोस्टल एरियाज़ में गर्मी ज़रा ज़्यादा महसूस हो सकती है और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलने का भी थोड़ा सा इम्कान है, जिसकी वजह से आपको शायद थोड़ी सी मतलब गर्मी से ना राहत फराहम होती रहेगी। क्योंकि जब हवा चल रही होती है तो आपको पता है कि थोड़ा सा एहसास ज़रा कम होता है, हवा बिल्कुल ही रुक जाए तो फिर डेफिनेटली ज़रा ज़्यादा जो है वो आपको गर्मी का एहसास होता है। खैर, यूवी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान डायरेक्ट सनलाइट से बचने की कोशिश करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, आउटडोर एक्टिविटीज़ को मुमकिन जितना हो सके उतना आप लिमिट रखें। और ये था मतलब आज का वेदर अपडेट, ख्याल रखिए अपना। धूप काफ़ी तेज़ मतलब अभी थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। इस वक्त जैसे मैं कह रही थी कि सुबह का वक्त मतलब इसलिए अच्छा लगता है आपको ड्राइव करने के लिए भी, सब चीज़ों के लिए, कि वो वाली ना शिद्दत नहीं होती है, आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ मतलब यहाँ पर इतनी धूप होती है कि आपने सनग्लासेस भी लगाए हुए ना तो नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि इतनी शदीद किस्म की धूप होती है। तो ड्राइव करने वाले तो तमाम लोगों को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भाई आप लोग सनग्लासेस का इस्तेमाल किया करें, लाजमी लगाया करें, वो भी जो डार्क शेड्स वाले होते हैं उनका इस्तेमाल किया करें। क्योंकि होता क्या है मतलब बहुत सारे लोग इसको फैशन से ही जोड़ते हैं आज तक और सनग्लासेस का यूज़ नहीं करते, आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जितनी ज़्यादा रोशनी होती है रिफ्लेक्ट करके आपकी आँखों में आती है तो आपकी आँखों के लिए वो ठीक नहीं है, इसलिए सनग्लासेस विद प्रॉपर शेड्स मतलब ब्लैक वाले की तरफ जो जितना डार्कर हो सके वाले जो शेड्स हैं वो आप लीजिए, इस्तेमाल कीजिए और उसके बगैर गाड़ी ना चलाइए। मुझे याद है बिल्कुल शुरू में जब मैंने ड्राइविंग शुरू की थी ना, मतलब सीख ही रही थी जिन दिनों में, तो आंखें खुलती ही नहीं थी, मतलब बगैर सनग्लासेस के आंखें खुली नहीं रही होती थी, बंद हो रही होती थी बार बार। तो काफ़ी मतलब ये ठीक ठाक एक ख़तरा है, इसको समझते हुए सनग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जी अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, 4434377 हमारा वो नंबर है जिसपे आप हमसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैसेज करना तो उसके लिए नंबर है हमारा 6622107। तो देख लेती हूँ मैसेजेस कुछ आए हुए हैं, मुझे लग रहा है कि लोग ना काफ़ी लेट उठने लगे। महावश खान अस्सलाम वालेकुम, तौफीक फ्रॉम अलवकरा, इन्होंने फूल छूल भेज दिए हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम सलाम तौफीक भाई, क्या हाल चाल हैं आपके, ठीक हैं। और इसके साथ ही जी मैसेज है आसिफ कमाल का और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज की सुबह अच्छी है, गर्मी थोड़ी कम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं पहुँच चुके हैं अब तक अपने मतलूबा मकाम पर, अभी रस्ते में ही हैं, अगर रस्ते में हैं तो ज़रूर कॉल कीजिए। और इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम मुझे कहा है, इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन पाकिस्तान से मैसेज है इनका, तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे।

0: रोड के करीब मतलब जो लोग जाते हैं तो उनको यही कहा जाएगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम रखे आप जो है घर से निकलिए। इसके साथ ही रोड यूजर्स अलगराफा के करीब उनको चाहिए कि ओवरनाइट क्लोजर चल रहा है तो वो अगर रात के वक्त में करते हैं ड्राइव वगैरह तो उनको भी मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रखे चलना है। बाकी स्कूल्स ऑफिसेस बिजनेसेस जो हैं वो सारे के सारे जो अल शमाल सी रिंग रोड सलवा रोड लुसेल एक्सप्रेस हाईवे तो यहाँ पे भी अब क्योंकि ट्रैफिक ज़रा ज़्यादा होती है यूजली और मॉर्निंग टाइम में भी तो थोड़ा सा वक्त ज़रा 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा रख के घर से निकलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ, आप सुनाइए।
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं नाम क्या है आपका?
1: मोहम्मद अख्तर।
0: मोहम्मद अख्तर, क्या हाल चाल है और क्या हो रहा है इस वक्त?
1: इस वक्त मैं गाड़ी लेके निकला हूँ।
0: अच्छा,
1: करारा से मकरा के लिए आपका पुराना प्रोग्राम।
0: जी जी, अच्छा तो ट्रैफिक का क्या हाल है? ट्रैफिक का उस तरफ क्या हाल है जहाँ पे आप इस वक्त भी मौजूद?
1: यहाँ तो बिल्कुल जंगल है जी, मैदान
0: है
1: जी,
0: सही।
1: बस मैं अकेला ही दिख रहा हूँ रोड पर।
0: अच्छा गुड, जबरदस्त, ये भी अच्छा है, मतलब ड्राइव इजीली बंदा कर सकता है ना खुल के।
1: जी जी बिल्कुल खुल के है, अगर यहाँ आप सीख भी सकती थी, अभी आपने कहा ना जब मैंने सीखना शुरू किया, अगर आप यहाँ रोड पर सीखना चाहे तो यहाँ कोई नहीं है।
0: अच्छा ये अच्छा है, बाकी मतलब ये इस तरह की भी कुछ जगह होनी चाहिए जहाँ पे जो लोग न्यू लर्नर हैं गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो वो लोग जिस तरह जाके एक्सपेरिमेंट्स कर सके।
1: जी वो यहाँ आ सकते हैं, सही बात।
0: तो ये किस तरफ है वकरा में?
1: ये ओम सईद रोड देखा है आपने?
0: हाँ
1: से आप ओम सईद जाएंगे तो 20 नंबर एग्जिट आएगा, उससे जमीन मुड़ेंगे।
0: सही सही गुड। तो आप अभी ऑफिस पहुंच रहे हैं अपने?
1: जी मेरे को गाड़ी की सर्विस कराना है आज, गाड़ी के ऑफिस पहुंच रहा हूँ।
0: अच्छा गाड़ी के ऑफिस पहुंच रहे हैं, चाहिए गुड। अच्छा आज का सवाल अभी तक, हाँ हाँ जी जी, आज का सवाल मैंने अभी तक किया नहीं था तो अब आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं कि अगर इस हफ्ते का मैं आपसे कहूँ कि कोई इस हफ्ते का टारगेट है, इस हफ्ते का गोल है, तो कोई मसला नहीं कि वो छोटा सा हो कुछ भी, तो वो क्या है, कुछ है ऐसा? अच्छा मैं फिर बता देती हूँ, इस हफ्ते के लिए आपने कोई भी टारगेट सेट किया हुआ अपना, कोई मतलब जो ना कोई गोल सेट किया हुआ हो कि ये करना है भाई इस हफ्ते, मतलब ये काम हो जाना चाहिए, छोटा सा हो बड़ा हो कोई भी मसला नहीं, तो कोई ऐसी चीज है जो आपने सोची हुई है इस हफ्ते के लिए खास?
1: जी इस हफ्ते के लिए मैंने सोचा है बहुत अच्छा सरप्राइज, मैं इंडिया जा रहा हूँ।
0: अच्छा ओके ग्रेट,
1: मेरा टिकट होना बाकी है, बात मेरी हो चुकी है, बस ये सोचा है मैंने सबसे अच्छा प्लान।
0: जबरदस्त जबरदस्त, मतलब वेकेशंस पे जा रहे हैं आप? हाँ
1: जी
0: सही,
1: दुआ करें इंशाल्लाह सही सलामत ले जाऊं, सही सलामत आऊं
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो कब तक?
1: और मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को सलाम।
0: चलें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट अख्तर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और थैंक यू जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।
1: अच्छा वो जो मैडम है ना हमारी सिस्टम है, मैडम नाजिया उनको सलाम कहना।
0: अच्छा
1: अख्तर मुजफ्फरनगर वाला।
0: अच्छा अच्छा बिल्कुल, नाजिया तो बस अभी छुट्टियों पे जा चुकी हैं, अब तो वो घूम फिर रही होंगी।
1: अच्छा,
0: जा चुकी है जी जी बिल्कुल,
1: तो मैं
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी, थैंक यू मोहम्मद अख्तर साहब, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे और इसके साथ ही हम एक ब्रेक लें। अच्छा एक और कॉल आ गई, पहले उनकी कॉल ले लेते हैं फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम। जी खलील भाई क्या हाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस देख ले मैंने कहा शुरू में ही ट्राई कर लूं ऐसा ना हो फिर मौका ना मिले।
0: जी और सुबह कैसी, शुरुआत कैसी हुई सुबह की आज की?
2: एज यूजुअल अच्छी होती है, सुबह उठना अच्छा होता है असल में, मुझे अच्छा लगता है।
0: ये तो है
2: एक्चुअली, जिसको आदत पड़ जाती है ना फिर नींद 2 घंटे की भी बहुत है।
0: हाँ सुबह का जो वक्त है ना, अगर वाकई आपको आदत हो आप बाहर निकलें मतलब थोड़ा सा सुस्ती छोड़कर थोड़ी वॉक शॉक करें तो सुबह के वक्त जैसा पूरे दिन में आपको फिर वक्त नहीं मिलता, इतना खूबसूरत वक्त होता है। हाँ
2: सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, आप मॉर्निंग उठें वॉक करें नमाज पढ़ें पहले फिर उसके बाद वॉक करने चले जाएं, आधा घंटा वॉक कर लें कोई मसला नहीं है, पर ये कि खुली फिजा में सांस लें आप ज्यादा अच्छा होता है।

0: बस जिनको आदत पड़ जाती है फिर उनको 2 घंटे की नींद भी बहुत है।
1: बिल्कुल सही। अच्छा 2 घंटे की नींद भी लेके आप सुबह में उठ जाते हैं, मतलब उठना है सुबह।
0: अच्छा ये फैसिलिटी हमारे मुल्कों में नहीं है, असल में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, तो इस वजह से मॉर्निंग टाइम में लोग जिनके घर के करीब फैसिलिटी होती है वो तो चले जाते हैं डिफेंस के तौर, अपना जहाँ डिफेंस हो बंदे का। बाकी ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं कि यार कोई मोबाइल इसके अडजस्ट ना आ जाए, कोई ये ना हो जाए।
1: ऐसे ही है मतलब अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें जो है ना अभी तक चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं, लोगों को अपनी खुद ही हिफाजत करना पड़ती है, वो भी बेचारे कहाँ तक करेंगे, तो ये वाकई है अलमिया एक।
0: ये तो अल्लाह का शुक्र है इधर ऐसा कुछ है नहीं है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये बड़ी एडवांटेज है इधर, आदमी फिर घूमे फिरे क्या जरूरत है सुनने की।
1: जगह जगह पे देखे ना आपको पार्क्स बने हुए हैं, आप मतलब इजीली कहीं पे भी अपने करीब के इलाके में जा सकते हैं, बहुत ग्रीनरी के ऊपर काम हो रहा है, तो सुबह के वक्त ना ये चीजें बहुत खूबसूरत लगती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा भाई आज ये बताएं कि इस हफ्ते का कोई गोल जो आपने सेट किया हो, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, कुछ है?
0: एक्चुअली डेली मैं काम लिख लेता हूँ कि यार ये काम करने है, फिर मैं टिक टिक करता जाता हूँ कि भाई ये काम हो गया ये काम हो गया, फिर नेक्स्ट डे अगर नहीं हुआ तो वो काम फिर नेक्स्ट डे पे चला गया। और ये सही भी है, डेली आप अपना एक चार्ट बना लें कि भाई ये काम करना है, तो फिर आपके काम बकाया नहीं रहते, टाइम से हर काम हो जाते
1: हैं। गुड, जबरदस्त। तो लिखने के आदि कहाँ लिखते हैं आप, फोन पे लिखते हैं या फिर बकायदा लिखते हैं?
0: नहीं एक पेपर पे छोटे से।
1: अच्छा गुड, जबरदस्त जबरदस्त, अच्छी बात है।
0: जैसे डायरी पे लिख लिया कि भाई ये काम है आपने आज करने,
1: जबरदस्त,
0: रात को सोने से पहले फिर वो देख लिया ये हुए टिक वो कर दिया, फिर नेक्स्ट के लिए जो रह गए वो नेक्स्ट डे पे डाल दिया।
1: चलें गुड, क्योंकि आजकल ना लिखने का रिवाज ही खत्म हो गया है, पेन और पेपर के ऊपर बकायदा लिखना जो है ना ये भी
0: वैसे ही बहुत गलत है। पता है क्या, बच्चों की राइटिंग में देखता हूँ मैं, सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। यार हमें हमारे दौर में अब्बू बकायदा मारते थे कि तख्ती लिखो, हमारी राइटिंग सही नहीं है।
1: हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, वक्त के साथ साथ राइटिंग जो है ना वो अच्छी नहीं हो रही बल्कि बुरी होती जा रही है, क्योंकि उनका इतना काम नहीं पड़ता।
0: खासकर नई जनरेशन की बच्चों की, वो हर ये जो गैजेट्स हैं लैपटॉप आईपैड इन चीजों से ही नहीं निकल पाते।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही।
0: और मैं बिलीव करें, मैं अपना किस्सा शेयर करूं, मुझे अबू कैलकुलेटर नहीं लेके दे रहे थे, मैं टीचर के पास लेके गया था अबू को।
1: अच्छा,
0: ये साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए था मैट्रिक में, उसमें साइन थीटा और कॉस वगैरह की वैल्यू निकालनी थी, तो वो टीचर करने लगे प्राचार्य साहब आप जो है ना एक इसको भी लेके दें एक मुझे भी लेके दें।
1: लेकिन अबू लेके नहीं दे रहे थे।
0: अबू को बोला अबू जी कब देख लेंगे, ये मैं आपको कह रहा था ना, यानी पुराने लोगों की ये सोच होती थी कि ये बच्चे कैलकुलेशन ना भूल जाए।
1: हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है।
0: वो उंगलियों पे करते थे मल्टीप्लिकेशन और पिलर्स वगैरह, वो उंगलियों पे उनको याद होती थी, धड़ाधड़ इस तरह मिनट में।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए ना आजकल हम अब किसी का नंबर याद नहीं कर पाते, हमारी आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी ना डिक्लाइन हो रही है। मुझे मेरी अम्मी को ना तकरीबन मतलब हर किसी का नंबर जबानी याद था, हर किसी की बर्थडेज याद थी। अब हमारे दिमाग का ये हाल हो गया कि हमें अपने बच्चों की भी सोचना पड़ती है कि क्या है, क्योंकि हम सोचने के आदि नहीं रहे ना।
0: मोबाइल के इतने हम वो हो गए हैं आदि के, अगर हमसे कोई मोबाइल गिर जाता है तो हमें मोबाइल नंबर किसी का याद ही नहीं होता
1: कि हम
0: किसी को बताएं कि यार हम मैं मेरे साथ इस तरह का मसला हो गया है और मुझे आके पिक कर लो या जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी आके सॉल्व करो, नंबर ही याद ही नहीं होता आपको।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये खैर काफी मतलब जो है ना इस चीज को देखना चाहिए हम लोगों को, बच्चों को भी कोशिश करवानी चाहिए, कुछ मेमोरी गेम्स कुछ इस तरह की जो चीजें ना वो होनी चाहिए, उससे काफी फर्क पड़ता है।
0: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपको एक दो नंबर जो अपने रिलेटिव के किसी के भी आपको याद होने चाहिए,
1: होने चाहिए। एग्जैक्टली,
0: वरना तो खुदा ना खासा मोबाइल गिर जाता है गुम हो जाता है। तो ये

0: फिर बड़ा मसला हो जाता है कहाँ जाए।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। चलें जी खलील भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने नाश्ता नहीं किया है तो नाश्ता करें अच्छा सा, और अच्छी सी सुबह गुजारें, ठीक है? फिर इंशाल्लाह ताला कल बात करते हैं। थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे और इसी के साथ हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं शो में।
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 एफएम 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.
3: दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है। जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं। साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है। अगर साइक्लिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खास तौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों। इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए। अक्सर साइकिलिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। हेलमेट्स सिर्फ साइकिलिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइक्लिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
2: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वजारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
4: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: और हमारे साथ मौजूद हैं 443-443-77 पे कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र, जावेद बाजवा जेबी बात कर रहा हूँ।
0: हाँ, मैं पहचान तो गई थी, मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डाउट था, वरना अंदाजा हो गया था कि आप ही बात कर रहे हैं। जी, तो सुबह का कैसा आगाज हुआ आज की?
1: अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बेसिकली आज मैं रेडियो ऑन नहीं कर पाया क्योंकि मैं किसी और के साथ था, इसलिए डायरेक्ट कॉल ही कर दी मैंने। मैं मौजू पूछता हूँ क्या है आज का।
0: अच्छा, आज का तो बड़ा ही मतलब जो ना इजी सा है आज, ये कि इस हफ्ते का आपने कोई भी छोटा सा गोल, कोई टारगेट अगर सेट किया हुआ है तो क्या है वो, और करते हैं क्या वीकली टारगेट्स आप सेट?
1: डेफिनेटली वैसे तो टारगेट देखिए, वीकेंड की एक अपनी एक खुशी और मुसर्रत है क्योंकि आदमी ज़हनी तौर पर बिल्कुल फ्री हो जाता है। उसके अलावा अगर गोल की बात करें तो वो डेली लाइफ में भी कुछ ना कुछ हमारे गोल्स रखे होते हैं मैंने, क्योंकि आपकी जो जॉब के हिसाब से आपकी जो मेंटेलिटी, आपकी जो ज़हनी थकन है उसको, स्ट्रेस को कम करने के लिए डेली कुछ ना कुछ गोल आपको रखने चाहिए, नॉट इन अ वीकेंड। मेरा तो यही मामला है मेरा।
0: गुड, जबरदस्त। तो मतलब रोज की रोज जब प्लान करते हैं तो किस वक्त करते हैं, मतलब एक दिन पहले प्लान कर लेते हैं या सुबह उठ के प्लान करते हैं?
1: सुबह नहीं, ये मतलब ये शाम को ही होता है कि आज यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर घूमेंगे, मॉल में चलेंगे, बीच के पास चलेंगे। जैसे कल रात को हमारा सडनली ईशा के बाद प्लान बन गया कि हम लोग चाय पियेंगे जाके शेरडन के पास। बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, चेयर्स को लेके वहाँ पर बैठे, बड़ी अच्छी हवा, बड़ा खूबसूरत क्लाइमेट एंजॉय किया, डेढ़ घंटा वहाँ पर बैठे। तो ये देखे, ये भी गोल की सूरत में आ गया ना, ये भी सडनली आपने कर लिया।
0: सही सही, गुड। मतलब ये अच्छी चीज़ है कि आप ना मतलब एक तो होता है कि गोल्स वो वाले होते हैं हमारे कि जिसमें हम अपने काम से रिलेटेड चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन एक ये चीज़ अच्छी है कि आप अपनी अपनी रिलैक्सेशन के लिए, अपनी फैमिली के थोड़ा सा मतलब आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी गोल्स बनाएं।
1: बेसिकली वो हर बंदे की अपनी एक तरह से जिंदगी, हर बंदे की अपनी सोच है। मैं जब काम से जब मेरी वापसी होती है तो मैं काम को तकरीबन भूल जाता हूँ कि मैं काम करता क्या हूँ।
0: गुड,
1: क्योंकि वहां से मेरी अपनी जिंदगी और मेरी फैमिली के साथ, अहबाब के साथ मेरी जिंदगी वो शुरू होती है। दो रुख है ना जिंदगी के, एक काम की जिंदगी है, एक अपनी है, आपकी जाती जिंदगी है। और जाती जिंदगी में नो कम्प्रोमाइज।
0: बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात बोली, और इसमें ना मतलब लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अच्छी बात है वर्कहॉलिक होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा ये चीज़ आ जाती है कि वो हर वक्त काम को सवार किए रखते हैं, फैमिली टाइम उनके पास होता नहीं है। तो आपको फैमिली को एक अलग से या अपनी ज़िंदगी को ना थोड़ा अलग रखना काम से बहुत ज़रूरी है, वैसे भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। और दूसरा, देखे मैंने कुछ लोग ऐसे जब काम ख़त्म हो रहा होता है ना तो वो उनसे नहीं वो बर्दाश्त कर पा रहे होते हैं कि अब हम काम नहीं करेंगे एनीमोर। तो ये चीज़ भी ना शुरू से माइंड बना के रखना चाहिए भाई कि एक हद तक होती है हर चीज़, उसके बाद हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है और उसके ऊपर फोकस करो।
1: देखिए मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया था, जब नाजिर जी भी यहाँ पर थी माशाल्लाह, अभी तो छुट्टियों को एंजॉय कर रही हैं, खैर से हैं वापस, फिर आपने भी जाना है
0: जी जी।
1: तो बेसिकली बात यह है कि देखिए जिस तरह हमारी रूटीन है, सुबह मैं 3:10 पे उठता हूँ, उसके बाद मैं रात को ही जाके लेटता हूँ, उसके अंदर देखिए हम अपनी जॉब भी 10-12 घंटे कर रहे हैं, घर में भी जाके अपनी इबादत को भी कर रहे हैं, मतलब अपनी फैमिली को लेके बाहर भी जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप काम को सवार मत कीजिए, वक्त बहुत है आपके पास। अगर करना हो तो वक्त निकाला नहीं, वो निकलता है खुद, अगर काम करना हो तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। गुड, जबरदस्त।
1: तो जब आप सारी चीजों को वक्त, आपको पता है कि मेरी मतलब डेफिनेटली अगर मेरी जॉब 4 बजे खत्म हो रही है तो उसके बाद मैं फिर भी काम को सवार करूँ,

0: तो वो फिर मेरी अपनी सोच है, उसके बाद पता है मैं फ्री हूँ।
1: हाँ बिल्कुल, नहीं इस तरह से रखना चाहिए काम, अब बस अपना वक्त पे करें, करने के बाद फिर रिलैक्स रहें, उसके बाद फिर अपनी लाइफ गुजारें, अपनी एक्टिविटीज़ देखें, अपनी कुछ आपके पास ना होनी चाहिए चीज़ें जिनमें आप खुद से इंजॉय करते हो।
0: Exactly. मैंने फिर इसलिए आज जरा मेरा फोन, मैंने कहा अजगर माशाल्लाह खत्म हो गए तो मैंने रेडियो बिल्कुल सुना नहीं, और उसके बाद मैंने कहा कॉल कर लेता हूँ, मैं विश जी ये फील ना करे कि मतलब पूरा दोहा आपके साथ है, आपके आपके सपोर्ट में
1: चले। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक्स अ लॉट, और खैर खैरियत से पहुंचिए अपने काम पे इंशाल्लाह ताला। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रेज तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे, और ज़बरदस्त भाई, मतलब अच्छी अच्छी कॉल्स आ रही हैं। इसके साथ ही आपको ये बताती चलूँ कि ये तो आपको पता ही होगा कि आज 8 जून है, और 8 जून को क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर में ये मैं आपको बताती चलती हूँ। तो 8 जून को भी मतलब दुनिया में मुख्तलिफ और दिलचस्प अंदाज में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जो दिन है वो बड़ा खास जो दिन है वो ये कि 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये दिन हमारे खास तौर पे ओशंस और मैरीन लाइफ के लिए मतलब जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट करता है। दुनिया भर में बीच क्लीनअप्स, फैमिली एक्टिविटीज़ और इन्वायरमेंटल कैंपेन्स का एहतमाम किया जाता है, और ये सब कुछ होता है ताकि हम अपने ओशंस को बचा सकें। लेकिन सिर्फ ओशंस का ही नहीं दिन सेलिब्रेट किया जाता, बल्कि आज एक बड़ा ही मज़ेदार दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और वो है बेस्ट फ्रेंड्स डे। जी बिल्कुल, अगर आपके पास कोई भी ऐसा दोस्त है जो आपकी मुश्किल वक्त में हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हो, तो आज एक मैसेज या फिर कॉल बनती ही बनती है उनको, आप फ्रेंडशिप को अपनी ताज़ा कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ही एक बड़ी ब्लेसिंग्स में से है कि आपके पास अच्छे दोस्त हों, तो आज वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे भी है। और इसके साथ ही आज जो है ना, अगर आज सुबह आपका अलार्म बजा और आपने फौरन उठ के दिन का आगाज मुस्कुराहट के साथ किया, तो मुबारक हो आपको, क्योंकि आपने नेशनल अपसी डेसी डे की जो रूह है उसको फॉलो किया है। आज ये दिन भी मनाया जाता है पॉजिटिव एनर्जी, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ दिन शुरू करने का, मतलब जो है ना एक तरह से हौसला अफजाई करता है। तो गुड, ज़बरदस्त जावेद बाजवा साहब डेफिनेटली इस कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ एक और जो चीज़ है वो ये कि फूड लवर्स के लिए भी आज एक बहाना मौजूद है, और कुछ कैलेंडर्स के मुताबिक आज जेली फिल्ड डोनट डे भी है, और ये भी मनाया जाता है। तो अगर आप मीठा पसंद करते हैं और आपको डोनट अच्छे लगते हैं, तो आप बिल्कुल आज एक एक्स्ट्रा जो है ना लेके खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ गेमिंग जो फैंस होते हैं उनके लिए भी आज एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको वीडियो गेमिंग डे, वीडियो गेम डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, तो अगर आज गेमर हैं आप, तो गेमर्स का तो मुझे अंदाज़ा है अच्छी तरीके से कि वो तो गेम के बगैर, खेले बगैर रह नहीं सकते। तो आज भी मतलब एक बहाना आपको मिल गया है कि आज तो बनता ही बनता है, एक गेम तो आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग जो दिन है वो ये है कि नेम योर पॉइजन डे। ये एक अजीब सा दिन है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है बिल्कुल। इसका मकसद सिर्फ मजाकी अंदाज में ये कहना है कि जब इक्वली मतलब अट्रैक्टिव चॉइसेस हों आपके पास दो, तो अपनी पसंद का आप इंतखाब करें। तो ये था आज 8 जून का, काफ़ी कुछ मतलब मज़ेदार है। तो ये सारे दिन दुनिया भर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। हैरत तो हो रही होती है कौन किस तरह से याद रखते हैं चीज़ों को, लेकिन लोगों के ये भी इस तरह के भी कुछ गोल्स होते हैं। हर जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, साथ ही साथ आपके मैसेजेस मेरे पास हैं। और मेरे पास एक मैसेज आया है और ये कहते हैं, हाई गुड मॉर्निंग मैम, अख्तर साहब को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो प्लीज़, मैं उनके नियर बाई सिटी से हूँ शाहानपुर, और या तो उनका नंबर दे दो। अच्छा, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, लेकिन मोहम्मद अख्तर अगर आप सुन रहे हैं तो भाई आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं इनको दे दूंगी, ताकि आप दोनों का कनेक्शन एक बन जाए। अच्छा जी, इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, और ये मैसेज मुझे किया है किसने, ये मैसेज है, नाम देखना पड़ेगा, नाम नहीं नज़र आ रहा इनका, नाम लिख दिया करें जल्दी से, समी का मैसेज है। आपको भी सुबह खैर, कैसे हैं समी, ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू का मैसेज किया है कुछ आधे घंटे पहले के करीब, और यूसुफ ने मैसेज किया है। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के मैसेजेस का, और कॉल भी आप कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। हम चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस

0: के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बाइस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से।

0: राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश खान और हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ एक कॉलर भी आ गए हैं, देखते हैं कि कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये अख्तर फिर आ गया है मुझे पढ़ने का। किसी भाई ने कहा था कि मेरा नंबर चाहिए
0: जी जी,
1: तो मैं नंबर देना चाहूंगा।
0: नंबर आप देना चाहेंगे लेकिन व्हाट्सएप पे दीजिएगा, वरना पूरा दोहा आपको कॉल करेगा फिर। तो आप व्हाट्सएप पे हमें नंबर दे दीजिए 666-22-107 पे, तो हम आपका नंबर जो है ना उधर पहुंचा देंगे। ठीक है, जी जी चले। आप
1: एक बात और है।
0: जी जी बोलिए।
1: एक बात यह है कि मेरी सबसे पहली पसंद दोहा कतर के अंदर आपका ये रेडियो 107।
0: बहुत शुक्रिया।
1: यहाँ शुरू में आया कोई मुझे उर्दू हिंदी बोलने वाला नहीं मिला, अरबी मेरे को नहीं आती थी, मैं ऐसा लगता मैं पागल हूँ। लेकिन आपकी रेडियो एक मेरे दोस्त ने सुनवाई तो मुझे ऐसा लगा कि ये रेडियो मेरा अपना परिवार है।
0: ग्रेट।
1: तो इसलिए मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, इसलिए आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत प्यार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मतलब ये हम लोगों का ना एक जबान का जो रिश्ता है ना, लिटरली मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक आपको इतनी बड़ी एक ना एक रिलीफ मिलती है कि चलो भाई मेरे अपने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं मतलब उनसे मेरे बारे में बात हो सकती है।
1: बिल्कुल
0: ऐसे ही है। बिल्कुल चले जी। अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। रोहित जी तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे, और बाकी मतलब ये एक बड़ी बात होती है कि आपको अब कहीं जाए ना, नया मुल्क हो आपके लिए, नई जगह हो, नया कल्चर हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको पता चले कि भाई आपके लोग मौजूद हैं, आपकी जबान बोलने वाले, आपको समझने वाले लोग मौजूद हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वाकई बात होती है। आपको बहुत अच्छा फील होता है, रिलैक्सेशन फील होती है कि चलो भाई कोई तो है ना अपना, ये वाली चीज़ होती है। अच्छा जी भाई, आ जाते हैं एक न्यूज़ की तरफ, मुझे जाना है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी शामिल करूं या फिर अब बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो ऐसा करते हैं चलें कुछ मतलब प्रोमोस वगैरह सुन के, जिंगल सुन के ही वापस आते हैं, तो फिर हम आपसे न्यूज अपडेट्स वगैरह भी शेयर करते हैं।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस, और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहाँ हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो एफएम 107 पर।
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पब्लिक प्लेसेस में पेट्स के लिए कुछ लॉज रखे हैं, जैसे डॉग्स को अक्सर पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स और कॉर्निश में अलाउड नहीं है, और परमिटेड एरियाज में भी लीज्ड होना जरूरी है। इसके साथ पेट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ओनर्स को मशवरा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स, टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें। डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रेगुलेट करती है, जिनमें रॉटवीलर्स, डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है। अगर आपको ये बाइट करें तो फौरन नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं। अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये गाइडलाइंस पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं, जो रीसेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल है।
5: Absolute cinema.
4: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आप आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा

0: FM 107. Time check.
1: राइट राइट समर मॉर्निंग में एक दफा फिर से आप लोगों को खुश आमदेद. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश खान और वक्त हुआ है 7:02 और मेरा और आपका साथ आपको पता ही है कि 9 बजे तक रहेगा. अच्छा जी, आ जाते हैं अब एक न्यूज़ की तरफ और ये अपडेट है मेरे पास कहाँ से. कल आप लोगों ने भी शायद डेफिनेटली देखी होगी, काफ़ी मतलब वायरल हुई भी है ये कि कतर सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया है अपडेट्स कुछ 5 कतरी रियाल, 10 कतरी रियाल और 50 कतरी रियाल के जो बैंक नोट्स हैं उसमें. तो कतर सेंट्रल बैंक यानी कि QCB ने मुल्क में इस्तेमाल होने वाले 5, 10 और 50 बैंक नोट्स की 5th सीरीज में कुछ ऑफिशियल चेंजेस अनाउंस किए हैं. अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये चेंजेस क्या हैं. तो QCB के मुताबिक जो नए बैंक नोट्स हैं उसमें ऑफिशियल स्टेट एम्बलम, अरबिक न्यूमरल्स और जो इशू डेट है उसको अपडेट किया गया है. यानी कि नोट की बुनियादी कीमत या उसकी वैल्यू में कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है, बल्कि डिज़ाइन और ऑफिशियल मार्किंग्स को लेटेस्ट रेगुलेशंस के मुताबिक अपडेट किया गया है. अक्सर ऐसा होता है कि जब करेंसी में चेंजेस अनाउंस होते हैं तो लोग फिक्रमंद हो जाते हैं. मैं भी हो गई थी, मुझे लगा था कि घर पे अगर कुछ मौजूद हैं तो हमें जो है ना उनको दे के दूसरे ले लेने चाहिए या फिर जल्दी जल्दी से निकाल लो घर से कि पुराने नोट्स कहीं बंद तो नहीं हो जाएंगे. लेकिन कतर सेंट्रल बैंक ने वाजे तौर पे ये बता दिया है कि जो पहले से सर्कुलेटेड नोट्स हैं तो उसका ये जो 5th सीरीज़ के 5, 10 और 50 के जो कतरी रियाल के नोट्स हैं वो उनके साथ ही बिल्कुल वैलिड रहेंगे. यानी अगर आपके वॉलेट में पुराने डिज़ाइंस के नोट्स मौजूद हैं तो आप उन्हें पहले की तरह शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स और दीगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. उनकी लीगल वैल्यू में कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा. और QCB ने ये भी बताया कि इस किस्म की अपडेट्स फ्यूचर में भी दूसरी जो करेंसी बैंक नोट्स हैं उन पे भी होंगी ताकि तमाम कतरी करेंसी नोट्स एक अपडेटेड और स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन को फॉलो कर सकें. और इसके साथ मैंने देखा था कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस किस्म की जो अपडेट्स हैं वो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो वक्त ब वक्त करते रहते हैं. इससे करेंसी की सिक्योरिटी फीचर्स को मेनटेन करने और ऑफिशियल सिम्बल्स को अपडेट रखने और नेशनल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करने में मदद मिलती है. साथ ही कतर सेंट्रल बैंक का कहना है कि ये प्रोसेस स्मूथली और ग्रेजुअली कंप्लीट किया जाएगा जिससे पब्लिक को किसी किस्म की परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा. तो अगर आपको आने वाले दिनों में 5, 10 या फिर 50 का नया नोट का डिज़ाइन नज़र आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. पुराने और नए दोनों नोट्स बरकरार रहेंगे और वैलिड रहेंगे, सर्कुलेशन में साथ साथ इस्तेमाल किए जाएंगे. तो ये थी हमारी एक अपडेट लोकल. और इसके साथ ही हम क्या करें, आप कॉल करें हमें, आप कॉल कर सकते हैं 4443377 पे. और आज का सवाल है, रिपीट कर दूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला होगा क्योंकि शुरू में भूल गई थी कोई एक ना एक चीज़ ना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये होता है, तो शुरू में भूल गई थी बताना. आज का सवाल बिल्कुल सिंपल कि इस वीक का आपका कोई भी टारगेट, कोई गोल जो आपने सेट किया हो, कोई एक चीज़ जो आपके जहन में हो कि इस हफ्ते मुझे करनी है, भाई ये वाला टास्क हो जाना चाहिए कंप्लीट, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं. और मेरे पास मैसेज है एक, और ये किसका है, ये मज़र खान ने भाई अच्छी सी शायरी भेजी है तो चलें शामिल कर लेती हूँ मैं. और ये कहते हैं कि हर वसीले को ज़माने से जुदा सोचते हैं, नई नस्ल के बच्चे हैं नया सोचते हैं, इतनी फुर्सत ही नहीं देती गरीबी हमको, हम कहाँ कुछ कमाने के सिवा सोचते हैं. ओए होए, मतलब ये ऐसी ना तल्ख हकीकत आपने बयान की है ना इस वक्त, मतलब हद ही हो गई, मतलब हद है ये वाकई कि यही इस वक्त की हकीकत है पूरी दुनिया की कि इतनी

सद ही नहीं देती गरीबी हमको, हम कहाँ कुछ कमाने के सिवा सोचते हैं, ये ताल्लुक भी निभाते हैं तो गैरों जैसा, मेरे अपने ही अब तो मेरा बुरा सोचते हैं। और एक मुद्दत से कजा करके नमाजें हम लोग क्यों मुकम्मल नहीं होती, दुआ सोचते हैं। ओए होए होए क्या बात है, कमाल करिए। मजर खान इंडिया महाराष्ट्र से इनका ताल्लुक है, ज़बरदस्त बहुत आला मैसेज। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम मैडम, यू आर डूइंग गुड जॉब, थैंक्स अ लॉट। और ये किसका मैसेज है, ये है बिजी हैं, ये इनका है, नाम भी बता दें भाई, आपने पहले सलाम भी किया था लेकिन नाम नहीं बताया अभी तक। इसके साथ सलाम माही मैम, हैप्पी मंडे मॉर्निंग, वेरी नाइस योर शो मैम, आपके शो की स्टार्टिंग में बहुत ज़बरदस्त बातें बताई हैं सुरजीत, बेहद शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा हुआ, एम एन एच वाई एफ ये इन्होंने लिखा हुआ है अपने स्टेटस पे। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच, आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं हमें 6622107 पे, कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पे। लेकिन अभी सुनकर आते हैं एक म्यूजिकल ट्रैक, साथ रहें, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।

जी लिसनर्स वेलकम बैक, और जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन लोगों को अस्सलाम वालेकुम। समर मॉर्निंग आप सुन रहे हैं विद आरजे महावेश खान, और मैं और आप 9 बजे तक साथ रहने वाले। आ जाते हैं एक और अपडेट की तरफ, फिर आपके मैसेजेस और कॉल्स की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलूं एक अच्छी न्यूज़ कहें इसको कहेंगे डेफिनेटली। और मैं ये सोच रही थी कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये हर जगह पर होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक ना यूनिफॉर्म आपकी जो भी मतलब चेंजेस वगैरह हो रहे हैं किसी भी तरह के, वो यूनिफॉर्म हो पूरे मुल्क में। ये इसीलिए आप देखें हम जो यहाँ पे जब दोहा में कतर में मौजूद होते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि खूबसूरती है आपके इर्द गिर्द, क्योंकि हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो दोहा से ही मतलब एक अच्छी जो अपडेट है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपलिटी ने रेजिडेंशियल विलाज और पैलेसेस की जो कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं उसमें कुछ 20 से ज़्यादा मेजर अमेंडमेंट्स का ऐलान किया है, और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि कतरी फैमिलीज की चेंजिंग नीड्स को समझना, मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। अब इन चेंजेस को अगर हम आसान सिंपल अल्फाज में समझते हैं तो पहली इंपॉर्टेंट चेंज है कि विलास की जो मैक्सिमम हाइट है उसको बढ़ाकर 16 मीटर्स कर दिया गया है, जबकि पैलेसेस की हाइट 17 to 25 मीटर्स के दरमियान हो सकती है, जो प्लॉट साइज और डिज़ाइन रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगी। सेकंड बिग अपडेट ये है कि होम ओनर्स को पहली दफ़ा ये फ्लैक्सिबिलिटी दी गई है कि वो विलास और पैलेसेस में इंटरनल मेज़नाइन फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और ये फीचर मॉडर्न हाउसिंग डिज़ाइन में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, तो इसलिए ये भी एक अपडेट की गई। इसके साथ थर्ड अपडेट है वो है स्पेस फ्लैक्सिबिलिटी। नए रूल्स के मुताबिक अब घर में कुछ ऐसे हिस्से मतलब जो प्लॉट बाउंड्री के करीब एक्सटेंड किए जा सकते हैं, और सेटबैक रिक्वायरमेंट को भी रिलैक्स किया गया है, इससे रेजिडेंशियल प्लॉट्स को बेहतर यूज़ पॉसिबल होगा। और बेसिकली जो नए रेगुलेशंस हैं इसमें लार्जर एक्सटर्नल मजलिस एरियाज, एडिशनल अनएक्सप्लोर्स और इंडिपेंडेंट फैमिली सूट्स की इजाज़त भी दी गई है ताकि एक्सटेंडेड फैमिलीज को ज़्यादा कंफर्ट मिल सके। और सेपरेट सर्विस स्टेयर केसेस फॉर डोमेस्टिक स्टाफ और मेंटेनेंस पर्पस भी अलाउ किया गया है, जो फंक्शनल लिविंग को बेहतर बनाते हैं। इसके साथ ही प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए बाउंड्री वॉल्स की हाइट भी बढ़ाई गई है, और विलास के लिए 3.40 मीटर्स और पैलेसेस के लिए 5 मीटर्स तक। तो मिनिस्ट्री का कहना यह है कि तमाम चेंजेस कतर नेशनल विजन 2030 के ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करते हैं, जबकि फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फैमिली स्टेबिलिटी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अपडेट्स कतर की हाउसिंग सेक्टर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबल, मॉडर्न और एफिशिएंट बनाएंगे, स्पेशली उन फैमिलीज के लिए जो अपने घर को कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो ये रेगुलेशन तमाम म्यूनसिपैलिटीज में अप्लाई होंगे, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होने के बाद ऑफिशियली इंप्लीमेंट हो जाएंगे, और मिनिस्ट्री कंसल्टेंट्स और इंजीनियर्स के लिए वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करेगी ताकि इंप्लीमेंट करना इसको बिल्कुल स्मूथली पॉसिबल हो।

अच्छा इसमें आप अगर देखो तो मतलब ये जब मैं चीज़ देख रही थी तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि अक्सर आप देखो ना तो मतलब बेहंगम से जगहों पे घर बने हुए होते हैं, एक घर किसी तरह का है दूसरा घर किसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे आपको एक जैसा स्टैंडर्ड नज़र आता है सब लोगों का, तो ये एक अच्छी चीज़ है। खूबसूरती डेफिनेटली हर इंसान को अट्रैक्ट करती है और इसके ऊपर ना मतलब बाकायदा अपना डिज़ाइन वगैरह मैंने देखा है, वैसे मतलब होता तो हमारे यहाँ भी है कुछ डिज़ाइन अप्रूव वगैरह करवाया जाता है, लेकिन हर किसी का अलग अलग है, मतलब एक कोई एक तरह का नई स्टैंडर्ड रखा जाता, तो ये रखना अच्छा होता है। आप एक दफ़ा बनाओ, एक प्रॉपर चीज़ बनाओ और देख के बनाओ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं देख रही थी पिछले दिनों, मतलब अगर आप देखो ना मतलब हमारे यहाँ जितनी गर्मी का एक बहुत ज़्यादा आप देखो एक्सट्रीम पड़ गई है, बहुत ज़्यादा आप लोग गर्मी गर्मी गर्मी कर रहे होते हैं, तो उसका भी रीज़न आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस है ना, मतलब जिस तरह आप अपने घर बना रहे हो तो हर जगह पे शीशे लगाए जा रहे हैं जबकि वो नहीं है हमारे वेदर के हिसाब से एक तरह से सूटेबल, क्योंकि जितना आप शीशा वगैरह लगाओगे वो आपके घर में ज़्यादा गर्मी आएगी। तो पहले के जो एक कंस्ट्रक्शन का स्टाइल हुआ करता था ना थोड़ा सा जाली वाली, आपको याद होगा, तो को बेसिकली वो जो रेड कलर की जो मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे टेराकोटा कहते हैं, तो वो इस्तेमाल किया जाता था, तो उसकी वजह से बिल्डिंग्स बहुत मतलब ठंडी रहती थी, कूलिंग इफेक्ट आता था उसके अंदर। लेकिन अब ये है कि वो मॉडर्न एक बगैर सोचे समझे, मतलब अगर आप वेस्ट में कोई चीज़ देखते हो तो उसको आप खुद भी अपने आप ही सोचते हो कि ये भी हमें भी यही वाला चीज़ चाहिए, लेकिन वहाँ का वेदर कंडीशन और हमारे यहाँ की वेदर कंडीशन में इतना फ़र्क होता है कि जब वो चीज़ हमारे यहाँ आके बनती है तो वो कुछ हमारे लिए सूटेबल नहीं होती काफ़ी हद तक, और गर्मी का ज़्यादा हम फिर गिला करने लगते हैं, शिकायतें होने लगती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अपनी जगह को देखते हुए आपको जिस तरह का आपका रहन सहन है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको देखते हुए आपको कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। और ये बड़ा अच्छा यहाँ का डिसीजन लगा मुझे कि लेकिन रहते रहते आपको चीज़ें पता चलती हैं कि इन चीज़ों पे इतनी बारीक बारीक चीज़ों के ऊपर भी बाकायदा लॉज भी बने हुए हैं और उनको फॉलो करवाया जाता है और सब उनके ऊपर फॉलो उनको करते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ समीरा, दिस वीक शेड्यूल इज़ कम्प्लीटली फॉर किड्स, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसी में बिजी हैं, और जिन जिन बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो अभी जो आपका सिलसिला चल रहा है भाई वो ये है टास्क आपका कि बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर करवाना है फॉर एग्जाम्स, राइट? तो ये मैं समझ लेती हूँ। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, मेरा गोल है कि मैं अपने आप को काम रखूँ। लास्ट वीक आई वॉज वेरी एग्रेसिव, डॉक्टर जावेद, क्यों हो गए थे आप एग्रेसिव और ये बताएं। और साथ ही सलाम, हाउ आर यू का मेरे पास मैसेज है, और ये कौन है? ये हैं जी हमारे साथ फराज़ अहमद। फराज़ अहमद, थैंक यू, और आपको भी सलाम, कैसे हाल चाल हैं, उम्मीद है ठीक होंगे। और अस्सलाम वालेकुम माई मैम, ब्यूटीफुल ट्रैक, शुक्रिया माई मैम। और ये मैसेज है मेरे पास जमाल का। जी कॉल कर सकते हैं आप हमें 4434377 पे, इसके साथ ही व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी भेजें 6662107 पे, अगर कोई कॉल आ जाती है तो जल्दी से हम उनसे बात कर लेते हैं। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि इस हफ्ते का आपने कोई गोल बनाया हो, कोई आपका टारगेट हो कि इस हफ्ते आपने वो उसके ऊपर ध्यान देना है, वो पूरा करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं जल्दी से। ये भी आप अपना गोल बना लें कि मुझे जल्दी से कॉल करेंगे, ताकि फिर उसके बाद हम दूसरे एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाएं। देखती हूँ मैं जल्दी से आती है कॉल तो ठीक है, अदरवाइज़ हम बढ़ते हैं एक ट्रैक की तरफ, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, वरना फिर ये होगा कि जैसे ही मैं ट्रैक चलाती हूँ वैसे ही कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए, खैर मेरा ख्याल है अभी लोग बिजी हैं, थोड़ी देर के बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा, इस वक्त इंजॉय करते हैं ये ज़बरदस्त सा म्यूज़िकल ट्रैक।

0: number 1 hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
4: आज ही राबता करें.
3: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
5: नूर على نوري يهدي الله لنوره من يشاء. रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है.
6: इंसानों के मसले मसाइल और रोजमर्रा के मामलात पर रोशनी के लिए सुनते रहिए नूर ए इस्लाम.
7: हर जुमा शाम 4 बजे ओनली ऑन FM 107. दिल से

राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आर्जुम हविश खान, और मेरे पास मौजूद है एक अपडेट आपसे शेयर करने के लिए। आपकी दफ़ा हम चलते हैं कुछ मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ, और जहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और होप फिल्ड स्टोरी सामने आई है। बेसिकली हुआ यह है कि इंडोनेशिया के रिमोट बोरो आइलैंड से साइंटिस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी की है जो वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड के लिए किसी

0: तर प्राइस से कम नहीं है. ब्लू फ्रंटेड लॉरिकेट जो कि एक रेयर और इंडेंजर्ड पैरट स्पीशीज़ है, उसे डेकेड्स तक लॉस्ट स्पीशीज समझा जाता रहा है. यानी एक्सपर्ट्स को लगता था कि ये परिंदा शायद अब नहीं रहा है, गायब हो गया है दुनिया से. लेकिन अब रीसेंट सर्वेज में साइंटिस्ट ने इस पैरट को फिर से जिंदा और वाइल्ड स्टेट में डिटेक्ट कर लिया है, और वो भी माउंटेन फॉरेस्ट के उन एरियाज में जहाँ पहले कभी प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई थी. तो रिसर्चर्स ने इस स्पीशीज की जो मॉडर्न फर्स्ट फोटोग्राफ और साउंड रिकॉर्डिंग्स भी कैप्चर की हैं, और अब तक कम से कम 9 लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है. और साथ में आपको ये भी मैं बता दी चलूँ कि क्यों ये डिस्कवरी इतना ज़्यादा मैटर करती है. तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फाइंडिंग ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है कि अब जब दुनिया बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट प्रेशर का सामना कर रही है, ऐसी डिस्कवरीज होप देती हैं कि नेचर अब भी अपनी सर्वाइवल एबिलिटी रखती है, बस उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. तो ये अच्छी खबर है. और कंजर्वेशन साइंटिस्ट का कहना है कि इस डिस्कवरी के बाद हो सकता है कि इंडोनेशिया में इस स्पीशीज़ के हैबिटेट को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू स्टेप्स भी लिए जाएँ. तो ज़बरदस्त भाई, एक परिंदा जो लॉस्ट समझा जा रहा था वो फिर से मिल गया है, और ये दुनिया के लिए एक रिमाइंडर है कि नेचर अब भी मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है. तो ग्रेट, ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी सी न्यूज़. और डेफिनेटली मतलब हम लोगों को भी ना, मतलब एक तो ये जो बेचारा तोता होता है ना, तोता ये कहीं पे ईजिली घूम फिर नहीं सकता. मतलब सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में देखा जाए जिसकी आज़ादी जो है ना सल्फ कर ली जाती है, वो यही तोता होता है. मतलब अगर हमें भी कहीं पर नज़र आता है ना, तो दिल वाकई चाहता है कि आप इसको उठा के अपने घर पे, मतलब आपके घर पे मौजूद हो, पिंजरे विंजरे में बंद करके रख लेते हैं. लेकिन ज्यादती है बहुत ज़्यादा. तोते, चिड़िया, जितने भी परिंदे हैं, उन लोगों को उड़ने का हक होना चाहिए. लोगों को कह रही हूँ, उन परिंदों को उड़ने का हक होना चाहिए. उनको ईजिली मतलब फ्रीली मूव करने की आज़ादी होनी चाहिए. लेकिन वही वाली चीज़ है भाई, मतलब एक नयाब सा होता है ये, कभी कभी आपको नज़र आता है. मैं तो कभी मतलब शाजो नाते रही. मुझे याद है कि पाकिस्तान में कराची में हमारे स्टील मिल हुआ करती थी, वहाँ पे हम लोग जाया करते थे. स्टील मिल का एरिया था, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ दरख्तों के ऊपर ना कभी तोते बैठे हुए होते थे. वरना तो मतलब आपने ये तोते वगैरह हमेशा पिंजरों में बंद देखे हैं. किसी गार्डन, किसी आउटडोर पार्क में अगर आप जाएँ, तो जबकि होना इनको वहीं पर चाहिए, लेकिन ये बेचारे मिलते नहीं. और अगर मिल जाएँ तो लोग इनका जीना हराम कर देते हैं, उसी वक्त पकड़ने की कोशिश करेंगे और फिर लेकर मतलब चले जाएंगे, अपने घरों में बंद कर देंगे. तो खैर ये सिलसिला है भाई, परिंदों को आज़ादी होनी चाहिए और हमें आज़ाद छोड़ना चाहिए इनको. क्योंकि इसीलिए देखें ये स्पीशीज़ बहुत सारी जो हैं वो नायाब होती जा रही हैं, क्योंकि जो जिस तरह से उनको रहने की आदत है, डेफिनेटली उसी में उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी भी ना, तो वो हम उनको कैद कर करके रख लेते हैं. शहजादा सलीम का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ एफएमएक्स के साथ. क्या हाल चाल है शहजादा सलीम, कहाँ हैं आज? और इसके साथ ही भाई मैसेज एक और है, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, गुड मॉर्निंग, कुछ प्लान नहीं है, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं. अयाज बलोच का मैसेज है, और एग्जाम्स फिनिश हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह उमरा जाने का प्लान है. यानी ये आपका, मैं कह सकती हूँ कि इस वीक का जो टारगेट है या गोल है वो ये है आपका, या फिर अभी आगे आपका कोई और, मतलब ये वाला जो प्लान है आगे आएगा, इस हफ्ते का कुछ और है, तो शेयर कीजिए. इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, और ये मैसेज मुझे कौन करते हैं, ये करते हैं कमालुद्दीन शेख. कमालुद्दीन, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, कैसी गुजर रही है आपकी सुबह? और जसविंदर सिंह ने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग मैडम जी, मैडम जी प्लीज़ परिंदे का नाम लिख कर भेज दो. अच्छा, मैं भेज देती हूँ आपको परिंदे का नाम कि क्या नाम है इसका. और एक मिनट थोड़ा सा देख लूँ, क्योंकि भूल गई हूँ क्या नाम था. आप इतनी देर में हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल आ गई है, चलें बात करती हूँ साथ साथ इनको परिंदे का नाम लिख के भेजती हूँ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मैडम
0: साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक.
0: ज़बरदस्त. और क्या हो रहा था अनिका, इस वक्त सुबह में क्या कर रही होती हैं आप?
1: यार बस बच्चे जाते स्कूल, तो उसके बाद बस फारिग होते हैं थोड़ा बहुत. बच्चे जो घर के काम होते हैं वो ही.
0: अच्छा, जागी रहती हैं?
1: जी सॉरी,
0: जागी रहती हैं मतलब भेजने के बाद?
1: आजकल जागी रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं. सभी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं कि बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें फिर बच्चों ने जाहिर है जल्दी वापस आना होता है. तो इसलिए फिर जागती रहती हूँ, नहीं तो जब फुल टाइम होता है बच्चों का स्कूल का, तो फिर तो सोती हूँ, थोड़ा टाइम रेस्ट करती हूँ.
0: सही, क्योंकि इतना टाइम होता तो लंबा टाइम होता है ना, फिर अकेले में बंदा क्या करे घर पे.
1: नहीं, करने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आराम भी जरूरी होता है ना. हाँ. ना हर वक्त काम भी तो जरूरी नहीं है ना.
0: हाँ, सही बात है, ये भी है. करने को वैसे बहुत कुछ क्या क्या होता है?
1: बहुत कुछ होता है यार, घर के इतने सारे काम होते हैं मेरे पास, वैसे भी मैंने

0: की कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज रखी हुई होती है, मैं वहाँ पर थोड़ा बिजी रहती हूँ।
1: अच्छा अच्छा, गुड, जबरदस्त, अच्छी बात है।
0: तो बस वो गोल्स सेट किए हुए होते हैं, ये करना है वो करना है, जैसे आप अभी बात करी थी तो वही मैंने भी छोटे मोटे अपने गोल्स सेट किए हुए। अभी ना पूछिएगा कौन कौन से गोल्स होते हैं।
1: सही है, जो पता नहीं कि वो जो वो फरागत का एक मतलब एक आप इमेजिन करो ना, फरागत है और लोग अपने मतलब आराम से बैठे हुए, तो मेरे जहन में ना हमेशा वो आ रहा होता है। मुझे इतना शौक है कसम से, मतलब हो ही नहीं सका कि वो नहीं ऊन सिलाई वगैरह स्वेटर वगैरह बुनना, तो वो मुझे बड़ा अच्छा मज़ा आता है। मतलब अब फरागत में किसी की सोचो ना, कोई बड़ा फारिग है तो मुझे होता है कि चलो मतलब कुछ नहीं तो ये वाला काम ना एक आपको बड़ा अच्छे इंटरटेनमेंट भी दे सकता है, मज़े का काम है।
0: हाँ, एक वो एक मैं सोचती हूँ कि इसी चेयर पर लोग बैठ के जो आराम से
1: हाँ,
0: सोच रहे होते हैं के पास कहाँ होता है।
1: हाँ, लेकिन ये भी यहाँ के मौसम में आप स्वेटर बनोगे तो पहनोगे कब, थोड़ा सा तो टाइम मिलता है आपको।
0: हाँ, मुझे वैसे स्वेटर बुनना नहीं आता, आपको?
1: मुझे भी नहीं आता ना, नहीं आता, यही तो कह रही हूँ, मुझे बड़ा शौक है, अच्छा लगता है। मतलब मैं सोचूं फारिक टाइम तो मुझे होता है कि यार स्वेटर बुनना आता होता कितना अच्छा होता।
0: हम कहानियाँ पढ़ने वाले लोगों का बस दिल ही चाह सकता है कि हमें ये चीज़ बस आती नहीं है।
1: लेकिन तसव्वुर हमने हर चीज का किया है इस तरह की।
0: हाँ, नहीं कुछ चीजें मुझे आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये निटिंग वगैरह जो है ये
1: मुझे सिलाई विलाई बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन शादी से पहले ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जंग में जाने वाली हूँ और लोग मुझे बकायदा ना जज करेंगे लिटरली। मतलब मैंने बहुत से काम जो है ना लिटरली अपनी शादी से पहले मतलब मैंने सीखे हैं बकायदा, जिसमें से बहुत मतलब कुछ छोटे मोटे काम भी थे, कुछ बहुत अजीब से काम भी थे। जैसे हमारे घर में ना, हम लोग क्योंकि शुरू से कुवैत में रहे तो आपको पता है कि खुबस और ये चीज़ें ही मतलब रोटी के तौर पे मतलब ये होता है, तो हमारे पापा को पसंद नहीं थी घर की रोटी जो चपाती होती है, तो हमारे घर में रोटी बनती नहीं थी, मतलब तंदूर की आती थी। इवन हम जब पाकिस्तान में भी होते थे तो तंदूर की आती थी, तो रोटी पराठे बन जाते थे लेकिन वो भी सुबह के वक्त में होते थे, लेकिन रोटी नहीं बनती थी हमारे घर पे, तो मुझे आटा गूंदना और रोटी बनाना नहीं आती थी, तो मैंने ये सीखा था। फिर मैंने कभी वॉशरूम नहीं वॉश किए थे, वो सीखा था। बहुत अजीब सी बात है,
0: तो बड़ी मुश्किल चीज़ है।
1: हाँ, और फिर उसके बाद जो है ना सिलाई मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैं ससुराल जाऊंगी तो मुझसे सिलाई भी करवाएंगे और ये सारे काम करवाएंगे, तो मैंने फिर सिलाई भी सीखी थी शादी से पहले, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिल गया था ना बेसिकली, तो उसमें मैंने फिर निकाह के बाद 2 साल रहे थे तो उसमें मैंने अपने आप को सुघड़ बनाने की कोशिश की थी पूरी।
0: तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो लोग ज्यादा वो कुकिंग वगैरह की तरफ ही आते हैं।
1: कुकिंग तो आती थी यार, वो तो बचपन से ही आती थी एक तरह से ना,
0: ये अच्छी चीज़, बस कुकिंग आनी चाहिए। अभी कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर आंतों से होके गुजरता है, तो वो आंतों तक जितना समय
1: लेकिन मुझे ये बड़ा ना मतलब मैं इस मामले में बड़ी वो कॉन्शियस ही हूँ, मुझे ये होता है कि यार मेरे ऊपर कोई रिमार्क्स पास करे या कुछ बोले कि इसको ये नहीं आता वो नहीं आता, तो मुझे जो बेसिक चीज़ें लगती थी ना कि ये इस चीज़ के ऊपर हो सकता है कि इतना भी नहीं आता, तो मैंने वो वाली चीज़ें ना सीख ली थी।
0: नहीं, थोड़ी बहुत मैं समझती हूँ कि आपको स्टिचिंग भी आनी चाहिए अपने लिए, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो इतना होना चाहिए कि आप कुछ अगर अपने कुछ ऑल्ट्रेशन करना चाहते हो अपने ड्रेसेस वगैरह।
1: भाई मतलब आप सोच है आपकी अनिका कि मैंने इतनी अच्छी सीख ली थी स्टिचिंग कि मैंने अपनी बहनों के और इवन अपनी माइयों का भी, और जो मेहंदी वेहंदी घर के जो फंक्शंस थे ना, मतलब मेहंदी तो नहीं हुई थी हमारी, बस एक माइयों का ऐसे ही बस एक शौक में कर लिया था, लेकिन वो जो था उसके कपड़े भी मैंने खुद ही सिए थे, मतलब इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी एक्सपर्ट हो गई थी सिलाई में।
0: ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, अपने ड्रेसेस वगैरह तो मैं डिज़ाइन खुद कर लेती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी स्टिचिंग नहीं, लेकिन गुजारा।
1: हाँ नहीं, मैं अच्छी मैं अगर मैं करती रहती कंटिन्यू ना तो मैं अच्छी खासी कर सकती थी, क्योंकि मैंने बकायदा डिज़ाइनिंग शुरू कर दी थी। मेरे पप्पा वगैरह बड़ी हैरान हो रही होती थी तुमने बनाया, मतलब जब हम मेरी शादी हुई है 2008 में तो उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था बहुत ज़्यादा बुटीक्स वगैरह का, तो उसमें ये था कि मैं डिज़ाइनर मेड टाइप कपड़े बनाने लगी थी, इतना मतलब मैंने सीख लिया था शौक। पूरा रात में ना दिमाग इसी पे चलता रहता था कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, कौन सा बटन कहाँ लगेगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी, तो ये कि मुझे खैर जुनून है ना एक चीज़ों का, अगर मैं किसी चीज़ में पढ़ती हूँ तो ये होता है कि मुझे वो फिर मेरे दिमाग में वो निकलती नहीं है, वो ही रहती है हर वक्त।
0: ये तो बहुत अच्छी चीज़ है मैविश, कि आप अपने किसी भी चीज़ पर अगर फोकस करते हो तो पूरा होना चाहिए आपका। वो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप स्टिचिंग भी, मैं मुझे तो फर्स्ट टाइम पता चला आप में इतनी बड़ी स्किल है यार, आप यूटिलाइज भी नहीं करती भी।
1: हाँ नहीं, थोड़े बहुत कर लेती हूँ घर के काम, मतलब जैसे अगर कभी ज़रूरत पड़े, मैंने
0: एक नहीं होना चाहिए था आपको।
1: नहीं, मैंने एक सिलाई मशीन लेके रखी हुई है, कभी कभी ऐसा हो ना कि कोई चीज़ ऐसी हो
0: तो भाई सभी के पास होती है।
1: हाँ नहीं, सबके पास नहीं होती यार, मैं उस वक्त कर लेती थी, मतलब उस वक्त मैंने 2007 और 8 का जो टाइम था ना

0: उस वक्त में मैंने थोड़ा मतलब कपड़े अच्छे खासे बना लिए थे. इवन हमारे बराबर की लड़की थी, मतलब बराबर में रहती थी नेबर में, तो उसने मुझे पहली दफ़ा बेसिक सिखाई थी. वो बाद में मुझे कहती थी बाजी अब तो आपको मुझे सिखाना चाहिए, आप इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं.
1: तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि स्टिचिंग बहुत ज़रूरी है. मैं समझती हूँ यहाँ के तो मुझे और भी ज़्यादा हुआ कि भाई ये स्टिचिंग आनी चाहिए बंदे को.
0: अच्छा बात कहाँ से निकली अनिका और हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं. ये होता है मतलब दो, अभी मैं और नाजिया भी जब शो कर रहे थे ना तो हम लोग हम अपनी बातों में पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाते थे. तो वही वाला हो गया. खैर मुझे शौक है सीरियसली कि अगर मुझे मौका मिले तो ये मैं स्वेटर बुनना सीखूंगी लिटरली. मतलब ये मुझे बड़ा एक अच्छा काम लगता है कि इवन खासतौर पर जब मतलब बच्चे और बड़े हो जाएंगे, मैं बिल्कुल मतलब एक फरागत वाला टाइम आ जाएगा ना तो मैं फिर स्वेटर बुनना सीखूंगी. मुझे बड़ा बचपन का शौक है मेरा ये.
1: ये भी सही है, अच्छी बात है, सीखना चाहिए. हाँ। बच्चों के बनाइएगा
0: इंशाल्लाह.
1: हाँ, का टाइम आप बोल रही है ना तो फिर
0: वही तो मेरा भी इशारा उसी तरफ था. लेकिन जब तक हमें ना कनाडा में शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि मैं स्वेटर बुन सकूं, कोई मतलब काम तो आए ना.
1: तो आज आप बात करी थी गोल्स का, आजकल मेरे भी गोल्स जो हैं वो सेट हुए हुए हैं बच्चे की तरफ ही सारे. बस उसी में हम लोग गोल कर रहे हैं, वहीं पर सारे गोल्स आ रहे हैं हमारे. तो बाकी ये है कि हाँ गोल्स सेट करने चाहिए इंसान को. सीरियसली अगर बात करूँ तो गोल्स जो हैं वो सेट करने चाहिए. तो हफ्ते के मैं भी अपने टारगेट्स वगैरह बना के रखती हूँ. टाइम मैनेजमेंट सारा कुछ होता है उसमें, उसमें फिर आपका टाइम अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है. तो आजकल तो जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं और उसमें ज़रा ज़्यादा इंसान बिजी होता है, लेकिन अगर आपने अपने गोल सेट किए हुए हो तो उसमें टाइम अच्छे तरीके से मैनेज होता है. अपने लिए टाइम निकलता है, अपनी फैमिली के लिए आप अच्छे तरीके से, और आउटिंग के लिए भी. तो मैं समझती हूँ कि अपने जो हैं वो मंथ का तो मैं नहीं, लोगों ने तो साल साल के मैं अपने गोल्स वगैरह सेट किए हुए होते हैं कि ये करना है वो करना है या पूरी लाइफ की, तो एक ठीक है चीज़ है कि इंसान का एक होता है कि हाँ हम लोगों ने इस चीज़ पर ही फोकस करना है और ये हमारे हैं प्लान्स जो हैं सारा कुछ है. लेकिन एक चीज़ होती है ना कि लोगों ने एक पूरी ज़िंदगी का या एक एक साल का, तो मैं इतना लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कोई भी चीज़ नहीं सोचती. कुछ पता नहीं. तो हफ्ते और महीने के लिए तो समझ आती है कि उतना इंसान जो है वो चीज़ को कर ले बस काफ़ी होता है. बाकी और
0: मैं करती हूँ और मैं डे टू डे भी करती हूँ. जैसे अभी हमारे कॉलर आए थे शुरू में तो वो बता रहे थे कि रोज़ रोज़ के, तो मैं रोज़ रोज़ का भी मतलब प्लान होता है कि ये करना है इस हफ्ते तक, ये लाजमी हो जाना चाहिए. और जो मैं यूजुअली हफ्ते के आखिर का सोचती हूँ मैं शुरू में कर लेती हूँ. मतलब थोड़ा सा एक आदत मेरी है कि काम वक्त से पहले करना है ताकि आप बाद में रिलैक्स कर सको. तो हाँ करती हूँ मैं लाजमी.
1: ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. मैं भी इसी तरह से टाइम मतलब पहले से सेट करके रखती हूँ कि हाँ ये काम करना है. टाइम से पहले कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, तभी टाइम मैनेज होता है, नहीं तो नहीं होता.
0: आपकी पता है बहुत बचत हो जाती है अनिका, मतलब आपकी एनर्जी बिला वजह वेस्ट नहीं होती. कि आप अगर पहले से चीज़ें करके रखो, मतलब चाहे वो आपकी टाइम मैनेजमेंट है चाहे आपकी मनी मैनेजमेंट है, हर चीज़ जो है ना आपकी बिफोर टाइम होनी चाहिए. ऑन टाइम लोग कह रहे होते हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ आप थोड़ा सा पहले कर लो. हमारे घर में तीन लोग तो ऐसे हैं, हमारा छोटा वाला जो बेटा है ना उसको हम अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बस एक अपना बेफिक्रा मतलब लापरवाह स्टेट पे चल रहा है बस. बाकी हम सबकी ये कोशिश होती है कि हम अपना वक्त से पहले काम जो है ना कर लें.
1: सही बात है. नहीं घर का हर फर्ज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट ही होता है. तो हो सकता है उसके कुछ अपने गोल्स हों, अपने गोल्स सेट किए हुए.
0: अच्छा मेरे भाई बहन जो है ना वो उनसे मैं बड़ी तंग थी कि उन लोगों का ये होता था कि आज का काम है तो वो आज नहीं करेंगे, वो एक महीने बाद करेंगे. उनका ये वाला सीन होता था बहुत करते करते. हाँ नहीं ये होता है मतलब ना, तो वो शायद ननियाल पे थोड़ा चला गया.
1: ये आपने अच्छी बात की. देखिए अभी कोई सुन रहा होगा ना कहेंगे फिर ये ननिहाल ददियाल दोनों.
0: तो क्या करें भाई, खवातीन इसी तरह की बातें करती है. चले थैंक यू अनिका आपकी कॉल के लिए. ख्याल रखिएगा और जागी भी होती है तो कॉल कर लिया करें, ठीक है.
1: हाँ आजकल तो जागी हुई हूँ, जरा बच्चे के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसमें मैं सुनती हूँ. फर्स्ट डे से सुन रही हूँ आपको.
0: अच्छा
1: प्रोग्राम अच्छा. हाँ आपका अच्छा जा रहा है, नाजिया के साथ भी बहुत अच्छा था. तो आज बस मैं थोड़ा फ्री थी, मैंने कहा चलो आज कॉल करनी
0: चले. यार जरूर आइंदा भी कीजिएगा वरना, और एहसास भी दिला दिया करें.
1: आप
0: नहीं मैं आप पहले कहिए.
1: मैं कह रही कि मैं सोच रही थी कि आज आप अकेली हैं, नाजिया नहीं है, तो चले हम आपको थोड़ी सी कंपनी देते
0: जी जी नहीं नहीं बिल्कुल आपने अच्छा किया। और मैं ये कह रही थी कि आप सुन रही होती हैं तो थोड़ा सा एहसास भी दिला दिया करें कि साथ हैं।

0: ठीक है
1: जी, हम आपके साथ हैं भाई, हम आपको कॉल करें ना करें, हम आपके साथ ही हैं। आप हमें देखिए 4 से 10 से 4 लेके जाती हैं, 4 से फिर यहाँ ले आती हैं।
0: थैंक यू सो मच अनिका, ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से काम वाम कीजिए अपना, ठीक है। चले जी, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। राइट, तो अनिका हमारे साथ ही और उसके साथ ही एक और कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी खादिम भाई, क्या हाल चाल हैं आपके?
2: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह मैं हर रोज ट्राई करता हूँ, लेकिन असल में FM 107 के चाहने वाले इतने हैं कि मुझे चांस ही नहीं मिलता।
0: लेकिन
2: माशाल्लाह, माशाल्लाह।
0: जी जी, आप ट्राई करते हैं, ये बड़ी बात है, और बात जब आपसे हो जाती है तो और अच्छा लगता है।
2: हाँ, और असल में अभी ये कि ड्यूटी सुबह से हो गई तो हमारे लिए और भी आसानी हो गई कि कम से कम आपकी आवाज जो है, माशाल्लाह, आपका शो जो है वो हम लोग सुन सकते हैं अभी।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई। और ये बताएं, आप टारगेट गोल्स वगैरह सेट करते हैं वीकली?
2: मैं अभी अभी सिर्फ जस्ट ऑन किया रेडियो, मुझे पता भी नहीं चला कि मौजू क्या है और बात किस चीज़।
0: मैं आपको बता देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ आज के हफ्ते में, मतलब ऐसा कुछ होता है कि आपने कोई गोल सेट किया हुआ हो कि ये काम कर लेना है इस हफ्ते में लाजमी, कुछ टारगेट वगैरह सेट किए हुए हो, टास्क रखे हो अपने लिए, या फिर मतलब जो आप आ रहे हैं कर रहे हैं?
2: देखो, सच बात तो ये है कि हम एक ऐसे ड्यूटी में, नाम नहीं लूंगा उसका, ड्राइविंग स्कूल में काम करते हैं, तो हमारा तो पहले से हमें जो शेड्यूल मिलते हैं उसी पे हम काम करते हैं, तो उसी से इतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपने लिए भी कुछ करें। इतना बिजी, ये जिंदगी इतनी बिजी रहती है अभी, तो बहरहाल जो भी होता है, लेकिन ये है कि फ्राइडे के लिए हम लोगों ने एक टारगेट रखे हुए कि हमने फ्राइडे को ये करना है इंशाल्लाह, ये हमारा काम होता है। और बाकी जब भी मुल्क जाते हैं, छुट्टी में जाते हैं, तो वो तो आपको मालूम है, जब भी परदेश से कोई जाता है ना, हमारे जितने भी परदेशी भाई सुन रहे हैं, जो भी इधर से जाते हैं तो उनके लिए इतने काम रखे होते हैं जैसे वो घर में दूसरा कोई बंदा है नहीं काम के लिए।
0: हाँ, ऐसे ही, ऐसे ही,
2: बस ये ऐसे। बहरहाल माशाल्लाह, माशाल्लाह शो बहुत अच्छा है अभी। मैं अभी जस्ट ऑन किया, अभी अनिका बहन की बातें सुन रहा था मैं, तो वो तो ऐसे लगते हैं वो दो बहनें बैठ के ना कि जैसे घर में और बातें करती हैं, ऐसे ही लगता है।
0: हाँ, तो मैं उस बिल्कुल जोन में चली जाती हूँ जैसे अनिका की कॉल आती है।
2: नहीं नहीं, आप महसूस करो या नहीं, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि दो बहनें बैठ के आपस में बातें कर रही हैं और बस हम लोग ऐसे ही सुन रहे हैं, माशाल्लाह। लेकिन लेकिन एक बात, कि अनिका बहन या जो भी ऐसे हमारी बहनें जो भी कॉल करती हैं, तो वो जब बात करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और सच में एक एहसास होता है बहनों की बातें सुनकर, बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई, थैंक यू सो मच। और आप
2: बहुत शुक्रिया,
0: चले थे,
2: थैंक यू। अभी अभी क्लास टाइम शुरू हो रहा है,
0: चले बिल्कुल, आप अपनी क्लास लें आराम से, चले, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी। तो हमारे साथ खादिम भाई थे और उसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी क्या हाल चाल है भाई आपके?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं क्या चल रहा है, कैसी सुबह शुरुआत हुई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह जो है हमारे मोहित भाई है, उनकी बेहतरीन, उनकी जो चाय बनाने का अंदाज है माशाल्लाह, तो एकदम ताजा तरीन और फ्रेश कर देता है,
0: जबरदस्त। कौन सी दूध पत्ती बनाते हैं, कौन सी चाय बनाते हैं?
3: दूध पत्ती वाली एकदम, मतलब अगर मैं बताने लगूं तो सारे लोग सीख लेंगे, सीक्रेट शेयर हो जाएगा।
0: मोहित भाई कहाँ से?
3: मोहित भाई नहीं, इंडिया से है, हमारे लखनऊ से।
0: अच्छा, लखनऊ से है, सही सही, गुड, जबरदस्त। क्योंकि दूध पत्ती हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस है ना, तो इसलिए मैंने पूछा। सही,
3: तो सब वहीं से है ना, सब एक ही तरह से है, खाली बस लकीरें हैं और कुछ नहीं।
0: हाँ सही है, बिल्कुल सही बात, सही। तो आज सुबह सुबह एक बेहतरीन चाय पीने को मिली है, जिसकी वजह से समत का मूड बहुत अच्छा हुआ है। गुड, जबरदस्त। अच्छा समत, हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आप तो करते ही होंगे गोल्स और टारगेट्स वगैरह सेट करते हैं वीकली?
3: नहीं, मतलब हमारे पर्सनल बोल रहे हो आप?
0: हाँ हाँ, पर्सनल भी, ऑफिशियल भी, जैसे आप चाहें।
3: ऑफिशियल तो ऑब्वियसली होते ही है,
0: वो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, वो तो बनाने ही पड़ते हैं।
3: हाँ, वो नो डाउट होता ही है कि वो गोल में हम इतना गोल हो जाते हैं ना कि हमारे अपने पर्सनल गोल ही गोल हो जाते हैं। तो मतलब ये एक तल्ख हकीकत है, मगर सच्चाई इसमें है, शायद सब लोग इससे पास रखेंगे एक बात से, कि हम अभी फिल वक्त ये जो सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट लाइफ में जो जी रहे हैं, तो ये एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं अपने, इतना बिजी शेड्यूल और इतना बिजी कर दिया है ना हमने, क्या ही बताएं,

0: हाँ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही,
1: मतलब हम चाह कर भी जो है कुछ सेट नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हमको मिलता है एक दिन का छुट्टी, ठीक है, अब उसमें बंदा क्या ही कर लेगा बताओ आप।
0: ऐसा ही है। और अच्छा पता है क्या, सिर्फ ये नहीं कि एम्प्लॉयमेंट या जॉब के बाद, आजकल तो बच्चों को इतना ज़्यादा बिजी कर दिया है, मतलब सुबह से लेकर रात तक, कि वो बेचारे भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे। मतलब उनकी भी ज़िंदगी ना बिल्कुल ऐसे ही गुजर रही है, सुबह 7 बजे से स्कूल शुरू होगा, 3 बजे, अभी तो बल्कि ये सिलसिला चल रहा है कि उसके बाद भी सुकून नहीं आता, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस रखी जा रही हैं, जल्दी सिलेबस ख़त्म करवाया जा रहा है, 5-5 बजे बच्चे ना मतलब फारिग हो रहे हैं स्कूल से, आप सोचें सुबह मतलब 7 से शाम 5, तो उनकी ज़िंदगी तो मुझे और ज़्यादा मतलब लगता है कि कितनी ना स्ट्रेसफुल लाइफ है बच्चों की।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सेटअप किया गया है, ये जो फॉर्मेट बनाया गया है बच्चों के लिए एजुकेशनल में, मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के इनको जो है हम जो सभी झेल रहे हैं वो संभालने आसानी हो जाए, लाइक दैट वे वैसा वाला।
0: अच्छा।
1: बट कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम बनाया गया है, पता नहीं कितने बनाया होगा, मुझे तो ये फिरौन का ही लगता है अल्लाह जाने, और ये जो मैनेजर लोग हैं ये छोटे छोटे फिरौन हैं, तो अल्लाह माफ करे। ऐसा लगता है कि भाई अब ये हम हमारा भी घर चलाओ और हमारे जो है बड़े ऊपर बैठे जो काम कर रहे हैं उनका भी घर चलाओ वाला सीन होता है।
0: हाँ।
1: हम काम करेंगे तो उनके भी, और वो एक बड़ा प्यारा जोक है देखिए कि एक मैनेजर ने जो है अपने एम्प्लॉयज को बताकर बोला कि इतनी अच्छी गाड़ी ली मैंने, तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, इससे बड़ी भी ले सकता हूँ अगर तुम लोग अच्छा काम करेंगे तो।
0: ऐसे ही
1: और एम्प्लॉय जो है बेचारा है कि अपनी एक टू व्हीलर की ईएमआई बनने तक भी उसकी फटी जा रही है।
0: बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही।
1: ये दुनिया का बड़ा गलत दस्तूर है ये, ये जो तकसीमात की गई है ये बहुत गलत वाली तकसीमात है। खैर ये अलग टॉपिक है, तो गोल्स के ऊपर आते हैं, तो गोल्स जो है मैडम कभी कभी बन जाते हैं, जिस वक्त जो है हर महीना तो कोई लिखना वो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं, सेट कर लिया जाता है कि भाई ये वीक में जो है चलो हम कहीं घूमने जाएंगे या फिर कुछ प्लान कर लेते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे ताकि मूड थोड़ा सा चेंज हो एक्स वाई जेड। और गोल्स होना बहुत जरूरी है, बिना गोल के बिना मकसद के जिंदगी बेमकसद होती है, इसके लिए भी जो है गोल्स को सेट किया जाता है ताकि आपको एक्टिव रहो।
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही जरूरी है। अच्छा समझ, आप हमारे साथ रहें और यहीं रहें, बस हम अभी फौरन से वापस आते हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: राइट जी राइट, 8:00 तकरीबन 2 मिनट होने वाले। जी जी समझ
3: जी मैडम
2: जी, आपके,
3: चले थे
2: आपके गोल
3: से?
2: आपके गोल जो है ना वो बीच में रह गए थे जी।
3: तो वर्कआउट कर रहे थे क्या?
2: नहीं नहीं जी, तो फिर आपने क्या कहा कि घूमने फिरने क्या आपके जहन में जरा ज्यादा होता है, लेकिन वो कभी कभी होते हैं।
3: हाँ लेकिन कभी कभी, क्योंकि होना ही क्या, ऑफिशियल लाइफ में तो हम इतना बिजी होते हैं और होना भी चाहिए, उसमें जो है हमारे जो बाकी चीजें होती है उससे जो है फुलफिल होता है, तो हम काम को तो बुरा नहीं कहेंगे, जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।

0: लेकिन यही है कि अपने पर्सनल गोल्स को सेट करने के लिए जो है थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन somehow कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है ठीक ठाक।
1: हाँ ये तो है, चलिए गुड, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है।
0: पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो हम अभी प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं ना, तो इतना अंडर प्रेशर गोल्स बनाकर मुझे लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत है ही नहीं पहली चीज तो, क्योंकि आप जो है कौन से पैरामीटर से कौन से स्केल से आप अपनी लाइफ को जो है मेजर कर रहे हो, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हम एज ए मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूंगा, मैं एज एन यू नो कि हमको चाहिए कि हम फोकस हमारा आखिरत पर रखें, क्योंकि दुनियावी चीजों में हम मेहनत
1: हैं। मतलब जैसे आप आपके गोल सेटिंग ये भी हो सकती है कि आपने सारी नमाजें अपने वक्त पे पढ़नी है, ये भी गोल हो सकता है। वीकली बेसिस पे आपका ये गोल हो सकता है कि आप जो है ना मतलब ये सोच के रखें कि इस हफ्ते में मैंने कोशिश करनी है कि कोई भी एक सूरत है या कुरान की इतनी देर की तलावत है ये मैंने करनी है।
0: ये एक अच्छी बात कही आपने, और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए मैं वही बोल रहा था कि अगर हमको गोल्स आपने कहा था कि गोल्स को सेट करने के लिए नमाज का बता, अब नमाज कुरान और जो है जकात खैरात सदका ये सब चीजें हैं, लेकिन जिंदगी में सबको अपना एक ये गोल बनाना चाहिए कि मेरे चलते आज किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंची, क्योंकि हम दूसरों को तरफ में उंगलियां उठाते हैं लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हमको दिखता नहीं है।
1: सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे।
0: तो उस हिसाब से जो है हमें ये गोल सेट करना चाहिए कि हम आज अल्लाह को कितना राजी किए हैं, बाकी सारे गोल्स सेट हो जाएंगे आपके, आपको बंगला चाहिए मिल जाएगा, गाड़ी चाहिए मिल जाएगी, सब चीज मिल जाएगी, उसके पीछे दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अल्लाह के पीछे दौड़ेंगे भागेंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी।
1: सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अभी तक मैं आपने अभी तक आप लोगों में से मेरा किसी ने हदीस टू हैबिट शो सुना, वो बेसिकली ऐसे ही है, यही वाली चीज है जो आप बता रहे हैं ना, तो उसमें एक वीकली प्लानर के तौर पे हम एक हदीस लेकर आते हैं और उस हदीस को फिर कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है डे टू डे, और एक हफ्ते तक आप मुसलसल प्रैक्टिस करो फिर अपनी जिंदगी में उसको अपनाने की कोशिश करो। हाँ तो अगर
0: इत्तेफाक हो
1: ये थर्सडे को आता है, थर्सडे को होता है ये टाइम, मैं आपको कन्फर्म करके बताऊंगी। हदीस टू हैबिट नाम है इसका।
0: अरे सही है मैडम, माशाल्लाह बहुत अच्छा मुहिम लेकर चल रहे हैं फिर आप उस हिसाब से तो कि भाई
1: नहीं इसमें तो ये
0: सवाब वाला काम है।
1: हाँ, ये क्रेडिट
0: जहाँ कहीं होता है हम दुनिया के साथ तो थोड़ी बहुत दीन की भी बात कर लेनी चाहिए।
1: और मैं वैसे सुबह में भी बिल्कुल 6 बजे के वक्त में भी मैं अस्कार से पहले भी कोशिश कर रही हूँ कोई ऐसी चीज लेकर आने की, क्योंकि होता वही है कि हम मतलब ना हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है लेकिन हमारा मेन फोकस ना वाकई इस तरफ होनी चाहिए कि प्रायोरिटी आपकी आपके जहन में हो कि भाई ये है, और लोगों को भी लेकर आना है और खुद को भी यहाँ पे रखना है, तो ये वाकई आपका गोल होना चाहिए।
0: हाँ ये तो गोल्स तो बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे बना के रखते हैं, जैसे बड़े बड़े तो नहीं कि हाँ आज जो भी हमारा ऑफिशियल है या फिर पर्सनल है, पर्सनल में रिलेशनशिप को कैसा इम्प्रोवाइज कर सके, और जो है क्या कहते हैं अपने सेविंग्स की तरफ में आते हैं हम कि भाई आज मैंने मुझे कितना खर्चा करना है कितना नहीं, उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर सैलरी के हम कैसे कर पाएंगे आगे, फ्यूचर के गोल्स कैसे, और टुवर्ड्स फैमिली में भी हम देखते हैं कि भाई आज मैंने अपने फैमिली से कितनी देर बात की है, थोड़ा सा और टाइम को इंक्रीज करेंगे क्योंकि हम तो परदेश में होते हैं तो उनको भी ये फील ना हो कि वो अकेले हैं वहाँ पर, तो उस हिसाब से जितना ज्यादा होता है कि उनके साथ में वक्त बिताने की कोशिश करें, और फिर अपने माइंड को जो है और अच्छा रखने के लिए दोस्त अहबाब से जो है बातचीत करें, तो इस तरीके से छोटे छोटे गोल्स बना लेंगे तो बड़े गोल तक पहुंचने के लिए आसानी हो जाएगी।
1: जबरदस्त ग्रेट समझ, थैंक्स अ लॉट।
0: परदेश की जिंदगी तो हमें गोल्स बनाकर ही जिंदगी जीना सिखाती है, ये तो सब एग्री करेंगे।
1: बिल्कुल ऐसा ही है रोजाना की, और फिर यहाँ पे रह के ना आपको एक थोड़ा सा डिसिप्लिन भी लाइफ में जरा ज्यादा आ जाता है, जो हमारे मुल्कों में भी हो तो हम शायद बहुत तरक्की कर जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बंदे की जिंदगी में ये डिसिप्लिन नहीं होता जो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, तकरीबन सब लोगों की लाइफ में इसके बगैर चारा ही नहीं है ना। चलें समझ, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थर्सडे वाली टाइमिंग बताएं हमें फिर इंशाल्लाह जो है फिर वो वाली प्रोग्राम में भी फिर जुड़ेंगे हम।
1: हाँ देखिए वो रिकॉर्डेड होता है लेकिन हो तो जरूर सुनिएगा।
0: कोई नहीं, बट हम सुनेंगे, हमें भी सीखने को मिलेगा कुछ।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महावश खान। और हदीस टू हैबिट का प्रोमो जो लगाया था वो इसलिए लगाया था कि टाइम कंफर्म करके फिर मैं समद को बता दूं कि टाइम क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया होगा, मैं इग्नोर अभी भी कर गई हूँ, मुझे एकदम से पता नहीं चला कि कब चला गया टाइम। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, तो मुझे कोई लिख के भेज दे कि किस वक्त थर्सडे वाले दिन आ रहा है। थर्सडे कन्फर्म है मुझे, टाइम मुझे लग रहा है सुबह या तो 10 बजे आता है शायद, मुझे कुछ कुछ याद पड़ रहा है, लेकिन सुनिएगा अच्छा शो है। अच्छा, इसके साथ ही भाई मेरे पास एक स्पोर्ट्स अपडेट है, कुछ स्पोर्ट्स अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए। तो स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ बड़ी ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर मैं आपके लिए आई हूँ। फुटबॉल, क्रिकेट और हर जगह से थोड़ी थोड़ी देखेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो प्रिपरेशन है 2026 की, वो फुल स्विंग पर है। इस वक्त टीम्स अपनी फाइनल फ्रेंडलीज और ट्रेनिंग कैंप्स में बिजी हैं, लेकिन एक शॉकिंग मोमेंट भी इस वक्त में सामने आया जिसने सबको बॉस कर दिया। हुआ कुछ यूं कि डेनमार्क और यूक्रेन के दरमियान एक फ्रेंडली मैच के दौरान ही डैनिश मिडफील्डर क्रिस्टियन एरिक्सन पिच पर कोलैप्स कर गए थे। मेडिकल स्टाफ ने फौरन एक्शन लिया और उन्हें फील्ड से असिस्ट किया गया। अथॉरिटीज के मुताबिक सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और मीनवाइल अगर देखा जाए वर्ल्ड कप 2026 के पहले फुटबॉल रूल्स में भी मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। VAR एक्सपेंशन, फास्टर गेम टेम्पो रूल्स और स्ट्रिक्ट टाइम वेस्टिंग पेनल्टीज भी टूर्नामेंट का हिस्सा होंगी। इसके साथ ही स्कॉटलैंड भी वर्ल्ड कप प्रिपरेशन में है, लेकिन उनका एक वार्म अप मैच इंजरी कंसर्न्स की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। अगर क्रिकेट की दुनिया से देखें तो क्रिकेट से एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इंग्लैंड के नाम है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में 115 रन से डिफीट कर दिया एट लॉर्ड्स। और इसमें जो है, इसके अलावा क्रिकेट से एक और न्यूज़, ICC ने अनाउंस किया है कि अपकमिंग वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 अब तक का लार्जेस्ट एडिशन होगा जिसमें 12 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। और ICC चेयरमैन ने इस इवेंट को विमेंस क्रिकेट के लिए हिस्टोरिक एक्सपेंशन मोमेंट कहा है। अच्छा, दूसरी कुछ हम न्यूज़ देखें, और इसके अलावा एक अहम न्यूज़ है फुटबॉल की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन दूसरी कुछ न्यूज़ अगर दुनिया भर से देखें तो यूरोपियन क्रिकेट सीन में भी डेवलपमेंट कंटिन्यू है। बेल्जियम में न्यू प्रोफेशनल T20 लीग लॉन्च हो रही है जिसका शेड्यूल जो है वो जून 2026 में स्टार्ट होगा, और ये यूरोप में क्रिकेट ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। USA में भी मेजर लीग क्रिकेट का नेक्स्ट सेशन सीजन जून 18 से स्टार्ट होने जा रहा है, जो क्रिकेट की ग्लोबल जो एक मकबूलियत है उसको और ज़्यादा बूस्ट करेगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ वो वाली न्यूज़ जिसकी मैं बात करी थी, फुटबॉल से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छी इस तरह से है कि वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और वो यूँ है, कुछ भाई मैं देख लूँ कहाँ गई, मैंने अभी देखी थी, मिल नहीं रही है। हाँ, हुआ ये है कि ये जो है पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम ने डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में अफगानिस्तान को 2-0 से डिफीट करके फाइनल में जगह बना ली। और ये अचीवमेंट इतनी स्पेशल है कि इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भी इतने अरसे बाद किसी स्टैंड अलोन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। तो मैच में पाकिस्तान ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी, गोल्ड स्कोर किए उमर नवाज ने और हारून हामिद ने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सेटअप रहा। और इसमें ये भी जो असल जो चीज़ है ना वो ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि पाकिस्तान ने 1962 के बाद पहली दफ़ा किसी स्टैंड अलोन इंटरनेशनल फाइनल में एंट्री किया। और उसमें देख रही थी, आई थिंक 64 ईयर्स लगे हैं भाई, मतलब इतनी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है और बिल्कुल विनलेस पीरियड का सामना रहा, लेकिन इसके बाद इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अपनी फॉर्म और कॉन्फिडेंस दोनों वापस हासिल कर लिए हैं। तो एक तरह का ये टर्निंग पॉइंट मोमेंट है इस टूर्नामेंट को, पाकिस्तान फुटबॉल के रिवाइवल के एक टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। और अर्ली स्टेज पर पाकिस्तान ने मालदीव्स को 3-0 से शिकस्त दी थी और अपनी विनिंग मोमेंटम का स्टार्ट किया था, आगाज किया था और अब इसके साथ देखते हैं शायद फुटबॉल, पाकिस्तान फुटबॉल के लिए एक न्यू एरा का स्टार्ट हो सकता है, ये ऐसा कहा जा रहा है। तो ज़बरदस्त, ग्रेट, मतलब अच्छी न्यूज़ है ये। और बल्कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कुछ हॉकी में भी होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने कोई ज़माने गुजर गए होंगे कहने को नेशनल गेम है हमारा, लेकिन वो बिल्कुल ही कुछ सुनने को नहीं मिल रहा होता। खैर जी, हमारे पास है मैसेजेस, तो मैसेजेस की तरफ आ जाती हूँ। कॉल्स भी जो लोग कर रहे थे अब कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें साथ साथ लेके चलनी है ना, सिर्फ कॉल्स लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, सब चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। तो कॉल चलें पहले ले लेती हूँ, फिर मैसेजेस की तरफ आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल चाल है भाई, जमाल भाई क्या हाल है? बड़े मजे से अंदाजा लगाया आपने। जी तो क्या चल रहा है भाई जमाल, सुबह का आगाज कैसा हुआ, क्या नाश्ते में क्या खाया, ये किसी ने बताया ही नहीं मुझे।
3: अभी अभी अभी तक नाश्ता नहीं करने का वक्त हुआ है मेरा, और मेरा भी थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब बढ़िया की चाय पी है मैंने थोड़ी देर पहले, कंपनी से निकलते हुए चाय पी लिया है।
2: अच्छा अच्छा।
3: और हमारी कंपनी चूंकि वो बनाती है टोस्ट, आपको पता है वो रश

0: हाँ तो वो मैं कंपनी से अपनी कंपनी से खरीद लेता हूँ।
1: अच्छा।
0: और आईटी के ऑफिस में रख देता हूँ, वो बेचारा एक चाय बनाता है, हम तीन लोग बैठ के पीते हैं। अभी जल्दी एक लड़के का वो हुआ है, क्या कहते हैं, नया आदमी आया हुआ है हमारी कंपनी में, आयुष आई टी में, मारिस नाम है कराची का।
1: अच्छा अच्छा, क्या नाम है?
0: एक लखनऊ का, मारिस।
1: मारिश, मैंने पहली दफा सुना, मुझसे कुछ मिलता हाँ, जुलता नाम लग रहा है।
0: हाँ, तो हाँ। मारिश नाम है उसका, लड़का एकदम यंग है।
1: अच्छा।
0: आईटी में आया है और क्या कहते हैं, एक लखनऊ के है साहब और एक मैं, तो कुछ लोग चाय बनाते हैं और वो लाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो हम तीनों बैठ के चाय पी लेते हैं, वही नाश्ता हो जाता है हमारा।
1: चले गुड। लेकिन अभी तक ये नाश्ता नहीं हुआ? हाँ, या हो चुका है?
0: अब उसी को मान लीजिए, क्योंकि 10-11 बजे से पहले तो वक्त ही नहीं मिलेगा।
1: अच्छा।
0: तो जब तक मिलता है, उसके बाद कुछ लोगों का खाना शुरू हो जाता है।
1: सही सही सही सही, गुड, जबरदस्त। तो ये बताएं भाई कि अपने लिए जमाल कोई गोल वगैरह बनाते हैं कि हफ्ते का, मतलब मेरा ना ये टारगेट है इस दफा मैंने अचीव करना है।
0: देखिए, किसी ने एक बात कही थी कि इतनी मसरूफ कर देती है जिंदगी कि कभी कभी खुद से मिलने का मौका नहीं मिलता है। और ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि अगर ये देखिए आप कि इंसान बड़ी तेज रफ्तारी से सफर कर रहा है, तो वो इस बात की खुली दलील होती है कि इस बंदे के सामने कोई ना कोई गोल तो है।
1: सही
0: है ना?
1: हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा है।
0: तो कोई भी बंदा है ना, अपने ऐसा नहीं है कि उसकी नजरों में कोई उसका हदफ नहीं होता है, बिना हदफ के तो कोई नहीं है। हाँ, लोगों को ये समझ नहीं आता है कि मैं अब महेश की सवाल पे क्या जवाब दूं कि मेरा क्या गोल है, लेकिन हकीकत बात यह है कि हर इंसान के सामने कोई ना कोई गोल होता है।
1: सही।
0: और वो उसी के पीछे भाग रहा होता है।
1: सही।
0: चाहे क्या इसे गोल नहीं कहा जाएगा कि आप अपने घर की सारी जिम्मेदारियों के लिए आप रोजाना घर से निकलते हो और वो करते हो, तो वो भी एक गोल ही है ना।
1: हाँ बिल्कुल ऐसे ही।
0: दो चार बच्चे पढ़ रहे हैं और हाँ, उनका पूरा मुकम्मल खर्च, सारी चीजें कर रहे हो आप, वो भी एक गोल है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: हम वैसे जहाँ तक मेरा मतलब है कि अभी तक तो हमारा ऐसा कुछ वो नहीं था, हम घर से निकले थे तो ये सोचे थे कि जाएंगे तो फिर दो बच्चों की शादी हो गई, एक दूसरे के लड़का नंबर, वो भी एक गोल मान लीजिए। लेकिन सडनली अभी पिछले 2-3 महीनों से कुछ थोड़ी सी अचानक से तब्दीली, जैसे कि मतलब वो फितरतन होता है इंसानी जिंदगी में, कभी कभार गैर मुतवक्का चीजें होती हैं जो मेरे साथ भी हुई है, कि क्या कहते हैं, मैंने अचानक से एक प्लान कैंसिल करके और घर बनाने को शुरू कर दिया।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो वो एक सुबह शाम के हर हफ्ते का गोल है आजकल। गोल सेट करता हूँ कि इस बार मतलब इतने दिनों तक शायद मेरा ये चलेगा और उसके बाद फिर उसको मंगाने की।
1: चले गुड। मकान बना रहे हैं यानी आजकल अपना, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, अभी मैंने खबर शेयर की थी कतर के हवाले से, उसके अलावा मैं देख रही थी इंडिया से ही कुछ रिलेटेड मैंने एक चीज देखी थी कि अब जैसे कंस्ट्रक्शन जो की जा रही है तो उसमें वो जो जाली वाली है वो नहीं लगती, तो अगर आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो जो नहीं होती थी टेराकोटा की, जो बेक्ड जैसे वो मर्ड की जो बनती है, तो अगर वो लगाना चाहें अपने घर पे तो अच्छा हो जाएगा, मतलब घर ठंडा रहेगा आपका।
0: हाँ सही कहा। नहीं, उसके लिए एक मतलब हमारे खानदान का एक बंदा, इत्तेफाक ही मेरी किस्मत थी कि जब मैंने शुरू किया तो पता चला कि एक लड़का जो क्या कहते हैं, अरे आर्किटेक्ट इंजीनियर था, 2 साल दुबई से रिटर्न गया, फिर किसी वजह से आ नहीं पा रहा था वो।
1: अच्छा,
0: तो वहीं पर उसने ऑफिस खोला और हमको पता चला, हमने उससे मतलब वो किया, तो हमने पूरा काम ही उसको दे दिया। भतीजा लगता है, तो मैंने कहा बेटा जो तुम्हारी चार्ज होगी उससे हम थोड़ा सा ज्यादा देंगे, लेकिन यह है कि हमारे घर कोई नहीं है, तो तुम उसको पूरी तरह से देख लेना अपनी निगरानी में। हालांकि मैं सुबह शाम कॉल करते रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है।
1: इंशाल्लाह भाई, दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह बहुत अच्छा बनाए और आप लोगों को सबको खुशहाली के साथ रहना नसीब करे उसमें इंशाल्लाह ताला।
0: आमीन सुम्मा आमीन।
1: बहुत शुक्रिया जमाल भाई,
0: बस यही चीज है जो बहुत कम मिलती है।
1: जी जी बिल्कुल। चले बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम थोड़ा सा कम रहेगा,
0: खाना खिला देते हैं, दुआ नहीं मिलता।
1: नहीं, हमें ना वैसे पता है अपनी आदत बनानी चाहिए ये कि हम सबको दुआ जरूर दें, क्योंकि हम जब दूसरों को दुआ देते हैं तो वो दुआएं अल्लाह ताला हमारे हक में भी पूरी करता है। और ये दिल से दुआ करनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे, हर किसी के लिए दिल से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारी पूरी करेगा ही करेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जवान भाई, ख्याल रखिएगा अपना और कॉल करते रहिएगा। थैंक यू जी। اللہ حافظ. رہی جی, تو ہمارے ساتھ ہمارے کالر موجود تھے, واٹس ایپ پہ کچھ میسیجز بھی ہیں, وہ بھی اس طرف بھی آ جاتی ہوں, لیکن ہمارے بہت سارے سیگمنٹس ہیں, میری کوشش ہے کہ میں پورے سیگمنٹس جو ہے نا کمپلیٹ کر لوں, ایسا نہ ہو کہ کچھ رہ جائے. تو ابھی ایک کچھ دنوں پہلے ویسے تو خیر بات ہو گئی تھی اس حوالے سے, ایک بھائی نے بڑی اچھی انفارمیشن شیئر کی تھی, لیکن یہ کہ قطر کی سمر ہیٹ میں جب آپ

बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके साथ ही स्टीयरिंग का व्हील हैक, ये छोटा सा मतलब टावल या फिर क्लोथ स्टीयरिंग व्हील पर आप रख सकते हैं. इससे जो स्टीयरिंग पे हाथ रखते ही आपके जो ना बिल्कुल वो होने लगते हैं ना कि वो जल गए, तो वो वाला बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड नहीं होगा. अगर आपको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है तो एक टावल अगर आप लेकर आ जाते हैं और वो रख देते हैं थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा एकदम से रिलीफ मिलेगा और आप जब ड्राइव स्टार्ट करेंगे तो हाथ जलने का रिस्क नहीं होगा. इसके साथ ही भाई जहाँ भी पॉसिबल हो सके शेड में पार्क कीजिए गाड़ी को, कवर्ड पार्किंग यूज़ करें, डायरेक्ट सनलाइट से बचने की कोशिश करें. ये सिंपल हैबिट जो है आपकी कार को दिन भर में काफी कूलर रखती है. सही है, तो ये कुछ हमारे पास समर हैक्स थे और इसके साथ ही आपके आ जाती हूं मैं मैसेजेस की तरफ. आयाज बलोच का मैसेज है और ये कहते हैं कि कुछ प्लान नहीं है अभी सिस्टर, एग्जाम सिर्फ 2 घंटे का है, वहाँ पर वेट करना पड़ेगा. अच्छा, 2 घंटे का इंतज़ार ये वाला चल रहा था आपका. सही है. और इसके साथ जी व्हेन यू आर गोइंग फॉर वेकेशन मैडम, इतनी फिक्र मेरे जाने की, मतलब मैं आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है. फराज अहमद ने मैसेज किया है ये. फराज अभी तो आपको तकरीबन पूरे 6 हफ्ते मुझे झेलना पड़ेगा, मैं खुद भी अंदाज़ा लगा रही हूँ ना कितना रह गया. तो 6 हफ्ते मतलब 19 जुलाई को नाजिया आएगी और 19 जुलाई को मैं नहीं होंगी, ये वाला सीन है. और मैम बिजी हूँ, कॉल करो शहजाद सलीम. अच्छा, मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह आपको कॉल करने की. और उसके साथ ही मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, होप वेल, वेलकम टू समर मॉर्निंग दिल से देसी, हैप्पी मंडे मॉर्निंग. और मावा जी, आई एम नॉट द पर्सन हु सेट द गोल, आई गो विद द फ्लो, बस जो है मैं नहीं कर पाता हूँ. ओके. और हाँ, कुछ काम याद नहीं रहते हैं तो कहीं नोट करके रखता हूँ. और अच्छा लगा मिस अनीका मैम की कॉल जो है वो आ गई सुबह, यूजुअली वो शाम में किया करती थी माशाल्लाह जी. अच्छा, आप उस तरह के पर्सन नहीं हैं कि जो गोल वगैरह सेट करते हैं ना. मैं थोड़ा थोड़ा सा है, मतलब अब ये गोल आप क्या कह लें, मतलब वो होता है ना कि बच्चों के स्कूल में कॉल करके ये चीज़ पूछनी है, ये वाली चीज़ करनी है, ऑफिस की ये वाली चीज़ करनी है, तो इस तरह की वीकली जो है ना वो चीज़ें होती हैं. कुछ ना कुछ इतने अजीब अजीब से काम निकल आते हैं जो आपको करना पड़ता है. अरे एक भाई का मैसेज तो कहते हैं फिरौन की गलती है सारी. आसिफ का मैसेज है, आसिफ कहते हैं फिरौन की गलती, जो समद अभी कह रहे थे. ऐसे ही भाई, मतलब है तो कोई ना कोई इसी किस्म का बंदा, कैरेक्टर तो ऐसे ही है कोई. इसके साथ ही जी गुड मॉर्निंग मैम, रविंदर सिंह सिद्धू का मैसेज है यूएई से, मैसेज आपने किया, थैंक यू, गुड मॉर्निंग आपको भी. और इसके साथ और मैसेजेस भी हैं, लेकिन हम चलते हैं एक और सॉन्ग की तरफ. गेम है आज, लेकिन गेम में मैं आपसे एक मूवी गैस करवाऊंगी, ठीक है. एक ही मूवी होगी, मैं आपको सवाल बता दूंगी, जिस जिसको समझ में आता है वो हमें कॉल करके आंसर करें, ठीक है, जिसने भी पार्टिसिपेट करना है. और फिर हम आखिर में अनाउंस कर देंगे कि किसका आंसर ठीक था. मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मतलब जैसे वो बहुत कोई इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन मैं इस तरह का ही अभी फिलहाल मुझे लगता है कि गेम खिलवा सकती हूँ. मेरा फोकस दूसरी चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा है और मुझे लग रहा है कि पहले जो हमारे जो लोग हैं ना वो इतने अच्छे गेम खिलवाते रहे, तो मैं थोड़ा सा कुछ अलग कर लूँ, वैसा नहीं खिलवा सकती. खैर जी, हम बढ़ते हैं एक म्यूज़िकल ट्रैक की तरफ, सॉन्ग सुनते हैं, वापस आते हैं, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
4: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
5: द रिक्वेस्ट शो
4: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ,
5: फजील के साथ
4: संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107।

0: जी राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM और हम यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं. और एक और चीज़ जो कि हमारा लेट्स फिक्स इट सेगमेंट कहलाता है, इसमें आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से. और आज की फास्ट लाइफ में स्ट्रेस होना नॉर्मल है, लेकिन उसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी जो कुछ सिंपल हैबिट्स हैं उससे आप अपना माइंड रीसेट कर सकते हैं. सबसे पहले तो भाई 5 मिनट निकालते हैं आपको, और 5 मिनट निकाल के आपने सांस लेना है, जो कि आप वैसे भी लेते हैं लेकिन सही तरह से नहीं लेते. तो डीप ब्रीदिंग करनी है आपने, स्लोली इनहेल स्लोली एक्सहेल करना है. ये सिंपल टेक्निक आपके माइंड को इंस्टेंटली काम करती है और स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करती है. अभी किसी का मैसेज भी आया था, मैंने इस हफ्ते अपने आप को पुरसकून रखना है, तो उनके लिए ये हो गया. इसके साथ ही मल्टीटास्किंग, जो कि हम सब ही कर रहे होते हैं, प्रोडक्टिव होता तो है, लगता तो है आपको, लेकिन असल में ये ना माइंड को ओवरलोड कर देता है. तो थोड़ा सा एक वक्त में एक काम करने की मतलब जो आदत है वो बनाएं, उस पर फोकस करें, काम ज़्यादा स्मूथ और इफेक्टिव हो जाएगा. और साथ ही स्क्रीन फ्री जो टाइम है ना वो आपका ज़रूर होना चाहिए, मोबाइल ऑफ हो, टीवी या सोशल मीडिया से बिल्कुल ब्रेक हो. ये साइलेंस आपके माइंड को थोड़ा सा रीसेट भी करेगी और मेंटल क्लैरिटी भी देगी. साथ ही साथ कभी कभी स्ट्रेस का जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो ये है कि किसी भी ट्रस्टेड पर्सन से बात करना, अपनी सोच अपने ख्यालात उसके साथ शेयर करना, इससे भी प्रेशर कम होगा और आप इमोशनली लाइट फील करेंगे. ठीक है, तो ये एक चीज़ें हैं स्ट्रेस से बचने के लिए. सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं और बहुत सारा स्ट्रेस है, तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: ओए आपको कॉल करनी थी, आपकी कॉल आ गई. कैसे हैं भाई शहजादा सलीम?
1: अभी बस गोल हो ही गया, क्योंकि इतनी मसरूफियत थी. आखिरकार डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद फ्री हुआ, तब जाके मैं बोला अपना कॉल कर सकते हैं, यानी अब जाके मेरा मतलब गोल हुआ है अभी यहाँ पे आके. सुबह से इस कदर मतलब मसरूफियत थी. तो कभी कभी आपने जो ये गोल का जो टॉपिक दिया है ना, तो मुझे ना फुटबॉल का ना मैच याद आ जाता है, क्योंकि एक बेचारा बॉल है ना, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट कभी इधर कभी उधर, उसको बहुत धक्के खाते खाते जब लास्ट में वो जो गोल में जाता है वो, तो उसको राहत मिलती है. और जब वो जब पहला हाफ होता है, तो हमारी जिंदगी देखे तो वैकेशन जाते हैं, जब हम वैकेशन से आते हैं ना, फिर एक नया गोल है ना हमको मिलता है.
0: दोबारा से बहुत सारे टास्क कि ये करने.
1: तो मुझे ना वो फुटबॉल का मैच याद आ गया, आपके जो टॉपिक लेकर है ना, इस तरह की जिंदगी एक यहाँ के जो मुकर्रा की जिंदगी कम नहीं, एक बेचारा जो फुटबॉल होता है ना, बेचारा बॉल होता है, तो वो उसकी हमारी जिंदगी को अगर
0: कितनी टेंशन हो रही होती है ना जितनी देर का चल रहा होता है. हमने तो फीफा वही वाला देखा था जिसमें यहाँ पे हुआ था, तो 2022, तो वो देख के कुछ मैचेस जो मैंने देखे हैं, इतनी टेंशन हो रही होती है, गोल होके नहीं दे रहा होता, सामने बॉल है लेकिन गोल नहीं हो रहा. है ना, तो हमारी जिंदगी में भी ऐसी है, गोल है तो बहुत सारे हो नहीं रहे.
1: हो नहीं रहे, और कहीं हो भी गए तो फिर एक नया गोल फिर आ जाता है, फिर एक नया गोल फिर आ जाता है. तो इसी तरह से मतलब ये गोल का सिलसिला जो है पता नहीं कहाँ जाके थमेगा, तो अभी तो इसका कुछ मतलब अंदाजा है नहीं. और इसको मतलब गेज करना भी मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक मेरा अपना नजरिया है, या मेरी अपनी कैपेसिटीज, या मेरा अपना वर्क है जो भी है, तो मुझे तो दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आता कि ये कहाँ जाके गोल होगा लास्ट में फाइनली. तो फिल वक्त तो बस खेलते रहो मैदान में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इस तरह से मतलब. हाँ, तो ये एक मतलब जो नेचुरल एक जो जो हकीकत है ना, इस तरह की है एक जो गोल होता है ना, तो हर एक का गोल जो कहीं किसी का जल्दी हो जाता है, किसी ने टाइम लिया होता है, किसी ने सेट करके रखा होता है, लेकिन उसके बीच में और दूसरे तीसरे कुछ आ जाता है ना, तो बेचारा वो जो पहले जो सेट करके रहता वो या तो कहीं गुम हो जाता है, या नहीं तो कहीं गायब हो जाता है, या पता नहीं क्या हो जाता है, या कुर्बानी में चला जाता है मेरा ख्याल
0: है. ये वाला चल रहा है सिलसिला. अच्छा, पता है कि अभी मैंने यूसुफ से मतलब जब यूसुफ खान का मैसेज आया था, तो उस वक्त मैंने बोला कि वो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, जैसे स्कूल पे कॉल करनी है, तो उन्होंने सही कहा कि ये गोल नहीं होते, ये तो टू डू लिस्ट होती है, तो वो बात बिल्कुल ठीक है. लेकिन एक जो गोल जो मुझे लग रहा है कि आजकल मैं थोड़ा सा कॉन्शियसली जिसके ऊपर थोड़ा मैं फोकस कर रही होती हूँ, और मुझे लगता है कि सबको हमें करना चाहिए, वो ये कि आपका टाइम वेस्ट
1: रोजमर्रा की जो जिंदगी ना, वो प्रॉपर करें, और किसी को हट ना करें, जैसे मैंने बताया ना किसी को हट ना करें, और तो जितनी अपनी जो जहाँ से जितनी मतलब बेहतर से बेहतरी हो सके ना उसको और बेहतरी बनाने की कोशिश करें, और जहाँ पर समझ लो कि कुछ मतलब कहीं डिफिकल्ट है कुछ है तो वहाँ बाउंड्रीज लगा दें, वहाँ से ग्रेस करें, और बस इसी तरह से ना मतलब फिश वाश सदाबहार और खुशहाल इस तरह से अपने आप को है ना एक गोल की तरफ ले जाए कि वो जाके एक प्रॉपर मतलब गोल बने और गोल हो जाए।
0: इतना गोल पे आपने फोकस कर दिया, आखिर में गोल गोल गोल हो गया बिल्कुल। अच्छा शहजादा सलीम, अब हम शुरू कर लेते हैं हमारा जो गेम ऑन सेगमेंट है, उसमें मैंने एक ही मूवी के बारे में पूछना है। मैं आपको थोड़े से क्लूज दे देती हूँ और फिर आप देखें कि मूवी आप गेस कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है,
1: लेकिन मेरी एक वीकनेस क्या है, मतलब मैं मूवीज बहुत कम देखता हूँ,
0: बहुत ही कोई फेमस मूवी है ये जिसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। हाँ तो मूवी डेफिनेटली बॉलीवुड है, ठीक है, और बहुत ही क्लासिक मूवीज में आती है ये, ठीक है, और दूसरा ये कि एक रिच फैमिली की कहानी है दोस्ती और मोहब्बत के हवाले से, कुछ आ रहे हैं जहन में?
1: रिच फैमिली की है,
0: हाँ, अमीर अमीर लोग दिखाए हैं इसमें और दोस्ती मोहब्बत मतलब इसकी थीम है एक तरह से, कुछ आ रहे हैं जहन में?
1: हाँ ऐसे तो कभी खुशी कभी गम आ रही है।
0: सही, और
1: अपने दूसरे अपना उसकी अपना ये थी आमिर खान और अजय देवगन की थी ना, क्या अच्छी पिक्चर थी उनकी दोनों की, वो भी मुझे याद नहीं, 90s की थी मेरा ख्याल है, उसमें गाना दिया ना अरे अरे ये क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं,
0: दिल तो पागल है कह रहे हैं आप, आमिर खान थोड़ी है, शाहरुख खान था।
1: दिल तो पागल अलग है।
0: अच्छा अच्छा, नहीं अरे रे रे क्या हो गया ये तो शायद उसी का है।
1: नहीं नहीं उसका है मेरे ख्याल है, अजय देवगन वाली है, अजय देवगन और ये आमिर वाली की दोनों है इसमें, और
0: इश्क इश्क इश्क,
1: हाँ मेरे ख्याल से, हाँ हाँ
0: सही सही,
1: तो उसमें भी यही है ना, दोस्त गरीब है और वो अमीर है।
0: नहीं नहीं ये तो ये मतलब ये अमीर ही है, ये सही है, रिच फैमिली है, और इसमें जो बेसिक जो इसकी थीम है ना वो है मोहब्बत और दोस्ती। चले हम किसी और को देखते हैं, मौका देते हैं, ठीक हाँ चलो, थैंक यू शहजादा सलीम, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित जी तो आखिर में बस हमारा ये ऐसी गेम ऑन सेगमेंट, आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं आपके जहन में कुछ आ रहा है, मैं और क्लूज भी दे सकती हूँ, लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि पहले देखते हैं कि इससे कौन गैस करता है, ठीक है। तो आपके जहन में आ रहा है एक अच्छी मतलब रिच के ऊपर फोकस ना करें, रिच पे करेंगे तो फिर हाँ वो वाली बताएगी कि हो सकता है अमीरी गरीबी की बात हो रही है, नहीं नहीं मतलब एक अच्छी खाती पीती फैमिली है, केयर फ्री फैमिली है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे एक जो बेसिक थीम है जो इस मूवी की वो है मोहब्बत और दोस्ती। तो जिसके जहन में भी आंसर आ रहा है आप हमें कॉल कीजिए, और कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 4434377। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: जबरदस्त। नाम बताइए, रईस बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं?
2: नूर मोहम्मद।
0: ओके ओके जी, नूर मोहम्मद, तो हमने एक क्लू दिया हुआ है मूवी गेस करने के लिए, तो कुछ आपके जहन में आया?
2: जी मेरे हिसाब से धड़कन होना चाहिए।
0: क्या होना चाहिए? धड़कन। हाँ चलो ठीक है, मैं आखिर में आंसर बताऊंगी, ठीक है, चलो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नूर मोहम्मद आपकी कॉल का। राइट, अगर आप लोग भी कॉल करना चाहते हैं तो जल्दी से आप कॉल कर सकते हैं, मैं कुछ और भी बढ़ा देती हूँ क्लू, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि तो देखते हैं कि इसमें कौन समझ सकता है, वरना फिर थोड़ा सा और ईजी कर देंगे इसको। तो जल्दी से आप कॉल कर सकते हैं हमें 4434377 पे, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैसेज के थ्रू बताना चाहें तो मैसेज के थ्रू भी बता सकते हैं। अच्छा मोहम्मद यूसुफ खान कह रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए भाई, एक कहानी है, आप रिच ना समझें, आप समझें केयर फ्री लोगों की कहानी है, ठीक है, और उसमें जो बेसिक थीम है वो है मोहब्बत और दोस्ती। हमारे पास है कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम, रेडियो ऑफ कर दीजिएगा।
3: वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं?
3: जासिम बात कर रहा हूं।
0: जासिम क्या हाल चाल है, ठीक ठाक?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक भाई। अच्छा ये बताएं कुछ मूवी का जहन में आ रहा है, कौन सी मूवी हो सकती है?
3: मेरे ख्याल से मैंने प्यार किया।
0: मैंने प्यार किया, ये भी हो तो सकती है। बात तो सही है आपकी, तो मैं अगला क्लू दे दूं
3: दोस्ती और मोहब्बत।
0: हाँ,
3: जी
0: अगला क्लू दे देती हूँ, इसका सबसे फेमस डायलॉग है प्यार दोस्ती है।
3: प्यार दोस्ती
0: नहीं आ रहा,
3: तो बहुत सारी फिल्म्स है।
0: अभी नहीं आ रहा सेन
3: में तो नहीं।
0: अच्छा अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है, ऐसी फोर फन है ना, ठीक है मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है चलिए जी, तो आप लोगों के जहन में आ रहा है तो मैसेज भी कर सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते हैं कि अगले कॉलर हैं कौन और ये क्या कहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा हेलो,
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे
4: हैं? शेख आज़र।
0: शेख आज़र कैसे हैं, ठीक ठाक?
4: बस ठीक हूँ, आप कैसे? खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो आपके जहन में आया कि कौन सी मूवी हो सकती है?
4: वैसे तो बहुत सारे मूवीज का नाम बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक गेस करा, बट आई डोंट नो ये सही है गलत है। दोस्ती मूवी जिसमें अक्षय कुमार और बॉबी देओल है।
0: अच्छा तो, हाँ, नहीं मैंने इसका एक डायलॉग बताया ना, एक डायलॉग बताया है प्यार दोस्ती है
4: जी, हो सकता अंदाज अपना अपना भी।
0: अच्छा चलिए हम दूसरे कॉलर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आखिर का बिल्कुल टाइम रह गया जी। थैंक यू जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें भाई? हेलो, हाँ हेलो
5: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम।
5: राज,
0: राइट राज, मुझे लगता है आप गेस कर लेंगे क्या नाम है मूवी का।
5: कुछ कुछ होता है,
0: राइट बिल्कुल सही। गुड, जबरदस्त जबरदस्त भाई, मतलब काफी। अभी अगला देने वाली थी राहुल और अंजलि, लेकिन मैंने कहा ये वाला दे दिया ना तो सब पहचान देंगे।
5: बिगेस्ट क्लू वाज प्यार दोस्ती है।
0: चल

0: गुड, जबरदस्त राज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. और कुछ कहना है भाई?
1: Nothing much. About goal. Everybody has their own goal. Difficulty तो सबके life में आती है. But you have to be honest and humble to everybody, and everything will be in your way. You do good, good comes to you. You do bad, bad comes to you. That's it.
0: फैक्ट है, बिल्कुल सही. चले राज, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. और बहुत अच्छा लगा, कॉल करते रहा करें, मेरा ख्याल है इस सेगमेंट में आपकी कॉल बनती बनती है.
1: थैंक यू,
0: बाय बाय. राइट, और एक और कॉलर मैंने ले लिए थे, क्या अगर उन्होंने राज नहीं जवाब दिया तो इनसे ही बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी, क्या हाल चाल है भाई?
1: बढ़िया बढ़िया. मेरे को पहले हंसने दो ना, तुमको हंसी आ रही
0: है किस बात पे?
1: you understand
0: किस बात में? ये बताया, नहीं समझी इतनी समझदार नहीं हूँ मैं.
1: नहीं यार, माशाल्लाह आप समझदार है. बस आप जानबूझ के नहीं बोलेंगे कि अरे यार जान दो आशीष भाई, मत बोलो.
0: कसम से नहीं समझ में आया, व्हाट्सएप पे भेजे लिख के.
1: बस मैं हंसी खत्म हो गया. अभी पूछता हूँ मैं आपको, आप कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं क्या चल रहा है? ये अनु मुझे लिख के भेजे, आसिफ किस बात पे हंसी, किस बात पे आई है आपको, ठीक है? वरना मेरे दिमाग में रहेगा कल तक.
1: आपको हिंट दूंगा, दो हिंट दूंगा, मतलब दोनों हिंट ना बहुत डेंजर है और आप उसके ऊपर हंसेंगे. मेरे ख्याल से आप ऐसे होस्ट होंगे तो गाड़ी में बैठ के भी हंस रहेंगे, बोलेंगे अरे हंसी बोले बहुत. तो ये सुधरेगा नहीं.
0: नहीं, चले आप मुझे हिंट दें, मैं पहचानती हूँ और मैं कुछ मैसेजेस हैं तो वो शामिल कर लूँ, ठीक है? थैंक यू भाई, थैंक यू, ख्याल रखना. और
1: एक आपका जो संडे वाले दिन ना आपकी जो एक रिकॉर्ड होती है हजरत आदम अलैहि सलाम के ऊपर,
0: ये कोई पुराना शो चल रहा होगा.
1: जी, वो बहुत प्यारा लगता है मेरे को आपका वो.
0: अच्छा अच्छा.
1: सबसे पहले आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर बयान करे, फिर आपने अच्छा आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर बयान करे.
0: कससुल अंबिया की बात करें आप, सही सही, अंबिया वाला. सही सही, ठीक ठीक. चलें, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. और मुझे हिंट दें जरा, मैं इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेज का, ठीक है? थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. रही जी, जल्दी से मैं मैसेज शामिल कर लूँ. शाहानिया भला भाई, बहुत हंसी आ रही थी, अच्छा बहुत ओके. नूर मोहम्मद का मैसेज है. असमत आफरीदी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वीकली तो नहीं मंथली प्लान ज़रूर बनाते हैं और बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट है. हाँ, इस वीक का प्लान है निमरा अहमद के नॉवल मंगवाया है हाल में, बस वो पढ़ूंगा. ओके ग्रेट, ज़बरदस्त भाई. अमजद इकबाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, में सबको सलाम जी. हर माह की पहली जुमेरात को आपका प्रोग्राम आता है. हर माह की पहली जुमेरात को आता है, मतलब हर जुमेरात को नहीं आता, सिर्फ सिर्फ पहली जुमेरात को आता है, ये क्या बात हुई? और इसके साथ ही गुड मॉर्निंग मैडम, और ये हैव अ वंडरफुल ब्लेस्ड डे कहा है राज ने. मेरा ख्याल ये वही वाले राज थे जिन्होंने हमें कॉल की, और एक भाई का मैसेज आ गया था, उन्होंने गेस कर लिया था. कुछ कुछ होता है, आरिफ का मैसेज था ये, आरिफ का मैसेज. चले जबरदस्त आरिफ, थैंक्स अ लॉट, और आपके मैसेज का भी. इसके साथ ही ये फिल्म है कुछ कुछ होता है, ये मोहम्मद यूसुफ खान भी पहचान गए थे, सही है, थैंक यू. और प्लीज रिपीट कर दीजिएगा, क्या फिल्म मोहब्बतें पहले कहा था इन्होंने और फिर उसके बाद कुछ कुछ होता है, पहचान गए थे आप, डायलॉग इतना वो है ना उसका, हिट डायलॉग है. और इसके साथ ही हाउ आर यू अराफात अहमद यासीन, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आपने सलाम भी कहा है, गुड मॉर्निंग भी कहा है, आपको भी गुड मॉर्निंग. कैसे हाल चाल है अराफात? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे. और इसके साथ ही जी हैव अ नाइस डे. चले जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस का. और इसके साथ ही भाई निकलती हूँ मैं, इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी कल सेम टाइम. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय. आखिर में मैं छोड़े जा रही हूँ आपको इस ट्रैक के साथ, इंजॉय कीजिए.

0: या IATA ने बताया कि 2026 में एयरलाइन इंडस्ट्री का कुल मुनाफा 23 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचने का इम्कान है। IATA 370 से ज्यादा एयरलाइंस की नुमाइंदगी करता है, जो दुनिया भर की तकरीबन 85% हवाई ट्रैफिक का हिस्सा है। तुर्की के वजीर बराए तवानाई और कुदरती वसाइल एल पर्सलन बायरक्तर ने कहा कि तुर्की अपनी तवानाई की बहाली को मजबूत करने और इंपोर्टेड ऑयल और नेचुरल गैस पर इन्हिसार कम करने के लिए तेज रफ्तारी से काम कर रहा है। इतवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि तुर्की की नेचुरल गैस प्रोडक्शन 2026 तक दोगुनी और 2028 तक चार गुनी होने की तवक्का है। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वाज़े किया कि सोशल मीडिया पर कतर के हवाई इलाके के बंद होने या फ्लाइट ऑपरेशंस के हवाले से फैलने वाली इत्तलात गलत और बेबुनियाद हैं। अथॉरिटी के मुताबिक हवाई परवाजें मामूल के मुताबिक जारी हैं। सऊदी अरबिया समेत ओपेक प्लस इत्तेहाद के 7 रुकन ममालिक ने जुलाई 2026 से लागू होने वाली पैदावार में 188,000 बैरल्स रोजाना इजाफा करके तेल की पैदावार की सतह को एडजस्ट करने का फैसला किया है। और कतर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के अख्तिताम पर 30.74 पॉइंट्स या 0.30% के साथ 10,305.12 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 15,686 ट्रांजैक्शंस के नतीजों में 19 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 33 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 2 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइसेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स। आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हेडलाइंस में कतर बास्केटबॉल फेडरेशन अगले हफ्ते इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स सिक्योरिटी के ताउन से एक स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी वर्कशॉप का एहतमाम करेगी और इस वर्कशॉप का मकसद गवर्नेंस को मजबूत बनाना और मुल्क में बास्केटबॉल की इंटीग्रिटी और शफाफियत को बरकरार रखना है। कतर ने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ के जरिए साइप्रस में मुनक्किद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोर्ट्स टूरिज्म एज अ ड्राइवर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में शिरकत की। मिनिस्ट्री के वफ्द की क्यादत असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी फॉर स्पोर्ट्स अफेयर्स इंजीनियर अब्दुलरहमान अब्दुल्ला हसन अल मलकी ने की। कतर और दुनिया के मशहूर स्पोर्ट्स नेटवर्क बीन स्पोर्ट्स ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपने मुकम्मल कवरेज प्लान्स का ऐलान कर दिया है। ये मेगा इवेंट 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मुनक्किद होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत करने वाली टीमों के लिए रिकॉर्ड प्राइज मनी मुतवक्के किया गया है और टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि पहली मरतबा 104 मैचेस खेले जाएंगे। यह वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा और वासी एडिशन होगा। और इंडिया के शुभमन गिल ने क्रिकेट के अजीम कप्तानों के एक खास क्लब में जगह बना ली है। गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ वन ऑफ टेस्ट मैच के दूसरे दिन 126 रन की शानदार इनिंग्स खेली और ये उनकी इंडिया के टेस्ट कप्तान के तौर पर 6th सेंचुरी थी। इस इनिंग्स के साथ वो कप्तान के रूप में 1000 टेस्ट रन का माइलस्टोन भी पार किया गया और जो कि उनका एवरेज रहा है 82.76। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: न्यूज हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
3: वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने कल मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर बल्दियात ने बिल्डिंग्स के लिए तामीराती तकाज़ों और आर्किटेक्चरल वजाहतों से मुतालिक वजारती फैसले की बातचीतों में तरमीम का फैसला जारी कर दिया है, जिसमें रिहायशी विलाज और पैलेसेस से मुतालिक जवाबित में 20 से ज़ायद अहम तब्दीलियाँ शामिल की गई हैं। قطر سول ایویشن اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ سوشل

0: मीडिया पर कतर की फिजाई हदूद बंद किए जाने या परवाजों की आमद रफ्त मुअत्तल होने से मुतालिक गर्दिश करने वाली इत्तलाआत दुरुस्त नहीं है। और लुबनान की वजारत सेहत ने बताया है कि बैरूत के जनूबी मुजाफाती इलाके में इसराइली फिजाई हमले के नतीजे में 2 अफराद जां बहक जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा जॉर्डन के हुक्काम ने बताया है कि मुल्क की फिजाई हदूद में मुतादिद मिजाइल दाखिल हुए। उर्दू रेडियो एफ एम 107 से आज का पहला मुफसल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी माउन सारा और न्यूज स्टूडियो से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्जा, युसरा महमूद और इस्माइल खान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफ एम 107, दिल से देसी।

स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। समी किराम, हम में से बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो, लेकिन अक्सर हम समझते हैं कि सुन्नत पर अमल करना शायद बहुत मुश्किल काम है। हालांकि हकीकत ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी के हर छोटे और बड़े मामले में ऐसे आसान और ख़ूबसूरत तरीक़े सिखाए हैं जो हमारे लिए खैर और बरकत का ज़रिया हैं। आज हम एक ऐसी सुन्नत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो तकरीबन हर रोज़ कई मरतबा हमारे सामने आती है, लेकिन अक्सर हमारी तवज्जो उसकी तरफ नहीं जाती। और ये सुन्नत है पानी बैठ कर पीना। समरी के नाम, पानी अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। कुरान करीम हमें याद दिलाता है कि हर जानदार चीज़ को अल्लाह ताला ने पानी से पैदा फरमाया। इंसान दिन में कई मर्तबा पानी पीता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी कैसे पीते थे? आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम चलते चलते गाड़ी के पास खड़े खड़े दफ्तर के कॉरिडोर में या किसी काम के दौरान जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं। बाज़ औक़ात तो हमें ये भी याद नहीं रहता कि हमने पानी कैसे पिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने पीने के आदाब भी सिखाए हैं। अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं

0: संडे से थर्सडे ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी दिल से देसी
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 दिल से देसी

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamualaikum listeners, आप सुन रहे हैं कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स. मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम एक और लेजेंडरी फुटबॉलर के बारे में बात करेंगे एंड उनका नाम है मंसूर मुफ्ता. या दोस्तों, मंसूर मुफ्ता कतर के तारीखी फुटबॉलर्स में से एक हैं जिन्होंने 1970 और 1980 में अपनी शानदार गोल स्कोरिंग एबिलिटी से पूरे गल्फ रीजन में शोहरत हासिल की. वो ज़्यादातर अर्रायान क्लब के लिए खेलते रहे और क्लब हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स में शुमार किए जाते हैं. मंसूर मुफ्ता ने अपनी स्पीड, फिनिशिंग और अटैकिंग स्टाइल की वजह से फैंस के दिल जीते. उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 1986 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में देखने को मिली, जब उन्होंने कतर के लिए अहम गोल्स स्कोर किए और नेशनल टीम को एशिया में एक मजबूत टीम बनाने में मदद दी. वो कई सालों तक कतर नेशनल टीम के टॉप स्कोरर रहे और गल्फ कप टूर्नामेंट्स में भी

0: नुमाया परफॉर्मेंस देते रहे। मंसूर मुफ्ता ने कतर स्टार लीग में कई दफा टॉप स्कोरर का अवार्ड हासिल किया। उन्होंने अर्रायान क्लब को कई डोमेस्टिक टाइटल जितवाने में भी अहम किरदार अदा किया। उनकी कंसिस्टेंसी और लीडरशिप ने उन्हें कतरी फुटबॉल का आइकन बना दिया। दोस्तों, फुटबॉल से रिटायरमेंट के बाद भी मंसूर मुफ्ता कतर फुटबॉल के साथ जुड़े रहे और यंग प्लेयर्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में हिस्सा लेते रहे। आज भी उनका नाम कतर फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे अजीम तरीन खिलाड़ियों में लिया जाता है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोसिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें, ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूँ फौजी शफीक। आज हम एक ऐसी जिस्मानी सरगर्मी के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर में सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मकबूल हो चुकी है, और वो है योगा। योगा जिस्मानी हरकत, सांस की जो मशकें हैं, और जहनी यकसुई का एक ऐसा मजमूआ है जो हमारे जिस्म और जहन दोनों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है। बहुत से अफराद योगा को सिर्फ एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा तरीका है जो जिस्मानी, जहनी और जज्बाती तवाजुन पैदा करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। योगा का एक अहम फायदा जिस्म की लचक या फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाना है। बाकायदा योगा एक्सरसाइजेस से मसल्स और जॉइंट्स ज्यादा मुतहरक होते हैं और जिस्म में खिंचाव कम होता है और हरकत करना आसान हो जाता है। खास तौर पर वो अफराद जो ज्यादा वक्त ऑफिस में बैठकर गुजारते हैं या जिस्मानी अकड़ाव महसूस करते हैं, उनके लिए हल्की फुल्की योगा एक्सरसाइजेस फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहनी दबाव एक आम मसला बन चुका है। योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और तवज्जो मरकूज करने की टेक्निक्स के जरिए जहन को सुकून मिलता है। रिसर्ची से मालूम हुआ है कि बाकायदा योगा करने से तनाव, बेचैनी और जहनी थकन में कमी आ सकती है। चंद मिनट की गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज में इंसान को ज्यादा पुरसुकून और मतवाजन महसूस करा सकती है। योगा सिर्फ लचक ही नहीं बढ़ाता, बल्कि जिस्मानी तवाजुन और मसल्स की मजबूती में भी अहम किरदार अदा करता है। मुख्तलिफ पोजीशंस जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतहरक करती है, जिससे जिस्मानी कंट्रोल और इस्तेहकाम बेहतर होता है। ये फायदा खास तौर पर उम्र रसीदा अफराद के लिए अहम है, क्योंकि बेहतर तवाजुन गिरने और चोट लगने के खतरात को कम कर सकता है। योगा नींद के मायार को बेहतर बनाने, जिस्मानी थकन कम करने और रोजमर्रा की जिंदगी में तवानाई के एहसास को ज्यादा करता है। आप योगा शुरू करना चाहते हैं तो आसान जो उसकी एक्सरसाइजेस हैं वहाँ से आगाज कीजिए। अपनी जिस्मानी सलाहियत के मुताबिक एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर आपको कोई तिबी मसला है, कमर में दर्द है, जॉइंट्स की कोई बीमारी है, या फिर आप प्रेगनेंसी की हालत में हैं, तो पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा कीजिए। योगा एक ऐसी सरगर्मी है जो जिस्मानी लचक, जहनी सुकून और मजमू सेहत के फ़रोग में मदद दे सकती है। ताहम याद रखें कि अच्छी सेहत के लिए मुतवाजन ग़िज़ा, मुनासिब नींद, बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी भी इतने ही अहम हैं। सेहतमंद रहिए, मुतहरक रहिए और अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत का ख्याल रखिए।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: Hello and welcome to this new show of business and I'm your host, your dost Nazia. दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बल्कि इस शो में हम आपको बताएंगे कि कितने तरह के बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस कैसे रन करते हैं और किस टाइप के बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो एप्लीकेबल होती है। वेल, आज जिस बिजनेस की हम बात करने वाले हैं उसे हम कह सकते हैं B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। ये मॉडल वो मॉडल्स होते हैं जहाँ कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं बल्कि आप कह सकते हैं दूसरे बिजनेसेस को जो है वो सप्लाई करते हैं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जिस बिजनेस की, वो है मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई एंड हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। वेल, यहाँ पर इस मॉडल में भी इस तरह का जो बिजनेस मॉडल है उसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जो है वो पेशेंट्स को नहीं देती है बल्कि हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को सेल करती है। आपको मैं बताऊं कि इस बिजनेस के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो है मेडिकल इक्विपमेंट के इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं हेल्थ केयर डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग, वहीं हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के लिए टोटल प्रोजेक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज। वैसे ये सवाल भी बड़ा और अहम हो जाता है कि ये

0: कंपनीज जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कंपनी की, तो ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और काफ़ी रेगुलेटेड होती हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम होता है प्रोक्योरमेंट का, यानी सामान हासिल करना, और ये कंपनीज इंटरनेशनल ब्रांड्स या फिर इक्विपमेंट इम्पोर्ट करती हैं या फिर खुद मैन्युफैक्चर करती हैं। वहीं दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर इक्विपमेंट को हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स तक पहुँचाया जाता है। अक्सर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो यहाँ हाईलाइट करना मुझे ज़रूरी है, वो है इंस्टॉलेशन और इंजीनियरिंग सपोर्ट। जी हाँ, मशीन्स जो हैं वो सिर्फ बेची नहीं जाती हैं बल्कि इंस्टॉल की जाती हैं और उनकी टेक्निकल सपोर्ट भी दी जाती है, तब जाके कहीं ना कहीं जो क्लाइंट हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है मेंटेनेंस एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। कई बार रेगुलर मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विसेज भी कंपनी खुद ही प्रोवाइड करती हैं, जो इस बिजनेस का आज के दौर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स भी बन गया है कि हम ही मशीन देंगे और हम ही आपको लेटर ऑन इंस्टॉल करेंगे, हम ही टेक्निकल सपोर्ट देंगे और फिर हम ही मेंटेनेंस और जो सर्विसेज जो है वो रिपेयर से रिलेटेड वो हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इस तरह की जो कंपनीज है उनका एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, वो ये कि कंपनीज हॉस्पिटल्स के लिए कंप्लीट सेटअप भी डिजाइन करती हैं, जिसमें प्लानिंग होती है, इक्विपमेंट सिलेक्शंस होता है और कई बार एग्जीक्यूशन भी पूरी तरह से शामिल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस कंपनी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, इस कंपनी के सीईओ हमारे साथ जुड़ने वाले अब से थोड़ी देर में, तो अब हमें ये भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस तरह का बिजनेस जो है वो कतर की इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट कर रहा है। तो देखिए, ऐसी जो कंपनीज हैं वो कतर की इकोनॉमी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे अगर हम आज बात कर रहे हैं हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर सेक्टर को ये कंपनीज जो है स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मॉडर्न और एडवांस इक्विपमेंट प्रोवाइड करके हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करती हैं। वहीं पर लोकल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया जाता है, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सेल्स हैं, सपोर्ट स्टाफ, इन सबको जॉब्स मिल जाती हैं। वहीं देखा जाए तो इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ इन कंपनीज की पार्टनरशिप होती है, तो इससे क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को बूस्ट मिलता है। वहीं पर इस तरह की कंपनीज अगेन विजन 2030 को भी सपोर्ट करती है। आप जानते ही हैं कतर का नेशनल विजन 2030 और इसका फोकस है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी, और ये कंपनीज उस विजन को सपोर्ट करने में काफी हद तक मददगार साबित होती है। राइट दोस्तों, तो चलिए आज के हमारे इस टॉपिक का आगाज करते हैं और हम वेलकम कहना चाहेंगे हमारे गेस्ट को, ऑक्सीट्रॉनिक्स मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी, जो कि एक कतर मल्टी बेस्ड नेशनल कंपनी है जो कि हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और रीसेलिंग का काम करती है। इन्होंने अपने ऑपरेशन 2017 में स्टार्ट किए। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम इसी कंपनी के सीईओ मिस्टर दिलीप कुट्टी, उनसे आज यहां पर इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम हिम ऑन FM 107। हेलो एंड वेलकम ऑन FM 107। Hope you are doing good and great.
1: Good morning. Yes, we are doing great. Thank you so much.
0: Okay, so we are talking about the business that you have, like B2B business. So first and foremost, do tell us the business model and the vision of the company. And while I was reading, I've gone through that your vision speaks about improving lives through medical technology. So what does that look like in real term for the patients and healthcare providers today, especially in B2B model?
1: Yeah, okay. So actually at Oxytronic, improving lives through medical technology means making healthcare more efficient, accessible and reliable for both patients and healthcare professionals. Now how? For patients it means faster diagnosis, better treatment outcomes, improved comfort and safer procedures. For healthcare providers, it means dependable equipment, reduced downtime, proper training, and strong technical support so they can focus fully on patient care.
0: Right.
1: So our role is not just to sell equipment. We see ourselves as healthcare partners, helping hospitals and clinics deliver better standards of care through technology, service, and long-term support.
0: Nice. Very nice. A very important starting point, I can say. So this is how we like really able to understand how vision translates, you know, into real impact on the ground. Very nice. Okay, in a market with, you know, many suppliers, so what are

0: reliable partnerships that support doctors, healthcare workers, and patient care. We are grateful for the trust that healthcare community placing us, and we will continue working with integrity, innovation, and responsibility.
1: Nice, very nice. Before we conclude, what is that one advice you would like to give to all the aspiring people who wanted to, you know, start their business in this field, or they wanted to start this kind of business?
0: I would say transparency and after-sale service. These are the two very important parameters that would bring success to you.
1: Nice, and that's a very practical advice. Thank you so much for taking out this time and sharing amazing insights with us. Thank you once again. Thank you.
0: Thank you so much for inviting me. It was a pleasure talking to you.
1: Pleasure talking to you as well. Have a great day. Take care. ऑलराइट, यहाँ पर हमारे साथ जो थे वो इस कंपनी के सीईओ खुद कनेक्ट हुए मिस्टर दिलीप कुट्टी, जिनसे हमने बात की और बहुत कुछ जानने की कोशिश की. आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया कि किस तरह से मेडिकल टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को हमें समझाया, ये एहसास दिलाया कि हेल्थ केयर में इनोवेशन और ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है. तो वाकई हम आज बात करके बहुत कुछ समझे, सीखे, और एक चीज़ जो मैंने पर्टिकुलरली समझा वो ये कि बी टू बी बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स और ट्रांजेक्शन तक महदूद नहीं होते, ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट, रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे भी खड़े होते हैं. इनकी बुनियाद होती है, फाउंडेशंस होती है. जब एक कंपनी अपने क्लाइंट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ डील नहीं करती बल्कि वैल्यू क्रिएट करती है, तो वो इंडस्ट्री का लीडर बन जाते हैं. जी हाँ, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में तो इसका असर और भी ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि यहाँ हर सप्लाई, हर सर्विस या हर डिसीजन किसी ना किसी की जिंदगी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा ही है. इसीलिए सक्सेसफुल बी टू बी कंपनीज वो होती हैं जो सिर्फ बिजनेस नहीं करती बल्कि मेरे हिसाब से प्रोग्रेस, इनोवेशन और बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता बनाती हैं. जी दोस्तों, हमने और आपने जाना कि जब एक कंपनी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बेहतर टूल देती है तो इसका सीधा असर पेशेंट की जिंदगी पर पड़ता ही पड़ता है. बेहतर फैसिलिटीज मिलती हैं, बेटर डायग्नोसिस होते हैं, फास्ट ट्रीटमेंट होते हैं, और इम्प्रूव्ड केयर आउटकम्स के जरिए हम इन चीज़ों को महसूस भी करते हैं. ऐसे बिजनेसेस ज़्यादातर जो हैं वो ट्रस्ट, क्वालिटी और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर ही चलती हैं. जैसे हमारे गेस्ट ने भी बताया, हॉस्पिटल्स सिर्फ एक दफ़ा परचेज नहीं करते, कई बार मशीन सिर्फ मशीन ही नहीं है, उसके बाद उसे कैसे चलाना है, उसकी ट्रेनिंग देना, किस तरह से उसके मेंटेनेंस, रिपेयर का ख्याल करना है और फर्दर गाइडेंस, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती ही होती है. और इसी को कहते हैं प्रोजेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना. तो जैसे हमारे गेस्ट ने हमें बताया कि कंपनी जो है वो पूरे तरीके का हर तरीके से प्रोजेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग बी टू बी कंपनी वो है जो क्लाइंट के साथ कंटिन्यूसली इंगेज रहे, उनकी नीड्स को समझे, उनके साथ ग्रो करे. ये पार्टनरशिप मॉडल ही उन्हें मार्केट में सबसे ज्यादा यूनिक और अलग बनाता है. कतर, आप जानते ही हैं, कतर जैसी डेवलपिंग और रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी में हेल्थ केयर सेक्टर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये कंपनी सिस्टम को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज को लोकल लेवल पर लेकर आना, कंप्लायंस मेंटेन करना और साथ ही साथ इनोवेशन को प्रमोट करना, ये सब इन कंपनीज की जिम्मेदारी होती है. दोस्तों, आज के इस डिजिटल और फास्ट चेंजिंग दौर में कॉम्पिटिशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन रियल वैल्यू वही कंपनीज क्रिएट करती हैं जो सिर्फ सेल नहीं करती बल्कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं. फ्यूचर उन्हीं बिजनेसेस का होगा जो टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और सर्विस एक्सेलेंस को कंबाइन करेंगी. आखिर में मुझे लगता है कहना गलत नहीं होगा, ये कहना बल्कि दुरुस्त होगा कि ऐसे बी टू बी बिजनेसेस सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं बल्कि पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और इसी से एक बेटर और एक हेल्थियर सोसाइटी की फाउंडेशन रखी जाती है. तो बस हमारी कोशिश है कि आपको समझाएं कि किस तरह से कंपनीज जो है वो काम करती हैं, क्या वैल्यू वो क्रिएट कर रही हैं, किस तरह का बिजनेस मॉडल जो है वो अप्लाई कर रही हैं, उनकी खुद की सक्सेस स्टोरी क्या है. और अगर आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं भी खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, तो क्यों नहीं शुरू कर सकते. देखिए, छोटी सी सोच से शुरुआत होती है, फिर वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस पर, अपने कॉन्फिडेंस में उसे ट्रांसलेट करना होता है, उस सोच को जिसकी हम बात कर रहे हैं. पहले एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा आइडिया, फिर उसे ट्रांसलेट किया, अच्छे से समझा, उसके ऊपर पूरा अच्छे से कायदे से होमवर्क किया.

0: सोचिए, अगर आपको लगता है कि यस आपने वो बिजनेस एक्यूमेन है तो बस गो अहेड, रिसर्च कीजिए, थोड़ा होमवर्क कीजिए, थोड़ा खुद में कॉन्फिडेंस लाइए और अच्छी सी टीम अपनी जो है वो बनाइए, एंड देन द स्पेस इज ऑल योर्स. बस इसी पावरफुल और ब्यूटीफुल नोट पर मैं आपसे इजाजत लूंगी. नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए बिजनेस मॉडल को हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और खुश रहिए एंड सुनते रहिए FM 107. नाजिया और शहबाज हम दोनों को दुआ में भी याद रखिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी.

0: hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: Are you ready? Friday 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोस्तों लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें. सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए. गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा. इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें. हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है. बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें. इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है. दरवाजों को फोर्स ना करें. ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है. ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें. हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें. ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है. पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें. अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं. रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें. सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें. घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें. FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है.
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का. आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान. बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है. आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: दोस्तों, कुछ ममालिक नॉर्वे, स्वीडन और अलास्का के कुछ हिस्सों में समर के दौरान ऐसा होता है कि सूरज पूरी रात गुरूब ही नहीं होता, ढलता ही नहीं है। इसे कहते हैं मिड नाइट सन, या इसको ये कहा भी जाता है। सोचिए, रात हो और रोशनी बिल्कुल दिन जैसी हो। इसका मतलब ये होता है कि लोग मिड नाइट पर भी आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जैसे कि जॉगिंग, साइकिलिंग और फैमिली गैदरिंग वगैरह। ये सब नॉर्मल रूटीन बन जाता है इन जैसी जगहों पे। तो इसी सीजन में नेचर भी अपने पीक पर भी होती है। काफी मुल्कों में देखा जाता है भाई, तितलियां हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये माइग्रेट वगैरह करती हैं, फूल बेहतरीन अलग अलग तरीके के खिलते हैं रंग बिरंगे, और वहीं वाइल्ड लाइफ एक्टिव हो जाती है। तो भैया, समर हमें सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि नेचर के सबसे खूबसूरत रंग भी दिखाता है, और शायद इसीलिए कुछ ममालिक में इसका बेहद और बेसब्री से इंतजार भी किया जाता है। स्टूडियो की घड़ी में 11:02।
4: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातुहु, वेलकम अहलन व सहलन, खुश आमदीद एंड स्वागतम भाई आपके अपने बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोग्राम में सन एंड साउंड। बिल्कुल, जहां पर सन तो जारी और सारी होता ही है, और आपकी साउंड जो है मेरे साथ मिलकर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनती है, और बड़ा ही खूबसूरती से ये दो घंटे हमारे और आपके गुजरते हैं। तो भाई, मेरा और आपका साथ रहने वाला है सही 1 बजे तक, जहां खूब सारी बातें होंगी, खूब सारी अपडेट्स होंगी, और बहुत ही बेहतरीन एंटरटेनमेंट भी आपका इंतजार कर रहा है। करना क्या है, प्रोग्राम का हिस्सा आपने बन जाना है, और वो कैसे, उसके हैं 2 तरीके। 666-22-107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 666-22-107 पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। भाई कुछ खासम खास है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। आज बर्थडे वगैरह है, एनिवर्सरी वगैरह है, या कोई और खास दिन है, तो उसका भी जिक्र मेरे साथ जरूर कीजिए। साथ ही हमारी जो टेलीफोन लाइन है, जिससे

आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं एफएम 107 की, वो है 4434377 4434377। तो जनाब आपका अपना प्रोग्राम, और जैसा कि मैंने बताया कि खूब सारी बातचीत भी होने वाली है, खासम खास आज मुद्दा भी छेड़ने वाला हूं आप लोगों के लिए, लेकर आया हूं कुछ ऐसा डिस्कस करने का जो आपके दिल की बातें, आपके दिल का राज भी हम तक पहुंचाएगा और आप खुल के मेरे साथ बात कर सकेंगे, और वहीं फिर आगे इंशाल्लाह ताला हम एंटरटेनमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। भाई खासम खास ये कि कुछ ज़रूरी दिन भी हैं और कुछ ऐसे सेलेब्स की बर्थडेज भी हैं कि जिनका जिक्र करना तो बनता ही बनता है, और वो कौन कौन है भाई? खासम खास आज दो ऐसी कहना चाहिए फेवरेट सुपरस्टार एक्ट्रेस की बर्थडेज हैं जिनको काफ़ी सराहा गया, काफ़ी इज्जत मिली बॉलीवुड के अंदर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बाहर भी। हॉलीवुड की भी बात करें अगर, और दूसरी जगहों की भी बात करें, टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, लॉलीवुड है, काफ़ी जगहें हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसी कौन सी दो कलाकारा हैं, तो मैं बिल्कुल बताता हूं आपको, और जिनके हवाले से आज उनके फेवरेट सॉन्ग भी चलाए जाएंगे। तो भाई आज 8 जून के दिन बॉलीवुड की दो जबरदस्त और आइकनिक स्टार्स अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, और दिलकश और लेजेंडरी एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया और बहुत ही जबरदस्त दूसरी शिल्पा शेट्टी, जी हाँ आज इन दोनों का बर्थडे है। तो भाई हमारी तरफ से एफएम 107 की तरफ से इन दोनों को पुरखलूस मुबारकबाद इनकी बर्थडे पे, यौम विलादत पे, जिन्होंने अपनी अदाकारी के से काफ़ी दौर यादगार बनाए हैं और बना दिए हैं ये दोनों सितारे। अपनी टैलेंट की बात करें अगर, तो भाई ग्रेस और स्टाइल से फैंस के दिलों पर काफ़ी इन्होंने राज किया है। दोनों के बाल जुल्फे जो हैं वो काफ़ी मशहूर रही है क्योंकि इसके हवाले से काफ़ी बातचीत हुई है, तो मैं इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ। डिंपल कपाड़िया के बारे में एक मज़ेदार फैक्ट ये कि उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में राज कपूर की फिल्म बॉबी से बॉलीवुड डेब्यू किया जो सुपर हिट रही और वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। और वहीं अगर शिल्पा शेट्टी के बारे में बात करें तो उनका एक ये कि उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया, बल्कि यूके के फेमस रियलिटी शो सेलिब्रिटी बिग ब्रदर को भी जीत कर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन किया। तो भाई एक तरफ डिंपल की लेजेंडरी डेब्यू स्टोरी और दूसरी तरफ शिल्पा शेट्टी का ग्लोबल फेम, दोनों की जर्नी अपने अंदाज में बिल्कुल ही यूनिक है। हमारी तरफ से इन दोनों को ही हैप्पी बर्थडे। तो भाई अब करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। जी हाँ आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, आपकी कॉल्स भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। शुरुआत करते हैं आज के पहली ट्रैक की जानिब चलते हैं और वापस आने के बाद आज का मुद्दा भी छेड़ेंगे और सन एंड साउंड में खासम खास क्या है इसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल तो उदित और अलका दोनों एक दूसरे का साथ निभा रही हैं आपकी इस आफ्टरनून को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने में। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, आंखियां मिलाऊं कभी आंखियां चुराऊं, एफएम 107 पे सरवन मिर्जा आपके साथ। आई वाह, हाय हाय हाय, वो यादें। कौन कौन था इस गाने में, याद है आप लोगों को? मैसेजेस भेजिए 666-22-107 पे या कॉल कीजिए 4434377। सरवन मिर्जा आपके साथ, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरी विद आरजे सरवर मिर्जा।

0: हफ्ता हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: हाँ जी, वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद एंड स्वागत हम बिल्कुल इस वक्त सन एंड साउंड पे सरवर मिर्जा आपके साथ। और आइए भाई, अब करते हैं बाकायदा आगाज आज के कॉलर का और हमारे साथ कोई इस वक्त जुड़ गया है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: अहलन व सहलन सैयद खादिम हुसैन साहब, क्या बात है आज तो
4: भाई, कैसे आप?
2: शुरुआत में ही हमारे साथ वक्त निकाल लिया आपने आज, क्या बात है भाई,
4: माशाल्लाह।
2: कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसे हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: कैसा हुआ आज का दिन?
4: शुरुआत भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी आवाज की आपकी आवाज सुन के तो एनर्जी भी
2: बढ़ गई। हाय हाय हाय हाय कादिर भाई, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे?
4: बार बार, जितनी बार भी हम कोशिश करेंगे जीत हमारी होगी इंशाल्लाह।
2: मेरा भाई कैसा खादिम भाई, में पैसा ही पैसा ला के दे दो भाई कोई तो, ताकि मैं भी इस्तेमाल कर लूं। चलिए साहब, खादिम भाई की हुई आमद, तो अब आपके साथ ही आज के टॉपिक का भी आगाज कर लेते हैं। और मुझे पता है कि आप उसके ऊपर बहुत ही अच्छी टिप्पणी जो है वो दे सकते हैं। आज का सवाल ये है, हमारी फैमिलीज के मुतालिक ही है कि भैया ज्वाइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आपने ज्वाइंट फैमिली में अपना वक्त गुजारा है या फिर अकेली फैमिली के साथ, अपनी अपनी अहलिया के साथ वक्त गुजारा, या वो जो स्विच हुआ उसके हवाले से क्या कहना है? क्या ये जरूरी है? क्या जॉइंट फैमिली के साथ हमें काफी सीख मिलती हैं जो आज हमारी नई जनरेशन का दिमाग बदल रहा है, पलट रहा है? जो मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं कि वाकई ऐसा है। दादा दादी, नाना नानी, बड़े चाचा, ताई फुपियां, उन सब से मिलजुल के जो बच्चा तैयार होता है उस तरबियत से, वो एक अलग ही होती है। बट आजकल की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे नुकसानात भी सामने आ रहे हैं, या कह लीजिए इफ़ेक्ट्स, नुकसानात तो नहीं कहेंगे। तो बहरहाल ये इस पूरे मसले के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। खादिम भाई, आपका क्या कहना है?
4: सरवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ये टॉपिक बेहतरीन टॉपिक है और मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान।
2: आई नो, क्योंकि आपकी जॉइंट फैमिली है, इससे पहले आपने मुझे बताया है इस बारे में। बिल्कुल जी
4: जी, इसलिए इसकी वजह ये कि जॉइंट फैमिली है, और आपको मैं ये यहाँ तक बताऊं कि मेरी अपनी भतीजियों की शादियां हुई है और उनके जो बच्चे हैं वो भी हमारे ऐसे हैं, हमारे घर में जैसे हमारे बच्चे भतीजे भतीजियां सब रहते हैं, वो भी उसके साथ ऐसे रहते हैं जैसे बिल्कुल, यानी वो आपस में खुद रहते हैं, उनको भी ऐसे मिलाया हुआ है। एक्सपीरियंस ज्वाइंट फैमिली का मैं बताऊं कि आजकल के जमाने में, जो पुराने जमाने में होता था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन आज के जमाने में उससे बहुत अच्छा ही है। उसकी वजह मैं बताऊं आपको कि अगर एक भाई, यानी दो भाई या तीन भाई, वो अलग अलग रह रहे हैं और उनके बच्चे अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग घर में रह रहे हैं, तो वो एक भाई अगर घर से बाहर हुआ, दूसरा बाहर हुआ, हर हाल एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो वो जो बच्चे या स्कूल नहीं जा रहे हैं या कहीं बाहर ऐसे घूम रहे हैं ऐसे, तो उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होगा ऐसा। अगर ये आपस में ये बच्चे रहेंगे, तो अगर वो उनके वालिदैन नहीं है, वो भाई नहीं है, तो इधर ये बच्चे आपस में जब भी खेलते हैं, अगर ये एक भी इधर उधर, यानी गलत जगह में बैठ गया या काम नहीं कर रहे, स्कूल नहीं जा रहे, तो वो सीधा सीधा उधर शिकायत लगाने के लिए पहुंच जाता है।
2: खादिम भाई ये हाँ चलिए खैर आप अपनी बात करें तो मेरे पास एक और सवाल है इसी में ही आपके लिए।
4: जी जी
2: मतलब ये जो आपके पॉइंट्स हैं बिल्कुल वैलिड हैं, मैं इनको खुद सेकंड करता हूं, बट आजकल की जनरेशन के हवाले से जो बातचीत सामने आ रही है, मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो बच्ची जो दूसरे घर से इस फैमिली के अंदर आ रही है, सीधी सीधी बात, जो बहू हैं जो शादी करके आई हैं हमारे साथ आपके साथ, जो बाहर की फैमिली से आई हैं, उनके ऊपर फिर जो जिम्मेदारियां कहना चाहिए, शायद मेरी बात अच्छी भी ना लगे कुछ को या शायद कुछ को अच्छी लगे, कि वो वाली जिम्मेदारियां जो आजकल लेडीज कहती हैं कि भाई अननेसेसरी हैं, उसके हवाले से क्या कहना है?
4: असल में ये है कि हमारे घर में अपने
2: मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कहूंगा कि जो जुल्म होता है या दूसरी बात होती है तीसरी बात होती है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं उस तरफ लेके नहीं जा रहा हूँ टॉपिक को बिल्कुल।
4: मैं समझ गया उसमें ये होता है कि जो मैं अपने फैमिली की बात कर रहा हूँ, मैं कि हम लोगों ने एक मिसाल दिया हुआ है, मिसाल बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।
2: ओके।
4: हमारे बाबा ये दुआ मांगते थे कि जैसे मेरे बच्चे एक साथ रहते हैं, अल्लाह करे कि मेरे पोते उसके भी आने वाली नस्लें सब एक घर में और एक साथ रहे।
2: ख्वाहिश होती है भाई बुजुर्गों की, तो ख्वाहिश ही होती है, सही,
4: बहुत बड़ी ख्वाहिश रहती थी
2: बिल्कुल।
4: और रही बात ये जो बाहर से जो हमारी दूसरी ने एक भाई की शादी एक जगह में हुई, दूसरे की दूसरी जगह में, ऐसे तो वो भी जैसे हम लोग भाई आपस में एक साथ इत्तेफाक से रह रहे हैं, वो आपस में बहनों से भी बढ़कर हैं। और वो ये सोचते हैं कि ये जो बच्चे हैं, हर एक ये सोचती है कि ये बच्चे सब मेरे हैं, दूसरी बोलते नहीं ये मेरे हैं, तो इस वजह से वो जो इत्तेफाक है वो भी कायम रहता है। वो जो तू मैं अक्सर घरों में होती है वो तो बिल्कुल नहीं होती। लेकिन इसमें मैं आपको ये जो तू और मैं ये होती है ना, इसमें ज्यादा किरदार मर्दों का होता है, खवातीन का नहीं होता। अगर मर्द हजरात एक साथ रहना पसंद करते हैं तो खवातीन कभी ये नहीं बोलते अपने शौहर से या अपने वो किसी से ये नहीं कह सकती कि हम अलग रहना पसंद करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, खवातीन का कसूर नहीं होता इसमें, ये मर्द
2: नहीं, नहीं बिल्कुल कसूर होता। मगर अब वही है ना कि जैसा कि आपने अर्ज किया और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मर्द हजरात के मामला अच्छे चल रहे होते हैं तो लेडीज के भी मामला अच्छे चल रहे होते हैं, मगर जब खुदा ना खास्ता उधर अनबन हो या खुदा ना खास्ता कुछ मसला हो तो फिर मसले मसाइल बढ़ते हैं, हकीकत तो यही है।
4: तो उसमें ये होता है ना कि जो बड़ी भाभी होती है ना, जो घर की बड़ी होती है, वो माँ का या सास का साथ जो एक वो होता है ना, वो किरदार अदा कर सकती है, सही है। तो उसमें ये होता है कि मैं आप सोचते हो कि आप बार बार ये मिसाल अपना क्यों दे रहे हो, मैंने खुद आगे भी देखा हुआ है।
2: मैं बात हम करते ही इसीलिए हैं कि हम आपकी अपनी एक दूसरे की बात डिस्कस कर सकें और कुछ इंशाल्लाह ताला सीख सकें, समझ सकें, तो बिल्कुल प्लीज गो अहेड।
4: और ये बात बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और ये मैं एक एजाज समझता हूँ कि मैं FM 107 के थ्रू अपनी जो बात है वो शेयर करूँ दूसरों को, हो सकता है कल दूसरी फैमिली को भी फायदा हो।
2: मोस्ट वेलकम।
4: आप ये यकीन करें सरवर भाई के हमारे घर में, अगर ये हर घर में ऐसे होते हैं, अगर आपस में हमारे दो भाभियों का या जो भी हो ऐसे तू मैं हुई तो भी बड़ी भाभी जो है उसने ये किरदार अदा किया हुआ है कि नहीं वो भाई है तो हम भी इधर अपनी बहनों के साथ रहेंगे, अपनी बहनों की तरह रहेंगे, सही है। तो अगर वो भाई एक साथ रह सकते हैं तो हमें क्या तकलीफ है,
2: सही,
4: हमारे बच्चों को क्या तकलीफ है। तो ये एक वो एक मिसाल बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पूरे फैमिली में कोई भी ज्वाइंट फैमिली नहीं है सिर्फ सिवाय हमारे घर के, हम भाई सब अल्हम्दुलिल्लाह घर में। बच्चे ऐसे हैं कि बाहर से कोई आए तो उसको पता ही नहीं चलता कि ये बच्चे ये कजन है या भाई है, ऐसे नहीं, वो सब बोलते हैं हम भाई हैं। तो वो जो या पूती का खाला का जो भी बेटा आता है वो भी उसको भी वही बनाए हुए कि बिल्कुल ये हमारा
2: सही
4: है, भाई की तरह है बस।
2: सही।
4: बहरहाल बहुत शुक्रिया
2: अहलन व सहलन, बहुत अच्छी बात हमेशा की तरह, और बस यही दुआ है कि भाई अल्लाह ताला आपकी हम सब की फैमिली को हिफ्ज़ अमान में रखे, मोहब्बतें कायम रहें आपस में, मोहब्बतें कायम रहें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
4: आई मीन लेकिन ज्वाइंट फैमिली में आजकल फायदा ये है कि तालीम, बच्चे तालीम बहुत अच्छा हासिल करते हैं, इसलिए कि अगर एक बच्चा काम कर रहे और दूसरा नहीं कर रहा तो वो जो कर रहे वो शिकायत लगाते हैं उधर आगे वो बात पहुंचाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये
2: एक पहलू ये भी
4: बहुत अच्छी बात है,
2: क्या बात है।
4: और शिकायत की मतलब ये है कि वो उधर आगे खबर पहुंचाता है कि भाई वो बंदा काम नहीं कर रहा या वो ऐसे मोबाइल देख रहे या टीवी देख रहे जो भी, है, लेकिन ये चीज

0: चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बच्चों को बहुत दूर रखा हुआ है. टीवी देखने का टाइम है, थोड़ा टाइम दे दो, बात उसके बाद खत्म हो गई. सोने का टाइम बराबर है और ये, लेकिन बुक्स ज्यादा पढ़ने हैं. बुक्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम निकालना, और ये भी नहीं कि कोर्स की किताबें पढ़ो, आउट ऑफ कोर्स किताबें भी पढ़ो, वो भी बहुत जरूरी है. चाहे कोई किताब हो वो कोर्स से रिलेटेड ना हो तो भी वो पढ़ सकते हैं. ये हम, लेकिन ज्वाइंट फैमिली सबसे अच्छी फैमिली है, सबसे बेहतरीन, और आजकल के जमाने में सबसे अच्छी है. बहुत शुक्रिया
1: भाई. अहलन व सहलन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अल्लाह हाफिज खादिम भाई. तो भैया इस वक्त सन एंड साउंड के चलते सन तो अपनी जगह, आपकी साउंड जो है एफएम 107 पे बात कर रही है. और आज का इस प्रोग्राम का जो मुद्दा है वो उठाया हुआ है हमने, ज्वाइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली की लाइफ. आप कौन से हिस्से में आते हैं मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए नंबर आपको पता है 4434377, और मैसेज भेजने के लिए नंबर है 666-22107. और फिलहाल के लिए है, क्या बात है भाई. तो भैया आज खासम खास दो बड़ी सेलिब्रिटीज एक्ट्रेस का बर्थडे, जिसमें शिल्पा शेट्टी और डिंपल कपाड़िया, तो यहां आपके लिए बैक टू बैक गाने उनके हवाले से. एंजॉय कीजिए चुरा के दिल मेरा, शिल्पा शेट्टी का बेहतरीन सॉन्ग.
2: चुरा के दिल मेरा गोरिया चली
1: आई, वाह दिल से दे

0: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: बढ़ भी सकता है और बढ़ेगा ही, जाहिर बात है। अभी सूरज चाचू जो हैं वो और ज़्यादा जोर पकड़ने वाले हैं। हवाएं चल रही हैं आज पूरे कतर में, मौसम गर्म और ज़्यादातर साफ रहने वाला है। दोहा में जितना जो टेम्परेचर बताया गया है अभी तक का इन रिटेन, वो 43 डिग्री बताया गया है। लोग अपने अपने टेम्परेचर लेकर आते हैं, बताते हैं, शेयर भी करते हैं। अभी मुझे मैसेज भी आना शुरू हो जाएंगे, जरूर भाई क्या बात कर रहे हो, 43 ये देखो, 47 ये देखो, 48। तो भैया फ़र्क ये पड़ता है कि जब गाड़ी खड़ी होती है धूप के नीचे तो जो मीटर है, जो टेम्परेचर गॉज है, वो ज्यादा दिखाएगा ही दिखाएगा यार। एक ये है कि आप किसी शेल्टर के नीचे खड़े हैं, छाई के नीचे खड़े हैं, एक ये है कि आप कूलर के सामने खड़े हैं, एक ये है आप एसी के सामने खड़े हैं, एक ये है कि आप बिल्कुल सन के नीचे खड़े हैं। तो भैया वो उस हिसाब से तो टेम्परेचर बदलता ही है ना चीज़ों का भी। तो फिलहाल लिखित में यही टेम्परेचर है और रात के वक्त में बताया गया है कि 32 डिग्री के करीब रहने के इम्कान है। आसमान पूरे दिन आज साफ रहने वाला है, कोई अभी तक गर्दोगुबार या धुंध वगैरह का मामला सामने नहीं आया है। हवाएं जो हैं वो शमाल मगरिब की सिम से चल रही हैं और तेज़ महसूस हो रही हैं, थोड़ी तेज़ और ज़्यादा हो सकती हैं। बारिश के तो कोई इम्कान ही नहीं है, मैं देख रहा हूँ, बता देना ज़रूरी भैया, फुल वेदर अपडेट है। तो दोपहर के औकात में ख़ासतौर पर 11 बजे से 4 बजे तक गर्मी शिद्दत में होती है, ज़्यादा रहती है। तो अगर आप बाहर काम कर रहे हैं या सफ़र पर हैं या किसी ज़रूरी वजूहात से बाहर निकल रहे हैं तो धूप से ज़रूर बचिए और सारे एहतमाम करके निकलिए घर से। पानी वगैरह, छतरी, चादर, जो भी है आप ओढ़ ढक के निकलना चाहती हैं तो बहुत ज़्यादा आराम से। और इसके अंदर मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि भाई बच्चे जिस वक्त वापस आते हैं, बच्चे जिस वक्त जाते हैं, यही वो टाइम होता है कि इनको गर्मी, लू, एक्सपोजर का सामना होता है। मतलब एकदम बस जो है वो ठंडी ठंडी है एसी से, अब ये एकदम बाहर निकलते हैं घर आने के लिए तो उसी वक्त ये उसका शिकार होते हैं। तो इनको ये समझाइए, ये तरबियत दीजिए कि भाई गाड़ी से निकलते वक्त, चाहे वो घर की गाड़ी हो, स्कूल की बस हो या कोई भी हो, उसमें भैया पानी पिया करो और फिर बाहर निकला करो। ऐसे ही जब घर से बाहर निकलते हो तो पानी पी के निकला करो और बल्कि पानी साथ ही ले जाया करो। स्कूल से आते वक्त, जाते वक्त उनके पास तो पानी होता ही है। तो ये खासम खास बात तो उनको जरूर याद दिलाते रहिए। तो भाई कतर में आज धूप और गर्मी का राज रहेगा। दोहा में टेम्परेचर जैसे मैंने बताया 43 डिग्री तक रहने वाला है, जाने वाला है। जाहिर है आप लोग अलग अलग तरीके से इसको महसूस भी करेंगे। वहीं हवाएं जो हैं हजमे मामूल के मुताबिक चलेंगी और जैसे कि मैंने बताया कि भाई बाहर निकलते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है।
1: बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम, कंबल लेके निकला
0: करिए। ले भाई आज तो रमेश बाबू ने पहले ही धप्पा मार दिया मुझे, मैं दरवाजे के पीछे खड़ा था, धप्पा बोलने भी नहीं दिया, अहलन व सहलन भी नहीं करने दिया। क्या हालचाल है रमेश भाई, वेलकम कहेंगे आपको आज मंडे मॉर्निंग, कैसी गुजर रही है आपकी?
1: सुपर सर, बहुत अच्छा,
0: सुपर से भी ऊपर,
1: ऊपर सर,
0: कोई नई ताजे, कोई खास गर्मी तो है ही है यार, जाहिर बात
1: गर्मी तो बहुत तगड़ी है,
0: गर्मी इतनी है कि बस गर्मी है मगर नरमी रखिए। मैं तो ये कहूंगा बाहर, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि भाई जब गर्मी होती है तो जरा टेम्परेचर दिमाग का भी बढ़ जाता है, तो गुस्से पे और गर्मा गर्माई पे कंट्रोल, रमेश कंट्रोल, वो वाला डायलॉग आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, तो सभी इस बात का एहतियात करें भाई बहुत ज्यादा। तो रमेश बाबू ये बताइए कि आप कौन सी फैमिली का हिस्सा हैं, ज्वाइंट फैमिली का या फिर न्यूक्लियर फैमिली अब आपने अपनी बनाई हुई है?
1: नहीं सर, ज्वाइंट तो मेरे ख्याल से 91-92 में ही हम लोग, हमारे पिताजी 4 भाई थे
0: यार। पिताजी के हवाले से बता दिया करो, ये मत बताया करो 91-92 में हम थे, ये मत पब्लिक कंफ्यूज कर जाएगी।
1: मतलब वो वहां से सबसे 91-92 से मतलब हम लोग बिल्कुल सेपरेट हो गए।
0: अच्छा ओके, तो पहले आप उसका हिस्सा रहे, आपने वो दिन देखे, वो तरबियत हासिल करी, वो घर वालों के बीच में रहे, ओके। और अब जैसा कि हम सभी के साथ है यूजुअली, मैं भी इसी का हिस्सा हूँ, मैं भी ज्वाइंट फैमिली से आता हूँ, मगर अब जाहिर बात है क्योंकि यहाँ पे जिंदगी गुजारनी है और अब घर वाले यहाँ नहीं रहे तो वो चीजें तब्दील होती रहती हैं। तो कोई ऐसी सीख, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मशवरा, कोई ऐसी राय आपकी जानिब से हमारी तरफ आए।

0: मेरे हिसाब से सर जैसे हम जब एक में जब हम लोग थे जब पहले
1: okay.
0: तो हमारी काफी लंबी फैमिली थी, करीब 70-80 लोग थे पूरे।
1: माशाल्लाह कितने
0: जी
1: 70-80। राजपाल यादव याद आ गया कि इसको घर को जिला घोषित कर दो भैया।
0: ये काफी काम ही हम लोग बसे थे पूरे हमारे
1: भैया, उस घर को जिला घोषित कर दो। अब वो घर कहाँ रह गया?
0: जिला ही घोषित था सर, तो लेकिन यही चीज था सर ना।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: हमारे बड़े भैया थे वो अपने मतलब फैमिली को लेके दिल्ली रहते थे, कोई कहीं रहता था कोई कहीं रहता था इस तरह से। लेकिन जब सब एक साथ आते थे तो खाना एक ही जगह
1: दस्तरखान पे और 15-20 लोग एटलीस्ट हमारे तो 15-20 लोग हो जाया करते थे, तो उसमें ये पता नहीं चलता था कि अपनी प्लेट कैसे साफ करी और दूसरे की प्लेट। मुझे बड़ा फायदा होता था उसके अंदर, और जिसको जिसको जो खाना नहीं होता था ना वो भी मेरे हिस्से में आता था। क्या भैया हो गया? हाँ इधर सर्वर को दे दो ये खा लेगा। मैंने कहा मैं क्या डस्टबिन हूँ।
0: उस समय सर जो पुरानी जो पुराने लोग थे, खैर उसमें से कुछ लोग तो भाई अल्लाह को प्यारे हो गए,
1: अल्लाह ताला रहम करने वाले,
0: तो बस। लेकिन हमारे घर में जहाँ तक चलता था सर, या शायद आपको याद होगा जो गेहूं पीसा जाता था, औरतें दो जोड़ी थी, तो दो औरतें एक तरफ, दो औरतें एक तरफ, तो वो डेली मतलब ऐसा नहीं कि एक आज पीस लिए तो कल के, नहीं डेली पीसा जाता था, डेली बनाया जाता
1: ताजा
0: था।
1: ताजा हाजा तेल ताजा
0: ये था।
1: यही तो मैं कहता हूँ कि हर ताजी चीजें भाई, उसी वक्त जानवर भी कुर्बान हो रहा है, उसी वक्त पक रहा है, वही सब्जियां निकाली जा रही हैं, वही ताजी ताजी बनाई जा रही हैं।
0: और अभी तो सर अभी तो जान लीजिए कि ऐसी ऐसी मशीनरी आ गई है कि औरतों के हाथ में कालिक नहीं लगती है।
1: अब तो
0: हम ऐसा सिस्टम आ गया,
1: अब तो हम खुद बासी हो गए रमेश बाबू।
0: बट लेकिन मेहनत करना चाहिए,
1: मेहनत
0: औरतों के लिए तो कंपलसरी है, जरूर उनको थोड़ा सा
1: मतलब जो हाउस वाइफ हैं, जो वर्किंग में नहीं है, आप उनके लिए कह रहे हैं, जाहिर बात है जो वर्किंग में हैं तो वो तो माशाल्लाह हम लोगों से ज्यादा ही अपना काम अंजाम दे रही हैं, और
0: वो जरूर थोड़ा सा हार्ड वर्क जरूर करना चाहिए उनको, ताकि शरीर बाद में चलकर उनके लिए दिक्कत ना हो।
1: इसके पीछे की वजह भी यह है कि भाई जो शरीर है वो काम करता रहे और ऐसी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या बात है भाई।
0: अभी तो देख लीजिए सर ना, अभी तो डिलीवरी वगैरह देखिए डिलीवरी नहीं होता है, ये आप जानते हैं ना, हर जगह ये सिस्टम चल गया। लेकिन पहले जो था, आज से 20-25 साल पहले जो थी, वो उनके घर में ही डिलीवरी होती थी, ना कोई डॉक्टर, ना बैड, ना दवाई, ना कुछ नहीं।
1: सही बात, सही बात है,
0: क्योंकि वो औरतें जो है मेहनत करती थी, काम करती थी, हर चीज को जलाना, हर चीज मतलब याला सूल करते करते रहना। अभी क्या है, एसी में बैठना, हर चीज सब कुछ फैसिलिटी दे देना, तो ये सब चीज।
1: चलिए भाई, ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बात पता चली रमेश भाई से। तो क्या कहते हैं, 3 का दम लगा दिया जाए क्या?
0: बिल्कुल सर,
1: रमेश बाबू। चलिए भाई, तो रेडी हैं
0: जी?
1: ओके, सवाल वही हैं जिनके अभी तक मुझे जवाब नहीं आए हैं, और कुछ लोगों को अगर मिल गए हैं तो वो जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट देन, रमेश भाई
0: ट्राई करते हैं।
1: किताब पढ़ते हैं या खाते हैं?
0: जी ऑफिशियली पढ़ते हैं सर।
1: पंखा हवा देता है या पानी देता है?
0: बिल्कुल सर, हवा ही देता है।
1: हवाई ही देता है। वो कौन सी चीज है जो लगती तो हरी है, निकलती लाल है?
0: लगती हरी है, निकलती लाल है।
1: हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं हरी लग रही है।
0: नाम तो नहीं है हरी लाल?
1: नहीं यार, इतना भी नहीं फंसाऊंगा यार मैं। अरे हरी लाल, मुझे तो शोले के ठाकुर याद आ गए, आपने कहा रामलाल। अब बताओ यार,
0: हरी लाल,
1: हरी लाल। रमेश भाई सोचो सोचो। चलिए सोचिए और मुझे जवाब जरूर दिएगा, ठीक है? हाँ व्हाट्सएप पे, मगर ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं चेक करेगा कोई भी, ये सभी को मैं कह रहा हूँ। नहीं, आपके अलावा सबसे कह रहा हूँ कि भैया कोई भी एआई का सहारा नहीं रहेगा, अपना जो जहन है उसको मेरे साथ दौड़ाइए और फिर जवाब दीजिए। रमेश भाई
0: तो मजा है।

0: बहुत शुक्रिया,
1: सुना दीजिए।
0: अभी सुना रहा हूँ, देखिए आपका फोन रखते ही आप सुनेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। तो भैया आसिफ भाई हमारे साथ, और एक जरूरी ब्रेक यहाँ पर, मैं यूं गया और यूं वापस आया।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: 12:04 और 12 बजने के बाद तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
3: हाँ जी, वेलकम बैक। बिल्कुल भाई, यहाँ पर सन एंड साउंड का सफर आप लोगों के साथ जारी है और यहाँ पर एक चैंपियन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो खेलना चाहते हैं तीन का दम। आइए देखते हैं कि इनमें कितना है दम। हेलो, सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा करीब आ जाइए।
4: बिल्कुल पूरा करीब। आवाज
3: नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है मगर मजेदार आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा मजा नहीं ला रही है। शायद हेडफोन से या ब्लूटूथ से बात कर रहे हैं। ओके, चेक चेक, माइक चेक, साउंड चेक।
4: जी जनाब, हमारी आवाज।
3: हेलेन, कौन है हमारे साथ, अब ये तो बताइए।
4: शोएब।
3: शोएब भाई, हाँ अब आ रही ना आवाज। आवाज के साथ साथ कैसे हैं शोएब भाई? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शोएब भाई, आज का मुद्दा ये है कि जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली किसका हिस्सा रहे हैं आप अकेले?
4: मैंने आपको पहले भी बताया था आई थिंक एक बार कि मैं जॉइंट फैमिली से ताल्लुक करता हूँ, क्योंकि मेरी जो मतलब परवरिश हुई है वो मेरे नाना नानी के घर पर हुई है ननिहाल में।
3: ओके।
4: और उनके तकरीबन 50-60 वोट थे उस टाइम पे, यानी कि अराउंड 2005-2006।
3: मतलब 50 लोग घर में रह रहे थे उस टाइम पे,
4: मतलब बच्चों को छोड़ के।
3: अच्छा, बच्चों को मिला लें तो फिर वही पहुंच गए 70-75।
4: हाँ जी।
3: क्या बात है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब जब आप फिर काम वगैरह के लिए निकले तो फिर उन लोग को छोड़ना पड़ा, ऐसे ही हुआ?
4: नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। दरअसल पहले हम लोगों की एक बहुत मतलब नाना की एक बहुत बड़ी एक हवेली थी, उसका एक बहुत बड़ा दरवाजा जैसा दिखाते हैं ना फिल्मों में,
3: जी, जी,
4: एक किसी गेट होता है लकड़ी का,
3: जी,
4: इस तरह की फैमिली थी। अंदर घर थे, सब अपना खुश थे, सबकी शादी
3: होती। कहां से ताल्लुक है शोएब भाई आपका?
4: ताल्लुक मेरा बिजनौर से है वैसे तो, लेकिन पैदाइश मेरी दिल्ली से है।
3: ओके ओके ओके ओके। तो ये जो घर है, खानदानी घर, ये तो बिजनौर में ही होगा ऑब्वियसली?
4: जी बिल्कुल है, अभी भी है, लेकिन अभी सब लोग ज्यादातर मोस्टली 99% सब दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं। है लेकिन बहुत कम है, जमीन है, अपना जाते हैं लोग।
3: तो एक कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हो इस मुद्दे के हवाले से?
4: बहुत सारे मैसेज हैं।
3: एक जो सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी लगता हूं।
4: एक सबसे अच्छा मैं उदाहरण एग्जांपल बता देता हूं। हमने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारी लकड़ियां, मतलब बंदा देता है कि एक लकड़ी तोड़ो टूट गई, दूसरी तोड़ो टूट गई, तीसरी तोड़ो टूट गई, लेकिन जब वो इकट्ठी बहुत सारी देता है तो टूटती नहीं है।
3: वाह।

0: वाह वाह वाह क्या बात है।
1: छोटी सी चीज है, अभी सब लोग अलग अलग है तो कोई भी मतलब ये कि आसानी से टूट जाते हैं, अगर साथ
0: अच्छा
1: होते तो फिर हाँ कोई तोड़ ही नहीं पाता।
0: All right then, तो चलिए शिव भाई तीन का दम खेलने के लिए रेडी?
1: चलो इंशाल्लाह खेलते हैं।
0: चलिए साहब खेल लेते हैं और कहाँ गया, ओके फाइन। घड़ी वक्त बताती है खाना पकाती है?
1: घड़ी तो वक्त ही बताती है।
0: वक्त ही बताती है। कतर की करेंसी का नाम क्या है? कतर की करेंसी का नाम क्या है?
1: कतरी रियाल।
0: कतरी रियाल। वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ में कभी नहीं दे सकते?
1: वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ में नहीं दे सकता?
0: हाँ या ना में नहीं दे सकते?
1: मैं हूँ कर दूंगा।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तो चलिए हूँ भी कैसे करेंगे, आप बताइए वो ऐसी कंडीशन क्या है, ऐसी कौन सी जगह पे हैं आप, ऐसी कौन सी फॉर्म में? अब तो इतनी हिंट दे दी मैंने,
1: थोड़ा सा बाउंस जा रहा है।
0: हाँ थोड़ा सा
1: नहीं, सच
0: वो कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते?
1: कौन सा नहीं दे सकते?
0: सोचिए सोचिए,
1: पास कर देते हैं इसको दिमाग में मतलब इधर उधर घूम रहा है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो मिल जाएगा आंसर।
0: हाँ ओके,
1: थोड़ी देर सोचना पड़ेगा।
0: चलिए तो अब सोचिए और मुझे फिर मैसेज में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है?
1: इंशाल्लाह।
0: ओके शुएब भाई, थैंक यू सो मच तशरीफ लाने के लिए, अपना ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ एक नए सवाल के साथ, ठीक है?
1: इंशाल्लाह,
0: अल्लाह हाफिज। तो भैया ये थे हमारे शुएब भाई हमारे साथ, और क्या कहते हैं अब एक गाना और जरूरी गाना भी, क्योंकि भाई जैसा कि आज मैंने अर्ज किया था शुरू शुरू में ही कि आज दो दो स्पेशल बर्थडेज हैं हमारी सेलिब्रिटीज के, उनमें से एक तो शिल्पा शेट्टी और दूसरी हैं डिंपल कपाड़िया, दोनों ही अपनी जुल्फों से काफी मशहूर रही हैं आज तक भी। आइए शिल्पा का तो गाना हमने सुना, अब डिंपल के साथ भी एक गाना एंजॉय करते हैं, तेरा नाम लिया। क्यों क्यों क्यों मनहर उदास और अनुराधा पोडवाल, मनहर उदास मालूम है कौन है? पंकज उदास के भाई हैं भाई, ये भी कम लोगों को पता है। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक दिल से।

0: लिया साहब तेरा नाम लिया क्या बात है भाई जैकी दादा और डिंपल की बड़ी अच्छी जोड़ी और उतनी अच्छी ये मूवी भी ये टाइम ऐसा था जब फिल्में यादगार बनती थी अपनों से मिलाई जाती थी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन जाती थी तो उसमें से एक ये बेहतरीन सॉन्ग भी इंजॉय कीजिए आपने
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
0: तो भाई इसी के साथ साथ अब वक्त हो गया है कि आप लोगों के मैसेजेस शामिल कर लिए जाएं वरना डांट पड़ जाएगी मुझे इस बात पे भी कि सर भाई तुमने हमारे मैसेजेस नहीं पढ़े हमने तो भेजे थे तो आइए आ जाते हैं मैसेजेस की जानिब और कहां से शुरू करना है किस्सा और कहां तमाम करूं शहजादा सलीम साहब हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हम हैं आपके साथ एफएम 107 वालेकुम अस्सलाम खादिम भाई हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम सर भाई सॉन्ग्स तो मेरे पसंद के हैं क्या बात है खादिम भाई की भी और यहां पर यूसुफ भाई भी आ गए हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु सरवर भाई को गुड मॉर्निंग मॉर्निंग में भेजा था मैंने पढ़ रहा हूँ तो इसलिए गुड मॉर्निंग लिखा है तो यूसुफ भाई अपनी जगह सही देखिए कितनी अच्छी सफाई देता हूँ मैं तो कहते हैं सरवर भाई कैसे हैं आप होप वेल वेलकम टू साउंड सन एंड साउंड सभी को मंडे मॉर्निंग विश करते हैं कहते हैं आज की शायरी आइए अगरचे तुझसे बहुत इख्तिलाफ भी ना हुआ मगर ये दिल तेरी जानिब से साफ भी ना हुआ होए होए होए अजीब नहीं है कि दिल पर जमी मिली काई बहुत दिनों से ये हौज साफ भी ना हुआ ताल्लुकात के बरजख में ही रखा मुझको वो मेरे हक में ना था और खिलाफ भी ना हुआ अजब था जुर्म मोहब्बत का जिस पे दिल ने मेरे सजा भी पाई नहीं और माफ भी ना हुआ आए, आए, आए, आए। क्या कहने भाई क्या कहने और ओके शुरू में जो गाना चलाया था मैंने राजा का उसका भी बता रहे हैं यूसुफ भाई बॉलीवुड में अच्छा हाथ रखते हैं माधुरी और संजय कपूर थे उस गाने में कहते हैं सर और भाई आजकल तो जॉइंट फैमिली आला ट्रेंड पूरी वाला होगा ये वाला ट्रेंड पूरी तरह ख़त्म हो गया है हम लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 भाई हैं सभी मिलके माशाल्लाह माशाल्लाह यार अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे आप लोगों के दरमियान और ज़्यादा मोहब्बत कायम करे यही दुआ यही ख्वाहिश भी आइए एक चैंपियन पहले इनके साथ जुड़ते हैं फिर मैसेजेस का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमारे साथ मुदस्सर भाई हैं
2: जी
0: हेलो सरन कैसे हैं मुदस्सर भाई खैरियत से हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो मुदस्सर भाई पहले तो जल्दी से आज के मुद्दे के हवाले से अगर कुछ कहना चाहते हैं जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर
2: जॉइंट फैमिली में बस दो बातें जो पहले से जॉइंट फैमिली में रहता है ना
0: जी
2: जब उसका जॉइंट फैमिली खत्म हो जाएगा फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो पहले से जॉइंट फैमिली में नहीं रहते वो तो जॉइंट फैमिली पसंद नहीं करता है हम लोग तो जॉइंट फैमिली में रहता है तो जॉइंट फैमिली का जो आदत होगा उसका जॉइंट फैमिली में अच्छा लगता है जिसका जॉइंट फैमिली नहीं होता है उसको जॉइंट फैमिली अच्छा नहीं लगती है हाँ तो बस ज्यादा बात नहीं लंबा नहीं करेंगे
0: ओके देन चलिए भाई अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी बात अल्लाह ताला सबको अपने जुबान में रखें तो चलिए भाई अब 3 का दम खेल लें आपके साथ मुदस्सर भाई
2: जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह

0: चलिए साहब, ओके ओके ओके ओके। मच्छर छोटा होता है या हाथी?
1: मच्छर।
0: ओके, कंप्यूटर से टाइपिंग होती है या तैराकी?
1: जी समझ नहीं आया, फिर बोलो।
0: कंप्यूटर से टाइपिंग करते हैं या तैराकी?
1: टाइपिंग।
0: टाइपिंग, ओके। अगर कल के बाद परसों आता है तो आज से दो दिन बाद क्या होगा?
1: कल के बाद परसों आता है
0: जी,
1: फिर क्या बोला?
0: तो आज से दो दिन बाद क्या होगा?
1: वही परसों होगा ना।
0: वेरी गुड। चलो भाई, किसी ने तो सही जवाब दिया। अब दूसरे कहेंगे बहुत आसान पूछ लिया मुदस्सिर भाई से, तो आप लोग भी तशरीफ लाइए, आसान आपके लिए भी सवाल पूछा जाएगा। बट वेरी गुड हो गया। जी सर,
1: इधर लोग आते हैं ना, ये जो टेंशन होता है, ये होते होते औलाद के साथ बात करते हैं, सब कुछ हम भूल जाता है, हम तो भूल जाते हैं, दूसरों का तो पता नहीं है।
0: मैं एक बार और कहें, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, माजरत के साथ मुदस्सिर भाई, एक बार और अर्ज कीजिए।
1: उधर जो का आदमी पे टेंशन ज्यादा होता है ना, काम का उठना, ये काम करना, लेट ना हो जाए, जल्दी पहुंचो ना, हम आपके साथ बात करते हैं ना, हमारा पूरा टेंशन खत्म हो जाता है।
0: अरे मेरा भाई मुदस्सिर भाई, कैसा आप पे पैसा ही पैसा, क्या बात है भाई। मुदस्सिर भाई यकीन जानिए, ये बात तो हमारी तरफ से ज्यादा है कि आप लोग जब तशरीफ लाते हैं तो बातचीत करके हमारा भी जो टेंशन है वो आधा हो जाता है। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतियाब रखे, खुश व खुर्रम रखे, और इसी तरीके से हमारा आपका सिलसिला साथ खैरियत के, सेहत तंदरुस्ती के साथ चलता रहे, यही दुआ है। हमारा कतर भी तरक्की करता रहे और इसी तरह हमारा और आपका सिलसिला जो है जारी रहे एफ एम 107 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, बड़ी अच्छी बात कहने के लिए। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। अहलन व सहलन। तो भाई ये थे मुदस्सिर भाई, और बड़ी ही प्यारी दुआएं और बात भी करी इन्होंने। आइए दूसरे चैंपियन कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: हाँ जी, कौन है?
2: जी मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ।
0: मोहम्मद, पूरा नाम क्या लिखते हैं मोहम्मद भाई?
2: मोहम्मद पूरा नाम है।
0: मोहम्मद पूरा नाम है, ओके, माय बैड। तो मोहम्मद भाई खैरियत से हैं, और कैसा रहा आज का दिन आपका?
2: बहुत गर्मी वाला है।
0: बहुत गर्मी वाला हो, तो अभी भी आप कहीं बाहर ही हैं या अब अपने मकाम पे पहुंच गए?
2: बिल्कुल, गाड़ी
0: खड़ी
2: किया
0: हूँ। तो तीन का दम खेलेंगे हमारे साथ मोहम्मद भाई?
2: आज का आपका टॉपिक जो था वो क्या था?
0: टॉपिक पे बिल्कुल बात कर सकते हैं आप, और आज का हमारा टॉपिक ये है या रहा कि भाई जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, आप किसका हिस्सा हैं और इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं?
2: बहुत अच्छा टॉपिक था, मैं थोड़ा सा सुना था असल में।
0: अच्छा, तो बिल्कुल आप अपना अपनी राय, अपना मशवरा, और हमें अपनी तरफ से जो बताना चाहते हैं बता सकते हैं इसके ऊपर।
2: मैं तो जॉइंट फैमिली का ही हिस्सा हूँ।
0: हाँ, ओके।
2: और इसमें ये है कि जॉइंट फैमिली समझिए कि एक रबड़ की तरह होती है, वो उतनी ही देर तक खींचना चाहिए जहाँ तक खींचे, और जब टूटने लगे ना
0: इतना स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि बड़ी प्यारी बात मोहम्मद भाई, पहले तो आपकी, कि ये किसी भी रिश्ते पे अप्लाई होती है, ये जो आपने बात बताई है ये हर रिश्ते में अप्लाई होती है कि भाई इतना स्ट्रेच या इतना स्ट्रेस ना दिया जाए कि वो जो रबर बैंड है वो टूट जाए। क्या बात है भाई, बहुत ही
2: सही है,
0: क्या कहने।
2: और अगर इसको दूसरे लफ्जों में समझा जाए ना
0: जी,
2: फिर सबसे बेहतर वही होता है, भले से लोग इसको नहीं करें, मगर ये कि जब तक एक जनरेशन होती है तब तक तो सब सही चलता है, लेकिन जब सेकंड जनरेशन आ जाती है, मतलब भाई लोगों में तो सही चलता है, मगर जब सेकंड भतीजों का जनरेशन शुरू होता है ना, फिर वही रबड़ खींचना बंद हो जाती है, फिर गिरा लग जाता है।
0: ओ हो, गहरी बात, बहुत बढ़िया साहब मोहम्मद भाई। तो आइए अब गेम की तरफ चलते। जी,
2: जब तक मोहब्बत रहे तब तक चलाना चाहिए।
0: जब तक मोहब्बत रहे
2: तब तक चलना चाहिए, और जब मोहब्बत खत्म होने लगे तो अलग
0: तो निकलना चाहिए। ऐसे ही है, जब तक मोहब्बत रहे चलना चाहिए, और जब मोहब्बत खत्म होने लगे तो निकल लेना चाहिए, ये खास बात है। चलिए जी, तो आइए अब जरा आ जाते हैं तीन के दम की तरफ। रेडी हैं खेलने के लिए मोहम्मद भाई?
2: ओके, चलेंगे।

0: देखते हैं।
1: चलिए देखते हैं। ऑलराइट ओके देन। चीनी मीठी होती है या कड़वी?
0: मीठी।
1: ओके पंखा हवा देता है या पानी?
0: हवा।
1: हवा देता है या पानी?
0: हवा।
1: ओके वो ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदते तो खाने के लिए है लेकिन खाते नहीं है? जी
0: अगर खाते नहीं तो फिर क्या करते?
1: आप दूर चले गए, बहुत करीब आइए मेरे। अभी अभी अभी अच्छा है। मोहम्मद भाई आपने पहली बार कॉल किया है मुझे या पहले बात हो चुकी है हमारी? एक आध बार बात हुई है। चलिए साहब तो इसी तरह तशरीफ लाते रहिए। तो कुछ समझ में आ रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदते तो खाने के लिए है लेकिन खाते ही नहीं है? नहीं पकड़ पा रहे?
0: नहीं।
1: थोड़ा थोड़ा आसपास कुछ तो जवाब दिए।
0: जो खरीदते तो
1: खरीदते तो खाने के लिए है लेकिन खाते नहीं है।
0: नहीं
1: तो ये बता दूंगा तो जवाब भी मिल जाएगा आपको। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ जुड़े और इंशाल्लाह ताला मैसेज के जरिए भी कनेक्टेड रहिए और कॉल के जरिए भी कनेक्टेड रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये थे मोहम्मद भाई हमारे साथ जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करके गए। आइए कुछ मैसेजेस शामिल कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। ओके कहते हैं सरवर जी गुड मॉर्निंग माय बैड भाई, ये तो मॉर्निंग में भेजा था मैसेज, पढ़ अब मैं रहा हूँ। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। क्या बात है भाई रमेश भाई, जबरदस्त मैसेज। ओके यहाँ पे कौन है हमारे साथ, यार शायरी है बड़ी ही जबरदस्त सी और कल भी ये शायरी रह गई थी मजर भाई की मुझे लगता है। मजर भाई मैं करवा ली पढ़ता हूँ आपकी शायरी। तेरी यादों का दिया दिल में जलाते हैं हम, रात तन्हा हो तो चुपके से मुस्कुराते हैं हम, तेरी आवाज की खुशबू अभी बाकी है कहीं, अपनी ख्वाबों में अपने ख्वाबों में तुझे रोज बुलाते हैं हम, दिल की दुनिया में तेरी चाहत का मौसम है सदा, हर घड़ी इश्क के रंगों में नहाते हैं हम, फासले लाख सही कम नहीं होती चाहत, दूर रहकर भी तुझे दिल से लगाते हैं हम, कोई पूछे जो मोहब्बत का पता क्या होगा, तेरा नाम आए तो नजरें झुकाते हैं हम। आए हाय हाय हाय हाय क्या ही कहने भाई, क्या ही कहने मदर साहब हमारे साथ प्यारी प्यारी शायरी करते हुए और भेजते हुए। मोहम्मद जासिम रैन हैं हमारे साथ, कहते हैं तरबूज सलाम सरवर भाई, और दूसरा ये वेरी गुड। जासिम भाई कॉल पे होता तो ये जवाब आम हो जाता, बट आपने जवाब सही दे दिया है वो दो चीजें जो मैंने पूछी थी, क्योंकि अब यहाँ अगर हमें ऑन कॉल आंसर मिलेगा तो जरा मजा आएगा। हेलो सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: वरहमतुल्लाह वबरकातुह। कौन है हमारे साथ?
2: मोहम्मद सुफियान।
1: मोहम्मद सुफियान कैसे हैं सुफियान भाई, खैरियत से?
2: माशाल्लाह
1: अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो गेम खेलने आए हैं?
2: हाँ जी।
1: ओके देन बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑफिस?
2: स्कूल।
1: स्कूल बस रोड पर चलती है या पानी में?
2: रोड पे।
1: रोड पे चलती है, पक्की बात है?
2: जी जी।
1: एक टेबल पर 7 मक्खियां बैठी हैं, आपने एक को मार दिया, कितनी बची?
2: कितनी बैठी थी?
1: 7। 7
2: 7 ही बचे क्योंकि वो भी टेबल भी है, अगर मारी गई है तो भी तो टेबल भी है।
1: नहीं नहीं नहीं नो नो नो नो नो नो और सोचिए।
2: नहीं अगर 7 टेबल पे है, एक को मार दिया तो वो भी तो टेबल पर ही है, वो तो गई तो कहीं नहीं।
1: और सोचिए
2: 7 मक्खियां हैं टेबल पे बैठी, एक को मार दिया तो कितने बची?
1: नहीं जवाब सही नहीं है, मगर जवाब सही नहीं है।
2: अच्छा जी
1: हाँ। चलिए बता दूं यार, दिल चाहता बता लेगा मगर अब ये जवाब एक बार मिल गया तो फिर ये सवाल मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, एक ये चीज रह जाती।

0: सकती है, तो बेहतर है कि इंतजार करेंगे और देखते हैं कि कोई और अगर इसका जवाब देता है तो। ठीक है,
1: ठीक है,
0: ओके, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए।
1: थैंक यू
0: सर। ओके, तो साहब मक्खियां भी उड़ाई जा रही हैं और बस पानी पे चलाई जा रही है और शर्ट खाई जा रही है और ये सब हो रहा है 3 का दम में। हाँ, क्या बात है भाई, यहाँ पर माशाल्लाह से कॉल करने वाले, मगर मुझे ब्रेक भी एक लेना है, तो चलिए एक चैंपियन को और जोड़ते हैं और उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहु, कैसे हैं भैया जी?
0: ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। और कौन है हमारे साथ?
2: जी, मैं वही सस हूँ जो दिखती तो हरी है निकलती लाल है।
0: तो क्या रामलाल आ गए हमारे पास? रामलाल कहाँ से अभी तक?
2: मैं तो श्यामलाल हूँ भैया।
0: श्यामलाल, क्या नाम है भाई का?
2: भाई का नाम है जासिम।
0: जाकिर
2: जासिम, अभी अभी जो,
0: अच्छा जासिम रैन, सही
2: जी जी।
0: क्या बात है यार जासिम भाई, लॉन्ग टाइम, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या बात है,
2: आप लोग कैसे हैं?
0: अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। तो आइए खेल लेते हैं 3 का दम। जासिम भाई रेडी?
2: मैं तो रेडी ही हूँ, थोड़ा आसान वाली और वो लास्ट वाली कर दीजिएगा जो मैंने मैसेज किया, काम हो जाएगी वो।
0: नहीं नहीं, वो तो जवाब आपका आ गया, वो तो अब दूसरे के ऊपर अप्लाई करूंगा ताकि उनसे जवाब ले सकूं, आपके लिए दूसरा होगा। अब आपके लिए दूसरा सवाल है। ओके,
2: क्योंकि मैं खुद बिजी हूँ अभी, डिलीवरी में, खाना डिलीवरी में।
0: हाँ हाँ,
2: थोड़ी आसान कर दीजिए।
0: थोड़ी आसान कर देता हूँ। आइसक्रीम ठंडी होती है या गर्म?
2: बहुत ठंडी।
0: वेरी गुड। आंखों का काम देखना है या सोचना?
2: आंखों का काम देखना ही है।
0: अगर डॉक्टर कहे 3 गोलियां लो और हर आधे घंटे में खा लो तो सब कितनी देर में खत्म होंगी?
2: हर आधे घंटे में खा लो।
0: हाँ, 3 गोलियों का सेट है, हर आधे घंटे में खा लो तो कितनी देर लगेगी?
2: आधे घंटे लगेगी।
0: कितना पूरा?
2: आधे घंटे लगेगी।
0: टोटल टाइम क्या लगेगा?

के दिन। तो भाई ये थे हमारे साथ प्यारे प्यारे जासिम भाई, जो जवाब देने की कोशिश में तो थे मगर थोड़ा फंसा लिया मैंने यहाँ पर। तो चलिए साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्या कहती है पब्लिक? आमिर जमाल की आवाज में एंजॉय कीजिए ट्रैक खास आपके।

0: यहाँ पर आज खासम खास क्या है ये भी बता देता हूँ कि भाई आज दुनिया भर में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है और ये दिन हर साल 7 जून को यूएन के जेरे एहतमाम मनाया जाता है ताकि लोगों को महफूज और सेहतमंद खाने की अहमियत से आगाह किया जा सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खाना हम तक पहुंचने से पहले कई मराहल से गुजरता है जहां कंटेमिनेशन का खतरा होता है, मतलब इसको सड़ जाने का, गल जाने का, खराब हो जाने का मसला होता है और इसीलिए हाइजीन और प्रॉपर हैंडलिंग बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लाखों लोग फूड से रिलेटेड जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, उनका शिकार हो जाते हैं जबकि अक्सर केसेस को आसानी से रोका जा सकता है बट हम क्योंकि आदत नहीं होती तो रोक नहीं पाते हैं। और इस साल का थीम जो है वो है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर। मैं इंशाल्लाह लगा देता हूं इसके अंदर और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता देता हूं कि बीमारियां बहुत ज्यादा हैं इससे मुताल्लिक क्योंकि दुनिया भर में 250 से ज्यादा फूड बोर्न इलनेस जो हैं वो पाई जाती हैं। 250 से ज्यादा अगर खराब खाना हो जाए या खाना खराब है तो वाकई आदमी का खाना खराब भी हो जाता है तो फ्रीजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रुक सकती है। खाना यूजुअली हम फ्रीज कर देते हैं ताकि उसको हम लंबे टाइम तक चला सकें बट ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने खाना सुबह बनाया और आपने कहीं शाम रात होते होते इस्तेमाल करके उसको जो बचा फ्रीज किया तो शायद इसके अंदर वो बैक्टीरिया दाखिल हो गया और फिर वो आगे परेशानी का सबब बन गया। फूड पैथोजेंस जो हैं बहुत डेंजरस होते हैं, जो जर्म्स फूड पॉइजनिंग का सबब बनते हैं वो किडनी फेलियर, ऑर्थराइटिस और मेनिनजाइटिस तक का सबब बन सकते हैं। तो ये खाना, खराब खाना, गलत खाने की वजह से परेशानियां सामने आ सकती हैं। वहीं केन ओपनर भी रिस्क हो सकता है। यूजुअली आजकल दौर फास्ट फूड लाइफ का है तो ये जो टिन फूड होते हैं, केन फूड होते हैं, इनके अंदर भी पॉइजनिंग की बड़ी वजह जो है वो जो उसका ओपनर होता है वो होती है क्योंकि ओपनर को यूजुअली साफ नहीं किया जाता तो इसीलिए कहते हैं कि अपने जितने भी यूटेंसिल्स हैं, छुरी, कांटे, अगर देसी लफ्ज में बोलूं, फोक वगैरह, नाइफ वगैरह, ओपनर्स वगैरह, टोंग, ओके, कबगीर, चमचे, सब चीजों को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से साफ कीजिए तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। गर्म या ठंडा, बीच का नहीं, खाना या तो गर्म रखें या ठंडा, बीच के टेम्परेचर पर नहीं वरना बैक्टीरिया आसानी से बढ़ सकते हैं। तो भाई हम सभी को ये कहेंगे और मेरी तरफ से भी सभी के लिए ये मैसेज भी कि भाई वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है तो सबको अच्छे खाने की हैबिट और तरीके से एक दूसरे को आगाह करते रहें। आइए अब एक चैंपियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंशु भाई
1: जी,
0: कैसे हैं? खैरियत से?
1: अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कैसा गुजरा दिन?
1: अच्छा,
0: माशाल्लाह। सो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलिए ये ताकि अल्हम्दुलिल्लाह ताकि जहन भी तरोताजा हो और इंशाल्लाह दूसरों को भी इससे कुछ सीख मिल सके। तो चलिए भाई अंशु भाई, रेडी 3 का दम खेलने के लिए? बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी। हाँ, फुटबॉल गोल होती है या चौकोर?
1: गोल।
0: ओके, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर मैदान में खेलते हैं या 15?
1: 11।
0: ऑलराइट देन, ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप फ्रिज में रखें फिर भी गर्म रहती है? क्या शेर सुनाया अंशु भाई ने, वाह वाह वाह वाह, आइसक्रीम फ्रिज में रखे गरम रहती है, भाई वाह वाह वाह वाह, जबरदस्त, क्या ही कहने अंशु भाई, एक नंबर।
1: गरम होती है ना?
0: बहुत ही गलत जवाब दिया आपने, मजा आ गया भाई। क्या कह,
1: फ्रिज में रखी गरम होती है, ट्रिकी क्वेश्चन तो, सॉरी।
0: अरे ये है, है, है, इसका जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है और कोई ना कोई दे भी देगा, मेरे ख्याल में दे भी दिया होगा। मैं मुआजरत चाहता हूँ, यहाँ पर तकरीबन 50 मैसेजेस पड़े हुए जिनके जवाब में बहुत कुछ है बट मैं

0: ले नहीं पा रहा हूँ. ओके ओके, कोशिश करते हैं कि वो भी शामिल करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया अंशु भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. तो भाई यहाँ पर कुछ जवाब जो हैं वो सही जवाब भी आ रहे हैं, मगर क्योंकि मेरे साथ ऑन एयर कॉलर्स हैं तो मैं वो शामिल नहीं कर पा रहा हूँ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह.
0: अहलेन अहलेन, कैसे हैं यूसुफ भाई?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और आपका मैसेज मैं शेयर कर चुका हूँ, प्रोग्राम में शामिल कर चुका हूँ. तो अब आ जाते हैं सीधा तीन कदम की जानिब.
1: नहीं नहीं, एक सवाल था वो.
0: अच्छा, मुझसे करेंगे सवाल.
1: महावीर जी के शो का क्यों लिए थे वो पूछना था.
0: क्या क्या क्या अगेन
1: महावीर जी के टॉपिक. मैंने आज का जो टॉपिक था आपका सवाल था वो महावीर जी के शो के लिए डियर फैमिली का था, वो आपके शो में किया गया.
0: मैं भी तो फैमिली हूँ. ओके, अच्छा है, अच्छा है, अच्छी लाए यूसुफ भाई, अच्छी लाए. अब मैं भी अच्छा सवाल लाऊंगा आपके लिए. बॉलीवुड
1: नहीं, बॉलीवुड का तीन कदम कभी
0: शुरू. हाँ वो होगा इंशाल्लाह थर्सडे में. यार बनाने पड़ते हैं असल में. मैं भी थोड़ी हेल्प लेता हूँ जाहिर बात है, AI से भी और नेट से भी, बट वो मज़ा नहीं आता एक्चुअली. मगर तो थोड़ा मुझे उनको मोल्ड करना पड़ता है, तब्दील करना पड़ता है. तो बैठूंगा इंशाल्लाह और होपफुली शायद थर्सडे में कुछ बॉलीवुड के हवाले से तीन का दम जो है वो चलेगा. फिलहाल आज के लिए वही सवाल एकदम नॉर्मल आपके लिए बहुत ही आसान. रेडी
1: है? जी रेडी.
0: चलिए साहब, उल्लू रात को ज्यादा निकलता है या दिन में?
1: रात में.
0: ओके, बस रोड पर चलती है या पानी में?
1: अगर मैं पानी में कहूं तो सही हो जाएगा.
0: जवाब गलत हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे गेम में.
1: ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली रोड पर ना.
0: ओके. ऐसी कौन सी चीज है जिसको लोग काटते हैं, पीसते हैं और बांटते हैं मगर खाते नहीं है?
1: काटते हैं.
0: यूसुफ भाई दूसरे सवाल सुन के आए थे ना आप?
1: नहीं नहीं, मैं दो तीन सवाल था ना बस, उसके बाद नमाज के लिए चले गया था, मिस कर
0: दिया. ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग काटते हैं, पीसते हैं, बांटते हैं मगर खाते नहीं है?
1: काटते हैं, बांटते हैं.
0: थोड़ा सोचो यूसुफ भाई.
1: नहीं, नहीं
0: यूसुफ भाई को चकमा दे दिया मैंने आज ये. ऑलराइट भाई, आपको अगर कोई भी नेट पे चेक नहीं करेगा प्लीज, ये गुजारिश है. और अगर जवाब मिले तो जरूर शेयर कीजिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई.
1: शुक्रिया,
0: बहुत ही प्यारे आप और आपके मैसेज और आपकी बातें. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच.
1: ख्याल रखिए.
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू. भाई थोड़े से मैसेजेस शामिल कर ले रहे हैं वरना ऐसा हो जाएगा कि मुझे. अच्छा, इन्होंने कुछ जवाब दिया है. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मोहम्मद भाई. हाँ करीब है, करीब है, करीब है. इन्होंने जवाब दिया है उस चीज का कि ऐसी कौन सी चीजें जो हम खरीदते हैं खाने के लिए मगर खाते नहीं हैं. आप करीब हैं, काफी करीब हैं. ओ यस, मजर भाई का सही जवाब आया है उस सवाल का. के यहाँ पर भी मकसूद भाई का भी सही जवाब आया है फ्रिज के हवाले से जो अभी हमने सवाल किया था. काफी सही जवाब आए. अच्छा हुआ आप लोग कॉल पे नहीं थे वरना इतनी बार ये क्वेश्चन पूछ नहीं पाता मैं. फैयाज का भी जवाब सही है. फैयाज सही कह रहे हैं, आपका जवाब भी सही है. ओके, मुसद्दिक भाई क्या कहते हैं, तरबूज हरा दिखता है पर लाल होता है. हाँ वो तो है ही. इसके अलावा दो चीजें मैंने पूछी थी कौन सी है. अस्सलाम वालेकुम ओसामा. ओ यस सुसामा, सही जवाब है, सही जवाब है. अब्दुल नवेद, नवेद भाई बिल्कुल नई चीज लाए हैं और वाकई सही चीज लाए हैं. इनका भी जवाब सही है इसी से मुतालिक जो मैंने पूछा था. ओके कहते हैं जासिम भाई का बड़ा फनी जवाब आया, कहते हैं पान. नहीं ऐसा नहीं है. तो भाई फिलहाल यहाँ पर आप लोगों के प्यारे प्यारे जवाब और सवाल भी मेरे चल रहे हैं तीन का दम में. चलिए एक कॉलर से बात करते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू.
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कौन है हमारे साथ?

0: आपके साथ है मुदस्सिर भाई।
1: मुदस्सिर भाई कैसे हैं, खैरियत से?
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। मुदस्सिर भाई कैसा गुजरा आज का दिन?
0: बस जा रहा है, थोड़ा जानते ही हैं आपसे, मौसम ठंडा हो रहा है तो वेटर वगैरह का इंतजाम करने
1: अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है मेरे ख्याल में, हेडफोन से बात कर रहे हैं मुदस्सिर भाई। अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो हाँ, ये कुछ अब बहारें जो हैं वो आना शुरू हुई, हवाएं आना शुरू हुई।
0: ठंडी इसलिए स्वेटर का इंतजाम किया जा रहा है और क्या।
1: ठंडी
0: ज्यादा है इसलिए स्वेटर का इंतजाम कर
1: रहा हूं। कटाक्ष था ये, समझने में देर हो गई। तो भाई ठंड ज्यादा है इसलिए मुदस्सिर भाई स्वेटर का इंतजाम कर रहे हैं। ये तो तीन के दम का जवाब दे दिया आपने। चलिए भाई, तो रेडी है खेलने के लिए?
0: जी।
1: कौन से सवाल का जवाब पता था आपको ये बताइए, ताकि दूसरा पूछूं आपसे। मैं इतने सारे सवाल रख दिए एक तो पहले।
0: बस अभी 2 या 3 मिनट हुआ मुझे ट्यूनिंग की हुए।
1: अच्छा,
0: मैंने
1: फिर तो बच गया मैं, फिर तो सही है, फिर तो काम आ जाएंगे दूसरे सवाल जो मेरे हैं। मोबाइल से कॉल करते हैं या रोटी बनाते हैं?
0: कॉल करते हैं ऑब्वियसली।
1: मंडे के बाद कौन सा दिन आता है?
0: ट्यूसडे।
1: ओके, तो ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग काटते हैं, पीसते हैं और बांटते भी हैं मगर खाते नहीं है?
0: यही वाला भी आपने पूछा था, मैंने कहा कि ये वापस से ना आ जाए तो वही वापस से आ गया।
1: तो पता होगा आपको इसका जवाब?
0: नहीं, आपने ईमानदारी से जवाब सुनना कोई भी।
1: ये बात ये है, देखिए मेरा प्यारा भाई मुदस्सिर भाई जिन्होंने मेरी बात मानी। तो चलिए आपसे दूसरा सवाल करता हूँ मैं, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज है जो लोग खरीदते तो खाने के लिए मगर खाते नहीं है? कुछ आ रहा है समझ में? कुछ भी बोलिए तो सही, कुछ मैं करीब पहुंचाऊंगा आपको फिर हिंट दे दे के।
0: ठीक है, तो खाने के लिए खरीदते हैं तो खाते क्यों नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है उनका।
1: इसका टेक्निकल जवाब है भाई, कैच है इसके अंदर, मगर जवाब जितने भी हैं मेरे सवाल के सबका टेक्निकल जवाब जरूर मिलेगा।
0: अच्छा, दो क्वेश्चन ऐसा आप देते हैं ऐसा लग रहा है लॉलीपॉप दे रहे हैं उसके बाद में से।
1: चलिए यार, आपने कम से कम ट्राई किया, आप तशरीफ लाए, ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
0: तो आखिरी में उनको कॉल चाहिए, वो लोग बोलेंगे इतना टाइम वेस्ट कर रहे और जवाब भी नहीं बता रहे।
1: आप मैसेज में भी जवाब दे सकते हैं, इंशाल्लाह कल भी तशरीफ लाइएगा और कोशिश जरूर कीजिएगा, इस जरिए से हम एक दूसरे से कम से कम बंधे तो रहते हैं मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
0: अल्लाह हाफिज।

रहमान, सुनीता सराठी, क्या गाना था भाई, याद आया कौन सी फिल्म थी? सोचिए सोचिए सोचिए। दिल से देसी

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी

मैं आप लोगों से करता हूँ, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही है। फिलहाल हो गया वक्त के आज के लिए ले लूं आपसे इजाजत, और इसी नोट के साथ कि इंशाल्लाह कल बखैर आफियत बाइज्जत खैरियत से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, गर्मी है तो भाई जरा सा पानी शानी पीते रहिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: RJ Safakisar. Sirf FM 107 par. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम कतर और दुनिया भर के FM 107 सुनने वाले तमाम साथियों को. आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा. खुशामदीद कहती हूं आप सभी को हमारे खास और दिल को छू लेने वाले शो में जिसका नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स. साथियों, कभी एक वक्त था जब लोग ये समझते थे कि स्पोर्ट्स सिर्फ लड़कों की फील्ड है, ग्राउंड हो, स्टेडियम हो या क्रिकेट पिच हो. अक्सर लड़कियों को सिर्फ ऑडियंस तक महदूद समझा जाता था. लेकिन जैसे कि वो एक कहावत है ना, द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इज चेंज. तो भाई, वक्त बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है. आज की लड़की सिर्फ तालियां बजाने वाली नहीं है, वो मेडल जीतने वाली है. वो सिर्फ मैच देखकर गुजारा नहीं करती, मैच जीतती भी है. और सिर्फ अपना नाम नहीं बना रही बल्कि पूरी कम्युनिटी, पूरी फैमिली और कभी कभी पूरे मुल्क का सर फखर से बुलंद कर देती है. देखिए, आज हम बात करेंगे उन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की जो सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं रहे बल्कि एक रेवोल्यूशन बन चुके हैं. ऐसे टूर्नामेंट्स जो जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे इवेंट्स जो हर उस लड़की को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम भी कर सकती हो. जरा सोचिए, जब एक छोटी सी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची मेडल लेकर स्टेज पर खड़ी होती है तो सिर्फ उसकी जीत तो नहीं होती ना, उसकी अम्मा की उम्मीदें जीतती हैं, उसके वालिद का कॉन्फिडेंस जीतता है, उसकी कम्युनिटी का नजरिया जीतता है. देखिए, लड़कियों के मामले में ना, पहले किसी जमाने में कहा जाता था कि बेटा ज्यादा भागना मत, इतनी धूप में मत खेलो, गर्ल्स को इतनी स्पोर्टी नहीं होना चाहिए. लेकिन अब पेरेंट्स खुद कहते हैं मेरी बेटी फुटबॉल प्लेयर बनेगी, मेरी बेटी एथलीट्स में गोल्ड मेडल लाएगी, मेरी बेटी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी. साथियों, स्पोर्ट्स सिर्फ मसल्स का काम नहीं है, स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस का नाम है, डिसिप्लिन का नाम है, लीडरशिप का नाम है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, स्पोर्ट्स एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो ये कहती है कि गर्ल्स बिलोंग एवरीवेयर इंक्लूडिंग द फील्ड एज वेल. अच्छा, जब हम दुनिया भर की सक्सेसफुल विमेन एथलीट्स को देखते हैं ना, तो हमें सिर्फ ट्रॉफीज नजर नहीं आती है कि नहीं, हमें स्ट्रगल नजर आती है, डेडिकेशन नजर आती है और वो हिम्मत नजर आती है जो कहती है मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ. भाई, एक वक्त था जब लड़कियों को सिर्फ साइड लाइन्स पर बिठाया जाता था, लेकिन आज वो सेंटर स्टेज पर है. किसी ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लिए हैं, किसी ने फुटबॉल को अपना ख्वाब बना लिया है और किसी ने रनिंग ट्रैक पर दुनिया को दिखा दिया है कि स्पीड सिर्फ बॉयज मोनोपोली नहीं है. और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, जब एक लड़की टूर्नामेंट जीतती है ना, तो भाई उसकी जीत थ्योरेटिकल नहीं होती, वो चेंज को रियल बना देती है. मोहल्ले वाले उसके नाम को याद करते हैं, स्कूल उस पर फखर करता है, फैमिली उसकी तस्वीर गेस्ट्स को दिखाती है और छोटी बच्चियां उसे देख कर ये कहती हैं कि भाई मुझे भी ऐसा बनना है, इसने इतना कुछ किया है, मुझे भी ऐसा करना है. यही स्पोर्ट्स की असली ताकत है साथियों. ये सिर्फ गेम्स नहीं बदल रहा, ये सोच बदल रहा है. देखिए, कतर से लेकर दुनिया भर तक विमेन स्पोर्ट्स का सीन रोज स्ट्रॉन्ग हो रहा है. गर्ल्स टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, मेडल्स जीत रही हैं, रिकॉर्ड्स तोड़ रही हैं और स्टीरियोटाइप्स भी तोड़ रही हैं साथ में. देखिए, आज का मामला ये है कि हिजाब में फुटबॉल खेलती हुई लड़की भी इंस्पायरेशन है, व्हीलचेयर पर बास्केटबॉल खेलने वाली एथलीट भी इंस्पायरेशन है और स्कूल गर्ल्स भी इंस्पायरेशन ही है जो पहली दफा रेस में हिस्सा लेकर लास्ट पोजिशन पर आई मगर हिम्मत नहीं हारी. भाई, असली जीत तो वही होती है ना कि जब लड़की खुद पर यकीन करना सीख जाए. तो साथियों, आज का हमारा सफर होगा थोड़ा सा इंस्पायरिंग और उन कहानियों का जो बताएंगी कि स्पोर्ट्स किस तरह सोसाइटी को रीशेप कर रहे हैं. हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की, अपॉर्चुनिटीज की, फैमिली स्पोर्ट की और उन ड्रीम्स की जो अब सिर्फ ख्वाबों तक महदूद नहीं है. और हाँ, अगर आपके घर में भी कोई छोटी सी चैंपियन मौजूद है ना, जो हर वक्त बॉल लेकर भागती फिरती रहती है या हर दूसरे दिन मेडल जीतने का ड्रामा करती है, तो भाई प्लीज उसे रोकिए मत. हो सकता है कल को वही आपका फखर बन जाए. आप सुन रहे हैं FM 107 कतर, शो का नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सफा. अच्छा भाई, हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107Qatar। और अगर आपके पास भी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है ना, तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए 666-222-107 पर और जरूर बताइए। तो भाई साथियों, स्टे ट्यून्ड, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे कॉन्फिडेंट। और याद रखिए, जब एक लड़की खेलती है तो वो सिर्फ गेम नहीं जीतती, वो पूरी सोसाइटी को जीत पाती है। अच्छा, आज का हमारा जो एपिसोड है ना, एक ऐसी एथलीट के नाम है जिसने जिमनास्टिक्स को सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं रहने दिया, उसने उसे एक इमोशनल कन्वर्सेशन बना दिया। एक ऐसी कन्वर्सेशन जो प्रेशर, मेंटल स्ट्रेंथ, फियर, एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के गिर्द घूमती रहती है। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सिमोन बाइल्स की, एक ऐसा नाम जो एक्सीलेंस का सिंबल बन चुका है। देखिए साथियों, जब भी जिमनास्टिक्स की हिस्ट्री लिखी गई, सिमोन बाइल्स का नाम सिर्फ गोल्ड मेडल्स की वजह से नहीं चमकेगा, बल्कि इसीलिए भी कि उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वो नहीं जो कभी नहीं रुकता, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वो होता है जो वक्त पर रुक कर अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी वेलबींग को इम्पोर्टेंस देता है। साथियों, सिमोन बाइल्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ग्रेविटी भी उनके रूल्स फॉलो करती है। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब मैं बता देती हूँ। जब वो एयर में फ्लिप करती हैं, ट्विस्ट करती हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती हैं, तो भाई दुनिया तालियां बजाती है। लेकिन हर ताली के पीछे एक प्रेशर होता है, हर एक्सपेक्टेशन के पीछे एक इमोशनल वेट होता है। और अक्सर हम ऑडियंस सिर्फ स्पॉटलाइट देखते हैं, उस स्पॉटलाइट के पीछे छुपा हुआ जो अंधेरा होता है ना, वो हमें नजर नहीं आ रहा होता। सिमोन बाइल्स ने वो अंधेरा दुनिया को दिखाया। उन्होंने बताया कि एथलीट्स मशीन नहीं होते, वो भी इमोशंस रखते हैं, फियर फील करते हैं, एंजाइटी का सामना करते हैं और कभी कभी उन्हें भी पॉज बटन दबाना पड़ता है। देखिए, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में अक्सर हम रिकॉर्ड्स और स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, कितने मेडल्स जीते, कितने पॉइंट्स स्कोर किए, कितने वर्ल्ड टाइटल्स हैं। लेकिन आज का स्पोर्ट्स वर्ल्ड सिर्फ नंबर्स तक महदूद नहीं रहा, आज का स्पोर्ट्स वर्ल्ड इमोशंस भी समझने लगा है भाई। और सिमोन बाइल्स ने इस चेंज में बहुत बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में ऑनेस्टी दिखाई जहां एथलीट से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो हमेशा परफेक्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई मैं इंसान हूं, और उनके ये तीन अल्फाज ना कि मैं इंसान हूं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ये तीन अल्फाज उनके इट लिटरली इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब। सोचिए, पूरी दुनिया आपको देख रही हो, कैमरास हर एंगल से फोकस्ड हो, सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ आपकी परफॉर्मेंसेस डिस्कस कर रहे हों, और उस वक्त आप ये डिसाइड करें भाई कि नहीं, इस वक्त मुझे पॉज की जरूरत है, मैं अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज करूंगी। कितनी हिम्मत चाहिए होती है भाई इस फैसले के लिए, कभी सोचा है? देखिए, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है इस फैसले के लिए कि जब आप ऑल ओवर द ग्लोब में सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए हो और आप तब पॉज लो। और इसीलिए सिमोन बाइल्स सिर्फ एक जिमनिस्ट नहीं है, एक मूवमेंट है, एक रिमाइंडर है कि सक्सेस सिर्फ मेडल्स को कलेक्ट करने का नाम नहीं होता, सक्सेस अपनी लिमिट्स को समझने और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने का नाम होता है। देखिए साथियों, यंग गर्ल्स जो होती है ना, जैसे सिमोन बाइल्स थी, उनकी स्टोरी जब हम सुनते ना, तो हमें ये पता चलता है कि उन्हें सिर्फ जिमनास्टिक्स नहीं सिखाया जाता, उन्हें रिजिलियंस सिखाया जा रहा होता है, उन्हें बताया जा रहा होता है कि कॉन्फिडेंस होना और वल्नरेबल होना एक साथ पॉसिबल है। आप स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और इमोशनल भी हो सकते हैं, आप चैंपियन भी हो सकते हैं और रेस्ट की भी जरूरत फील कर सकते हैं। ये जो बैलेंस होता है ना, ये बैलेंस ही मॉडर्न स्पोर्ट्स की असली पहचान बन रहा है। सच कहूं तो सिमोन बाइल्स ने सिर्फ जिमनास्टिक्स फ्लोर पर हिस्ट्री नहीं बनाई, उन्होंने कन्वर्सेशंस चेंज की हैं। देखिए, पहले मेंटल हेल्थ स्पोर्ट में इतनी ओपनली डिस्कस नहीं होती थी,

लोग समझते थे कि अगर एथलीट प्रेशर फील कर रहे हैं तो शायद वो वीक हैं। लेकिन सिमोन ने ये मिथ तोड़ दिया। उन्होंने प्रूव किया कि अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं होती, मैच्योरिटी होती है। यही सेल्फ अवेयरनेस है। और कभी कभी सबसे ब्रेव स्टेप ये होता है कि आप खुद से कहें कि भाई मुझे ब्रेक चाहिए। अच्छा, एक और मजे की बात कि आज दुनिया भर की फीमेल एथलीट्स उनसे इंस्पायर होती हैं, पता है। यंग जिमनिस्ट उनके मूव्स कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी एक और इम्पोर्टेंट बात है, पता है क्या? वो उनकी ऑनेस्टी से सीख रही हैं। आज एक यंग गर्ल जब स्पोर्ट्स फील्ड में एंटर करती है ना, तो उनके पास सिर्फ एक रोल मॉडल नहीं होता, एक रियल ह्यूमन एग्जाम्पल होती है। एक ऐसी एग्जाम्पल जो बताती है कि परफेक्शन इम्पॉसिबल है, लेकिन करेज पॉसिबल है। और हाँ, अगर आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं ना साथियों, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या होता जब रूम में सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा या बंदी ये डिसाइड करता कि वो पॉज करेगा? क्या वो वीक हो जाता है पॉज करने से, या फिर वो ज्यादा पावरफुल बन जाता है क्योंकि उसने अपनी लिमिट्स को समझ लिया है? शायद असली स्ट्रेंथ वही है, अपने आप को समझना, खुद को समझना, खुद का ख्याल रखना और दुनिया की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अपनी वेल बीइंग को इम्पोर्टेंस देना। यही वजह है कि आज का एपिसोड सिर्फ स्पोर्ट्स फैंस के लिए नहीं है, हर उस इंसान के लिए है जो प्रेशर फील करता है, हर उस स्टूडेंट के लिए है जो एक्सपेक्टेशन से थक गया है, हर उस वर्किंग वुमेन के लिए है जो हर वक्त परफेक्ट नजर आने की कोशिश करती रहती है, और हर उस यंग गर्ल के लिए है जो ये सोचती है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इमोशंस छुपाने पड़ेंगे। सिमोन बाइल्स की स्टोरी कहती है नो, नहीं, आप ह्यूमन हैं और फिर भी आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। तो साथियों, आज का सफर होगा इंस्पायरेशन का, ऑनेस्टी का, और उन मोमेंट्स का जो स्पोर्ट्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक पावरफुल ह्यूमन एक्सपीरियंस बना देती हैं। अच्छा, कुछ साल पहले तक जिमनास्टिक्स को कतर में एक लिमिटेड स्पोर्ट समझा जाता था, खास तौर पर गर्ल्स पार्टिसिपेशन के हवाले से। देखें, मामला पता है क्या है, पेरेंट्स अक्सर एकेडमिक्स को प्रायोरिटी देते हैं और स्पोर्ट्स को हमेशा ये कहा जाता था कि भाई सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी समझा जाता है उन्हें। लेकिन आज का सीन ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है। दोहा और कतर के मुख्तलिफ एरियाज में स्कूल लेवल जिमनास्टिक्स प्रोग्राम्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। अब जिमनास्टिक्स सिर्फ एनुअल स्पोर्ट्स डे तक महदूद नहीं रह गया है, बल्कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोचिंग सेशंस और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस का हिस्सा बन चुका है। आज छोटी छोटी बच्चियां बीम, फ्लोर एक्सरसाइजेस और फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल्स में वो कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं जो कुछ साल पहले बहुत मुश्किल लगता था। और पता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कूल्स अब गर्ल्स स्पोर्ट्स को सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज नहीं कर रहे, बल्कि टैलेंट डेवलपमेंट के लिए सीरियस प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि स्टूडेंट्स कैजुअली ना स्पोर्ट्स में पढ़ती थी, लेकिन अब बाकायदा भाई ट्रेंड कोचेज, फिटनेस स्केड्यूल्स और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और आप सुन रहे हैं FM 107 पर हमारा स्पेशल शो जिसका नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स।

0: Women in Sports, RJ Safa के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: साथियों, जिमनास्टिक्स और यूथ स्पोर्ट्स सेंटर्स में एनरोलमेंट स्टेडी इंक्रीज हो रही है। पेरेंट्स भी अब ये समझने लगे हैं कि जिमनास्टिक्स सिर्फ फ्लिप और डांस का काम नहीं है, ये डिसिप्लिन है, बॉडी कंट्रोल है, कॉन्फिडेंस है और मेंटल फोकस डेवलपमेंट करता है। देखिए, दोहा में कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्ट्स कल्चर भी काफी इवॉल्व हुआ है। आज कई कम्युनिटी लीग्स और फिटनेस प्रोग्राम्स स्पेशली गर्ल्स के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। सेफ इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, फीमेल फ्रेंडली ट्रेनिंग एनवायरमेंट्स और सपोर्टिव कोचिंग स्टाफ ने फैमिलीज का ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है। इसी वजह से ज्यादा पेरेंट्स अपनी बेटियों को जिमनास्टिक्स और एथलीट्स की तरफ एनकरेज कर रहे हैं। आज वीकेंड पर स्पोर्ट्स हॉल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में यंग गर्ल्स को पार्टिसिपेट करते देखना एक पॉजिटिव और होपफुल साइड बन चुका है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, ये एक सोशल चेंज है। साथियों, जिमनास्टिक्स की पॉपुलैरिटी में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर सोशल मीडिया भी है। देखिए, जब यंग एथलीट्स इंटरनेशनल जिमनिस्ट को परफॉर्म करते देखते हैं ना, तो उनके अंदर भी एक मोटिवेशन क्रिएट होती है। और कतर में स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ने भी इसी इंस्पायरेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन देने की कोशिश की है। देखिए, कतर की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी प्रोग्रेस का एक मेजर रीजन है। अच्छा, आज मॉडर्न इंडोर अरीनाज, ट्रेनिंग हॉल्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, वो फीमेल एथलीट को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑनेस्टली, फैसिलिटीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये मैं मानती हूँ। जब एथलीट्स को प्रोफेशनल एनवायरमेंट मिलता है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस नेचुरली बूस्ट होता है। गर्ल्स फील करती हैं कि भाई उनके ड्रीम्स भी इंपॉर्टेंट हैं और उनको भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उनके ख्वाबों को भी। इसीलिए कतर की यूथ स्पोर्ट्स पॉलिसी में इंक्लूसिविटी और वुमेन डेवलपमेंट को स्टेडी स्ट्रॉन्ग फोकस दिया जा रहा है। अच्छा, एक और पॉजिटिव चेंज जो क्लियरली नजर आता है ना, वो है फीमेल कोचेस और स्पोर्ट्स एजुकेटर्स की इंक्रीजिंग प्रेजेंस। देखिए, पहले ना गर्ल्स स्पोर्ट प्रोग्राम्स में फीमेल रिप्रेजेंटेशन बहुत लिमिटेड होती थी, लेकिन अब बाकायदा ट्रेन फीमेल कोचेस एक्टिवली जिमनास्टिक्स और फिटनेस ट्रेनिंग में काम कर रही हैं। आप कह लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि यंग एथलीट्स को आप कह लेंगे रिलेटेबल रोल मॉडल मिलते हैं। जब एक यंग गर्ल किसी फीमेल कोच को लीडरशिप रोल में देखती है ना, तो उसके लिए स्पोर्ट्स का फ्यूचर और ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब एक बच्ची बीम पर बैलेंस मेंटेन करना सीखती है ना, तो वो सिर्फ फिजिकल बैलेंस नहीं, इमोशनल बैलेंस भी डेवलप करती है। जब वो डिफिकल्ट रूटीन परफॉर्म करती है ना, तो उसके अंदर वो जो खौफ होता है ना, उसको फेस करने की हिम्मत पैदा होती है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर्स भी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को हेल्दी यूथ डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं। साथियों, कतर में कम्युनिटी अवेयरनेस भी विजिबली इंक्रीज हुई है। आज फैमिलीज ओपनली अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स में कॉम्पिटिशन्स अटेंड करवाती हैं। पेरेंट्स साइडलाइंस पर खड़े बच्चियों को चीयर कर रहे होते हैं। और ये सपोर्ट सिस्टम फीमेल एथलीट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। सोसाइटी जब एनकरेजमेंट देती है ना, तो ड्रीम्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं भाई। आज की यंग गर्ल्स सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, वो पार्टिसिपेंट्स हैं, परफॉर्मर्स हैं और फ्यूचर चैंपियंस हैं भाई। और सच कहूँ तो वुमेन इन स्पोर्ट्स का ये मूवमेंट सिर्फ दोहा तक महदूद नहीं है, ये पूरे रीजन के लिए एक इंस्पायरेशन, एक एग्जाम्पल बनता जा रहा है। जब कतर वुमेन्स स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है ना, तो ये मैसेज जाता है सबको कि डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी का नाम नहीं होती, डेवलपमेंट वो है जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, और स्पोर्ट्स एग्जैक्टली यही कर रहा है। अच्छा साथियों, आज जिमनास्टिक्स और वुमेन्स स्पोर्ट्स के थ्रू यंग गर्ल्स टीम वर्क सीख रही हैं, लीडरशिप सीख रही हैं और रेजिलियंस डेवलप कर रही हैं। वो समझ रही हैं कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, हर परफेक्ट लैंड के पीछे आवर्स ऑफ प्रैक्टिस होती है, हर मेडल के पीछे सेक्रीफाइस होता है और हर एथलीट के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो उस पर बिलीव करता है। और इसीलिए जो सारी बातें हैं ये बहुत मीनिंगफुल हैं, क्योंकि हर सिस्टम चेंज एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है, हर रेवोल्यूशन एक स्मॉल स्टेप से शुरू होता है। और हो सकता है आज कतर के किसी स्कूल जिम में प्रैक्टिस करती हुई एक यंग लड़की कल को इंटरनेशनल स्टेज पर कंट्री रिप्रेजेंट कर रही हो सकता है आज जो बच्चा या आज जो बच्ची सिंपल स्ट्रेचिंग ड्रिल्स कर रही है, कल वो फ्यूचर स्पोर्ट्स आइकन बन जाए। साथियों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी स्टोरी ऑफ द वीक के बारे में, जो कि है सिमोन बाइल्स, एक ऐसी एथलीट जिन्होंने जिमनास्टिक्स की सिर्फ हिस्ट्री नहीं बदली बल्कि स्पोर्ट्स की डेफिनेशन ही ट्रांसफॉर्म करके रख दी। साथियों जब भी दुनिया जिमनास्टिक्स की ग्रेटेस्ट एथलीट्स का जिक्र करेगी ना, एक नाम हर लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आएगा, वो है सिमोन बाइल्स का। एक ऐसी एथलीट जिनकी हाइट शायद ज्यादा नहीं लेकिन अचीवमेंट्स इतनी ऊंची हैं कि पूरी दुनिया उन्हें सल्यूट करती है। उनकी स्टोरी मेडल से शुरू नहीं होती, उनकी स्टोरी स्ट्रगल से शुरू होती है। साथियों सिमोन बाइल्स की अर्ली लाइफ किसी हॉलीवुड फेरी टेल जैसी नहीं थी। साथियों वो फॉस्टर केयर सिस्टम में पली बढ़ी थी। उनका जो बचपन था वो बहुत ही, अगर उनकी स्टोरी सुने ना तो उनका पूरा का पूरा चाइल्डहुड बहुत ही अनसर्टेनिटी से भरा हुआ था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिसिंग थी। जब दूसरे बच्चे नॉर्मल बचपन एंजॉय कर रहे थे, सिमोन लाइफ के बहुत टफ रियलिटीज फेस कर रही थी। लेकिन कुछ लोग मुश्किल हालात में टूट जाते हैं और कुछ लोग वहीं से अपनी स्टेंट बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। सिमोन दूसरी कैटेगरी में आती हैं। उनके अंदर बचपन से ही अनयूजुअल एनर्जी थी। वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती थी, जंप करती रहती थी, फ्लिप करती रहती थी। किसी ने उस वक्त इमेजिन भी नहीं किया था, क्या किया होगा ही नहीं, कि ये एनर्जेटिक लिटिल गर्ल एक दिन जिमनास्टिक्स वर्ल्ड को रीडिफाइन कर देगी। साथियों जब सिमोन सिर्फ 6 साल की थी ना, उनका स्कूल ट्रिप एक जिमनास्टिक्स सेंटर गया। वहीं कोचेज ने पहली दफा, भाई वो कहते हैं ना हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, तो वहीं कोचेज ने पहली दफा नोटिस किया कि इस बच्चे में कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो पोटेंशियल है भाई। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट थी, उनका बॉडी कंट्रोल नेचुरल था और सबसे ज्यादा इंप्रेसिव थी उनकी फियरलेसनेस। ये सपोर्ट सिस्टम सिमोन की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि टैलेंट को ग्रो करने के लिए सिर्फ एबिलिटी नहीं इमोशनल सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। सिमोन ने बहुत यंग एज से ही इंटेंस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। जब दूसरे बच्चे वीकेंड्स एंजॉय कर रहे होते थे ना, सिमोन जिम में आवर्स घंटों की प्रैक्टिस कर रही होती थी और फ्लिप परफेक्ट करने के लिए आप यकीन जाने हजारों रेपिटेशंस होती थी। हर लैंडिंग के पीछे आप कह लें कि दर्द होता था, पेन होता था, सेक्रीफाइस होता था। साथियों स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हम अक्सर कहते हैं कि भाई चैंपियंस बॉर्न नहीं होते, ट्रेंड होते हैं। ये एक नॉर्मली बोला जाता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, और सिमोन बाइल्स इस बात की परफेक्ट एग्जांपल थी भाई। उनकी बॉडी पावर और एक्सप्लोसिवनेस जिमनास्टिक्स के लिए आइडियल थी, लेकिन जो चीज उन्हें डिफरेंट बनाती थी ना वो उनका माइंडसेट था। वो सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करती थी, वो डोमिनेट करती थी भाई। जब सिमोन इलीट जिमनास्टिक्स में एंटर हुई तो कोचेस और कॉम्पिटिटर्स दोनों समझ गए थे भाई ये एथलीट ना, ये भाई ये गेम चेंज करने वाली है। अच्छा 2013 में सिमोन बाइल्स ने पहला ऑलराउंड वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता और फिर वो सिलसिला रुका ही नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में उन्होंने टोटल 30 मेडल जीते, जिनमें से तकरीबन कितने 23 गोल्ड मेडल्स हैं। जी हाँ दोस्तों 23 गोल्ड मेडल्स, 23 गोल्ड मेडल्स, ये किसी भी जिमनास्ट के लिए हिस्टोरिकली एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट है। इसी वजह से सिमोन बाइल्स को दुनिया की मोस्ट डेकोरेटेड जिमनास्ट कहा जाता है। अच्छा ओलंपिक्स में भी उनकी डोमिनेंस अनबिलीवेबल रही। मुझे याद पड़ता है 2016 समर ओलंपिक्स में सिमोन ने 4 गोल्ड मेडल्स और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। अच्छा टीम इवेंट, ऑलराउंड वॉल्ट और फ्लोर एक्सरसाइज, हर जगह सिमोन का मैजिक नजर आया भाई। रियो ओलंपिक्स के बाद दुनिया भर में उनका नाम एक ग्लोबल सुपरस्टार की तरह लिया जाने लगा। और ऑनेस्टली जो रूटीन्स सिमोन परफॉर्म करती थी वो नॉर्मली जिमनास्टिक्स रूटीन्स नहीं लगती थी भाई, वो फिजिक्स को चैलेंज करती परफॉर्मेंस लगती थी। अगर आपने उनकी परफॉर्मेंसेस अभी तक नहीं देखी है ना तो मेरी माने एक दफा देखिएगा जरूर, आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अच्छा सिमोन की कुछ स्किल्स इतनी डिफिकल्ट थी कि जिमनास्टिक रूल बुक को उनके नाम ऐड करने पड़े। जिमनास्टिक्स वर्ल्ड में जब कोई एथलीट एक कम्प्लीटली यूनिक और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मूव सक्सेसफुली परफॉर्म करता है ना, तो भाई उस स्किल का नाम एथलीट के नाम पर रख दिया जाता है। सिमोन बाइल्स के नाम पर मल्टीपल स्किल्स रजिस्टर्ड हैं, वॉल, बीम और फ्लोर एक्सरसाइजेस में हैं भाई रजिस्टर्ड हैं। ये सिर्फ ग्रेटनेस नहीं, ये इनोवेशन है। मतलब वो सिर्फ कंपटीशन नहीं जीत रही थी, वो स्पोर्ट्स को इवॉल्व कर रही थी। अच्छा, जिमनास्टिक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिमोन की पावर लेवल मेंस जिमनास्टिक्स स्टैंडर्ड्स के करीब थी। कोचेज और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने एथलीट वेलबींग को ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। एथलीट्स ओपनली एंजाइटी और बर्नआउट डिस्कस करने लगे भाई। और इसी रेवोल्यूशन की लीडिंग वॉइस पता है कौन थी भाई? वो थी सिमोन बाइल्स। आज सिमोन बाइल्स सिर्फ जिमनास्ट नहीं है, एक ग्लोबल सिंबल है। वो एथलीट प्रोटेक्शन है, मेंटल वेलबींग और हेल्दी कंपटीशन की एडवोकेट हैं। उन्होंने दुनिया को ये समझाया कि इमोशनल स्ट्रेंथ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। और फिर सबसे इंस्पायरिंग बात पता है क्या हुई? सबसे इंस्पायरिंग बात ये हुई कि सिमोन वापस कमबैक भी करके आई भाई, उन्होंने छोड़ नहीं दिया। बहुत लोग ये समझ रहे थे कि भाई शायद उनका गोल्डन एरा अब खत्म हो गया, क्योंकि इसने ब्रेक ले लिया तो भाई क्या ही, छोड़ो जाने दो, चली गई। लेकिन चैंपियंस कभी इजीली डिसअपीयर नहीं होते। साथियों, 2023 वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स चैंपियनशिप्स में सिमोन ने फिर गोल्ड मेडल्स जीत कर ये प्रूव किया कि ग्रेटनेस टेम्पररी नहीं होती। उन्होंने अपने टोटल मेडल काउंट्स और रिकॉर्ड्स को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया भाई। आज की यंग जनरेशन के लिए सिमोन बाइल्स सिर्फ एक स्पोर्ट्स आइकन नहीं, एक इमोशनल रोल मॉडल है। देखिए, यंग गर्ल्स उनकी रूटीन देखकर जिमनास्टिक्स सीखना चाहती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो उनकी ऑनेस्टी और करेज से भी इंस्पायर होती हैं। सिमोन ने गर्ल्स को ये मैसेज दिया कि आप साइमल्टेनियसली स्ट्रॉन्ग और वल्नरेबल दोनों हो सकते हो, आप चैंपियन भी हो सकते हो और रेस्ट की जरूरत भी फील कर सकते हो। और अगर हम कतर के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो सिमोन बाइल्स जैसी स्टोरीज यंग फीमेल एथलीट्स के लिए बहुत मोटिवेशनल है भाई। कतर में जिमनास्टिक्स और वुमेन स्पोर्ट्स स्टेडी ग्रो कर रहे हैं, यंग गर्ल्स अब कॉन्फिडेंटली स्पोर्ट्स एकेडमीज ज्वाइन कर रही हैं, फैमिलीज स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रही हैं, स्कूल स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और जब यंग एथलीट्स सिमोन बाइल्स की स्टोरी सुनती है ना, तो उन्हें रियलाइज होता है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट का नाम नहीं होता, रेजिलियंस का नाम होता है। साथियों, सिमोन बाइल्स की जर्नी हमें ये सिखाती है कि ग्रेटनेस परफेक्ट लाइफ से नहीं आती, ग्रेटनेस स्ट्रगल, रिकवरी और कंसिस्टेंसी से आती है। फॉस्टर केयर से लेकर ओलंपिक पोडियम तक का सफर मुझे नहीं लगता हमें सुनने में इतना इजी नहीं लग रहा, तो उनके लिए वो तय करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन सिमोन ने हर चैलेंज को फ्यूल बना दिया, इसीलिए आज उनका नाम सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स में नहीं, मिलियंस ऑफ हार्ट्स में बरकरार है। आज जब दुनिया स्ट्रेंथ की डेफिनेशन डिस्कस करती है ना, तो सिमोन बाइल्स का नाम ऑटोमेटिकली सामने आता है, क्योंकि उन्होंने ये प्रूव किया कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ मसल नहीं होता, रियल स्ट्रेंथ इमोशनल ऑनेस्टी होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, और वही करेज होता है जो कहता है भाई मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी वेलबींग मैटर करती है, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। तो साथियों, अगर आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, हर चैंपियन के पीछे स्ट्रगल होती है, हर स्माइल के पीछे प्रेशर होता है, और हर सक्सेसफुल एथलीट के पीछे एक इंसान होता है, उसका दिल होता है जो कभी कभी थक जाता है। सिमोन बाइल्स की स्टोरी इसी ह्यूमैनिटी का नाम है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं एफएम 107 पर हमारा स्पेशल शो जिसका नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स। हमें फॉलो करना मत भूलिएगा सोशल मीडिया पे, जिसका हैंडल है FM107 कतर। और अपने थॉट्स आप चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं 6622107 पर, क्योंकि स्पोर्ट्स सिर्फ गेम नहीं बदलते, स्पोर्ट्स जिंदगियां बदलते हैं। यंग गर्ल्स कॉन्फिडेंटली जिमनास्टिक्स, एथलीट्स फुटबॉल और बास्केटबॉल में अपना टैलेंट शो ऑफ कर रही हैं, फैमिली सपोर्ट कर रही हैं, स्कूल्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं, और हर नई एथलीट एक नई स्टोरी लिख रही है। हो सकता है आज कोई यंग लिसनर हमें सुन रहा हो जो फ्यूचर का नेक्स्ट स्पोर्ट आइकन बनने वाला हो। इसीलिए याद रखिए, हर चैंपियन की जर्नी एक स्मॉल से, छोटे से स्टेप से स्टार्ट होती है। हर सक्सेसफुल एथलीट कभी कभी बिगनर होता है और हर इम्पॉसिबल ड्रीम एक सिंपल बिलीव से शुरू होता है कि मैं भी कर सकती हूँ। तो साथियों, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी विमेन इन स्पोर्ट्स में, जहाँ हम लेकर आएंगे एक और इंस्पायरिंग जर्नी, एक और पावरफुल कहानी और एक और एग्जाम्पल उन विमेन एथलीट्स का जो दुनिया भर में स्पोर्ट्स के जरिए लिमिट्स को चैलेंज कर रही हैं। तब तक के लिए मोटिवेटेड रहिए, एक्टिव रहिए और अपने ड्रीम्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। साइनिंग ऑफ विद वन फाइनल रिमाइंडर, हर चैंपियन करेज से बनता है और हर कहानी बिलीव से शुरू होती है। तो भाई सफा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज कतर एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now।

0: हैं।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
0: तो यस, हमारी देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? गर्मी तो काफी तेज हो गई है भाई, अब सुनने में आ गया है कि टेम्परेचर्स और बढ़ने वाले हैं, तो क्या करना है? पता है ना, बच्चों को लेके बाहर नहीं जाना है दोपहर में। मेक श्योर करना है कि आप हो, बच्चे हो, घर का कोई भी शख्स हो, हाइड्रेटेड रहे। एसी में रहने के बाद अक्सर ये हो जाता है ना कि हम पानी शानी पीना भूल जाते हैं, सो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग अगेन ताकि आप इन गर्मियों को भी इंजॉय करते हुए बिता सकें। ठीक है, वैसे सभी को दिल से बहुत सारा वेलकम है और खुशामदीद है। और सारे हमारे एक्सप्लोरर्स आज क्या करने वाले हैं, आज हमारे एस्केप रूम में मैं कहूँगी एक लंबी गहरी सांस लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ टाइम तक, जब तक हमारा शो चल रहा है पूरे एक घंटे, आपको सांस लेने की फुर्सत ना मिले। तो सोचिए आप कहाँ जाने वाले हैं आज, किधर का सफर होगा, रेगिस्तान की तपिश या समुंदर की गहराई? चलिए दो ऑप्शन में से कोई एक चूज कीजिए, बताइए मुझे। 666-22-107 पर 666-22-107 एंड लेट मी नो विथ योर नेम कि आप क्या सोचते हैं कि आज इसकी रूम कहाँ आपको ले जाने वाला है और क्या आप तैयार हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से जो भी आपको मिलेगी उससे बाहर निकलने के लिए। इफ यस, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, मैसेज कीजिए 666-22-107 पर। और बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आज की सिचुएशन आपके सामने आने वाली है। फिलहाल एक बड़ा ही खूबसूरत सा रिक्रिएटेड वर्जन हम सुनने वाले हैं, ऊंचा लंबा कद फॉरएवर। लेट्स एंजॉय, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर।

हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर एक बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देख।
2: वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और एस्केप रूम हमारे इस खासम खास शो में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम रेगिस्तान की तपिश को छोड़कर अटलांटिक ओशन के उस ठंडक और गहराइयों में जाने वाले हैं जहां पर इंसान कदम भी नहीं रख सकता। इट्स वेरी चैलेंजिंग, ठीक है, लेकिन हम अटलांटिक ओशन के अंदर क्या कर रहे हैं? वहां पर एक मशहूर शहर, एक वक्त जो बिल्कुल ज़िंदा था, वहां जाके डूब गया है। यस, आप उसी शहर के सामने हैं लेकिन आप पानी में भीग नहीं रहे, ठीक है, अब डूबे भी नहीं हैं, आपके ऊपर पूरा ग्लास का एक कवच है या यूँ कहें एक बहुत ही बड़ा डोम है, ग्लास का डोम, कैन यू इमेजिन। लेकिन ये ग्लास का डोम इतनी आसानी से आपको सेव नहीं कर सकता, इस पर दबाव पड़ रहा है, समुंदर का दबाव, बहुत तेज दबाव, और यूं कहें तो ये मौत का दबाव है। द प्रेशर इज टू मच जो कि बढ़ते जा रहा है और समुंदर का वजन उसे तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिर रहा है। अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें ग्रेट कोरल गेट को खोलना ही होगा। अब यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 रास्ते होंगे। यस, ये शहर बड़ा ही मशहूर शहर है। अगर हम इसे सर्च करें तो जाहिर सी बात है अटलांटिक ओशन जब हम सर्च करेंगे, वो शहर जो उसके अंदर डूबा हुआ है बहुत ही विशाल है। अब आप वहाँ हैं लेकिन आपके ऊपर कांच का या यूँ कहें ग्लास का कवर है, बहुत बड़ा डोम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक छोटा सा लीकेज है। समंदर का पानी धीरे धीरे धीरे इस पूरे सील्ड ग्लास को, इस पूरे जो ग्लास का आपका कवच है, बहुत दूर तक जो फैला हुआ है इसे भर देगा। हाँ, तो हमें 3 ऑप्शंस फटाफट दिए जाएंगे, उसे सॉल्व करना है, क्लूज को सॉल्व करना है और तैर कर बाहर निकलना है। याद रखिए, ऑक्सीजन कम हो रही है और वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। अब पहला दरवाज़ा खोलने के लिए हमें समुंदर के रक्षक का स्टैचू, ठीक है, देखें आप इमेजिन करें, अपने बहुत सारे समुद्री स्टोरीज सुनी होंगी, हमने एनिमेशंस भी देखे होंगे, मूवीज़ भी देखी होंगी, और ये पुराने ज़माने में बड़ा इसका जिक्र होता था, समुंदर का रक्षक। तो उसका स्टैचू या यूँ कहें मूर्ति के पास हमें जाना है, ठीक है, उनका हाथ खाली है, वहाँ कुछ कमी है। अब सुनिए पहली पहेली, मेरे 3 तेज दांत हैं मगर मैं खा नहीं सकता, मेरे 3 तेज दांत हैं मगर मैं खा नहीं सकता, समुंदर का राजा या यूँ कहें समुंदर का बादशाह मुझे थामे रखता है ताकि तूफानों पर काबू पा सके, मेरे बिना लहरों का कोई मालिक नहीं है, बताओ मैं कौन हूँ। सोचिए, 3 दांत

दांतों वाला वो शाही हथियार जो समंदर की लहरों पर हुकूमत करता है। सोचिए, हमने न जाने कितनी ही फिल्में देखी होंगी, न जाने कितनी कहानियों में इसका जिक्र भी हुआ है। बहुत सिंपल है, जरा सोचेंगे तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। याद रखिए, आज आप एक अटलांटिक ओशन के अंदर हैं, एक ऐसे शहर में हैं जो कि एक ज़माने में बड़ा मशहूर होता था, और अब आपके ऊपर एक पूरा ग्लास का कवर है, ठीक है। लेकिन ये कवर कितनी देर तक टिकेगा, वी डोंट नो, क्योंकि आप अंडर वाटर प्रेशर से गुजरेंगे। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, ये ग्लास टूट जाएगा, ठीक है। तो पहली पहेली जल्दी से सुलझाएं, पहला दरवाज़ा खोलें। मेरे तीन तेज दांत हैं मगर मैं खा नहीं सकता, समुंदर का राजा या यूं कहें समुंदर का बादशाह मुझे थामे रखता है ताकि तूफानों पर काबू पा सके, मेरे बिना लहरों का कोई मालिक नहीं, बताओ मैं क्या हूँ। जल्दी से जवाब आप मुझे दीजिए अपने नाम के साथ 6622107 पर 6622107, एंड लेट्स सी कि आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी जल्दी हमें जवाब दीजिए और थोड़ा सा मूड रिलैक्स कीजिए इस म्यूजिक के साथ। स्टे ट्यून्ड टू FM 107।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो।
1: वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। तो जनाब, एस्केप रूम बड़ा ही शानदार ये शो हमारा, जहां पर आपको हर दिन एक नई सिचुएशन मिलती है। और आज हम रेगिस्तान की तपिश को छोड़कर अटलांटिक ओशन की ठंडक और गहराइयों में खोए हुए हैं। यस, अटलांटिक ओशन के अंदर एक बड़ा ही मशहूर शहर है जो कि वहाँ डूब गया था। आज हम उस धरती पर, उस जगह पर खड़े हैं, लेकिन हम डूबे नहीं हैं। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ग्लास का डोम है। ठीक है, अब ये डोम है, लेकिन इसमें भी हल्का सा लीकेज हो चुका है। अब ये पानी से भर सकता है। हमें यहाँ से बाहर निकलना है और ग्रेट कोरल गेट को ढूंढना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 3 पहेलियों को सॉल्व करना होगा। तो पहली पहेली, पहला दरवाज़ा खोलने के लिए हमारे लिए ये थी कि मेरे 3 तेज दांत हैं मगर मैं खा नहीं सकता। समुंदर का राजा या यूं कहें समुंदर का बादशाह मुझे थामे रखता है ताकि तूफानों पर काबू पा सके। मेरे बिना लहरों का कोई मालिक नहीं होता। यस, समुंदर का रक्षक एक स्टैचू है हमारे सामने, जो कि जिसका हाथ खाली है। और वो कौन सी चीज़ है जो उसके हाथ में होनी चाहिए, यही सबसे पहला सवाल था। वो 3 दांतों वाला वो शाही हथियार जो समुंदर की लहरों पर हुकूमत करता है। बहुत सारे जवाब हमको मिलते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने एंकर कहा है, इट लुक्स लाइक एन एंकर बट नॉट एग्जैक्टली एंकर। कुछ लोगों ने त्रिशूल कहा है, कुछ ने ट्राइडेंट कहा है। और सही जवाब जिन्होंने दिया है सबसे पहले, उनके नाम है अकबर, जैद, सैफ, आफ्ताब। यहाँ पर और किन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अनम एंड रूहान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए, अपना नाम ज़रूर लिखें, मैं हर दिन दोहराती हूँ, जवाब दें। मिस्टर खान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, और सही जवाब है ट्राइडेंट या त्रिशूल। ज़ोरदार ताली आप सबके लिए। क्या बात है, क्या बात है। जैसे ही आपने सही जवाब दिया, वो ट्राइडेंट, वो त्रिशूल, उस स्टैचू जो कि समुंदर का रक्षक है, उसके हाथ में आ गया। और जैसे ही वो स्टैचू के हाथ उस ट्राइडेंट से भर गए, उन्होंने ट्राइडेंट को जकड़ा एंड आपके सामने एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। वाओ, क्या बात है। लेकिन ठहरिए, रास्ता एक बहुत बड़े शेल यानी कि सीप ने रोका हुआ है। उफ, पहली पहेली सॉल्व, पहला दरवाजा, और उसके लिए दूसरी पहेली। इसे खोलने के लिए हमें उस नायाब चीज का नाम बताना होगा जो इसके अंदर छुपी है। बहुत ही सिंपल है जनाब। मैं अंधेरों में पैदा होता हूं, मैं अंधेरों में

सख्त पत्थर के घर में छुपा रहता हूँ। हीरे की तरह मुझ में चमक तो नहीं, पर मैं बिल्कुल गोल हूँ और चांद की रोशनी की तरह हूँ। क्या बात है, चांद की रोशनी में और भी ज़्यादा चमकता हूँ। बताए मैं क्या हूँ? Come on, जल्दी कीजिए एक्सप्लोरर्स। डोम में दरारें जो है ना, क्रैक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पानी अब इसके बाद तेज़ी से अंदर जाएगा। सोच लीजिए, आप क्या डोम में डूबना चाहते हैं या तुरंत तैर कर बाहर निकलना चाहते हैं और गहरी लंबी सांस लेना चाहते हैं? देखिए, जो ऑक्सीजन का लेवल है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन गिरना शुरू हो गया है। सोचिए, समुंदर का दबाव आपके डोम में, आपके ग्लास डोम में बढ़ते जा रहा है। लीकेज भी हो चुका है, दरारें भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। दूसरा क्लू एक बार फिर से दोहराऊंगी और जल्दी से आप इसका जवाब देने की कोशिश करें। मैं अंधेरों में पैदा होता हूँ, एक सख्त पत्थर के घर में छुपा रहता हूँ। हीरे की तरह मुझमें चमक तो नहीं, पर मैं बिल्कुल गोल हूँ और चांद की रोशनी की तरह चमकता हूँ। बताएं मैं क्या हूँ? जवाब दें अपने नाम के साथ 666-22107 पर, 666-22107। एंड लेट्स सी कि ये दूसरा क्लू आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। मैं सारे हमारे लिसनर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, 666-22107 इज़ आर नंबर, इसके ज़रिए आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। तुरंत मुझे मैसेज करें एंड लेट्स सी कि कितने लोग इस क्लू को सॉल्व कर पाते हैं। यस, पठान फिल्म का ये गाना आपके लिए खास। एंजॉय करें, कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: वेलकम वंस अगेन। एस्केप रूम का हमारा दूसरा घंटा शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे बजे हैं दोपहर के 2:02, यानी इट्स टाइम टू मेक अ विश। कम ऑन, मेक अ विश। दो दो एक लाइन पर आ चुके हैं और आप सुन रहे हैं,
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देखिए।
2: वेलकम। भाई एस्केप रूम बड़ा ही गंभीर हो चुका है क्योंकि आज हम सीधा अटलांटिक ओशन की गहराइयों में जाकर छुप गए हैं। मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। एक तो अंडर वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा है, उफ, और ऑक्सीजन का लेवल भी गिर रहा है। हम एक मशहूर डूबी हुई सिटी के सामने हैं, हाँ, और हमारे ऊपर कांच का एक बहुत बड़ा डोम है। हमें 3 दरवाजे पार करने थे। पहला एक दरवाज़ा पार हो चुका, दूसरा पार हुआ कि नहीं आइए देखते हैं। तीसरा कोरल गेट तक पहुंचना है हमको और ऑलरेडी इस डोम में लीकेज हो चुका है। पानी भरते जा रहा है और हम हार मानने को तैयार नहीं हैं। पहले क्लू को हमने जब सॉल्व किया तो जवाब आया ट्राइडेंट और काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिया, ठीक है। अब दूसरा क्लू मैंने आपको दिया कि मैं अंधेरों में पैदा होता हूँ, एक सख्त पत्थर के घर में छुपा रहता हूँ। हीरे की तरह मुझ में चमक तो नहीं पर मैं बिल्कुल गोल हूँ और चांद की रोशनी की तरह चमकता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? कम ऑन, क्या जवाब हो सकता है? वैसे आई शुड टेल यू कि हमारे ज़्यादातर लिसनर्स ने सही जवाब दिया है। और सही जवाब क्या है आइए बताते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा है डायमंड सही जवाब नहीं है। जिन्होंने भी लिखा है पर्ल, मोती इज द एग्जैक्ट राइट आंसर। जोरदार तालियां भाई आप सबके लिए। तो सही जवाब जिन्होंने दिया है उनके नाम है अकबर, जैद, सैफ, आफ्ताब, उमर, फैजल, मोहम्मद यूसुफ खान। और भी एक शख्सियत है जिन्होंने हमें सही जवाब दिया, उनका नाम है अनमन रूहान। दैट्स सो नाइस, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये जो हमारे लिसनर्स हैं इन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया है, इसलिए आपके लिए जोरदार तालियां। वैसे जो अभी तक हमें जवाब देते जा रहे हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप हमसे जुड़े हुए हैं और कोशिश करते जा रहे हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलें। दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। तो जैसे ही आपने ये जवाब दिया दूसरा रास्ता भी खुल गया। अब हमें तीसरा दरवाज़ा खोलना है ताकि हम तैर के समुंदर से बाहर निकलें। सोचें ज़रा, अगर हम वहाँ डूब गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जहाँ से हमको बच के निकलना है वो तकरीबन नामुमकिन सा लग रहा है। बोलो क्यों? क्योंकि कोरल गेट के सामने एक अजीब सा साया मंडरा रहा है। अब ये इस आखिरी गेट का पहरेदार है। हाँ, पानी जो है ना वो अब हमारी गर्दन तक पहुंच रहा है। बाप रे बाप, इमेजिन कीजिए, मतलब इतनी तेजी से अब पानी भर रहा है। अगर आपने अब सही जवाब नहीं दिया तो चलिए, ये आखिरी मौका है। इस मौके को हम हाथ से जाने नहीं देंगे और हमें उस

क्रिएचर को पहचानना है और यहाँ से निकलना है, स्पेशली ये क्रिएचर जो कि एक साया बनकर इस आखिरी गेट की पहरेदारी कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ा हिंट मैंने आपको दिया है और आपके लिए क्लू अब ये रहा। मेरे 3 दिल हैं मगर रू नहीं, मेरे 8 हाथ हैं मगर पकड़ने के लिए उंगलियां नहीं, मैं भूतों की तरह अपना रंग बदल सकता हूं और गायब होने के लिए पानी में स्याही फैलाता हूं, मैं क्या हूं? कम ऑन, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप इसका जवाब मुझे चुटकियों में दे सकते हैं। अगर आपको जवाब पता है तो जवाब लिखें, अपना नाम लिखें और भेजें 6622107 पर, 6622107 पर। कम ऑन, जल्दी जल्दी मुझे मैसेज करें। एक बबार फिर से मैं दोहराऊंगी कि मेरे 3 दिल हैं मगर रू नहीं, मेरे 8 हाथ हैं मगर पकड़ने के लिए उंगलियां नहीं, मैं भूतों की तरह अपना रंग बदल सकता हूं और गायब होने के लिए पानी में स्याही इंक फैलाता हूं, मैं क्या हूं? थिंक अबाउट इट, थिंक कम ऑन, ये आखिरी गेट है, ये कोरल गेट हमें खोलना ही है वरना हम पानी में डूब जाएंगे, ठीक है? और अभी के लिए क्या करना है? राघव एंड टेजर का ये बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन, लेट्स एंजॉय। स्टेडियम टू FM 1

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और हम एस्केप रूम के बिल्कुल आखिरी मुकाम पर पहुंच चुके हैं। देखिए आज हम अटलांटिक ओशन की गहराइयों में थे, ठीक है। हमारे ऊपर एक कांच का बहुत बड़ा डोम है जो कि लीक हो चुका है, पानी उसमें बढ़ते जा रहा है, समुंदर का दबाव भी

और ज्यादा बढ़ रहा है, द प्रेशर इज टू हाई, और ये ग्लास का टोम टूटे उससे पहले हमें यहां से बाहर निकलना है। वैसे हम इसके अंदर हैं तो हमें तैरना भी बहुत अच्छे से आता है, लेकिन एकदम से पानी आएगा तो हमारे लिए बच पाना बहुत मुश्किल होगा। तीन क्लूज आपको दिए गए, ठीक है? पहले क्लू का जवाब ट्राइडेंट, दूसरे क्लू का जवाब पर्ल, और आप में से काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया। हम इस वक्त कोरल गेट के सामने हैं और उसके ऊपर एक साया मंडरा रहा है। ये आखिरी पहरेदार है। इस आखिरी पहरेदार का नाम हमें गैस करना है। और आपके लिए क्लू, मेरे तीन दिल हैं मगर रूह नहीं। ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिसके तीन दिल हैं? कम ऑन, मुझे बहुत मज़े मज़े के जवाब आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप फोकस करें और सही जवाब दें और इस जगह से बाहर निकलें। मेरे तीन दिल हैं मगर रूह नहीं, मेरे आठ हाथ हैं मगर पकड़ने के लिए उंगलियां नहीं। थिंक अबाउट इट, कौन सा वो क्रिएचर है समुंदर का? मैं भूतों की तरह अपना रंग बदल सकता हूँ और गायब होने के लिए पानी में स्याही फैलाता हूँ। बताएं मैं क्या हूँ? कम ऑन, यू आर वेरी क्लोज। अगर आपने नहीं बताया और सही जवाब नहीं दिया तो आप इस डोम के अंदर डूब सकते हैं, क्योंकि जोर से जब ये कांच का जो ग्लास है, ये बहुत बड़ा जो कांच का डोम बना, ये टूटेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए निकलना। इसलिए हमें कोरल गेट से बाहर निकल के तैर के एकदम समुंदर के पार निकलना है। कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। जल्दी जल्दी मुझे जवाब दें। एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ, मेरे तीन दिल हैं मगर रू नहीं, मेरे आठ हाथ हैं मगर पकड़ने के लिए उंगलियां नहीं। मैं भूतों की तरह अपना रंग बदल सकता हूँ और गायब होने के लिए पानी में स्याही फैलाता हूँ। मैं क्या हूँ? बताए बताए बताए। ये आखिरी जवाब आपको अटलांटिक ओशन के बाहर निकाल सकता है, वरना आप वहीं पर हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे, जान भी गंवा सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश कीजिए, एक म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद आपके जवाब और फाइनल लकी विनर कौन होगा उसका भी जिक्र करेंगे। तो कहीं ना जाए, बने रहे एफएम और उस

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। यस जनाब, अब फाइनली एस्केप का टाइम हो चुका है, एस्केप रूम सुन रहे हैं आप। एंड बड़ा कमाल का आज की सिचुएशन रही कि हम अटलांटिक ओशन के अंदर कैद हुए, जहां पर एक बड़ा सा ग्लास डोम हमारे ऊपर रहा और इसमें लीकेज हो गया और हमें डेफिनेटली 3 दरवाजे पार करने, मतलब तीसरा दरवाज़ा इज़ अ फाइनल डोर जिसके ज़रिए हम तैर के बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो पहला क्लू जो हमने आपको दिया उसका जवाब था ट्राइडेंट, दूसरा क्लू उसका जवाब था पर्ल, तीसरे क्लू के लिए मैंने पूछा कि मेरे 3 दिल हैं मगर रू नहीं, मेरे 8 हाथ हैं मगर पकड़ने के लिए उंगलियां नहीं, मैं भूतों की तरह अपना रंग बदल सकता हूं और गायब होने के लिए पानी में स्याही फैलाता हूं, मैं क्या हूं, बताएं मैं क्या हूं। एंड द राइट आंसर इज ऑक्टोपस। क्या बात है हमारे लिसनर्स, कमाल कर दिया आप सबने। और जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए, आइए उनके नाम जरा दोहरा दिए जाएं। उनके नाम हैं अनम एंड रूहान, जैद, अकबर, सैफ, आफ्ताब, उमर, फैजल, मोहम्मद यूसुफ खान, हुसैन, मिस्टर खान, फातिमा यूसुफ, मोहम्मद अरसलान एंड अरबाज खान। उफ, क्या बात है। वैसे आप सभी ने बड़ा कमाल किया और सही जवाब दे दिया, और जैसे ही आपने सही जवाब दिया, यस, ये बड़ा सा डोम टूटा और आप तैर के सीधा बाहर निकल गए। कैसा फील हो रहा है अटलांटिक ओशन में तैर रहे हैं आप, एंड लिटरली वो वाइब, वो फ्रेशनेस, वो सब कुछ फील हो रही है। हाँ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? चलिए इसी बात पे अब बता देते हैं कि आज के लकी विनर कौन है। आज के लकी विनर हैं हमारे अनम एंड रूहान। भाई जोरदार तालियां, कमाल कर दिया। लगातार आप बने रहे पूरा एक घंटा हमारे साथ और तीनों ही जवाब बिल्कुल सही दिए, जैसे सवाल पूछा वैसे जवाब आया। सोनम रूहान, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, और आप दोनों आज के लकी विनर हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए यहाँ पर हैं, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी जब एस्केप रूम में लेकर

रहूंगी तो कुछ ऐसे ही सिचुएशंस को आप सॉल्व करेंगे अपना दिमाग लगाकर और एक से बढ़कर एक क्लूज को, पजल्स को सॉल्व करेंगे. वैसे जो हमारे लिसनर्स पूरा एक घंटा हमारे साथ बने रहे, बीच बीच में हमसे जुड़ते रहे, कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दिए, कुछ लोगों ने देर से जवाब भी दिए, लेकिन आप सब हमारे साथ थे तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया. कल फिर दोपहर 1:30 बजे आपकी मेरी मुलाकात होने वाली है एस्केप रूम में, तो फिर ज़रूर मिलते हैं, है कि नहीं. और अभी इस दौरान क्या करेंगे, आप डेफिनेटली FM 107 पर जुड़े रहेंगे और FM 107 के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और सोशल मीडिया पे आपकी आरजे मीता भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं. ठीक है, अब जाने का वक्त है और जाते जाते मैं कहूँगी कि हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. और चलते चलते ड्राइव कर रहे हो तो म्यूज़िक अब बिल्कुल लाउड हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा लो. बहुत शानदार गाना है शिल्पा राव एंड सचेत टंडन का, ग्रेट कॉम्बिनेशन. Enjoy the song. Stay tuned to FM 107. Dil Se Desi.

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। यहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो ना सिर्फ एनवायरनमेंट को बेनिफिट देती हैं बल्कि इंसानी जिंदगी में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकती हैं। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं पुराने कपड़े डोनेट करने की। साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं एक रिलेटेबल सीन से जो कि मुझे लगता है हर घर में होता है। घर में वार्डरोब खोलते हैं और फिर एक फेमिलियर सिचुएशन होती है। एक साइड पर नए कपड़े और दूसरी साइड पर वो कपड़े जिनके बारे में कभी कभी हम

सोचते हैं कि ये अब शायद हमें फिट नहीं होने वाला, या वो पुराना हो गया होता है, या वो कभी पहना ही नहीं गया होता। फिर हम सोचते हैं कि इसको रख लेते, शायद कभी तो काम

0: हमारी कबर्ड में, जबकि कहीं और किसी और को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब इस सिचुएशन में इको स्विच क्या है भाई? सिंपल सा आइडिया है, जो कपड़े आप यूज नहीं कर रहे उन्हें किसी और के काम को दे देना। पुराने कपड़ों को डोनेट करना एक ऐसी हैबिट है जो एनवायरमेंट और सोसाइटी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। चलिए अब बात करते हैं ये हैबिट कैसे हमारी हेल्प करती है। देखिए, सबसे पहला फायदा ये है कि वेस्ट रिडक्शन होता है। जब कपड़े लैंडफिल में जाने के बजाय रीयूज होते हैं ना, तो टेक्सटाइल वेस्ट कम होता है। दूसरा फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए, कपड़े बनाने में वाटर, एनर्जी और रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। जब कपड़े रीयूज होते हैं ना, तो नए प्रोडक्शन की डिमांड कम होती है। इसी के साथ तीसरा फायदा है सोशल इम्पैक्ट। आपके पुराने लेकिन पहनने वाले जो कपड़े होते हैं, जो सही प्रॉपर कंडीशन में होते हैं, वो किसी जरूरतमंद इंसान के लिए बहुत वैल्यूबल हो सकते हैं। चौथा फायदा है डीक्लटरिंग। आपका घर ऑर्गेनाइज्ड होता है भाई, स्पेस क्लियर हो जाती है और मेंटल क्लैरिटी भी इम्प्रूव होती है। अच्छा, अगर एक रिलेटेबल एग्जांपल लूँ ना, तो जरा सोचिए कि आपके पास एक जैकेट है जो आप पिछले 2 साल से आपने नहीं पहनी। आप सोच रहे हैं कि भाई कभी ना कभी तो मेरे काम आ ही जाएगी, लेकिन वही जैकेट किसी ऐसे इंसान के लिए विंटर में कंफर्ट बन सकती है जिसे सही क्लोथिंग अवेलेबल नहीं है। आपके लिए वो अनयूज आइटम है भाई, लेकिन किसी और के लिए वो किसी की नीड हो सकती है। लेकिन दोहा जैसे सिटी में जहाँ डाइवर्स कम्युनिटी रहती है, ये हैबिट और भी मीनिंगफुल हो जाती है। यहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग रहते हैं और डोनेशन कल्चर ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है। आप इजीली चैरिटीज, डोनेशन बिन्स या कम्युनिटी इनिशिएटिव्स के थ्रू अपने कपड़े फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करूं, तो वार्डरोब डीक्लटर रूटीन बनाएं अपनी। हर 3 से 6 महीने बाद अपने कपड़ों को रिव्यू करें और जो यूज नहीं कर रहे उन्हें सेपरेट करें। कंडीशन चेक करें ना कपड़ों की, सिर्फ क्लीन और रीयूजेबल कपड़े डोनेट करें ताकि वो डायरेक्टली किसी के काम आ सके। तो ये सीजनल डोनेशन भी आप चाहें तो कर सकते हैं। विंटर क्लोथ्स विंटर से पहले और समर क्लोथ्स समर से पहले आप डोनेट कर सकते हैं टाइमिंगली। ऑर्गेनाइज्ड पैकिंग करें, कपड़ों को फोल्ड या पैक करके डोनेट करें ताकि डिस्ट्रीब्यूशन इजी हो। अच्छा हाँ, एक और चीज ये कि किड्स को, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। बच्चों को सिखाएं कि अपने आउट ग्रोन कपड़े किसी और के साथ शेयर करना एक पॉजिटिव हैबिट है। अच्छा, इस चीज का ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया का सबसे रिसोर्स इंटेंसिव इंडस्ट्री में से एक है। एक सिंगल कॉटन शर्ट बनाने के लिए काफी वाटर यूज होता है और मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए जब आप एक कपड़ा रीयूज या डोनेट करते हैं ना, तो आप इनडायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक और रिलेटेबल बात मुझे याद आती है। देखिए, अक्सर हम ना इमोशनल अटैचमेंट की वजह से कपड़े रख लेते हैं। ये शर्ट मेरी पहली जॉब इंटरव्यू पे मैंने पहनी थी, ओ माय गॉड। या फिर होता है कि भाई ये ड्रेस मैंने किसी फलाने स्पेशल ओकेजन पे पहना था, तो ओ माय गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लेकिन याद रखें, मेमोरी दिल में होती है ना, वार्डरोब में नहीं। कपड़े आगे किसी और के काम आ सकते हैं, जबकि यादें आपके साथ रहती हैं। तो भाई, आज का इको स्विच सिंपल है, जो कपड़े आप यूज नहीं कर रहे उन्हें डोनेट कर दें मेहरबानी करके। आज का चैलेंज ये है कि भाई आज या इस वीक आप अपने वार्डरोब को सेक्शन करें, खोलें, देखें, कम से कम 3 या 4 आइटम आप ऐसे निकालें, आइडेंटिफाई करें, एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो करें पहले कि आप इन्हें यूज करते भी हैं कि नहीं, और उन्हें डोनेशन के लिए सेपरेट करें अगर आप उन्हें यूज नहीं करते, और अगर पॉसिबल हो किसी लोकल चैरिटी या कलेक्शन पॉइंट तक उन्हें पहुंचा दें, या वो जो बॉक्सेस होते हैं डोनेशन के उनके अंदर डाल दें। तो साथियों, जेनरोसिटी सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं होती। कभी कभी एक सिंपल शर्ट, एक जैकेट या एक ड्रेस किसी की लाइफ में कंफर्ट और डिग्निटी ला सकता है। और जब हम अपनी एक्स्ट्रा चीजें शेयर करते हैं ना, तो हम सिर्फ कपड़े नहीं देते बल्कि रिस्पेक्ट और केयर भी शेयर कर रहे होते हैं। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे सच बोलने की अहमियत पर। सच बोलना एक मोमिन की पहचान होती है। सच्चाई इंसान को इज्जत और भरोसा देती है, जबकि झूठ इंसान की वैल्यू कम कर देता है। कभी कभी हमें लगता है कि छोटा सा झूठ बोलकर किसी मुश्किल से बच जाएंगे, लेकिन असल में ये आदत धीरे धीरे जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर हाल में सच बोलना चाहिए, चाहे वो कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो। सच्चाई थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन आखिर में इज्जत और सुकून देती है। आज का अमल ये है कि पूरे दिन अपनी बातों पर फोकस करें और सिर्फ सच बोलने की कोशिश करें, चाहे छोटी बात हो या बड़ी। सच दिल को हल्का करता है और रिश्तों को मजबूत करता है। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
3: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
4: One Step to 2030.
3: आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं दोस्तों कि रिन्यूएबल एनर्जी फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। रिन्यूएबल एनर्जी है क्या? रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जो खत्म ना हो, जैसे सोलर और विंड एनर्जी।

0: फॉसिल फ्यूल्स जैसे ऑयल या फिर गैस लिमिटेड है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए क्लीन एनर्जी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है और पॉल्यूशन कम करती है। ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में मदद करती है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये एनर्जी हमारे बच्चों के लिए भी अवेलेबल रहेगी। आज के दौर में इसकी रेलेवेंस और बढ़ चुकी है। बिजली की डिमांड बढ़ रही है और पॉपुलेशन भी। सोलर पैनल्स और ग्रीन या क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस जो है वो इसका एक बेहतर जवाब है। वहीं पर आप और हम बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, बहुत ही अहम रोल। घरों में सोलर पैनल्स लगाना, बिजली को जाया होने से रोकना और क्लीन एनर्जी पॉलिसीज को सपोर्ट करके हम जो है गवर्नमेंट के इस विजन को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। कतर नेशनल विजन 2030 का सबसे अहम मैसेज ये है कि डेवलपमेंट का मरकज इंसान होना चाहिए। अगर लोग सेहतमंद, तालीम याफ्ता और स्किल्ड होंगे तो मुल्क खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। शायद इसीलिए मैंने बात की थी ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है बेहतर एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर और ऐसे स्किल्स जो फ्यूचर जॉब मार्केट से मैच करते हो। विजन इस बात पर भी यकीन रखती है कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन ह्यूमन पोटेंशियल अनलिमिटेड। इसीलिए कतर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन और टैलेंट डेवलपमेंट में हैवी इंस्ट्रूमेंट्स और हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। विजन ये भी इंश्योर करती है कि लोग सिर्फ अर्निंग मशीन्स ना बन जाएं, बल्कि बैलेंस्ड और प्रोडक्टिव सिटीजंस रहें। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ चॉइस नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल की एक जरूरत है। सो आज के डिसीजंस कल की सिक्योरिटी बनाते हैं। आज सही फैसला कीजिए। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.

0: FM 107 Time Check.
1: टाइम तो चलो 4:01 हो लिया, लेकिन अभी वो लोग पकड़े जाएंगे जो बिना रेडियो सुने मैसेज करते हैं भाई क्योंकि बहुत सारों ने लिख दिया होगा पहले, गुड इवनिंग फजील साहब, गुड इवनिंग फजील भाई, आज सब पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे जिन्होंने बिना सुने मैसेज किया होगा। आज धर लिया भाई साहब, क्योंकि आ लिया आपका भाई भाई साहब, आज 5:01 पहले बज गए हैं यूं समझ लीजिए, 4:01 में दोहा वाला कबीर FM 107 पे, इनफैक्ट 4:02 हो चुके हैं। अब जरा मैसेज की तरफ रुख कर लूं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई, क्या हाल है भाई के। एक मैसेज है, ये खादिम भाई ने पहला वाला डिलीट कर दिया फौरन उधर फजील लिखा था, अभी फौरन चेंज किया, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, गुड इवनिंग। ये पकड़े गए, खैरियत है आज यूसुफ भाई, वालेकुम सलाम, सब खैरियत है इस टाइम पे, इसलिए क्योंकि फजील भाई छुट्टी पर है, 10 दिन की छुट्टी है उनकी, बढ़िया उन्हें मौज काटने, तो भाई तो वो गए हैं मौज काटने, तब तक आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है, 4 से पूरा 7 बजे तक आपके साथ हुए, ठीक है भाई, बढ़िया हो लिया। अच्छा तो है तो रिक्वेस्ट हो, लेकिन गाने जो है आज मैं बताता हूँ कैसे कैसे चलेंगे। फिलहाल मैसेज पढ़ दूंगा, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई जान, कैसे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरा भाई, आपकी आवाज़ दिल पे भाई, दिल पे लागेगी, ऐसा दिल के भूख फरवा जाएंगे भाई, मजा आ जाएंगे। ये कौन से भाई हमारे, एक सेकेंड नाम तो पढ़ दूँ मैं, एम के भाई क्या हाल है मेरे भाई के। एक मैसेज है, हाय कबीर भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे जान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कब भाई, अस्सलाम वालेकुम कब भाई, भाई अहमद भाई अभी 10 दिन तक आपका भाई 4 बजे से आएगा क्या। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, ऐसे हैरान मत किया करें, मेरा दिल कमजोर है ये तो आदत है, मैं हूँ आदत सही मजबूर, ये तो मैं करता रहूंगा। बाकी हाँ, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रहे, तो कुछ गाने आपकी मर्जी के, कुछ गाने मेरी मर्जी के, मिल बांट के कर लेंगे भाई शो। वैसे तो फजील भाई के जिम्मे है सब कुछ, लेकिन 10 दिन की छुट्टी है। यूसुफ भाई कह रहे हैं हाय, है 10 दिन की छुट्टी अचानक, सब खैरियत है भाई, सिर्फ बीमारी के लिए थोड़ी लेते हैं छुट्टी, मौज मस्ती करने के लिए, भाई को हक है मजे करने का, 10 दिन की छुट्टी मौज करेगा अपना भाई बढ़िया करके, 10 दिन के बाद आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी 666-22107 नंबर है, 666-22107, आज के ज़माने में जितने भी पार्टी नंबर्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत ही वायरल हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो चलें FM 107 पर, तो अपने अपने रिक्वेस्ट ज़रा भेज दीजिएगा, नाम और रिक्वेस्ट भेजिएगा प्लीज़, आज के ही ज़माने के। ओके तो अगर

आप रेट्रो भेजेंगे, मैं ना चलाऊं तो आप मेरे पीठ पाछे मुझे सुना रहे हूं, तो वो ना चलेगा भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, कहानी का भाई पहले कहानी ले, मेरी शक्ल देखते के साथ ही, आवाज़ सुनते के साथ ही सबसे पहले लोगों के सामने कहानी कहाँ है। कहानी आएगी, डेढ़ घंटे है उसमें भाई, डेढ़ घंटे बाद आएगी, 5:30 बजे आएगी कहानी। और आज की कहानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खादिम वगैरह, खादिम भाई, पार्टी नंबर तेरे मस्त मस्त दो नैन इज नॉट अ पार्टी नंबर। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम हिशाम साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, क्या हाल है? क्या मौज मस्ती के लिए छुट्टी मिली है क्या हमसे? भाई बिल्कुल मिलती है यूसुफ भाई। या कल तो फजील भाई ने कुछ नहीं बताया, फजील भाई ऐसे ही हैं, कुछ बताते थोड़ी हैं, पतली गली से निकल रहे हैं वो तो बढ़िया करके। जब आए तो उनसे हिसाब किताब ले लीजिएगा, वो आपको बता देंगे क्योंकि छुट्टी उन्होंने क्यों करी है। फज्जू भाई नहीं है, फज्जू भाई छुट्टी पे गए हुए हैं। फज्जू भाई के लिए आप चिट्ठी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपके कागज़ पत्र टेलीग्राम सब उन तक पहुँचा दूँगा, और आपकी आवाज़ें भी ज़रूर। बट शो की शुरुआत करेंगे एक गाना मेरी तरफ से, फिर बाकी गाने आपकी तरफ से। और इन्होंने जब पहली रिक्वेस्ट दी है तो सबसे पहले यही चलाया जाएगा। किधर गया भाई, किधर गया, ये रहा भाई गाना, बढ़िया। तो ये गाना क्योंकि रिक्वेस्ट किया है इसका खादिम भाई ने, खादिम भाई की पसंद पे सबसे पहला गाना अफगान जलेबी। 4:05 मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आज रहा भाई साहब लठ गार्ड के। क्या चल रहा है? बढ़िया

वो डायलॉग था ना, ऐसी मीना कुमारी के लिए तो छाती में गोली खाऊंगा छोटे। यूसुफ भाई हैरान हो गए। यूसुफ भाई कह रहे हैं अरे कबीर और रिक्वेस्ट हो ये मतलब। भाई नौकरी क्या ना करा ले यूसुफ भाई, क्या नहीं करा सकते नौकरी, बट फिर भी मेरी तो चलेगी भाई थोड़ी सी, मैं भी चलाऊंगा अपनी, अगला मेरी रिक्वेस्ट का ही चलेगा, फिक्र ना करो आप। हाँ जी, तो जब आप आए हैं तो इमोशन के साथ प्रमोशन भी होना चाहिए। आज की कहानी जो डेढ़ घंटे बाद आएगी बिल्कुल आग ला देगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ऐसी स्टोरियां मिलना मेरे लिए महीने में एक मरतबा मिल जाए तो मुझे लगता है मुझे गोल्ड मेडल मिल गया है, ये उस किस्म की कहानी है। और मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में है, मिस्ट्री है, हॉरर है, क्या है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पर मैं सब सुनाऊंगा तो आप टिके रह जाएंगे, डट के सुनेंगे आप, ये इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बाकी रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत सारी है, मैंने आज कहा पार्टी नंबर्स बताने आपको, पार्टी नंबर जो बढ़िया आपको लगता है, इनकी जिन गानों की वाइब है थोड़े से वायरल हुए हैं, जिनमें कुछ है सुनकर लगता है हाँ यार ये तो मतलब ये तो बढ़िया गाना है, तो ऐसे गाने की रिक्वेस्ट चाहिए मैं प्ले करूंगा। मलिक वकास साहब ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या हाल है, आपकी आवाज़ आफ्टर लॉन्ग टाइम सुन रहा हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ कतर था, स्टोरी अगर सुन पाया तो ठीक है वरना मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे। मलिक वकास भाई ने लिखा है ये एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आपकी आवाज़ सीधा दिल पर अटैक करती है, तारीफ है, ठीक है। एक मैसेज है, आपने शो में कभी किसी की रिक्वेस्ट नहीं प्ले करी और अभी पूरा शो देखो, यही ये आयरनी है यूसुफ भाई, कंपनी ने बोला अच्छा तुम रिक्वेस्ट नहीं प्ले करते हो पर हम भी ढीठ हैं भाई, हम भी अपनी मर्जी की चलाएंगे नहीं यूसुफ भाई, क्या समझ रहे हो आप, आपका भाई ऐसे थोड़ी टेढ़ा ही चलता है थोड़ा सा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं इस वक्त आपको सुन के बड़ा हैरान हूँ, अनीस भाई हैरान क्यों है, एक पहले भी आ चुका हूँ मैं 4 बजे, यार लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं जैसे उन्होंने 4 बजे कोई भूत सुन लिया हो, अरे मैं ही हूँ, क्या हो गया। यूसुफ भाई खादिम साहब कह रहे हैं फजील भाई के लिए वारंट जारी करें या ऐलान गुमशुदगी, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मौज करने दो भाई, उसकी भी छुट्टी है, जी लें दो भाई को यार, 10 दिन तक उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई छिड़े ना हमारे भाई को, टेंशन फ्री होके गया वो, वैसे भी लोग बोलते हैं मेरी और उसकी आवाज़ मिलती है तो यूं ही समझ लेना क्या जाता है। बाकी 666-22107 नंबर है, जैसे मैंने कहा इनकेस यू हैव हर्ड एनी पार्टी नंबर जो रिसेंट टाइम्स हमने सुना और आपको लगता है कि काबिल है, इसके लायक है, तो सुनो मुझे जरूर बताना 666-22107 पे। एक मैसेज आया, हाउ आर यू कबीर, हाउ आर यू, रोज सुबह सुबह आपको सुनकर एकदम बूस्टर मिल जाता था, अच्छा थैंक यू सो मच, मैं आएगा मैसेज पढ़ नहीं सकता फॉर सम रीजन। मजहर भाई बहुत सारा प्यार मजहर भाई को, थैंक यू। अब एक गाना जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा चला है और ये कोलेबरेटिव मोड जो है आजकल चल पड़ा है, एक ट्रेंड चला है जहाँ पर हमारे बॉलीवुड के जो सिंगर्स हैं वो अरेबिक सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कमाल कमाल के पार्टी नंबर आते हैं, रोमांटिक गाने आते हैं और ये सिलसिला चलता ही आ रहा है। वन ऑफ द ट्रैक्स दैट आई एक्सट्रीमली लव और एक भाई ने मेंशन किया वो, इसे इनका नाम देख लूँ मैं, नाम क्या है भाई का, और सलन शब्बीर भाई, भाई शब्बीर ने बोला ये और अच्छा गाना बताया, proud of you bro, proud of you, Shreya Ghoshal and distinct zalima, not exactly a party number magar iski vibe bahut badhiya hai, 4:12 mein doha wala kabir fm 107 pe।

यार ऐसे सीटी बजाने नहीं आती, बस ये परेशानी है। काश मैं भी सीटी बजा सकता, मैं उन लोगों से बड़ा मुझे जलन सी होती है जो लोग जो है ना वो सीटी बहुत बढ़िया बजाते हैं, वो जो उंगली उंगली से सीटी बजती है ना, ओए होए होए कैसे कर लेते हो यार। बाकी 4:15 हो रहे हैं, एक भाई ने मुझे मैसेज किया, दो गाने भेजे थे उन्होंने, डीजे वाले बाबू और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, तो मैं दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड चला देता हूँ, इनका नाम बता देता हूँ, इनका नाम है आई, ये तो हमारे घर से आ गया मैसेज भाई मारी वाली ने मैसेज कर दिया, घर वाली कह रही है दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, ठीक है चलाना पड़ेगा, ये तो नहीं चलाया तो दिक्कत हो जाएगी नईम भाई कह रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई नईम, क्या हाल है। एक भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आपका शो सुन के मुझे कभी लगता ही नहीं आप रेडियो पे हैं, हैं? एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि आप गाड़ी में हमारे साथ बैठे हुए हैं, आर फैमिली लव्स यू अलॉट एंड वी होप टू सी यू समडे। ये मुझे मैसेज किया रिशाद भाई ने, रिशाद भाई दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू भाई, दैट इज़ रियली सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, आज 4 बजे आ गए जी भाई, डीबी भाई आज आपका भाई 4 बजे आ गया, तो दो गाने बैक टू बैक। एक भाई ने बोला है कि कबूतर लाडो भाई उड़ जा रहा, कबूतर लाडो भाई ये कौन सा गाना भाई। एक मैसेज कह रहे हैं फजील भाई, आपकी आवाज़ कबीर भाई जैसी लग रही है या मेरे कान, क्या मेरे कान ही उड़ गए फजील भाई नहीं अभी अवेलेबल। ये उड़ जा रहे कबूतर कौन सा गाना भाई, मैंने नहीं सुना भाई, मेरी नॉलेज थोड़ी कम हो सकती है इसमें। एक मैसेज है शमशाद आलम का, वालेकुम अस्सलाम शमशाद भाई, हरियाणवी है, हरियाणवी गाना मैंने नहीं सुना, उड़ जा रहा कबूतर लाडो भाई, लाडो वाला तो एक गाना मैं चला दूँ, ये वाला गाना ना भाई मेरे पास, मैं दूसरा वाला चला दूँ चलेगा। एक सेकेंड रुको मैं ज़रा वो लगा देता हूँ, दो गाने बैक टू बैक चलेंगे भाई, दो रिक्वेस्ट आ गई हैं हमारे धुरे व्हाट्सएप पे। एक तो भाई और गाना किधर गया, आ गया जी, दो गाने चलेंगे बढ़िया बढ़िया बैक टू बैक, ठीक है। और सबसे पहला गाना भाई ये दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, ये हमारे घर से आई है रिक्वेस्ट, घर वाली कह रही है, तो सबसे पहले तो ये चलेगा। कह रहा मैं भी कंफ्यूज हो गया कबीर भाई और फजील भाई की आवाज में ये क्या हो रहा है, कि मेरे साथ के स्टूडेंट क्या क्या था, क्या सिटी मारता है सीखो क्या घर में SMS आया, सॉन्ग लगा दीजिए वरना 7 फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, इसलिए तो डर के मारे चल रहा है गाना अरवाज भाई

भाई हमारे घर वाले ने बोला था तो चलाना पड़ा है। अच्छा एक मैसेज आया मेरे पास, यूसुफ भाई कह रहे हैं कबूतर जा जा बोल रहे हैं। ना जी वो अलग गाना नहीं कह रहे, वो हरियाणवी गाना कह रहे हैं। एक मैसेज और आया, सर आप तो मेरे ख्याल से 5 बजे आने वाले थे, आपका 5 बजे वाला वेट करते कहीं। एक सेकेंड, सर उनकी है, सर की आवाज़ कबीर सर जैसी है, लेकिन मैंने फिर बोला कि फजील आते हैं। नहीं अरे हम दोनों की आवाज़ इतनी मिलती है क्या? अरे फज्जू मेरा भाई कहाँ बोलो तुम, ऐसा नहीं है, उसकी मेरी आवाज़ बहुत अलग है यार। कमाल हो गया, फजील भाई जैसी मेरी आवाज़ है, मुझे बार बार जब पता लगता है तो मुझे हैरानी काफ़ी होती है। हो सकता है हमारी बोलने की डिलीवरी अलग अलग हो, आवाज़ तो नहीं है यार, आवाज़ सेम तो नहीं है। इमरान भाई वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और अगला गाना भाई, मैं आपका गाना वो मिला नहीं मुझे, हरियाणवी गाना जो आप बोल रहे हैं, क्या नाम था इनका, ये नाम था हुसैन भाई का, इन्होंने जो गाना बताया था भाई वो लिस्ट में ना है, वो उड़ जा रहा कबूतर लाडू, मैं एक बार ही फिर देख लेता हूँ भाई आपके कहने पर, रुक जाओ, उड़ जाई, हो सकता है मैं गलत हूँ भाई, यू नेवर नो। ना जी वो गाना तो नहीं है भाई, लेकिन लाडोस जुड़ा हुआ एक गाना है जो अगली रिक्वेस्ट में चला रहा हूँ, ये एक्सेप्ट कर लेना भाई मेरी तरफ से, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, कॉन्स्टिलेशन प्राइज़ मिलता ना वैसा वाला सीन, क्योंकि गाना मिला नहीं भाई पर आपको सुना था हरियाणवी तो वो चला देते। नसीम भाई कह रहे हैं कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, मेरी जान जिगर के टोटे, पार्टी वाले गाने, पार्टी वाले गाने, वो वाले चलेंगे ठीक है। एमसी स्क्वायर लाजी दूसरा लड्डू ला लिया हमने तो, तमने तो फेरा भाई, जो गाना तो चल लेगा। 5:23 हो रहे हैं भाई,

0: हुसैन भाई बढ़िया था गाना, मौज आ गई आपको। अच्छा एक मैसेज आया भाई ने, मुझे जो चीज़ भेजी है ना मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ बहुत टाइम से। एक सेकंड रुको, ये इनका नाम मैं देख लूँ पहले। अलीम भाई ने मुझे फालसो के फोटो भेजे। भाई ये फालसे सबसे पहले कहाँ मिले मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं मेरे आसपास लोगों को बताना बड़ा मुश्किल होता कि फालसे होते क्या हैं। हमारे दिल्ली में आया करते थे भाई, गलियों में ठेला लेके और आवाज़ लगाते थे, काले काले फालसे मणे रसिंगे फालसे। अब आते ही नहीं है, मत ऐसे मत तड़पाओ फालसो के फोटो भेज के। मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे सब सुनने वालों को सलाम, आपकी आवाज़ सुनता हूँ तो मज़ा आ जाता है, खुश रहो भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आपको मलिक भाई। भाई एकदम बढ़िया डीपी लगाई है भाई ने, एकदम लग रहा है तुम जाट छोरा अपना। और ये फालसे भाई मुझे बताओ ना एड्रेस, ये फालसे का फोटो भेज के मत जाओ, ये बताना पड़ता है ये फालसे है ना ये। अगर ये फालसे हैं तो अभी के अभी मेरे को बताओ, अभी के अभी। एक मैसेज है, कल रात क्या कल रात मैंने तू आई नहीं। देखो कुछ गाने यहाँ नहीं चलते हैं, ठीक है तो वो नहीं चल पाएंगे। तुफैल भाई कौन नहीं आया? तुफैल भाई परेशान है किसी को लेके? तुफैल भाई किसको लेके परेशान है? एक मैसेज है, इनाम मिला था, हाँ मिल जाएगा भाई, डोंट वरी। अगर आपने इनाम जीते हैं शोज में तो डोंट वरी, इफ़ यू हैव वन रिसेंटली यू विल गेट इट, डोंट वरी। फलक भाई वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे जान, कैसे हैं आप? ओके तो एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, मैं कह रहा था आपकी रिक्वेस्ट जो है ना, जो पार्टी नंबर है वो आप बता सकते हैं एंड लेट मी नो। क्या आज आज कहना भेज देना, ओके क्या आज कहना भेज देना, समझा नहीं। और ये फालसे के फोटो देके भागो मत भाई, बता दो यार। अस्सलाम वालेकुम, यस यस ये फालसे हैं, इट्स फॉर यू सॉन्ग रिक्वेस्ट, बूम बूम। सेकंड का एक सेकंड को शायद है कि नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर। पर ये जो आपने लिए हैं फालसे भाई, ऐसे मत करो, बताओ ये कहाँ से हैं, किधर हैं ये, प्लीज़ मुझे बताएं, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो। कुछ गानों का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ता है, मैं कर लूँगा। मैसेज कबीर, फालसे क्या है? देखा मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, इंडिया में भी लोगों को हर स्टेट में फालसे नहीं पता है, इवन मुंबई वालों को भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं कह रहे हैं अभी सर्च किया, ये फ्रूट मैंने नहीं, ये फ्रूट भी नहीं है, ये क्या कह रहे हैं उसे भाई, अब पता नहीं क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में, पर बहुत बढ़िया क्यूट से दिखता है, इसको शायद कुछ और नाम से बुलाते हैं भाई, हम तो फालसे कहते आए बचपन से। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, फालसे आपको पाकिस्तान, ओके भाई ये मैं लेने जाऊँगा, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। एक मैसेज है, फालसे अरब में आने का बाद फ्लूस हो जाता है, क्या सादिक भाई? देखो मेरी लैंग्वेज में बात करो, मेरी भाषा में बात करो। कॉल नहीं उठा रहे, कौन उठा रहा, मैंने उठा रहा, इज इट? एक जरूर को कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: भाई, कॉल पे ये कौन आ गया, क्या नाम है आपका?
1: खलील पराचा कर रहा हूँ सर।
0: अरे क्या हाल है भाई के?
1: अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला। फालसा जामन ये तो गर्मी की सौगात है ना।
0: हाँ फिर
1: तो ये तो मिलनी चाहिए कतर में, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ इसको।
0: ठीक है तो आप भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, दोनों की तलाश जब पूरी हो जाएगी तो दोनों बोरे भर के लेके आएंगे भाई। क्योंकि बहुत सारे लोगों को खरीद भाई मिल नहीं रहे, ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है फालसे होते क्या है, अंग्रेजी में से कुछ और नाम होता है, मैं सर्च नहीं किया अभी, पता लग जाएगा अभी क्या नाम है। बट
1: नहीं, फालसे तो गर्मी में और शुगर के लिए ये जामन ये बहुत बेस्ट होते हैं
0: भाई। मैं तो मुफीद चीज की बात नहीं कर रहा, चटोरा हूँ मैं तो, मुझे मतलब है इसमें बढ़िया सा काला नमक डाल के खा लिया जाए, क्या कहते हो? बढ़िया चीज है। ये यूसुफ भाई कह रहे हैं ये बेर, भाई बेर जैसे नहीं, बेर जैसे दिखते हैं लेकिन बेर नहीं है भाई, ये है
1: नहीं नहीं बेर नहीं, फालसे खट्टे खट्टे से होते हैं,
0: खट्टे खट्टे से होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं, ये लोगों को जब खाएंगे तो दीवाने हो जाएंगे। और सलील भाई क्या चल रहा है, सब बढ़िया?
1: बस आपका प्रोग्राम सुन रहा था, मेरा बड़ी अच्छी आपकी स्टार्टिंग होती है, माशाल्लाह
0: होती भाई।
1: स्टोरी भी बहुत अच्छी
0: थी, थैंक यू सो मच,
1: माशाल्लाह स्टोरी भी बहुत अच्छी थी।
0: जज़ाकअल्लाह खलील भाई, बहुत मोहब्बत आपको, और आज भी बहुत बढ़िया स्टोरी भाई, आज बड़ी काम की स्टोरी है खलील भाई, तो वक्त निकालिएगा सुनिएगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई?
1: इंशाल्लाह।
0: और फाल से मिले तो भाई आपका मैसेज चाहिए फिर,
1: मुझे भी बताइएगा, जामन की और फालसे इनकी मुझे भी तलाश है।
0: डन है खलील भाई, दोनों भाई मिलके खाएंगे, मैं बताता हूँ आपको,
1: इंशाल्लाह।
0: ठीक है भाई, इंशाल्लाह। ओके भाई जान, अल्लाह हाफिज़।
1: बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और खलील भाई के बाद एक और कॉल आ रही है, जरा उठा लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो
2: हेलो
0: हेलो, हू इज दिस?
2: I'm good. How are you doing?
0: Is this my friend Fawad? How are you doing today?
2: I'm good. I had a good falsa.
0: Oh, you had good falsa?
2: Yeah.
0: But what do you call falsa in English? Do you have a clue?
2: I sent you in text. Read it though.
0: Sorry.
2: I send you in English. It's very hard. It's called Jorniwa.
0: My God, you just said it like it was nothing. So painful. My eyes and ears are not working anymore.
2: Yes, it's Jorniwa.
0: फवाद भाई, ये जो नाम है लोगों को बता देंगे, ये ग्रेविया, ग्रेविया ये कौन सा नाम है, किसने दिया नाम ये? आई डोंट नो, कहां से मिला होगा नाम,
2: इसको पता नहीं, अजीब सा नाम दिया हमने सारी जिंदगी, फालसा ही सुना
0: है। हम तो फालसे कहते हैं भाई, कुछ लोग अभी यूसुफ भाई भी कह रहे हैं काले जामुन, ना भाई काले जामुन ना है वो,
2: नहीं काले जामुन नहीं होते, ये ना बेर होते, दोनों के बीच छोटा साइज होता है इसका, और इनकी बहुत शॉर्ट स्पैम होता है। जितने भाई सुन रहे हैं ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, ये आते हैं थोड़े अच्छे के लिए, खत्म हो जाते हैं, अच्छे खासे महंगे होते हैं शुरू में, जब ये खराब होने लगते हैं तो महंगा होना शुरू होता है।
0: करेक्ट करेक्ट। तो ये फौद भाई, आप जो है लोकेशन सोकेशन भेज दीजिएगा भाई, जहाँ मिल रहे हो। ठीक है भाई,
2: ठीक है सर, मैं शेयर कर दूंगा। मैं तो मंगाए थे पाकिस्तान से भी।
0: अच्छा, तो आपको जरा भी मतलब 2 रुपए या 2 रियाल की शर्म आई कि भाई के लिए मंगा दूं, उसको ही फाल से खाने होंगे? लगा कभी
2: सर, मैंने जूस बना रहा है सर, मैं आप ही को बुला दूंगा।
0: अच्छा, नहीं आप देखिए, आप बात को पलटिए मत, ये मैन्युपुलेटर मत बनिए आप, ठीक है? कि मैं तो जूस बना ही रहा था, बुलाने ही वाला था मैं। सब पता, देखो भाई, मैं तो सबसे गुजारिश करूंगा, ये तो हमारे बहुत जिगरी भाइयों में से हैं, जितने भी पाकिस्तान से हैं, जब भी आप पाकिस्तान जाएं, भाई के लिए फल जरूर लेके आए गर्मियों में, प्लीज। फाद भाई, आपके लिए तो
2: यहाँ पे 2-3 चीजें जो नहीं मिलती है, एक फालसा हो गया, जामुन हो गया, लीची हो गई, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, लोकाट हो गया, ये ऐसे बिक रहा होता है लुलु, ये बाकी जहाँ जाओ तो ऐसा सोने के भाव है।
0: हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ
2: यार, ये तो माल दरख में लगे हुए थे यार,
0: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो आपका तो भाई लाना बनता है, आपने ये नहीं बोला कि मैं ले आऊंगा, समझ रहे हैं आप कितने कैसे खेल गए आप।
2: मैं असल में गर्मियों में जाता ही नहीं हूँ सर।
0: तो कहाँ से, जहाँ से मंगा रहे हैं उनको मेरा नाम नहीं ले सकते आप, एक बोरी में मतलब?
2: मैंने कहा हुआ है सर, मैंने कहा हुआ है।
0: अच्छा, कहा हुआ है,

0: नहीं, कमिट कर दिया है आपने
1: सर, आप तो कमिटेड हो गए सर,
0: बिल्कुल जी
1: हो जाएगा, बस खत्म कर।
0: फवाद भाई को बहुत सारा
1: टाइम बोल रहा, आपकी वजह से मैंने क्यों चार्ज।
0: हाँ हाँ हाँ, मेरे पे पर्ची फाड़ दो ना। सही है बात भाई, सही है
1: ठीक है। मीटिंग भी आ गई लेकिन मैं निकला 4 बजे आपकी वजह से।
0: हाय हाय हाय हाय मोहब्बत, मेरा भाई क्या घुमाया है बात को, बहुत प्यार भाई को। थैंक यू बहुत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी दुआ में याद रखिएगा मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो फवाद भाई के बाद कुछ मैसेजेस हैं। याया भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा ये अब लाना पड़ेगा, एक मैसेज है, मिलते हैं पर मुझे पता नहीं कहाँ मिलते हैं। ये अच्छा था, मुझे पता नहीं कहाँ मिलते हैं लेकिन मिलते ज़रूर हैं। ये अच्छा मैसेज हुसैन भाई, मेरे साथ भी ये मिलते कहाँ ये नहीं पता, मिलते ज़रूर हैं भाई। टेल अस कहाँ से मिलेंगे। फाल से वकास भाई ने मैसेज किया, सब मुझसे ही पूछ रहे हैं। फाल से पंजाबियों की बैरी है। मई से स्टार्ट हो गए जून मिड तक, आप ये भी हम पंजाबियों का ही बना दो। फेसबुक पर सर्च करो दोहा में मिलते हैं, सोशल मीडिया पे सर्च करो, कह रहे हैं मिल जाते हैं। क्या चीज़ है ये, ले फोटो भेजो। फाल से की शादी करानी है आपने, फोटो भेजो। इस फालसे के लिए ये लड़की ढूंढनी है। एक मैसेज, गुड आफ्टरनून ब्रो, हाउ आर यू डूइंग, ग्लैड टू हियर यू मैन। ब्रो यू नो व्हाट व्हाट आई ब्लेंडेड अप विद द रेड लूसी एंड मिस्टर ग्राम स्टोरी टुगेदर एंड ट्रस्ट मी इट समथिंग एल्स। आई वाज फीलिंग लाइक आई एम क्रिस्टोफर नोलन, एब्सोल्यूट सिनेमा। यही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, सलाम भाई, हाउ आर यू। सुरजीत भाई थैंक यू सो मच। एंड एक कॉल आ रही है, रुक जाओ भाई, कॉल उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, के हाल है भाई थारे।
0: भाई जान एकदम बढ़िया चल रहा है मेरा भाई, के ढंग से भाई
2: गाबा बोलने लग रहा है भाई।
0: हाँ भाई गाबा जी, के ढंग है मेरा भाई, क्या चल रहा है।
2: बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, धूप के मजे ले रहे हैं बड़े भाई।
0: धूप के मजे भाई, ये धूप मजे लेने वाली थोड़ी हो रही है।
2: मजे लेने वाली है भाई,
0: भाई ये माथे पे थप्पी दे जाए भाई, ये वाली गर्मी। बहुत डेंजर हो रही है भाई। और क्या, ऐसी गर्मी में कहाँ निकले मेरी जान, कहाँ किधर क्या क्या सफर चल रहा है।
2: बस मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ बड़े भाई।
0: अच्छा ड्यूटी से भी आए, ड्यूटी कब से कब तक रहती है भाई।
2: ड्यूटी भाई सुबह 8 से लेके 4 बजे तक।
0: अच्छा ठीक है, डन डन है। और गाबा भाई आपको तो पता है फालसे क्या होते हैं।
2: फालसे जी बिल्कुल पता है जी, मगर मैंने खाए बहुत कम है जामुन के मुकाबले।
0: हाँ
2: जी, जामुन तो एक ऐसी चीज है ना, वो तो बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे वहाँ पे।
0: हाँ बहुत मुफीद चीज है, बहुत ज्यादा मुफीद चीज है, बड़ी काम की चीज है। वो
2: काम की चीज है, आप यकीन मानिए कबीर भाई, वो तो हम लोगों ने इतने तोड़ तोड़ के खाए है ना वो, क्योंकि उसका जो पेड़ है ना सर, उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर हाँ। उसका कहीं बीज गिर जाए ना तो बारिश के पानी से ही हो जाता है, वो ऐसा होता है पेड़ उसका।
0: हाँ राइट राइट, नहीं जामुन का क्या, जामुन इतना वो है ना कि कॉमनली लोग समझ जाते हैं जामुन की बात हो रही है, फालसों का नहीं समझ पाते, तो आज लोग कंफ्यूज हो गए ये कौन सी चीज की बात हो रही है। तो ये
2: फालसे को अगर आप लोगे ना सर, तकरीबन हाँ। मेरे ख्याल से वही बस बेरी की किस्म है ये देखा जाए तो। जी
0: हाँ,
2: तो इसके बारे में ज्यादा तो मेरे को भी नहीं पता डिटेल में,
0: कोई गल नहीं,
2: इतना मेरे को पता है बेरी की किस्म है ये।
0: अभी तो नींबू पानी भी हो भाई गर्मी में, आप मजे ले रहे हो गर्मी में, एक ही लौता बंदा भाई गर्मी में मजे ले रहा हो, गाबा भाई है। सैड चल रहा भाई अपना। तो गाबा भाई वैसे आप सुनने का मौका मिलता है शाम में या फिर आज इत्तफाकन आप आ गए, ये कैसे हुआ ये हादसा मुझे जरा बताएं।
2: एक्चुअली कबीर भाई आज ही मिला सुनने का।
0: हाँ वही मैं सोचूं, क्योंकि कभी मैंने शाम में आपकी ना कॉल सुनी ना कभी आपको शाम में सुना, तो ये महज इत्तफाक ही हो सकता है कि आज आप आ गए। बड़ा मैं
2: बस कबीर भाई आपको मैंने पहले भी बोला था भी, बस टाइम का मिसमैच हो जाता है, बाकी तो कोई मसला नहीं है, बाकी तो वाइब मिलती है आपके साथ
0: भाई, आपसे तो वाइब मिलती है भाई, कोई टेंशन नहीं है भाई। जब भी शाम में मौका मिले ना, कभी कभी बाहर निकल जाओ तो एक बारी मैसेज कर दिया करो कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, पता लग जाएगा भाई अपना लाइव सुन रहा है। ठीक है
2: जी बिल्कुल भाई।
0: और बहुत
2: और कबीर भाई जब आपका शो शुरू होता है ना
0: जी मेरा भाई,
2: जिस हिसाब से आपकी एंट्री होती है ना रैप से
0: जी मेरा भाई,
2: यकीन मानिए कबीर भाई जैसे हम लोग बैंक से नई गत्थी लेते हैं ना बड़े नोटों की। अगर उसमें से भाई नोट निकाले ना, वो नोट जैसे कड़कता है ना,
0: उस
2: नोट की वैल्यू भी होती है।
0: अरे भाई ने मॉल खींच दिया भाई। क्या एनालॉजी दी
2: भाई आप। हाँ। वैसे ही भाई आप ही कड़कते हुए आते हो और वैल्यूएबल एनर्जी के साथ आते हो बड़े भाई।
0: भाई बहुत बहुत प्यार भाई, बहुत बहुत प्यार आपको भाई, ये जो आपने आज बोल दिया ना भाई, अगर कहीं लिखा होता मैं आज इसको फ्रेम करा लेता भाई, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने। थैंक यू भाई, बहुत बहुत प्यार गाबा भाई, अपना ख्याल रखिए मेरी जान, और कभी मौका मिले शाम में जरूर आएगा, बहुत सारा प्यार भाई को
2: जी। थैंक यू ब्रदर,
0: थैंक यू मेरे भाई। ओके भाई, तो गाबा जी ने तो कह लिया भाई, दो गाने चलेंगे बैक टू बैक, बाकी मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी गाना आपको लगे पार्टी नंबर है तो बता देना। एक मैसेज है, फाल से तो कभी नहीं देखे। सरफराज जी

मैं जो हूँ इतना ही कहूँगा, एक बारी इंटरनेट पे सर्च करो, मौज आ जाएगी आपको। एक मैसेज, सलाम कबीर भाई, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम के सर, किसी से पूछो हैं पैसे का शरबत गन्ने का जूस ही कहाँ पर मिलता है, गन्ने का शरबत पीना है आपको। भाई ये तो ना पता गन्ने का शरबत कहाँ मिलता है, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल पूछ लिया। एक मैसेज, इनायतुल्ला जमाली फ्रॉम पाकिस्तान। भाई इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फालसे का जूस बहुत मज़ेदार गर्मी में है ना, गर्मी वहाँ पे पाकिस्तान चला। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, ये जो फालसे हैं ये मुझे नॉस्टैल्जिया में ले गया, मेरी यूनिफॉर्म के पॉकेट्स गंदी हो जाती थी। फालसे कहने का अपना मज़ा है, लेकिन मसला ज़्यादा हो तो हाथ पैर पर रंग ले जाता है। हाँ, उसका रंग बहुत छूटता है। मेरी अम्मी इसलिए मुझे डांटती थी कि मैं फालसे अपनी पॉकेट में डालकर खाता था, स्कूल के बाहर पेपर के लिफाफे में मिलते थे। यार मेरा भाई, भाई ये तो है, ये नॉस्टैल्जिक है, हमारी तरफ भी नॉस्टैल्जिया हिट करता है भाई जब भी फालसे की बात होती है। अपना नाम नहीं बताया आपने, वरना मैं आपका नाम लेता। वैसे कबीर भाई, ये मेरे टेरेस से व्यू है, साथ वाला ट्री जामुन का, नेबर का जो जामुन गर्मियों में मैं फ्री में चलते हैं, ये पड़ोसियों के जामुन खा रहे हैं भाई, बढ़िया। बना के रखना है भाई पड़ोसियों से। मलिक भाई सही लग रहा है तो, शुगर केन जूस, हाँ मुझे पता है शुगर केन जूस, क्या लिखे हैं, अच्छा वहाँ मिलता है, ओके। पर ये मैं जगह बोल नहीं सकता ना, उन्हें यार दिक्कत ये है मेरा भाई, बोल नहीं सकता मैं, पर गाने तो बोल सकते हैं। पार्टी नंबर आपने दोगे तो मैं तो चलाता रहूंगा, कोई भी पार्टी नंबर आपके जहन में आए आज के जमाने का, तो 666-22107 से हमने भेजेगा अपना नाम और स्पेस देके गाने का नाम। बाकी काला जोड़ा रोमी शर्माली कुरकड़े और रफ्तार साथ मनीष शॉ 440 मैं दुआ वाला कबीर।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: तो एक भाई ने बोला इसलिए मैं गाना ही रोक देता हूँ, एक भाई ने बोला है गाना चलाने के लिए, तो रिक्वेस्ट मेरे पर फाइनली आई है, दैट्स व्हाई आई स्टॉप द सॉन्ग इन बिटवीन. एक सेकंड भाई, आपका ही गाना ढूंढ रहा हूँ मैं. किधर गया ये वाला चला देता हूँ मैं. मिल गया, नहीं गाऊंगा, डोंट वरी. लोग डर रहे थे गाने वाला, इसको कोई गाना दे. तो आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, पर आपने गाने का नाम बता दिया है, तो वो मैं चला देता हूँ. राउंड मुंडे एपी टलो और गुरिंदर गिल दी आवाज, थोड़ा ना की है, आई डोंट नो. बढ़ा लो जी, चक्को जी ये वाला गाना. अबू हमजा भाई, आपके नाम ये गाना 443.

गुरिंदर गिल का गाना, और अबू हमजा भाई ने बोला था गाना चलाने के लिए, तो हमने चला दिया भाई। एक मैसेज है भाई ने, पूरा का पूरा जो है फवाद भाई ने, सब्जियों का और बैरियों का पूरा रेट ही उठा के भेज दिया मुझे भाई, बहुत मोहब्बत। अच्छा, एक बहुत प्यारा मैसेज आया मेरे पास, आई एम गोइंग टू रीड दैट बिकॉज भाई ने बहुत दिल से भेजा है, थैंक यू सो मच मेरे भाई। मैसेज किधर गया लेकिन मैसेज ही उड़ गया, किधर गया मैं, किधर गया, ये रहा मैसेज भाई का। मैंने कहा बाकी कबीर भाई स्टोरी भेज दें, ऑफिस से घर पहुंच गया इन्जॉय करते हुए आपके शो, बहुत मज़ा आ गया, माहौल बना दिया आपने आपके शो में, खुद ही मैसेज करने को उंगली उठ जाती है, कुछ तो बात है आपके शो में। मेरा भाई मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, और आगे लिखते हैं अल्लाह ताला आपको इज्जतों और तरक्की से नवाजे, आमीन रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपको भी

अब ये बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया से भी किक इन हुआ होगा, आई एम प्रीटी श्योर. कुछ मैसेजेस हैं, मजा आ गया भाई. चलो अच्छी बात, शमशाद भाई पैसे वसूल होगा. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग 974. अभी कहाँ शुरू होगा 974, क्या रिपीट पर चला दिया भाई. मैं एक सेकंड, हाउ टू रिकॉर्ड द स्टोरी, अहमद भाई भेज दूंगा मैं, अहमद नसीम भाई, कि हाँ ये सही है सॉन्ग्स का शो, और वो भी आपका शो और इमरान हाशमी का सॉन्ग प्ले ना हो ऐसा नहीं हो सकता. वो तो है, श्रद्धा कपूर गाना भी वो है नहीं अभी, पर एक गाना है जो लिस्ट में लगा हुआ था तो वो मैं प्ले कर देता हूँ, बिकॉज नेक्स्ट शो इज अबाउट टू बिगिन इन अ वाइल, तो क्यों ना एंट्री बहुत बढ़िया ली जाए. अगले शो की शुरुआत होने वाली गुजर में

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: चलो भाई साहब, घड़ी में 5 बज गए, अपनी पे आ जाते हैं, ठीक है? चलो

ऐसा लगा जैसे किवाड़ खोल के दूसरे कमरे में चला गया मैं, तो आ गया दिस इज 974 और मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। 5:02 हो चुके हैं। ऑफ कोर्स आधे घंटे के बाद आएगी कहानी। आज की कहानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कतई इंपॉर्टेंट कहानी है भाई।

0: मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मिस्ट्री है, थ्रिलर है कि क्या है, कौन सी कैटेगरी में आती है, कुछ नहीं। मगर इतना बता दूं कि आज की स्टोरी इज प्योर सिनेमा, ये आपको सुननी चाहिए, मतलब मैं तो कहूंगा सुननी चाहिए, ऐसा वाला कहूंगा आज मैं। इससे और नहीं बेच सकता भाई, मैं सेल्समैन नहीं हूं, मेरे को बेचना नहीं आता, मेरी सेल्स वैसे भी बहुत खराब है। I'm not a good market person, to be honest. But anyway, 666-22107 number है, 666-22107. जो जो अभी आए हैं, ये सोच के कि 4 बजे मैं नहीं था, मैं 4 बजे से हूँ आज तो अगले 10 दिन तक 4 बजे से रहूँगा, ठीक है, क्योंकि फजील भाई छुट्टी पर है, so I'll be there from 4 to 7. शाम की शुरुआत इस शो की 974 की होती है, आपको पता है, शाम के अधिकार से। सो एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, ऑफकोर्स दुआओं के साथ इस शो की शुरुआत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिलते हैं, जाना आपने ही नहीं, ठीक है, आपको तो पता ही, बेस्ट जगह बरोबर है, कैसी बात करती, स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.

0: पता ही नहीं है आप किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। आधे लोग जो आए हैं आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है सामने वाला पूरा इंटरेस्ट लेके आपके साथ फोटो खिंचा रहा है, जैसे वो पता नहीं सदियों से आपको जानता हो। और वो इतना लंबा सीन हो जाता है अगर आपकी शादी में ज्यादा मेहमान है, 400-500 क्रॉस कर चुके हैं, तो आपका भाई साहब बैंड नहीं ऑर्केस्ट्रा बजेगा तो ये अगर आपने महसूस किया है तो प्लीज लेट मी नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। आसिफ भाई कह रहे हैं अच्छा भाई पक्का, अभी आए ना लाइन पे, तो अभी आए लाइन पे, बताओ बहस कर रही है हमसे, ये पहले करके आओ शादी, ठीक है आसिफ भाई। मेरी दुआ है पूरी कि आप जब वापस लौटें तो एटलीस्ट आपकी उंगली पे अंगूठी होनी चाहिए। एक मैसेज है, ये दिन हमारा भी आ जाएगा सर, एक दिन आएगा भाई, मेरी दिल से दुआ है आपका ये दिन जल्दी आए अरबाज भाई। और फोटो के साथ आया एक मैसेज है, हमारी बहन आसरा का लिखती हैं, मैं बढ़िया ऑन माय वे टू जिम, अभी तो ऐसा लग रहा है कि वेडिंग कार्ड से पहले मेरा एमएमए फाइटर सर्टिफिकेशन आ जाएगा। बहन जिस हिसाब से जिम चल रहा है आपका, मुझे डर है कि आप किसी को पीट ना दें ये एमएमए फाइटर का ले लो आप बहन, बिल्कुल शादी करने वाले कब कब कब कब कहते। एक एक एक एक एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
0: नदीम भाई कैसे हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया, आप लाइगर क्यों बन गए हो?
0: एक हमारी बहन है आसरा करके, वो जो है माशाल्लाह काफी जिम विम करती है, तो उन्होंने बोला कि शादी से पहले कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एमएमए फाइटर का सर्टिफिकेट आ जाए, तो मैंने कहा दूल्हा भी कांप रखा है। आसरा मैं कह रहा था बर्तन मैं धो दूं, शाहरुख खान
1: मिलेगा सिर्फ आवाज से।
0: तो नदीम भाई आपके साथ ऐसा हुआ था, स्टेज पे अटेंडेंस लगी हो आपकी, बढ़िया आपको बुलाया
1: गया। सबके साथ होता है यार कबीर भाई, देखो बकरी ईद आती है, ठीक है, तो सब लोग बकरे के साथ फोटो उतरवाते हैं।
0: हाँ हाँ अच्छा, तो ये तो जो
1: हलाल होने वाला होता है
0: तो सब उसको पत्ते वत्ते खिला रहे होते हैं,
1: तो ऐसे लिफाफा दे के जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं कि चलो एक और विकेट गिराए
0: ये तो है। पर आपको ही लगता है इसका कुछ अल्टरनेट ढूंढना चाहिए, क्योंकि आप नहीं थके थे भाई? मैं तो थक गया था भाई, बहुत थकावट भरी चीज़ है।
1: थक तो गए थे, ऊपर से पता है हमारे इसमें तो ऐसा था कि सेहरा पीना थे बहुत हैवी वाला,
0: बिल्कुल आंखें वाके छुप जाने वाला।
1: हाँ। तो मेरे को तो पता नहीं क्या रहम आया था उन लोग को, क्योंकि सेहरा बहुत वजन होता है, तो मेरे को एक मोटा वाला हार पिनाए थे, मैं तो उसमें भी थक गया था।
0: और आपको मोजड़ी पहनाई थी क्या? तो मोजड़ी जो पहनते हैं वो पहनाई थी, ऐसा कुछ पहनाया था?
1: अरे मैं अपनी शादी का किस्सा सुनाता हूँ। मोजड़ी तो ठीक है, मैंने इससे पूरा शेरवानी सिलाई थी, और मजे की बात यह कि थोड़ा लेट हो गई थी।
0: अच्छा।
1: और मैंने चेक नहीं किया था।
0: अच्छा, फिर
1: शादी वाले दिन जब चढ़ा रहा हूँ तो इधर चढ़ी दे रही
0: फिर टाइट। अरे भाई फिर क्या किया?
1: मेरी बहन बेचारी वही बैठ के मशीन वशीन लगा के उसने उसको वो अंदर कपड़ा रखा था ना, तो हाँ, उसको ढीला करी।
0: हाँ,
1: और वही टाइम पे रेडी करके बैठा तो हो गया था।
0: भाई बहन को सलाम भाई, क्या जुगाड़ लगाया होगा यार आपकी, तो आपके आसपास के लोग सांसें चढ़ गई होंगी।
1: करती है वो सिलाई वगैरह करती थी ना।
0: हाँ,
1: तो उसने वही टाइम भाई,
0: वरना तो नदीम भाई आप बुशर्ट में खड़े होते अपनी शादी में।
1: वो फिर भी मैं आपको फोटो बताऊं, फिर भी टाइट ही थी बट चढ़ गई थी बट इतना ही है
0: भाई, एकदम स्ट्रेट बोतल की तरह खड़े हुए स्टेज पे
1: एकदम भाई टांगे एकदम पतली शेरवानी मोटी ऊपर से
0: तो कितनी देर तक पर कितनी देर तक खड़ा रहना पड़ा आपको?
1: मैं तो पूरा मतलब कितना अपना तो 5 घंटा तो आराम से चला जाता है शादी।
0: खुदा की कसम भाई, तो नहीं स्टेज पे इतना वक्त बीता था आपका, खड़े खड़े लोग आ रहे हैं एनवेलप ले लेके।
1: 3 घंटा तो 3 घंटा तो गया होगा आराम से, निकाह भी मेरा वही हुआ था।
0: अरे भाई रो दिया भाई, मैं सुन के रो दिया भाई, मैं रो दिया भाई सुन के। तो मतलब
1: मैं बोला ना वही बकरी ईद का बकरा जब हलाल होता है तो जब आते ना खाने के लिए पार्टी वार्टी करते हैं वो वाला हिसाब है
0: भाई। इसका कुछ अल्टरनेट होना चाहिए भाई, इसका तो कुछ अल्टरनेट होना चाहिए। नहीं क्या लगता है?
1: अल्टरनेट एक ही है।
0: क्या अल्टरनेट है?
1: कोर्ट मैरिज।
0: कह रहा मस्जिद में जाओ, निकाह पढ़ो, सीधा रजिस्टर कराओ, अल्लाह हाफिज सबको। जिसका फोटो खिंचानी है
1: खाना खिला, घर पे खाना खिला देना, वली में का बस खत्म।
0: बस खत्म, ये सही है भाई। अब तो ये आप सोल्यूशन देने का फायदा आपका तो नहीं है भाई, तो ये ऐसे एडवाइस आप दे ही सकते हैं, अप्लाई तो कर नहीं सकते अब।
1: वो अगर शादी हो रही है, अगर खास कर अब पता नहीं बाहर और यहाँ पे तो शायद डिफरेंट होगा कल्चर, लेकिन अगर इंडिया में हो रही है तो फिर तो
0: फोटोग्राफर तो ऐसे ऐसे पोजेस बताते हैं, मैंने कहा भाई तू देख कहाँ रहा है, कौन से इंटरनेट पे मिले ये पोजेस?
1: मैं हुए एल्बम के लिए भाई क्या क्या नहीं कराते वो लोग।
0: हाँ कसम से।

0: हमारे टाइम पे तो फिर भी ठीक था, अब तो वो धुआं हुआ उड़ा रहे एंट्रेंस पे भाई वीडियो बनाने के लिए।
1: हाँ वो धुएं उड़ाते हैं ऊपर से कहते हैं भाई ऐसे ऐसे पूछ दो ऐसे वाली, ऐसे पकड़ी मैडम ऐसे, इधर आ जाइए इधर आ जाइए।
0: मतलब मेरे को लगता है 3 घंटे की शादी में 1.5-2 घंटा तो वीडियोग्राफी चल रही है पूरी।
1: एग्जैक्टली और ये पोज बताने वाले लोग भी जो है ना ये बड़े कमाल के होते हैं। ये आपको याद है वो जमाना जब लोगों की शादियों की वीडियोस बनते थे तो उसमें 2 फूल होते थे, फूल में से चेहरे निकलते थे।
0: हाँ वैसे ही बनती थी वीडियो, अब तो क्या क्या नहीं होता है।
1: अरे नितिन भाई
0: और प्री वेडिंग फोटो शूट हो रहे हैं आजकल।
1: हाँ आजकल तो प्री वेडिंग चल रहा है भाई, उसके लिए आपको फिर हीरो बना देते हैं वो लोग, यहाँ खड़ो जाइए साहब यहाँ से कैमरा आएगा।
0: वो आपको पहले इतना प्री वेडिंग फोटोशूट में अगर लोग देख लेंगे तो शादी में पहचानेंगे भी नहीं, बोलेंगे यही था।
1: आप ही दूल्हा हैं क्या? पर नदीम भाई ये जो आपने एडवाइस दी है ये कोई मानेगा नहीं, पर ठीक है आपने डिस्कस करके अच्छा किया, कम से कम कुछ लोगों का भला हो सकता है आपका ये दर्द सुन के। नदीम भाई थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार आपको। जज़ाकअल्लाह भाई थैंक यू। तो नदीम भाई ने जो बताया, नदीम भाई का दर्द सुनने के बाद एक और कॉल आ चुकी है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कैसे हैं जज़ीर भाई?
1: बढ़िया भाई, शुभ भाई क्या चल रहा है?
2: अरे जो है आपकी अल्लाह का शुक्र है, बस काम धंधा और क्या भाई।
1: बस बढ़िया भाई, यही तो चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए। तो शुभ भाई क्या आपके साथ हुआ है ऐसा कोई सीन?
2: शादी वाला मैटर?
1: हाँ भाई शादी वाला मैटर।
2: ना भाई मैं तो लॉकडाउन में शादी हुई थी ना।
1: आपकी लॉकडाउन में हुई थी? अरे भाई बहुत ही मोर के पंख से किस्मत लिखवा के आए क्या अभी? बहुत
2: भाई 50 लोग अलाउड थे।
1: 50 लोग अलाउड थे? अच्छा
2: दिल्ली के अंदर 50 लोग अलाउड थे ना?
1: ठीक है हाँ 50 लोग अलाउड होंगे, पता नहीं मुझे। अच्छा 50 लोग अलाउड थे। हाँ।
2: तो उस टाइम मैं खुद वेडिंग प्लान होता।
1: अच्छा खुद ही वेडिंग प्लानर? अरे भाई सेट है।
2: नहीं उस टाइम तो काम भी वही कर रहा था ना मैं। अच्छा। वेडिंग प्लानर तो काफी टाइम से, तो मतलब खतर आने से पहले की बात है।
1: अच्छा अच्छा अपनी ही शादी प्लान करी है आपने मतलब?
2: नहीं नहीं मतलब किसी और की शादी, मतलब उस टाइम पे मतलब दरअसल मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट था किसी और की शादी का।
1: अच्छा अच्छा ठीक है फिर।
2: तो अपने रेडिसन ब्लू है ना अपना दिल्ली के अंदर।
1: हां दिल्ली वाला। हां
2: एयरपोर्ट के पास।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हां
2: 12 बजे उसकी शादी थी दो लंच टाइम में, तो 12 तो मुझे वहीं बज गए। उधर घर से फोन आ रहा है, भाई आ जा भाई तो शादी है तेरी। मैं बोला हाँ ठीक है आता हूँ लेकिन अभी तरह यहाँ पे निपटा लूँ। बोला नहीं नहीं आ जा बस, अब इतना थोड़ी ना काम पे इतना फोकस करते। मैंने बात काम के फोकस की नहीं है, बात ये है कि अगर जब मेरी शादी से चला 1.5 घंटा लेट जाएगी कोई मुश्किल नहीं।
1: हाँ।
2: सामने वाले से पैसे भी तो लेने ना भाई।
1: हाँ वो भी। अरे तो आपने एक ही दिन उसकी भी शादी करा रहे और अपनी भी शादी थी आपकी?
2: हाँ मेरी भी शादी थी और फिर भाई। हाँ और फिर उसके बाद कबीर भाई मैं तकरीबन निकला हूँ, मतलब एक तो हमारे यहाँ पे 1.5-2 घंटा लेट चली जाता है।
1: ठीक है। हाँ।
2: कोई मुश्किल वाली बात है। कसम से देखो पूरी जिंदगी मेरी इस फ्लावर डेकोरेशन के वेडिंग प्लान के सारे चीज कामों में निकल गई, लोगों को दूल्हा बनाने में फोटो शूट ये सारी चीजें। हाँ। निकल गई थी। ठीक है
1: ठीक है।
2: अच्छा मेरी बारी आई सच में मजाक से हटके, मैं सिर्फ एक सूट में था, ना कोई सेहरा था ना कुछ था, कुछ नहीं था। जबकि घर वालों ने सब मंगा के रखा।
1: हाँ।
2: कि यार मैं मुझे अंदर से वो फील ही नहीं आ रही है, कोई दोस्त नहीं कुछ नहीं, दोस्तों का फोन आ रहा है कि भाई तेरी शादी है। मैंने शादी तो है लेकिन आना भाई।
1: भाई फील से नहीं आ रही, फील से नहीं आ रही मुझे।
2: नहीं नहीं बात फील की नहीं थी, मुझे डर लग रहा था क्योंकि उस टाइम पे मतलब ये सीन था कि अगर मतलब बंदे पुलिस वाले आके गिन रहे थे कितने गेस्ट थे तुम्हारी शादी में।
1: और वो भी दिल्ली के पुलिस वाले। बाप रे बाप।
2: और वो भी दिल्ली के पुलिस भाई। मेरे जन कितने लोगों को मैंने खुद अपने आप मना किया, मैंने भाई देखिए रिक्वेस्ट है शादी में बताना।
1: एक रिक्वेस्ट है बस, मेरी शादी में बताना भाई।
2: आना भाई भूल के भी बताना
1: क्या मेरे भाई, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो कोई शादी में आएगा नहीं भाई, साफ सीधी बात।
2: डर बहुत लग रहा था उस टाइम पे भाई।
1: हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई, तो लॉकडाउन में तो कसम से डर लग रहा होगा कि पुलिस वाले ने चेक कर ले तो फिर तो हो लिया काम। अरे तू भाई
2: काम बहुत तगड़े तगड़े चालान काट रहा था भाई वो अच्छे खासे। क्योंकि मैं तो खुद उस लाइन से जुड़ा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ कि जैसे शादियां में जैसे लॉकडाउन एकदम से खत्म हुआ पहला वाला, तो मैं खुद जब एकदम से भाई लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई थी तो उनको शादी करनी थी किसी भी कीमत पे, क्योंकि दरअसल लॉकडाउन का मामला कुछ ऐसी हो गया था लोग अकेले।
1: हाँ तो भाई लोगों ने वीडियो कॉल पे भी तो करी है शादी, वीडियो कॉल पे भी करी है।
2: हाँ वीडियो कॉल पे भी करी, तो लोगों को एकदम से मतलब शादी करनी थी, तो मैं देख रहा था जैसे होटलों में हम लोग जो है कोई भी मैं फंक्शन करा रहा हूँ वहाँ पे एकदम से पुलिस का छापा पड़ता है, वो भाई काउंटिंग में लग जाते थे और कुछ तो बेचारा जुगाड़ दोस्त होते थे।

0: वो तो बेहतर
1: अरे वो तो गिनते हाँ ये मैंने सुना ना गिनते थे हाँ भाई बिरेंदर गिनियो जरा कितनी प्लेट है यहाँ पे सारे के सारे भाग रहे इधर उधर तो आपकी शादी मतलब 50-50 आयोग ना लोग तो आपका तो मामला सेट है यार आपका सही निकल गया शुभ भाई बच गए आप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है भाई बहुत बहुत शुक्रिया
0: एक चीज है बताओ क्या कोरोना के टाइम पे सारे काम सुन्नत तरीके से
1: अरे माशाल्लाह तो आखिरी में नेकी भी कमा ली आपने बच भी गए सारे काम हो लिए एक साथ
0: जी बिल्कुल
1: बहुत बढ़िया प्राउड ऑफ यू मेरा भाई प्राउड ऑफ यू अपना किस्सा सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान थैंक यू सो मच
0: थैंक यू
1: ओके मेरे भाई ओके भाई अल्लाह हाफिज़ और शुएब भाई के बाद जो है एक और कॉल आ रही है जरा उठाई लेते हैं एक सेकंड अस्सलाम वालेकुम जी माजिद भाई क्या हाल है भाई के
2: अल्लाह के शुक्र है सही है बिल्कुल सेम एनर्जी आपकी जो मॉर्निंग वाली होती थी वही चल रही है बल्कि इवनिंग भी ज्यादा है बेहतर है
1: भाई आज तो आपका भाई नहारी खा के आया भाई सारी एनर्जी आज तो बढ़िया करके जी माजिद भाई बताइए
2: जो टॉपिक कर रहे हैं आपका शादी वाला इसके अंदर मेरे ख्याल में मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि उस दिन दूल्हा जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट बंदा होता है
1: बिल्कुल
2: तो उसको उसको उसको उसकी इम्पोर्टेंस फील होनी चाहिए और लोगों को आना चाहिए बननी चाहिए
1: पर यार तो माजिद भाई स्टेज पे खड़ा कर देते हैं यार घंटों घंटों तक लोग पैर में दर्द हो रहा
2: है हमारे यहाँ क्या होता है बैठे होते हैं खड़े नहीं होते बैठे होते हैं ऑल्दो वो कपड़े वगैरह स्पेशल होते हैं तो बाज बाज फिटिंग भी जैसे वो भाई ने बताया कि उनको चढ़ाना ही पड़ता है और वो फिर आप फंस जाते हैं उसके अंदर और एक बाज औकात जो ना बिला वजह की एक मुंह बना के मुस्कुराहट भी देनी पड़ती है वो तो है सीन तो है ठीक है अब्बा के भी दोस्त आ गए चाचा के भी आ गए कजन्स भी आ गए फिर कोई ऐसे दूर दराज के लोग जिनको आप पहली दफा देख रहे हैं और आखिरी दफा देखेंगे शादी के बाद देखेंगे भी नहीं उनको
1: फोटो खिंचाते हैं पूछ रहे हैं भाई साहब वो सब तो ठीक है अब हैं कौन
2: हाँ अच्छा फिर कुछ ऐसी हमारी माशाल्लाह खवातीन भी होती है वो फिर गले भी लग रही है आपको जबरदस्ती पकड़ रही है आपका हेयर स्टाइल भी खराब हो रहा है आपको पता ही नहीं कौन सी फुफू है किसकी फुफू है लेकिन वो चल रहा हो
1: ये तो काफी एंटरटेनिंग है
2: अब इसमें एक सीन ये हुआ था मेरा दोस्त बच गया इस सारे मामले से
1: अच्छा कैसे
2: मेरा एक पक्का दोस्त है उसकी शादी थी और वो हैदराबाद से बारात लेके कराची आ रहे थे और हैदराबाद कराची का डिस्टेंस जो है तकरीबन समझ लें 2.5 घंटे का होगा बाय रोड
1: ओके ओके
2: तो आमतौर पे ऐसी बारात को 3-4 बजे निकलना चाहिए शाम का 9 बजे का इवेंट है 9-10 बजे का इवेंट है तो उसको रात के लिए आपको 3-4 बजे निकल जाना चाहिए ताकि आप कराची पहुंच के थोड़ा सा रेडी भी हो जाए और फिर से
1: हाँ थोड़ा सा रेस्ट हो जाए बफर मिल जाए हाँ हाँ
2: मैं कराची में था हम लोग मतलब ये तो लड़के वालों की तरफ से लेकिन रिसीविंग एंड पे मैं इधर कराची में ही था तो मैं यहीं पे शामिल हो गया आके उनके ना मतलब लड़की वालों के पास आके
1: ठीक है
2: हॉल में उन्होंने बुक कराया हुआ था वहां बैठ के
1: ठीक है
2: अब हम जो बैठे बैठे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बज गए 12 बज गए
1: अरे भाई
2: अच्छा उस दिन क्या सीन था कि एक पॉलिटिकल इवेंट था कराची में जिसकी वजह से लोग ना वापस जब जा रहे थे ना शाम को तो रोड बिल्कुल चौक हो गए थे सारे
1: अच्छा तो पहुंचना ही मुश्किल था
2: वो उसकी बसें वगैरह जो गाड़ियां वगैरह थी वो बेचारी उसकी ना बिल्कुल रश में फंस गई और बाद जगहों पर ऐसा हुआ कि वो हाईवे पूरी ब्लॉक हो गई रॉन्ग वे लोगों ने ले लिया
1: अरे भाई साहब
2: तो अब वो सारे जो थे वो सारे एक पॉलिटिकल पार्टी के मोटिवेटेड लोग थे तो उनको कोई रोक भी नहीं सकता था तो वहां पे क्या हुआ कि वो बेचारा जो है रात को अच्छा क्या हुआ 12 जब बज गया ना तो लड़की वालों ने बेचारों ने खाना वाना खोल दिया ठीक है उन्होंने कहा यार अब मतलब कब तक वेट करेंगे ये लोग तो आए हुए सारे मेहमान उनके भी आए हुए थे
1: अरे यार क्या क्या सीन हो गया
2: 12:30 बजे खाना खाके तो अब मेरा बिल्कुल पक्का दोस्त है लेकिन मैं भी अपने पेरेंट्स से गया हुआ था उनको भी घर वापस लाना है जाहिर सी बात है वहीं तो नहीं बैठ सकते ना तो अब जो फाइनल बात उससे भी तो कह रहे थे हमें लगता है 4-5 बजे से पहले हम नहीं पहुंच पाएंगे तो आप लोग जाओ घर
1: अरे रे रे रे रे भाई अरे भाई साहब
2: अच्छा अब बेचारे वो लड़की वालों ने हॉल बुक किया हुआ था वो भी उसका भी टाइम पूरा हो रहा था वो भी 12 बजे तक खत्म हो रहा था खैर उन्होंने थोड़ी सी एक्सटेंशन ली 12:30 एक तक खाना खिलाया और लोगों को घर वापस भेज दिया लड़की वाले भी अपने घर चले गए हॉल बंद हो गया और वो बेचारा जो सुबह जब पहुंचे है ना तो उनका निकाह भी होना था अभी
1: तंबू तो उठा रहे होंगे उस टाइम पे तो लोग
2: फजर में उनका निकाह हुआ निकाह के बाद उनको मतलब वो नाश्ता बोलेंगे खाना बोलेंगे क्या होगा सुबह उनको नाश्ता करवाया
1: अरे भाई
2: उसके बाद 6 बजे बारात की रवानगी हुई सुबह की अगले दिन सुबह
1: अरे भाई साहब
2: तो उसकी शादी की डेट ही चेंज हो गई
1: अरे यार सलाम है यार वो सलाम है ये आदमी शादी को कभी नहीं भूलेगा
2: वो इन सब चीजों से बच गया सब चीजों से बच गया सीधा जो है ना दुल्हन को लेके घर चला गया हैदराबाद और अगले दिन वलीमा था शाम में खैर वो फिर

0: ना दूल्हा आया ना दुल्हन आई, पूरे खाने वाला खाना खा के चले गए और शादी खत्म हो गई।
1: भाई मेरा मेरा मेरा सलाम कहिएगा उन्हें, उन्हें बताइएगा उनका किस्सा मेरे दिल में मशहूर रहेगा भाई, मशहूर रहेगा किस्सा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई, वाला गुड नरेटर भाई, थैंक यू सो मच फॉर नरेटिंग सच अ ग्रेट स्टोरी, मुझे मजा आया सुन के भाई।
0: आपसे सीखा सर, आपसे सीखा।
1: अरे नहीं भाई, आपकी आवाज ही माशाल्लाह है उस लायक है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, दिल से भाई, थैंक यू, ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई। भाई ने बहुत प्यार से सुनाया किस्सा, मजा आ गया भाई, कसम से मजा आ गया। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, ये रोमी भाई ने मैसेज किया है। देन मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज शेयर द स्टोरी सईद भाई। अभी तो नहीं किया मैंने। आसिफ भाई कह रहे हैं भाई आज का टॉपिक मस्त है, मजा आ रहा है सुनने में भाई, कितना दर्द छुपा रखा है लोगों ने, उसकी याद भी रखे। एक मैसेज, ध्यान से देखें, क्या है ध्यान से देखें, यही है आदमी जो बीवी से ज्यादा पैसों से मोहब्बत करता है, इसलिए बीवी समझ से हस्बैंड डेट आई। एक यूसुफ भाई कह रहे हैं कबीर हमारे यहाँ कोई अलग स्पेशल रस्म नहीं होती, जैसे कि आपने कहा कि वो लिफाफा के दौर निकाह और वलीमा दोनों इवेंट पे होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, तो आपका बड़ा सॉर्टेड मामला है। फरहत भाई कह रहे हैं भाई सही है, होने के बाद याद आता है लॉकडाउन में शादी, फ़ायदा हो गया भाई का, फ़ायदा तो बहुत उठाया भाई ने। वैसे भाई मेरी शादी अप्रैल गर्मी में हुई थी, ऊपर से फोकस लाइट्स, भाई मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या हालत थी। ये मोइन भाई कह रहे हैं अरे भाई अप्रैल के महीने में शादियाँ। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है टुडे। बढ़िया भाई मेरा भाई, क्या हाल है टुडे उमर भाई, एकदम शानदार। एक मैसेज, पाकिस्तान में सोफ़ा लगा देते हैं इसलिए सारी मुश्किलें बैठ के काटनी पड़ती है। उमर भाई कह रहा है ये सारी मुश्किलें भाई बैठ के काटते हैं हम लोग भाई, लेकिन हमारे में तो कुछ लोग खड़े कर देते हैं, खड़े हो जाओ, खड़े बैठे हो जाओ, अभी मेहमान आएंगे, देखो तुम्हारी फुप्पू आ रही हूँ, देखो सामने से चलती आ रही हैं और हमें पता भी नहीं है कौन है ये। एक मैसेज और, अस्सलाम वालेकुम, आई कैन रिलेट टू दिस, ऐसा फील होता है कि आप भी कोशिश करते हैं कि अच्छा जेस्चर दें, ऑल्दो यू डोंट नो देम। भाई ने बकरे का अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना। माजिद भाई और आसरा बहन, थैंक यू सो मच, एक समझ सलाम। एक ज़रा मैं कॉल भी उठा लूँ ज़रा, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: हाँ भाई आसिफ भाई, क्या हाल है भाई के?
2: बढ़िया बढ़िया भाई, इतने मजे ले रहे भाई तुम
1: भाई तो
2: की तकलीफ में।
1: क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, अगला नंबर आपका है भाई, आपका किस्सा भी ऐसे होगा भाई।
2: भाई ये जो लिसनर था ना, ये तो बहुत मतलब इसका तो बहुत मेरे को मजा आया सुनने में। जो तुम्हारा जो दूसरा नंबर लिसनर था ना भाई, वो अरे भाई वो एक नंबर, उसकी जो सीन, अरे रे इतना बुरा सीन हुआ उसके साथ में।
1: इसलिए कह रहा हूँ टाइम पे पहुंच जाना, मुंबई के हालात भी ऐसे ही है।
2: नहीं और हाँ। दूसरी बात मालूम, मेरे को हंसी कब आ रही थी भाई, मैं बैठ के हंस कब रहा, तुम्हारा तुम्हारा रिएक्शन कैसा? हाँ हाँ सच्ची। हाँ
1: भाई मैं बहुत इंटरेस्ट ले रहा था कहानी उनकी, बहुत सही बता रहा था भाई कहानी उनकी।
2: देखो ये बंदा, देखो इसको, देखो कितने मजे ले रहा है। ये खुद है, ये खुद बंधा हुआ है इसमें भी। मैं बोला ये आखिरी, ये भाई वो एक चीज याद आ गई मेरे को भाई,
1: क्या
2: सलाह, दुख
1: काहे
2: खत्म नहीं होता है।
1: अभी तो आसिफ भाई आपका नंबर है मेरी जान, कैसी बात कर रहे हो
2: भाई, कहाँ से लेके आते हो ये सब तुम टॉपिक?
1: भाई ये दिल से निकले हुए टॉपिक हैं, ये बिल्कुल दिल की गहराइयों से।
2: वो डेंजर टॉपिक है। और अभी तो कितने हाथ से और बाकी है सुनने के लिए
1: भाई, अभी बहुत सारे किस्से बाकी हैं, बहुत सारे किस्से बाकी हैं अभी इंशाल्लाह।
2: मैं तो एक मिनट भी नहीं हटूंगा, आज बोलूंगा सर को, सर
1: आई डोंट वांट टू वर्क आई वांट टू मैरी।
2: वो तो देखी जाएगी बाद में भाई, लिस्टनर लोग से पहले सुन तो लो कितने हाथ से और बाकी है।
1: ये पता है ये वाला मीम था, मीम वो था ना, आई डोंट वांट पीस, I want problems. ठीक है तो फिर यही करते हैं। एक लास्ट किस्सा सुना देते हैं आपको, उसके बाद फिर कहानी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है?
2: पक्का पक्का भाई।
1: ओके आसिफ भाई, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, सुनना जरूर।
2: शुक्रिया भाई।
1: ओके भाई, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद जो है मैं जल्दी से एक भाई को कॉल कर लूँ, क्योंकि ये लास्ट कॉल होगी, उसके बाद भाई किस्से की तरफ भी बढ़ना है, आज तो ऐसे ही टंगा रह गया मामला। तो ये क्योंकि मुझे कहा गया हाई तो मैं कॉल करूँगा, ये मेरी कॉल लग गई है और कॉल उठा ली गई है। रोमी भाई कैसे मेरा भाई? हेलो
3: कबीर भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रोमी भाई, कैसे मेरा भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह एकदम चौकस, आप बताइए क्या किस्सा बता रहे थे?
3: चले बढ़िया, आपकी स्टोरी का वेट कर रहे हैं हम आपकी।
1: जी बस आपके बाद स्टोरी है मेरी जान, अब बताइए क्या स्टोरी बता रहे थे आप?
3: एक फनी किस्सा, एक दोस्त की बारात गई थी अलीगढ़।
1: अच्छा, अलीगढ़
3: फंक्शन था,
1: ठीक है।
3: हाँ तो बारात ऑलरेडी लेट हो गई थी, वहाँ पहुंचते पहुंचते और ज्यादा लेट हो गए। तो जो मौलाना आए थे निकाह कराने के लिए, उनकी दाढ़ी का शेप ऐसा था जैसे सॉफ्टी होती है। उनको जो है इलाके में छेड़ा करते थे मुल्ला सॉफ्टी के नाम से, मुल्ला सॉफ्टी।
1: Okay.
3: तो उनकी इतनी बड़ी चिड़ थी कि वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे सॉफ्टी के नाम से। अब हम लड़कों को पता चल गई ये बात।

0: थोड़ा कोई पता चल गई।
1: हाँ
0: तो दूल्हा ने हमारे हाथ पे जोड़े के भाई इसको सॉफ्टी मत बोल देना, इसको ना छेड़ देना, ये अगर भाग गया तो रात का एक बज रहा है, निकाह कराने वाला नहीं मिलना कोई भी।
1: हाँ सही बात है।
0: लड़कों ने जो था छेड़ना शुरू कर दिया उसको, कभी सॉफ्टी लाओ सॉफ्टी लाओ, सॉफ्टी नहीं मिल रही खाने में, ये वो उसको कर करके मुल्ला का पारा चढ़ना शुरू हो गया, मुल्ला भाग गया।
1: अरे भाई निकाह नहीं पड़ा है उन्होंने,
0: निकाह नहीं पड़ाया मुल्ला ने, मुल्ला भाग गया रात को, मुल्ला सॉफ्टी। वो सारे मोहल्ले वाले भी और सारे स्टार ढूंढते फिर रहे हैं कभी कोई काजी मिल जाए रात को 2 बजे, भाई कोई निकाह करवाते नहीं।
1: तो किसने पढ़ाया
0: फिर? इतने मसले बने बड़े, उसको पकड़ रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं कि भाई फोन उठा ले भाई आ जा, तुझसे माफी मांग लेंगे, निकाह करवा दे। मुल्ला सॉफ्टी नहीं आया, पता नहीं कहाँ से लाए किसी मौलाना को पकड़ के उसका निकाह करवाया उसके
1: रात को 1 बजे। तो बाद में उनसे मुलाकात नहीं,
0: मतलब वाले भाई अगर सुन रहे हो तो शायद जानते भी होंगे,
1: तो मुलाकात नहीं हुई उसके बाद, मतलब के मौलाना ये क्यों
0: नहीं, नहीं, नहीं, वो भाई वो बस ही चढ़ता है सॉफ्टी के नाम से, वो नहीं मिला फिर बात, उनकी शायद हुई हो, लड़की वालों की शायद हुई हो मुलाकात, हम लोगों की तो क्या ही होती
1: भाई। ये था कमाल का किस्सा भाई, क्लाइमेक्स
0: बिल्कुल सॉफ्टी वाला शेप था उसकी दाढ़ी का, सॉफ्टी पकड़ते बच्चे भाई। आप इमेजिन करो एक मुल्ला हो शादी में, उसकी दाढ़ी का शेप सॉफ्टी वाला हो तो
1: भाई मैं अपनी दाढ़ी को देख, अभी तो फिलहाल अपनी दाढ़ी को देख रहा हूँ मैं, कहीं कोई कमेंट ना कर दे कबीर सॉफ्टी,
0: कबीर सॉफ्टी, कबीर सॉफ्टी।
1: अरे भाई क्या क्लाइमेक्स है आपने कहानी को भाई, मजा आ गया रोमी भाई इसके साथ, मैं देखूंगा अलीगढ़ वालों को पता होगा जरूर ये, थैंक यू सो मच भाई,
0: जरूर पता होगा, चैलेंज
1: सही है भाई, अल्लाह
0: हाफिज़, ओके भाई अल्लाह
1: हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ भाई। आप दाढ़ी कटवानी पड़ेगी, किसी ने अगर मेरे फोटो के नीचे लिखा कबीर सॉफ्टी, भाई साहब दौड़ाऊंगा ज्यादा बता रहा हूँ। सॉफ्टी तो भाई सॉफ्टी भाई, अभी कहानी शुरू करने वाले हम एक प्रोमो के बाद, मौज आ गया भाई मौज आ गई, एक एक छोटा सा प्रोमो है देन आपसे मिलते हैं, ये अमिता जी के एस्केप रूम का प्रोमो, इसके बाद सीधा कहानी शुरू करेंगे ओके, ये सुनो सॉफ्टी।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन, यहाँ ट्रैफिक नहीं ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक, ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107.
1: तो एस्केप रूम जरूर सुनिएगा, बहुत कमाल का शो है। और अब जरा मैं किस्से की तरफ बढ़ाऊँ, माजिद भाई ने कॉल रिस्पॉन्स दिया, माजिद भाई यू शुड बी एन ओरेटर मेरे भाई, यू आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, पर ये सॉफ्टी वाली कहानी अरे कंट्रोल कबीर साहब कंट्रोल, कहानी भी सुनानी। चलो भाई शुरू करते हैं फिर इस पर आएंगे ठीक है। ओफो कमाल की दुनिया है भाई, कमाल के किस्से। अच्छा ये जो कहानी है आज की ये मैटर बहुत सीरियस है भाई, और बहुत कमाल की स्टोरी भी है, सो ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा, काम आ सकती है आपके। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू किस कैटेगरी कौन से जॉनरा में आती है, मगर दिस इज़ डेफिनेटली अ स्टोरी टू लिसन टू, एंड किधर गया जी, थोड़ी लंबी हो सकती है स्टोरी, सो आई एम गोइंग ट्राई टू शॉर्टन इट ओके। सो सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, और सबसे पहले सुनिए आप डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी जिस बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हूं, ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इट्स वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं, चलो वॉल्यूम बढ़ा दी जाए। So, मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे, और आज का जो किस्सा है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। सो ये सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं इन द ईयर 2019, जस्ट बिफोर कोविड, अभी कोविड आया नहीं था, ये अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर की एक सुबह थी, और 2019 से ये किस्सा जरा शुरू होता है। इस वक्त एक औरत जिनका नाम था तारा रिचर्डसन, टारा रिचर्डसन जो थी उनकी एक बेटी थी 5 साल की ब्रायल, और ब्रायल उनकी 5 साल की बेटी उसके माथे को चूम कर उसे बस सुबह सुबह स्कूल की बस के लिए वेट कराते हुए बात कर रही थी उससे, और फिर उसे मेन रोड की तरफ ले गई वेव किया ड्रॉप करने के लिए, बस का दोनों माँ बेटी इंतजार कर रही थी। और ब्रायल जो थी ये 5 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची, इसके घुंघराले बाल थे लाइट ब्राउनिश और वो हवा में लहरा रहे थे। उसके कंधे पे ओवरसाइज्ड बिग गर्ल बैग था। बड़ी जिद करके उसने माँ बाप से बैग लिया था और ये बैग अभी शोल्डर टू शोल्डर बाउंस कर रहा था उसके पीछे। एंड तारा जो थी वो मुड़ी और उसने अपनी बच्ची की तरफ देखा, स्कूल बस आ चुकी थी, उनकी बेटी जो थी वो बस में चढ़ी। शी वेव्ड गुड बाय अपनी मॉम को एक बड़ी सी स्माइल के साथ, एंड तारा ने भी गुड बाय किया और बस को जाते हुए देखा। तारा जो थी, तारा एक्चुअली में उनके लिए अपनी बेटी की सबसे फेवरेट चीज़ों में से एक चीज़ थी कि उनकी बेटी भले ही 5 साल की थी लेकिन बहुत एंथुजियास्टिक बच्ची, मतलब हर नए दिन को एक नए दिन की तरह, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह दिखती थी, हर दिन के लिए एक्साइटेड रहती थी और हर चीज़ सीखने को तैयार। मतलब ब्रायल जो उनकी 5 साल की बेटी थी वो इतनी एक्टिव थी कि कई सुबह माँ बाप से पहले तैयार हो जाती थी स्कूल के लिए एक्साइटेड होती थी जाने के लिए और माँ बाप बाद में उठ रहे होते थे। शी वॉन्टेड टू लर्न मोर एंड शी वॉज एक्सट्रीमली एक्टिव। इनफैक्ट एक महीने पहले ही इस 5 साल की लड़की को, ब्रायल को, अपने स्कूल से किंडरगार्टन से एक अवार्ड भी मिला था। किंडरगार्टन का एक उसूल था, मोटो था, और उस मोटो को संभालने के लिए इस 5 साल की बेटी को अवार्ड मिला था। रिस्पॉन्सिबल, रिसोर्सफुल, रिस्पेक्टफुल, ये अवार्ड पे लिखा हुआ था टाइटल। लास्ट वीक लेकिन कुछ अलग हुआ। ब्रायल, ये 5 साल की लड़की, एक हफ्ता पहले इस दिन से बीमार हो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था एंड शी जस्ट वेंट क्रेजी। तारा जो थी माँ उसकी, वो परेशान थी बहुत, मगर वो जानती थी उनकी बेटी बहुत जिद्दी है और वो स्कूल जा के ही रहेगी, शी स्टिल गोइंग टू स्कूल। मगर फिर ठीक हो गई वो, शी वॉज ऑल फाइन। एंड तारा जो थी इस दिन वही याद कर रही थी एंड तारा वॉज रियली रियली हैप्पी कि उसकी बेटी शी इज़ फाइन एंड गोइंग टू स्कूल। जैसी बस सामने से गुजर गई, तारा ने गेट को बंद किया, मुड़ी और घर के अंदर आई। तारा के जो हस्बैंड थे जॉन, वो बाकी बच्चों को ड्रॉप कर चुके थे, उनके दो और बच्चे थे टॉमी और सारा, प्री स्कूल में उनको ड्रॉप कर चुके थे और अब तारा के पास टाइम था रेडी होने के लिए, अपने बाकी पूरे दिन को तैयार करने के लिए, क्योंकि तारा का दिन भी बहुत बिजी जाने वाला था। तारा जो थी वो एक साइकेट्रिस्ट थी इन विचकटा कैंसस, और रिसेंटली उन्हें एक प्रमोशन मिला था कि वो एक जगह बैठ के काम ना करें, वो ट्रैवलिंग करें, और वो एक ट्रैवल थेरेपिस्ट बन गई थी। वो जगह जगह ट्रैवल करती थी चिल्ड्रन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में और सीनियर केयर फैसिलिटीज में, तो उनका दिन बहुत बिजी रहने वाला था। खैर, तारा भी अपनी बेटी ब्रायल को स्कूल बस में चढ़ाने के बाद स्टेयर्स पे जा रही थी ऊपर की तरफ ताकि वो चेंज हो, रेडी हो, फिर अपने काम के लिए निकले। मगर जैसे ही वो सीढ़ियों पे ऊपर जाने लगी, वैसे ही उनकी फ्रंट डोर की बेल बजी। बेल के साथ साथ बहुत जोरों से कोई नॉक कर रहा था। जी वो स्केर्ड, अचानक से वो बहुत डर गई, वो वापस मुड़ी, दरवाजे की तरफ गई और जम करके दरवाजे की नॉब को घुमाया, दरवाजा खुला और उन्होंने देखा उनके सामने दरवाजा खोलते के साथ ही उनकी 5 साल की बेटी ब्रायल खड़ी हुई थी, जो बहुत ज्यादा रो रही थी। लाइक इतनी ज्यादा रो रही थी ये 5 साल की लड़की कि शी वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। बहुत डर गई तारा अपनी बेटी को इस हालत में देख के, शी कुड नॉट इवन स्पीक, वो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, कहां पर रही थी रोते हुए। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। वो नील डाउन किया उन्होंने, अपनी बेटी को संभाला और उनसे पूछा, बेटा व्हाट हैपेंड। पर एज अ साइकेट्रिस्ट हरसेल्फ वो बता सकती थी कि उनकी बेटी को किसी किस्म का पैनिक अटैक आया है एंड वो कामली अपनी बेटी से बात कर रही थी। बेटा बेटा सांस लो, 3 सेकंड गिनो, सांस अंदर खींचो, सांस छोड़ो, एंड शी वॉज ट्राइंग टू काम हर डाउन। ब्रायल थोड़ी सी शांत हुई, उसके बाद तारा अपनी बेटी को अंदर घर के लेके आई, किचन में से पानी दिया और इस वक्त उन्होंने देखा तो ब्रायल कारपेट पे बैठी हुई थी, कुछ नहीं बोल रही थी, बस हल्के हल्के रो रही थी, उसकी सॉबिंग नहीं रुक रही थी। तारा ने बाहर की तरफ देखा तो स्कूल की बस जो अभी उनके सामने गई थी वो वापस आके खड़ी हुई थी एंड उनको पता था कि वो स्कूल नहीं भेज सकती है अपनी बेटी को भी। उन्होंने ब्रायल की तरफ देखा, उन्होंने बोला, बेटा आज स्कूल नहीं है। एंड उनकी बेटी ने जवाब दिया, मुझे स्कूल जाना भी नहीं, आई डोंट केयर, मुझे बाहर नहीं जाना। एंड तारा के दिमाग में बहुत सारे अलार्म बजने लगे, बिकॉज आज तक उनकी बेटी ने कभी स्कूल के लिए मना किया ही नहीं, उल्टा कितनी भी बीमार हुई हो उसने जिद करी कि उसे स्कूल जाना है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि उनके कहने पर कि स्कूल आज नहीं जाना है, उनकी बेटी भी कह रही है उसे जाना ही नहीं है।
4: इनफैक्ट उसे बाहर ही नहीं जाना,

टारा एज अ मदर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बेटी को स्कूल में कोई परेशान कर रहा है, कोई बुली कर रहा है, कहीं ऐसा तो किस्सा नहीं है। खैर, शी वॉज ट्राइंग टू काम हर डाउन। 15 मिनट बीत गए, ब्रायल थोड़ी सी भी शांत हो चुकी थी और उसने बोला कि वो स्कूल जाएगी। शी अग्रीड बट बोली कि आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, खुश नहीं है। लेट हो चुके थे स्कूल के लिए, फिर भी टारा को अपनी बेटी की सुननी थी एंड टारा ने अपनी बेटी को कहा कि चलो ठीक है स्कूल चलते हैं। बस तो जा चुकी थी लेकिन टारा खुद उसे छोड़ने के लिए गई। जब तक वो स्कूल पहुंची, स्कूल का पहला पीरियड, उसकी बेल बज चुकी थी, तो वो जानती थी ब्रायल विल बी मार्क्ड लेट, उसे लेट मार्क कर दिया जाएगा। टारा ने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप जाओ। एंड टारा बिल्कुल चिड़चिड़ेपन में स्कूल में एंटर कर रही थी एंड जो उसके कदमों में लाइटनेस होती थी, वो जो एक्साइटमेंट होती थी, वो साफ दिख रहा था कि वो जा चुकी थी। उसने अपनी बेटी को बिल्कुल चिड़चिड़ाते हुए स्कूल के अंदर एंटर करते हुए देखा। जब वो कन्फर्म हो गई टारा कि उनकी बेटी अभी स्कूल में जा चुकी है, वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ बैठी और ड्राइव करते हुए सोचने लगी वापस जाते हुए कि अचानक उनकी बेटी के बिहेवियर को क्या हुआ है, वो अचानक कैसे कैसे बदल गई। शी हैड नो क्लू अबाउट इट। शाम हो चुकी थी। उसके बाद जब शाम हुई तो टारा इस वक्त टेबल को सजा रही थी, ये फैमिली डाइनिंग का टाइम था, उन्होंने घर वालों को बुलाया एंड उनका दिन खुद का बहुत हेक्टिक था क्योंकि ब्रायल के साथ जो भी कुछ सुबह हुआ, खुद टारा भी अपने काम के लिए लेट हो चुकी थी जिस वजह से वो अपॉइंटमेंट के लिए लेट हुई और एक अपॉइंटमेंट लेट हुई तो बाकी सारी की सारी आगे उन्हें बढ़ानी पड़ी एंड शी गॉट लेट। इस केओस में वो तकरीबन 6:30-7:30 के करीब घर आई थी और अब उनके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कुछ भी करने की, तो उन्होंने स्क्रैम्बल्ड एग्स और टोस्ट तैयार किए थे डिनर के लिए। उन्होंने खैर प्लेट्स लगाना शुरू करी डिनर टेबल पे और उनके हस्बैंड जॉन और उनके साथ साथ उनके तीनों बच्चे आकर कुर्सी पे अपनी अपनी जगह बैठ गए। सबसे छोटा बच्चा हाई चेयर पे बैठा और बाकी दोनों लड़कियां सारा और ब्रायल माँ के साइड में। टारा एग सर्व करने लगी और जॉन जो सामने बैठे हुए थे उनके हस्बैंड, वो टोस्ट पर बटर लगा रहे थे सबके लिए। टारा ये जानती थी कि उनकी बेटी ब्रायल, उसे पैनिक अटैक आया था, उसके बाद वो पता नहीं कितनी स्टेबल होगी या नहीं होगी, सेंसिटिव होगी कि नहीं होगी, पर उन्होंने बात करने की कोशिश करी। उन्होंने पूछा ब्रायल बेटा दिन कैसा रहा स्कूल का, हाउ वाज इट। ब्रायल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो धीरे धीरे खा रही थी जैसे उसे खाना ही ना पसंद आ रहा हो और प्लेट की तरफ घूरी जा रही थी। टारा ने फिर से रिपीट किया, बेटा यू ओके, कम हियर। एंड जैसे ही उन्होंने दोबारा से पूछा, ब्रायल जो भी बस खाने की कोशिश कर रही थी लिटरली, वो बहुत जोरों से रोने लगी, एकदम से कुछ ज्यादा ही रोने लगी। इतना रो रही थी कि निवाला भी उतार नहीं पा रही थी एंड शी बिगैन चोकिंग, उसे सांस ही नहीं आ रही थी। और एकदम से फिर जॉन भी भागे, टारा भी भागी अपनी बेटी के पास एंड ब्रायल उस वक्त थोड़ी सी काम डाउन हुई जब उन्होंने पानी पिया। फिर टारा ने बोला बेटा क्या हुआ, यू ओके। और फिर ब्रायल ने, इस 5 साल की बच्चे ने रिप्लाई किया, बोली मैंने एक्सेल खा लिया मम्मा एंड एक्सेल जो है वो मेरे मुंह में फंस गया है, मेरे गले में भी फंस सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड टारा वाज नॉट श्योर उनकी बेटी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, पर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आओ। और अपनी बेटी ब्रायल को लिविंग रूम में लेके गई जहाँ उन्होंने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई और कहा कि ओपन योर माउथ, तो फिर मुंह के अंदर वो देखने लगी कि कुछ है तो नहीं। उन्होंने बोला बेबी आई प्रॉमिस यू कुछ भी नहीं है, कोई एक्सेल नहीं है बेटा, रिलैक्स। एंड ब्रायल ने बोला इसलिए नहीं है क्योंकि मैं निगल चुकी हूँ उसे एंड आई एम स्केर्ड आई विल डाई। और वो ऐसी बातें कर रही थी अजीब सी। टारा ने बहुत कोशिश करी कन्विंस करने की, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग विल हैपन, रिलैक्स। मगर वो कुछ भी कहें, उनकी बेटी ब्रायल इस वक्त इस एग शेल से एकदम ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। जैसे तैसे ये पूरा दिन गया और आई अगली सुबह। टारा जब उठी तो शी वॉज फीलिंग रिफ्रेश्ड और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी ये 5 साल की ब्रायल अब ठीक हो चुकी होगी, भूल चुकी होगी एक्चुअल की कहानी को, पूरे इंसिडेंट को। उन्होंने सबसे पहले ब्रश किया, हॉल में गई और उसके बाद हॉल को क्रॉस करते हुए वो सीधा ब्रायल के कमरे में गई। टारा ने देखा कि उनकी बेटी ब्रायल अभी भी बेड में है और स्कूल बस को आने में 45 मिनट्स हैं। उन्होंने बोला बेटा ब्रायल, नॉक करते हुए, और कहा कि बेटा स्कूल बस आने वाली है, ओनली 45 मिनट्स लेफ्ट, चलो जल्दी उठो। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा वो ब्लैंकेट के अंदर एकदम छुप गई।

और बोली मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं जाना, मुझे बाहर भी नहीं जाना, और बहुत एजिटेटेड नजर आ रही थी। तारा ने एज अ मॉम शी ट्राइड एवरीथिंग, उन्होंने कोशिश करी कि एक्सप्लेन करें और वो समझाने लगी अपनी बेटी को, बेटा अभी थर्सडे है ना, दो दिन और फिर वीकेंड है ना, और वैसे भी तुम्हें स्कूल पसंद है ना बेटा, यू लाइक गोइंग टू स्कूल इज़न्ट इट, और सुनो मैंने ना तुम्हारे लिए लंच बॉक्स में सरप्राइज रखा है, राइस क्रिस्पी, तुम्हें कितना पसंद है राइस क्रिस्पी है ना। शी ट्राइड एवरीथिंग, हर तरीके से अपनी बेटी को कन्विंस करने की कोशिश करी, मगर जैसे ही खाने का नाम लिया तो वो और भी ज्यादा रोने लगी और बोली मुझे लगता है मॉम मैंने कोई कीड़ा खा लिया है, मेरे गले से कोई कीड़ा उतर गया है। एंड तारा कुड नॉट बिलीव ये क्या हो क्या रहा है। शी अगेन ट्राई टू काम हर डाउन और उन्होंने बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तारा के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्हें कन्विंस करना था। उन्होंने बोला बेटा देखो मैं चेक करती हूँ, मैं चेक करती हूँ। दोबारा उन्होंने लाइट जलाई, देखा तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने बोला बेटा एनीथिंग, सब ठीक है। जब वो कन्विंस कर ही रही थी, थोड़ी बहुत शांत हुई, बाहर एकदम से स्कूल बस की आवाज आई, एंग्जाइटी जैसे ब्रायल की एकदम से बढ़ गई, वो मुंह चुभाने लगी, कंबल के अंदर बैठ गई, बोली नहीं नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। और बहुत डरी हुई थी वो, एंड तारा बहुत कंफ्यूज थी कि उनकी बेटी का बिहेवियर बहुत अजीब हो रहा है, पर शी हैड नो चॉइस। उन्होंने बोला ओके बेटा यू रेस्ट ओके। एंड उसके बाद वो सीधा अपने बेडरूम में गई तारा, और उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और सीधा डायल किया, अपने ऑफिस मैनेजर को कॉल की और बोली लिसन कैंसिल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स, फैमिली इमरजेंसी है, सो मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगी। इसी दिन के बाद तारा जो थी वो लिविंग रूम में थी और वहाँ पर उन्होंने देखा ब्रायल बस चल रही है बिल्कुल गुमसुम सी। उन्होंने उसका ध्यान बटाने के लिए उसे बिठाया और उसके बाद उसके बालों को काटने लगी, उसके लंबे खूबसूरत घुंघराले बालों को काट रही थी बहुत प्यार से धीरे धीरे। कुछ देर तक तो ब्रायल एकदम शांत रही, लेकिन उसके बाद ब्रायल को पता नहीं क्या हुआ, वो अपना सर लेफ्ट राइट करे जा रही थी बार बार, जैसे अपना सर दूर करने की कोशिश कर रही हो। एंड बार बार तारा बोली थी बेटा सीधा बैठो ना सीधा बैठो, पर वो नहीं मान रही थी, शी केप्ट शेकिंग हर हेड बुरी तरह से। तारा ने ब्रश को साइड में रखा और पूछा बेटा क्या हुआ क्या हुआ, व्हाट इज रॉन्ग। और ब्रायल ने फिर अपनी माँ की तरफ देखा और बोली कि मुझे डर है मेरे मुंह में बाल चले गए, मैं बाल खा गई हूँ मॉम, आई थिंक बाल मुंह में चले गए। एंड तारा ने बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है जरा से बाल निकले, वो भी ब्रश में, सी देखो ये ब्रश देखो। और बोली नहीं आपको नहीं पता। एंड उसके बाद वो अपनी माँ के पास से तारा के पास से उठी और सीधा भागी वॉशरूम में। एंड शीशे में बार बार अपना मुंह खोल के देख रही थी लगातार। एंड तारा अपनी 5 साल की बेटी को इस हालत में देख के शी हैड नथिंग टू से, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। ये दिन भी निकल गया इस पूरी जद्दोजहद में। जब अगला दिन आया तो तारा ने फिर से छुट्टी ली एंड शी ट्राइड कि अपनी बेटी के साथ वो बैठ के उसको इंगेज करे थोड़ा। तो तारा ने बोला ब्रायल को बोला ब्रायल टिक टैक टो खेलें, लेट्स प्ले टिक टैक टो ओके, तुम्हारा फेवरेट है ना। एंड ब्रायल थोड़ी सी उदास थी फॉर सम रीजन, लेकिन फिर भी बोली ओके मॉम। एंड दोनों बैठ गए टिक टैक टो खेलने के लिए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, पर अचानक से जैसे ही तारा अपना मूव चला रही थी गेम के अंदर, वैसे ही अपनी माँ की तरफ ब्रायल का जो नजरिया था वो ऐसा लगा जैसे बदल रहा है। शी वॉज एजिटेटेड इरीटेटेड और बार बार गुस्सा कर रही थी। तारा कुड नॉट बिलीव जब उसकी बेटी ब्रायल एक 5 साल की लड़की ने बोला कि मैं आपको पेंसिल चुबा दूंगी मार दूंगी आपको। दिस वॉज इट। एक माँ के लिए ये सुनना बहुत ज्यादा अजीब था, लाइक रैपिडली बिहेवियर गिर जाना इस कदर वॉज समथिंग शी नेवर एक्सपेक्टेड। ऐसा लग रहा था तारा, क्योंकि वो खुद ही की बेटी को जानती ही नहीं है, और अब उन्हें लग रहा था कि बहुत हुआ, अब आई थिंक ब्रायल को एक माँ की जरूरत नहीं है, एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। एंड शी वॉज ट्राइंग टू कॉल एवरीबडी शी कुड, अलग अलग कॉन्टेक्ट जोड़ते जोड़ते अगली शाम, नेक्स्ट इवनिंग सैटरडे नाइट थी। एंड तारा जो थी वो किचन टेबल पे थी, उनकी परेशानी अभी भी ये थी कि उनकी बेटी कुछ खा ही नहीं रही थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं खुद दूंगी इसे तो ये नहीं खाएगी, तो उन्होंने टेबल पे पीनट बटर जेली सैंडविच रख दिया कि इसे ये देखेगी इसको सैंडविच को चलते फिरते, इसे देख के भूख लगेगी और खा लेगी।

हमने नोटिस किया, ब्रायल जो है वो किचन में आई, टेबल पे उसने देखा रखा हुआ वो पीनट बटर जली सैंडविच, उसे देख रही थी, उसे देखकर भूख उसे लग भी रही थी लेकिन वापस घूम के वापस चली जा रही थी और बार बार सेम पैटर्न में चल रही थी, आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, लिविंग रूम से किचन, किचन से लिविंग रूम। एंड ये देखकर तारा का दिल टूट रहा था कि उनकी बेटी अभी भी खा नहीं रही है। उन्होंने बात भी करने की कोशिश करी कि क्या पता ये दोस्तों से मिलना चाहती हो। उन्होंने बोला, ब्रायल तुम्हारे दोस्तों से मिलना है तुम्हें, यू नो प्ले डे, एक एक एक एक मस्ती, कोई पिकनिक पे चलते हैं, क्या कहती हो? बट शी वॉज इग्नोरिंग कम्प्लीटली, कम्प्लीटली इग्नोरिंग। और ब्रायल के मुंह से अब रिपीटेडली एक सेंटेंस निकल रहा था, वो लगातार बोल रही थी, आई एम हंग्री आई डोंट वॉन्ट डाई, आई एम हंग्री आई डोंट वॉन्ट डाई, आई एम हंग्री आई डोंट वॉन्ट डाई। एंड ये वो लगातार रिपीट करे जा रही थी, बिल्कुल जैसे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एंड इवेंचुअली वो ये बोल बोल के थक कर, उसके लव्स भी अब पूरी तरह से नहीं निकल रहे थे, थक सी गई थी, उसकी स्पीच खराब हो गई थी। तारा अपनी बेटी को इस हालत में देख रही थी जैसे उसकी स्पीच 5 साल की बच्चे की नहीं 2 साल की बच्चे की हो गई हो। एंड वो ये बोलते बोलते बिना खाए रोते रोते कोलैप्स हो गई। तारा जो खुद एक ट्रेंड साइकेट्रिस्ट थी, वो जानती थी कि ये साइंस है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी OCD के एक किस्म का डिसऑर्डर, जहाँ पे बंदा या बंदी उन्हें लगता है कि एक थॉट पैटर्न है वो रिपीट करते रहते हैं करते रहते हैं, उसे OCD कहते हैं। पर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एकदम से नहीं आता है, ये डेवलप होता है धीरे धीरे धीरे, पर 2 दिन के अंदर इतना चेंज नहीं आ सकता। तारा खुद एक डॉक्टर जरूर थी पर उन्हें इस वक्त एक डॉक्टर की जरूरत थी। उन्होंने कॉल करी लोकल हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन को, जब बहुत सारे सवाल जवाब हुए बैक टू बैक, डॉक्टर ने पूछे, इन्होंने बताए, तो डॉक्टर ने बोला तारा को कि मैम आई थिंक आपको न्यूरोलॉजिस्ट को कॉल करने की ज़रूरत है, वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। तारा जो खुद हॉस्पिटल के प्रोसेसेस को जानती थी, वो जानती थी कि महीनों लग जाएंगे अपॉइंटमेंट पे, तो उन्होंने गुस्से में बोला, देखिए सुनिए मेरी बात, आप समझ नहीं रहे हैं शायद मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, आई नो द प्रोसेस, मुझे हेल्प अभी चाहिए, अभी इसी वक्त। और तारा उसके बाद फोन काट के गुस्से में 40 मिनट ड्राइव करने के बाद एक हॉस्पिटल पहुंची, कैंसर्स के एक लोकल हॉस्पिटल, एक इमरजेंसी रूम में थी। इस वक्त वहां पर एक फिजिशियन आई जो तारा से यंगर थी, अर्ली 30s में, एंड उन्होंने ब्राइट कलर के स्क्रब्स पहने हुए थे, वाइट कोट था, इनका नाम था डॉक्टर सारा फील्ड्स। वो ब्रायल की तरफ गई जैसे बच्चों की तरफ नर्सेज या डॉक्टर्स बढ़ते हैं, एंड बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ स्वीट हार्ट तुम्हें, क्या हुआ, यू ओके? ब्रायल ने बहुत ही चिड़चिड़ी आवाज में बोला, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, एक्सीडेंटली मैंने बाल खा लिए, एंड आई एम गोइंग टू डाई। वो थकी हुई आवाज में बार बार डॉक्टर को ये बोली जा रही थी। अब एज ए डॉक्टर, डॉक्टर सारा फील्ड्स ने रूटीन चेकअप्स किए एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि इतना सीरियस नहीं है मैटर मैम, आप फिक्र मत कीजिए, आई थिंक इसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, UTI में अक्सर ऐसा होता है कि बिहेवियर चेंज हो जाता है, अग्रेशन होता है, पैरानोया होता है, तो ऐसे ही कुछ होगा, डोंट वरी। एंड उन्होंने एंटीबायोटिक्स लिख दिए, बोला कि थोड़ा पानी वानी और पिलाओ, गैटरेट पिलाओ, एंड शील बी फाइन। तारा जब ये सुन रही थी तो उनके अंदर का जो डॉक्टर था वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बिकॉज शी वॉन्टेड टू शाउट आउट कि तुम क्यों इसको एंटीबायोटिक का दिलासा दे रही हो, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें कह रही हूँ ये खा नहीं रही है, तुम क्या बातें कर रही हो। शी न्यू के सामने इग्नोरेंस है, इग्नोर कर दिया है पूरी तरह से बात को। तारा ने डिसाइड किया, यू नो वट, आई थिंक मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तारा फौरन घर गई ब्रायल को लेके, बिना किसी दवाई किसी पर्ची के ब्रायल को, अपनी बेटी को, 5 साल की बेटी को उन्होंने सबसे पहले टक इन किया बेड में, उसे सुलाया, उसके बाद किचन में आई और अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स खंगालने लगी, बहुत कॉन्टैक्ट्स ढूंढे, फिर अपने एक दोस्त का उन्हें कॉन्टैक्ट मिला, डेबरा, जो उनकी कलीग भी थी और उनके साथ पढ़ी भी थी मेडिकल स्कूल में। डेबरा खुद एक पीडियाट्रिशियन थी और उनको एक लंबा चौड़ा मैसेज किया तारा ने और पूछा कि एक स्पेशलिस्ट बताओ। अगली ही सुबह डेबरा के बताने पे एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंची तारा अपनी बेटी ब्रायल को लेके, डॉक्टर सैमुअल एडवर्ड्स। एमरजेंसी अपॉइंटमेंट थी, बहुत मुश्किल से मिली थी, एंड ब्रायल इधर से उधर भाग रही थी उस हॉस्पिटल में। तारा के दिल में डर लग रहा था कि कहीं डॉक्टर से बदतमीजी ना कर दे, बट डॉक्टर समझदार थे, डॉक्टर सैमुअल एडवर्ड्स, और उन्होंने पूरा चेक किया। उन्होंने बोला कि देखिए मैम, डोंट माइंड, पर मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपकी बेटी को एन्सेफेलाइटिस हो, यह एन्सेफेलाइटिस बहुत
बहुत डेंजर बीमारी हो सकती है. एंड टारा वॉज कंपेरेटिवली ग्रेटफुल कि कोई सीरियस ले रहा है मामले को, लेकिन साथ ही साथ उन्हें डर बहुत था, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन में ऐसा इन्फ्लेमेशन हो सकता है कि वो बीमारी की तरफ ले जाए. इसमें हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन दोनों चीज़ें क्रिएट होती हैं, और ज़्यादा सिचुएशन में इट कैन बी डेडली एज वेल. डॉक्टर एडवर्ड वॉज ट्राइंग टू टॉक, ब्रायल से बात करना चाह रहे थे, लेकिन ब्रायल बात करने को राजी नहीं थी. डॉक्टर सैम्यूल ने कहा ओके बेटा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. एंड उन्होंने फिर टारा से बात करी. उन्होंने बताया कुछ देर के बाद MRI रिपोर्ट सब कुछ करने के बाद कि टेस्ट आर क्लियर एंड आपकी बेटी को एनसेफलाइटिस नहीं है और कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट आई डोंट नो कि क्या है, बट आई थिंक आपकी बेटी को किसी किस्म की साइकेट्रिक प्रॉब्लम है. और उन्होंने सजेस्ट किया ब्रायल को कि उसे आप एडमिट कराएं एक चिल्ड्रन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में. जस्ट इमेजिन कि टारा को कोई ये कह रहा है कि उनकी बेटी को चिल्ड्रन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कराएं, जहां पे खुद टारा जाती हैं बच्चों को देखने के लिए. शी हर सेल्फ इज अ डॉक्टर. टारा गुस्से से बिल्कुल भरी हुई थी, आग बबूला हो गई, डॉक्टर पे चिल्ला उठी वो. उन्होंने बोला आप क्या समझते हैं मैं कौन हूं, मैं खुद एक साइकेट्रिस्ट हूं, मुझे पता है ये साइकोलॉजिकल चीजें कैसे काम करती हैं, दो दिन में नहीं बनती हैं ये, एकदम से नहीं बढ़ती हैं, दिस इज नॉट अ साइकोलॉजिकल इशू, समझ रहे हैं आप मेरी बात को. एंड डॉक्टर ने बहुत सब्र से काम लिया, वो सिर्फ हाँ में मुंडी हिला रहे थे, बोले या ओके आई अंडरस्टैंड. बट देन डॉक्टर ने फिर भी एक बात कही टारा से, बोले देखिए मैम आई नो आप बहुत परेशान हैं, एक चीज़ आप ट्राई कीजिए, एक मैं नंबर आपको देता हूँ, ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं एंड ये रेयर डिजीजेस की पढ़ाई भी करते हैं और सॉल्व भी कर चुके हैं, आप प्लीज़ इनके पास एक बार होकर आइए. टारा वॉज रियली रियली एग्री. उन्होंने पर्चा खींचा जो जिस पर नंबर लिखा हुआ था. शी वॉज अगेन स्केप्टिकल, पर इस टाइम वो कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, उनकी 5 साल की बेटी का सवाल था. मंडे मॉर्निंग एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के ऑफिस में बैठी हुई थी टारा, जिनका नंबर डायल करके अपॉइंटमेंट लेके वो आई थी अपनी बेटी के साथ. फिर से उनसे कई सारे सवाल पूछे गए और इन सवालों के जवाब वो बार बार बार बार दे दे के इतनी चिढ़ चुकी थी कि आप कोई डॉक्टर उनसे पूछता था तो उनके जवाब बड़े ही सटल, बहुत ही पॉइंट ब्लैंक और अजीब रूट टोन में होते थे. पर थैंकफुली उनके सामने जो डॉक्टर बैठे थे वो इस बात को समझते थे एंड उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा. इनफैक्ट उन्होंने तमाम सवालों के जवाब पूछने के बाद कहा मैम एक आखिरी सवाल है, बस मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी को क्या रिसेंटली नज़ला खांसी हुई थी, कोल्ड हुआ था. एंड टारा का थोड़ा रवैया बदला. उन्होंने बोला या एक्चुअली यस टाइम हो गया डॉक्टर, उसे कोल्ड हुआ था. तो डॉक्टर ने फिर अपना पर्चा छोड़ा एंड जब उसने बोलना शुरू किया एवरीथिंग चेंज्ड. उन्होंने बोला मैम देखिए आई हैव अ थ्योरी, आपकी बेटी को जब नज़ला हुआ उसी टाइम एक बहुत ही रेयर फिनोमेना ट्रिगर हुआ, एक ऐसा रेयर इम्यून रिस्पॉन्स जो बहुत अलग होता है. इसमें होता यह है कि जब नज़ला होता है तो वायरस से लड़ने की जगह बॉडी अपने आप से लड़ पड़ती है एंड अपने ही ब्रेन को अटैक कर देती है. इस कंडीशन का एक नाम भी है, इस कंडीशन को कहते हैं पीडियाट्रिक अक्यूट ऑनसेट न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम, शॉर्ट फॉर्म पैंस. जब टारा को ये बताया गया शी वॉज रियली रियली शॉक्ड. उन्होंने खुद इसके बारे में पढ़ा है, उन्हें पता है इसके बारे में और वो जानती भी है कितना रेयर है. इनफैक्ट ये इतना रेयर है कि उन्होंने बताया कि जब उनकी पढ़ाई हो रही थी मेडिकल की तो उन्हें बताया गया था कि ऐसा केस तुम्हें जिंदगी में कभी मिलेगा तो नहीं, पर चाहो तो पढ़ लो. एंड उनकी जिंदगी में कभी ऐसा केस आया ही नहीं था. ये डिजीज एकदम से होती है एंड इट इज हॉरिफाइंग. और ये डिजीज़ जो होती है, ये किस्म का सिंड्रोम सिर्फ बच्चों में पाया जाता है. इसके सिम्टम्स बच्चों से अलग अलग हो सकते हैं बच्चों में, मगर इससे बच्चों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और वो थोड़े से वायलेंट हो जाते हैं बीच बीच में. एंड दिस इज कॉल्ड पीडियाट्रिक अक्यूट ऑनसेट न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम, शॉर्ट फॉर्म में पैंस. इसमें बच्चों का परसोना थोड़ा सा बदल जाता है, जैसे ब्रायल का बदल गया. और पैंस क्योंकि बहुत रेयर किस्म का सिंड्रोम है तो इसलिए इसका इलाज होते होते महीनों और एक साल तक लग सकता है फुली रिकवर होने में. टारा वॉज इनक्रेडिबली थैंकफुल. उनके आंख से आंसू बह रहे थे क्योंकि ये ऐसी डिजीज है कि ये MRI भी नहीं पकड़ सकता है. और क्योंकि ये रेयर है तो
इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है और डॉक्टर इसको डायग्नोज भी नहीं करते हैं।

ट्रीटमेंट हुआ, फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, डायग्नोस शुरू हुआ, एंड पता ये लगा जब इलाज शुरू हुआ कि पूरे के पूरे स्टेट में एक ही डॉक्टर है जो इलाज करता है, और वो भी सीधा मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, इट्स वेरी हार्ड टू गेट इट। जॉन और टारा ने अपनी बेटी की इलाज की वजह से कॉन्टैक्ट किया सरकार से, और कैंसर सरकार को इसके बारे में बताया, क्योंकि उन्हें खुद एरिजोना जाना पड़ा इस इलाज के लिए। आइबुप्रोफेन और कुछ स्टेरॉइड्स दिए गए इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए। 3 महीने के बाद ब्रायल पूरी तरह से रिकवर हुई एंड नॉर्मल बन पाई ये 5 साल की बच्ची। इस केस की वजह से एक बहुत बड़ा टर्न आया कैंसर से लेकर पूरे अमेरिका में। पैंस रजिस्ट्रेशन नाम की एक चीज़ जारी की गई साल 2022 में, जो स्पेशल मेडिकल कवरेज देती है उन बच्चों को जिन्हें ये वाला सिंड्रोम है। एंड दिस इज सो रेयर कि कई जगहों पर तो डॉक्टर्स को पता भी नहीं चलता कि कब हो गया और कैसे हो गया, दे डोंट इवन नो अबाउट इट, तो वो इलाज भी कैसे करेंगे। दिस वॉज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज दैट हैपन, और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों में पाई जाती है। इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज, एंड हो सकता है कि किसी ना किसी के काम आ जाए। सो स्प्रेड द स्टोरी एज मच एज यू कैन, यू नेवर नो किसी के काम आ जाए। तो ये था आज का किस्सा, एंड अब आपके हवाले। सो 666-22107 नंबर है, 666-22107, जरूर आपके मैसेज का इंतजार करूंगा मैं। एक बार फिर से 666-22107, स्टे ट्यून्ड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक
3: 6:11 बाय द क्लॉक एंड अगर आपने आज की स्टोरी सुनी है प्लीज प्लीज बताइएगा। इट वाज वन ऑफ दोस इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं। आई एम रियली रियली थैंकफुल कि आपको अच्छी लगती हैं कहानियाँ। आज वाली अगर आपने सुनी है तो प्लीज़ प्लीज़ इस मैटर पे मैं चाहूँगा कि आपके मैसेज ज़रूर ज़रूर आएँ। इफ़ यू हैव हर्ड द स्टोरी आई विल बी वेटिंग, भेजना ज़रूर। आपके मैसेज के बिना कोई मतलब नहीं है जी किसी चीज़ का, ठीक है? तो आपके मैसेज के इंतज़ार में हूँ। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आज का किस्सा आपको आखिर लगा तो कैसा लगा, ठीक है? बाकी तो मैं गाने चलाऊंगा ही, कोई टेंशन नहीं है, पर आपका मैसेज आना बहुत ज़रूरी है। 666-221-107। हेलो जी, फील लो बढ़िया करके, सेट करके, इतनी भारी भरकम गाने सुना दी है, अब आपके वाले जी। मैसेज जरूर कीजिए लेकिन, ओके?

0: अरे ओ सांभा म्यूजिक कहाँ है रे, कहानी सुने कि नहीं है?
1: जिन्होंने कहानी सुनी है उनके मैसेज जरा देख लेता हूँ मैं।

0: जबरदस्त कार्य कबीर भाई, थैंक यू सो मच फलक भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार आपको। एक मैसेज आया है नदर साहब का, उनका कहना है कि दिस वाज अ मिस्टीरियस इंसिडेंट एट द फर्स्ट स्टेज, आई थॉट इट कुड बी अ फोबिया एंड देन इट फील्स लाइक एनी मेंटल डिसऑर्डर एंड देन अगेन इट फील्स लाइक अ पैरानॉर्मल इंसिडेंट। आई एम वंडरिंग हाउ स्ट्रॉन्ग द फ्लू कुड बी, I never heard about this disease before. I really need to know about this disease. Thank you for this story. It is a message for the parents of a toddler. Yes, ये भाई ये जो आज मैंने कहानी सुनाई बहुत important है, especially जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, toddlers हैं, उनके लिए बहुत important कहानी है। और ये बीमारी के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था, so मैंने सोचा why not, you know, I should be the one जो बताए। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, very informative and suspenseful story. Thank you so much मेरे भाई, बहुत प्यार। और एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्रेम से मुझे मैसेज किया है मेरे भाई ने, जी एस के मेरा भाई, इन्होंने बहुत अच्छे से तुमकी तारीफ को जरा मैं अच्छे से पढ़ता हूँ। कह रहे हैं कबीर भाई गुड इवनिंग, यू ट्रूली ट्रूली हैव अ गिफ्ट फॉर स्टोरी टेलिंग, द वे यू शेयर इन्फॉर्मेशन फील्स लाइक मोर देन जस्ट फैक्ट्स, इट इज़ एन एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग दैट कीप्स लिसनर्स हुक्ड एंड मेक्स लर्निंग एन्जॉयबल, योर वॉइस कैरीज वॉर्म्थ एंड क्लैरिटी एंड द वे यू वीव डिटेल्स टुगेदर शोज बोथ स्किल एंड पैशन, इट्स रेयर टू फाइंड समवन हु कैन इन्फॉर्म एंड एंटरटेन एट द सेम टाइम एंड यू डू इट एफर्टलेसली। भाई मैं इसको खींच रहा हूँ, फोटो ले जा रहा हूँ, ये जो है भाई मैं भेजूँगा ना सिर्फ बॉस को बल्कि मैं अपने आप के पास भी रखूँगा ये। थैंक यू सो मच भाई, दैट रियली मीन्स अ लॉट। ये भाई कह रहे हैं भाई ये तो पूरी डॉक्यूमेंट्री थी, थैंक यू सो मच भाई, यही मकसद था, ऑडियो डॉक्यूमेंट्री, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। एक मैसेज है, कहानी बहुत मज़े की थी पर समझ में थोड़ा टाइम लगा, लगता है भाई इन चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अमन भाई कह रहे हैं एक्चुअली ट्रू, थैंक यू सो मच भाई, एक्चुअली ट्रू किस बात के लिए। मैसेज है सर यू आर अ चॉकलेट, हैं मैं चॉकलेट हूँ, असी चॉकलेट हाँ। इकरम भाई क्यों चॉकलेट क्यों कहा मुझे, तारीफ ही होगी वैसे तो, मुझे लग रहा है इसमें तो कोई बुराई नहीं। पहली मरतबा किसी ने मुझे बोला। एक मैसेज, नाइस स्टोरी, इट इज़ नॉलेजेबल, थैंक यू सो मच। कुछ कहानियाँ सिखाने के लिए होती हैं बेशक, नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच शिरवाई, जजाकल्ला। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कबीर हार्डी एज अ सॉफ्टी का उल्टा किया आपने, आतिब भाई थैंक यू आतिब भाई। एक और मैसेज है, कबीर सॉफ्टी। मुझे पता था ये होने वाला है, कबीर सॉफ्टी कह रहा बिकॉज यू आर अ स्वीट पर्सन, अच्छा इसलिए आप मुझे चॉकलेट कह रहे हैं, अच्छा। क्या क्या नाम मिलेंगे मुझे, कह रहे यू आर अ चॉकलेट बिकॉज यू आर वेरी स्वीट पर्सन, वेरी नाइस भाई। ये तो मुझे कभी नहीं कॉम्प्लीमेंट मिला, थैंक यू। बाप रे बाप, क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे। अच्छा एक और, दिस इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी बट नाइस, थैंक यू सो मच भाई, बहन एक्चुअली में, बहन या भाई, हया कुरेशी, ओके तो थैंक यू सो मच। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कैसे हैं?
0: बस जी बढ़िया है, आप सुनाए अमन भाई क्या हाल है भाई के?
1: अरे वाह आप पहचान लेते हैं, एक मिनट में पहचान लेते हैं
0: भाई जी, ऐसी थोड़ी सॉफ्टी आपका भाई दिल से।
1: वो अच्छा टॉपिक मिल गया आज,
0: है ना, अच्छा अच्छा एक वर्ड मिल गया सुनने को।
1: अच्छा तो मैं सुन रहा था, स्टोरी बहुत अच्छी थी, मैं इमेजिन भी कर रहा था उसको, उनको पूछना था कि सॉफ्टी का जो अपसाइड था वो डाउन था उसकी दाढ़ी में ऊपर था।
0: भाई यकीन ले रहा हूँ मेरा भी यही सवाल रह गया पूछना, ये कॉल के बाद यार ये मुझे भी पूछना था, सॉफ्टी मतलब अपसाइड डाउन कैसी, मतलब क्या
1: मतलब रियल में सॉफ्टी लेके मुंह में ऐसे ठोड़ी में घुसा देने का वैसा सीन था वो,
0: पता नहीं, आई डोंट नॉट नो, मुझे जानना पड़ेगा ये बात, तो ये
1: टॉपिक ना बन जाए कहीं
0: आ गया उनका मैसेज, कह रहे हैं नोक नीचे थी, कह रहे हैं सॉफ्टी की नोक नीचे थी, बता दिया, जवाब दे दिया,
1: बाद में पता चले मुल्ला जी आपको ढूंढ रहे हैं उधर।
0: नहीं रोमी भाई ने बता दिया, कह रहे हैं सॉफ्टी अच्छा नोक नीचे थी, अरे मुझे अब अपनी दाढ़ी ठीक करनी पड़ेगी, टेंशन दे दी इन्होंने भाई, मैंने भी नोक
1: नहीं, मैंने देखा दोबारा आपकी फोटो ओपन करके, ऐसा कुछ नहीं सीन नहीं है,
0: टेंशन
1: नहीं
0: लीजिए भाई, आज दाढ़ी छोटी कराई जाएगी,
1: ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन स्टोरी अच्छी थी,
0: थैंक यू भाई बहुत बहुत शुक्रिया।
1: एक आपकी हर स्टोरी जो होती है ना नॉलेज देती है और हमें बचाती भी है फ्यूचर के लिए, हमें मालूम पड़ जाएगा यानी किसी को हम बचा भी सकते हैं।
0: ये कहानी मैंने इसलिए सुना क्योंकि मुझे लगता है कि आप देसी लोगों ने तो नहीं सुनी है ये इस बीमारी के बारे में, और मैंने आसपास भी पूछा नहीं पता था, तो व्हाई नॉट यू नो डिस्कस इट, हो सकता है कि खुदा ना खासा किसी काम आ जाए, यू नेवर नो, क्योंकि ये चीजें ऐसी ट्रिगर होती हैं, तो इसलिए
1: मैंने लिखा एक्चुअली ट्रू, क्योंकि किसी ने आपके लिए लिखा था, ये मैसेज लिखा था कि जो मतलब आप डॉक्यूमेंट्री सुनाते हो वो आप ब्लेसिंग हो,
0: थैंक यू सो मच,
1: आपके लिए हमारे लिए ब्लेसिंग है, हम सुनते हैं, मतलब लिसनिंग टू योर स्टोरी इज लाइक रीडिंग अ चैप्टर,
0: भाई ये आपकी
1: मतलब हमें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है,
0: आपका बड़ा पन मेरे भाई, थैंक यू सो मच इस मोहब्बत के लिए।
1: बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। कल की स्टोरी भी अच्छी थी ग्राहम की,
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई।
1: ग्राहम था ना वो?
0: हाँ ग्राहम था, ग्राहम नाम था भाई का,
1: ग्राहम मैन कॉलिंग।
0: हाँ ग्राहम तो भाई वो तो अलग ही चालू आदमी था। नहीं और इंशाल्लाह और करेंगे, पर थैंक यू सो मच भाई, आपका बड़प्पन है।

0: मोहब्बत के लिए बहुत
1: शुक्रिया वेलकम कबीर भाई थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग
0: थैंक यू सो मच मेरे
1: भाई टेक केयर हैव
0: नाइस यू टू मेरे भाई थैंक यू और अमन के भाई के प्रेम के बाद फरद भाई लिखते हैं ऐसा ही होता है जब भी अच्छी कहानी होती थैंक यू सो मच बाय बहुत सारा प्यार किया एम के भाई लिखते हैं नाइस स्टोरी थैंक यू सो मच एंड आप लोगों की इतनी मोहब्बत है इस वजह से कहानियां भी अच्छी अच्छी मिल जाती है हिम्मत भी आती है चलो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन सो थैंक यू सो मच फॉर एवरी मैसेज एक और मैसेज आया मेरे पास अस्सलाम वालेकुम भाई मैं आज की मेडिकल स्टोरी सुन रहा था मुझे पहले लगा कि ये कहीं हॉरर स्टोरी तो नहीं है फिर सुनते सुनते कहानी ने एक और पलट लिया एक और बार करवट ली और जब कहानी एंड हुई तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल स्टोरीज यू हैव एवर टोल्ड कीप अप द गुड वर्क अजमत दिस साइड थैंक यू सो मच जजाकला बहुत बहुत शुक्रिया मैंने इसलिए भी सुनाई थी मैंने कहा मेडिकल मिस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि कई चीज़ें हमें पता ही नहीं होती हैं और वो कोई ऐसे आप ढूंढेंगे पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे अरे इतना लंबा कौन पढ़े मेडिकल टर्म्स को लेकिन भाई आपका डॉक्टर भी बन गया इस चीज़ के चक्कर में थैंक यू सो मच ओके सो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे बाकी कहानी आपको कैसे लगी यू कैन स्टिल टेल थ्रू मैसेजेस 666-22-107 नंबर है एंड कुछ देर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अजान के बाद सो 666-22-107 ये नंबर है मैसेज मुसेज करते रहा करो बहुत ज़रूरी हो जाता है ठीक है सो स्टे ट्यून्ड

0: नजर आने लगते हैं। जिंदगी में इंसान के लिए सबसे बुरा वक्त वो है जब आपकी नाराजगी और गुस्से के डर से आपके वालिदैन अपनी ख्वाहिश और जरूरत का इजहार और नसीहत करना छोड़ दें। मुश्किल वक्त में दुनियावी तदाबीर जरूर कीजिए, लेकिन अल्लाह ताला से इल्तजा और दुआ भी कीजिए, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म हो जाता है वहां से अल्लाह ताला की रहमत का नजूल शुरू हो जाता है। मुश्किल वक्त में साथ देने वाला कोई अजनबी क्यों ना हो दिल में उतर जाता है, जबकि मुश्किल की घड़ी में किनारा करने वाला अगरचे अपना ही क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। याद रखिए कि जिंदगी में अगर हम मुश्किल हालात से दो चार ना होते तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने हमें कैसे नजर आते।
1: पैगाम ऑन FM 107 कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: देसी।
1: बाईस गाने के उस पार मिलते हैं और बहुत सारा ड्रामा बाकी है अभी। बाकी ट्रैफिक हाल बता दीजिएगा 666-2107 पर रफ्तार विद ड्रामा। लेट्स गो 6:30 ऑन द क्लॉक।

मैसेजेस हैं बहुत बहुत मोहब्बत से के शे मंजूर भाई लिखा है कि जलवा जो है कहीं शाम हो चाहे सुबह हो आपको तो बड़ी खुशी होगी शाम मिल गई, लेकिन हमें सुबह में ताजगी चाहिए होती है आपके आवाज़ से मिलती है। शे मंजूर भाई आपका बड़प्पन आपकी मोहब्बत है भाई, मेरा शाम सेट कर दिया आपने मैसेज करके, ये समझ लीजिए जितनी खुशियाँ मुझे देते हैं आप सभी इतने मैसेजेस के जरिए, अल्लाह ताला आपको भी उतनी खुशियाँ रिटर्न दे इन 100x। थैंक यू सो मच भाई। एक मैसेज आया मेरे पास और अच्छा खासा लंबा मैसेज है तो मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ। ये नसर भाई ने लिखा है, इन्होंने लिखा है कि लाइफ इज अ जर्नी इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड थिंग। अच्छा आगे लिखा है जर्नी विद एन अनएक्सपेक्टेड स्टॉपेज, आर रूट्स आरंट द सेम बट इट फील्स लाइक आई नो यू। थैंक यू सो मच भाई, दैट इज सच स्वीट जेस्चर। आगे लिखा है कि इट फील्स लाइक यू आर अ बडी लाइक मी, अ लॉट ऑफ फैंस आउट देयर ऑल दे लाइक यू लव यू एंड काउंट यू एज देयर वन ऑफ देम, डोंट यू फील इट? आई फील इट, कम्प्लीटली फील इट। मुझे ऐसा सच में लगता है कि जब मैं शो करता हूँ स्पेशली, और इसमें कोई गुरूर कोई घमंड नहीं है, बट आई फील कि जब मैं शो कर रहा होता तो आई फील कि सब मुझे जानते हैं मैं उन्हें जानता हूँ एंड इट फील्स ग्रेट। आगे लिखा है कि ओनली यू कैन यूनाइट अस इफ़ यू क्रिएट अ सोशल साइट पेज और ग्रुप्स वी कुड बी अ पार्ट ऑफ देयर, सूनर और लेटर वी नीड टू लीव दिस कंट्री फॉर गुड, इफ वी कुड हैव अ प्लेटफॉर्म वी कुड कनेक्ट विद यू फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, सो प्लीज बी अवेलेबल एंड लेट अस कनेक्ट विद यू, लेट अस शेयर आर थॉट्स, आई बिलीव द अदर लिसनर विल स्ट्रॉन्गली अग्री विद मी, नाउ इट्स अप टू यू हाउ वुड यू लव देम बैक। भाई इतना इमोशनल आपने कर दिया ना मैसेज, कह रहा देखो भाई सब जो हैं अलग अलग कंट्री और तबके से आए हैं, सब अलग अलग चले भी जाएंगे एक दिन, लेकिन आपसे जुड़े रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बना देना चाहिए। भाई दिस इज़ अमेजिंग, थैंक यू भाई, मतलब क्या कहें, आपने इमोशनल कर दिया भाई, थैंक यू सो मच। आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ, रिगार्ड मतलब सारी लेजीनेस छोड़ के आई एम वर्किंग ऑन इट एंड यू विल गेट इट सून, बट थैंक यू सो मच, दिस इज समथिंग आई कैन नॉट इवन रिप्लाई। आरजे को चुप करा दिया भाई, आपने और क्या चाहिए। प्रिंस भाई ने 3 फ्लावर भेजे हैं, प्रिंस भाई को हम 3 दिल भेजेंगे। लो प्रिंस भाई हमारी तरफ से कबूल करो भाई। स्टोरी भाई अभी भेजते भाई इंशाल्लाह। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज सलमान भाई का, सलमान भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच आप सभी का फॉर मेकिंग मी फील कि आप मुझे बहुत पहले से जानते हैं और मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। अब तो मैं आपके नंबर भी जान चुका हूँ सबके। अच्छा आप जरा मैं बता दूं आज के कौन कौन से दिन हैं जो इंटरनेशनली मार्क्ड हैं। इनमें एक आता है जी वर्ल्ड ओशन डे, समुद्र का दिन है आज। बढ़िया, आज मुझे समुद्री कहानी मिल जानी चाहिए थी बट मैंने बहुत कोशिश करी, अच्छी वाली मिली नहीं, तो मैंने कहा चलो छोड़ो छड्डो यार कभी और सुना देंगे। आज है बेस्ट फ्रेंड्स डे, और देख रहे हैं आप कितने मैसेजेस आए आप लोगों के। ये है सच्ची दोस्ती भाई, ये है सच्ची दोस्ती आपकी और मेरी, ये चलती रहनी चाहिए। इस शो में कम से कम आप खुल के रहें एकदम बढ़िया करके, एकदम खुल के रहें, ऐसा होना चाहिए कि मोहल्ले में बातचीत चल रही है। इसके बाद आज है बाउंटी डे, इग्नोर इट, हमारे काम का नहीं है, अल्लाह ना करे किसी किस्म की बाउंटी किसी के सर पे हो। इसके बाद है लव योर स्किन डे, मुझे याद है वो सुबह को एक भाई ने मैसेज किया था वो स्किन केयर रूटीन को लेकर, मुझे कह रहे थे ये कौन सी स्किन केयर रूटीन है, मैं तो कोरियन ब्यूटी फॉलो करता हूँ। अरे कौन सी, कि क्यों मतलब लड़कों को ये सब शोभा नहीं देता है। I'm not demotivating you, मगर फिर भी एक मैसेज है हैप्पी गेमर्स डे भाई, आज गेमर्स डे भी है क्या, क्या बात कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं दिखाई? अरे मेरा भाई ये मैसेज क्या है सलमान भाई ने, अगर आज गेमर्स डे तो तमाम गेमर्स से, गेमर कम्युनिटी से मैं कहना चाहता हूँ हम लोगों को एकता बनाए रखनी है दोस्तों, मेरे भाइयों एक साथ रहना एकजुट होके। अगर किसी, अगर कोई कंसोल पे खेलता है तो आपकी आईडीज मुझे भेजिएगा, जो भी कंसोल पे खेलते हैं लेट मी नो, एक साथ कनेक्ट होंगे भाई, वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, आपका भाई भी एकदम तगड़ा गेमर है भाई सलमान भाई, डू लेट मी नो। एक मैसेज है लाजिम भेजना भाई स्टोरी आज की, बिल्कुल भेजूंगा भाई इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर दी जाएगी। बाकी ट्रैफिक का हाल एक गाने के बाद, 666-22-107 नंबर है, 666-22-107 एंड मुझे बताइएगा जरूर भाई प्लीज़, आई वुड लव टू नो। एंड एक या दो गाने के बाद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तो जानेगा किधर भी नहीं, ठीक है, जानेगा किधर भी नहीं। एंड एक बहुत ही प्यारा सा गाना, बिकॉज बनता है बहुत प्यारा गाना है, ये सुना भी है आपने। इकरम भाई कह रहे हैं आप चॉकलेट हैं और आज हैप्पी चॉकलेट डे, ये क्या बात है यार

अरे भाई थैंक यू सो मच, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू एंड मी अपेरेंटली. लो जी सुनो, आ ले रहे आपका भाई डंडा ऐश्वर्या ग्रेवाल, इश्क बावला. भाई ऐसे कैंट लिरिक्स ना आपने सुने नहीं होंगे, गणा सूत्र गाना भाई, बढ़िया करके सुनो वॉल्यूम बढ़ा के, ठीक है जी. और मारा पीठ पाछे मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पे 666-221-07. धुम्मा उठा देंगे भाई.

जो जो कंसोल वाले गेम है भाई वो कंसोल पे मिलेंगे आपको। आप अमन भाई सीडी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि आजकल सीडीज की जगह ऑनलाइन गेमिंग मतलब सॉरी ऑनलाइन गेमिंग कह रहा हूँ, ऑनलाइन गेम ज़्यादा सही मिल जाते हैं। सीडीज का अगर आपको कलेक्शन करने का शौक है तो बात दूसरी है, आप कलेक्शन के तौर पर रख सकते हैं। आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं, डू यू हैव अ कंसोल एट होम, अगर है तो मैं आपको पूरा कंसोल करके बताऊँगा क्या क्या है। अच्छा ये वक्त है रिकमेंडेशन का, तो

एक मेरे पास मैसेज आया था कल परसों की बात है, मैं अभी रीड करा मैंने, वो मेरी दिक्कत है, भूल गया था मैं। तो एक भाई ने मेरे कहने पे पैरासाइट देखी थी, पैरासाइट ऑस्कर्स में भी जीती थी, एंड इट्स एन अमेजिंग मूवी। अगर आपने अभी तक पैरासाइट नहीं देखी और आप चाहते हैं ऐसा सिनेमा देखना कि आपको लगे कि यार फिल्म मेकिंग कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है, तो आपको पैरासाइट देखनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ मूवी लाइक पैरासाइट, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। क्या होता है कि मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा फिल्म मेकिंग पे, जितना मुझे पता उतना बता दूं, एक ही फ्रेम के अंदर कितना कुछ हो सकता है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पैरासाइट। आपको इतनी शॉकिंग मूवी, अगर आपको मूवीज देखनी जिनमें आपको शॉक वैल्यू मिले, तो उनमें से एक है पैरासाइट। डू वॉच इट, पहले आ चुकी तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट नाउ, प्लीज गो एंड वॉच पैरासाइट। एक और हाईली रिकमेंडेड मूवी है जो काफी अंडररेटेड रह जाती है क्योंकि लोग इस बारे में बात नहीं करते, बट एक हॉरर कम साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसका नाम है साइलेंस ऑफ द लैम्स। अगर आपने साइलेंस ऑफ द लैम्स नहीं देखी है, यू आर मिसिंग द पॉइंट ब्रो। ये एक ऐसी मूवी है जिसके बलबूते बहुत सारी मूवीज ने जन्म लिया है, समझ रहे हैं आप? वो मूवी जिसने बहुत सारी आने वाली मूवीज को जन्म दिया है, तो ये वैसी बेंचमार्क मूवी है। ये आपको कहीं और ही ले जाएगी। यू विल बी, क्या होता है ना, कई बार तो आप मूवी में कैरेक्टर देखते हैं और उस कैरेक्टर की नज़र से आप मूवी को देखना शुरू कर देते हैं। ये वो वाली मूवी है कि आपको एक कैरेक्टर के स्किन में पुट कर देगी, एंड देन यू विल बी रिव्यूइंग और वॉचिंग द मूवी इन द सेम वे, तो आपका नजरिया मूवी देखने का थोड़ा बदल जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, पहले ही ये मूवी साइलेंस ऑफ द लैम्स देखने के बाद हो सकता है आपको बाकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स अच्छी भी ना लगे, बिकॉज ये सच में एक अलग बेंचमार्क है। इसमें जो एक्टिंग की गई है हैनिबल लेक्टर की, भाई साहब कौन से लेवल की एक्टिंग है, आप देखिए एंड यू विल बी अमेज टू सी इट, मैं बता रहा हूँ आपको। एंड एक मूवी जो लोगों ने मिस कर दी होगी, मैं आज मिस की हुई मूवीज बता रहा हूँ, क्या वैसे पैरासाइट मैंने देखी है, जबरदस्त मूवी है, बहुत जबरदस्त, वेल डिजर्व फॉर ऑस्कर। आई बिलीव ऐसी मूवीज बॉलीवुड बना नहीं सकता, बॉलीवुड नहीं बनाएगा। आई टेल यू व्हाई बॉलीवुड क्यों नहीं बनाएगा, उसके पीछे वजह ये भी है कि हमारी ऑडियंस जो है उसे इतना मसाला खाने की आदत हो चुकी है कि वो शायद पैरासाइट जैसी मूवी के लिए सब्र नहीं रख पाएगा। हमारा ना जो दिमाग है वो अटेंशन स्पैन बहुत कम है यूसुफ भाई, तो आई डोंट थिंक पैरासाइट जैसी मूवी इंडिया में बनेगी और उसमें गाने नहीं होंगे और म्यूजिक नहीं होगा। आपने नोटिस किया होगा कि हमारी मूवीज़ में क्या होता है, हमारी मूवीज़ में बात बात पे BGM बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, बट जब थिएटर, क्योंकि मैंने खुद थिएटर किया तो आपको बता सकता हूँ बिल्कुल डंकी की चोट पे, कि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट द साइलेंस। हमेशा डायलॉग्स म्यूजिक ज़रूरी नहीं होता, जब मूवी में एक साइलेंट होता है, साइलेंस होता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो पैरासाइट भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, एक फ्रेम में पूरा कियोस चल रहा है और मूवी एक बड़ा सा कैनवस है और आप देखते हैं बोलते हैं बाप रे क्या देख लिया मैंने। एंड ऐसी एक और मूवी जैसे मैंने बताया साइलेंस ऑफ द लैम्स, वो भी ऐसी इट वर्क्स इट प्लेज विद योर माइंड। आपको लगेगा भाई जो मैं सोच रहा हूँ ये वही हो रहा है कि क्या हो रहा है, एंड जब तक मूवी एंड तक पहुंचेगी, अरे वाह, आप बोले अरे अरे ये क्या देख लिया भाई। तो डू वॉच दीज मूवीज, इन मूवीज में कुछ बात है जो बाकी मूवीज में नहीं है। एंड एक मैं स्पॉइलर दे देता हूँ, आपको याद होगा आपने धूम 3 देखी होगी, आई एम नॉट सेइंग जाके धूम 3 देखिए मत देखिएगा, बट धूम 3 में एक जो बहुत ज़बरदस्ती की कॉपी की गई है जिस मूवी के एलिमेंट्स को उठाया गया है, वो मूवी देखिएगा। इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन और मूवी का नाम है प्रेस्टीज। अगर आपने प्रेस्टीज नहीं देखी है देन माय फ्रेंड यू आर मिसिंग द होल पॉइंट। प्रेस्टीज जैसी मूवी लाइफ टाइम में एक बार बनती है, एंड इस मूवी की कोई कॉपी भी नहीं है, बट इसके एलिमेंट्स उठा के ज़बरदस्ती की धूम 3 बनाई गई थी। आई डोंट नो वाई आमिर खान जैसा बंदा ऐसी गलती कैसे कर सकता है, मगर या उसके एलिमेंट्स को उठा के बनाई गई थी मूवी। तो ये 3 आज मेरे रिकमेंडेशन है, प्रेस्टीज, साइलेंस ऑफ द लैम्स, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट वॉच इट, इट विल ब्लो योर माइंड, एंड पैरासाइट। ये तो देखनी ही देखनी चाहिए आपको, अगर आपको जरा सी भी फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, आपको फिल्में पसंद हैं, आप खुद को एक मूवी बफ मानते हैं, गो एंड वॉच दीज मूवीज, एंड डेफिनेटली आप बोलेंगे कि भाई क्या रिकमेंड किया, मजा आ गया। एंड अगर आप भी कुछ रिकमेंड करना चाहें तो प्लीज़ कीजिएगा, बिकॉज आपके रिकमेंडेशन पर भी बहुत मजा आता है मुझे जानने देखने में, सो प्लीज़ लेट मी नो। अभी तो बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, आई एम वॉचिंग दीज डेज 2 सीरीज 3 सीरीज इनफैक्ट एक साथ देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वेलकम टू डेरी बहुत बढ़िया है, इट जो क्लाउन आया था उस पर बनी है, फ्रॉम का season 4 चल रहा है जिसके लास्ट एपिसोड अभी आया है संडे को, सो आई एम गोना वॉच इट टुडे। एंड उसके अलावा आई एम वॉचिंग इफ विशेस कुड किल, वो भी बहुत ज़बरदस्त सीरीज है, ये हमारे ऑफिस में रूबी हैं, उन्होंने बताया था, तो वो भी बहुत

बहुत बढ़िया सीरीज है। तो ये तीन सीरीज अभी चल रही है बैक टू बैक कहीं ना कहीं से। एक वैसे फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड तो भाई फ्रैक्चर्ड को आए बहुत टाइम हो गया, फ्रैक्चर्ड जो नेटफ्लिक्स की है, वही कह रहे हैं ना तो फैल भाई। तो जब फ्रैक्चर्ड रिलीज हुई थी तो फ्रैक्चर्ड भी एक मूवी की उपज ही है भाई। फ्रैक्चर्ड इज ऑल्सो मेड थ्रू अ मूवी, एज इन कि वो अडेप्टेशन है, दो तीन मूवीज का मिक्सचर है। बट हाँ, गुड चॉइस, फ्रैक्चर्ड भी देखी जा सकती है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, बट स्टिल यू विल लव टू वॉच इट। एनीवे, ये कुछ मेरे रिकमेंडेशन थे, पर आपके भी रिकमेंडेशन हो तो प्लीज प्लीज बताइएगा 666-22107 पे, क्योंकि फोन अभी मेरे पास ही है और मैं आपको बहुत सारी अभी कहानियां भी भेजने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो 666-22107 इज द नंबर। एंड क्योंकि अभी 7 बजने वाले हैं, मेरे भी आपसे इजाजत देने का वक्त आ गया, तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। एक नई कहानी ढूंढ के रखूंगा आपके लिए, बढ़िया सी ताजा तरीन, बिल्कुल हिला देने वाली स्पीकरों को, ऐसी वाली कहानी इंशाल्लाह कल आएगी। अभी आप 7 बजे सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, एंड फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। एक मैसेज आया, एक सेकंड, यूसुफ भाई कह रहे हैं कल जो आपने मूवी बताई थी प्रीडेस्टिनेशन, वो रात में देखी मैंने, लेकिन फॉरवर्ड कर करके ठीक लगी लेकिन समझ नहीं आई। आपने फॉरवर्ड करके देखी इसलिए आपको समझ नहीं आई, दैट इज द होल पॉइंट। मैंने क्या कहा था, जब आप प्रीडेस्टिनेशन देखेंगे यू हैव टू लिटरली वॉच इट। प्रीडेस्टिनेशन के एंड में जो हुआ है यूसुफ भाई, अगर आप समझ लेते तो फिर आपका दिमाग घूम जाता। मैं आपको मैसेज में बताता हूँ क्या हुआ एंड में, ठीक है? बिकॉज वो फॉरवर्ड करने वाली मैसेज बिल्कुल मूवी नहीं है भाई, यू हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स इन द मूवी। एंड में क्या हुआ मैं आपको मैसेज में बताता हूँ, देन यू विल बी शॉक्ड टू नो कि क्या हुआ है। ओके, फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: ने में मुआविनों मददगार साबित होगा। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन और कतर यूनिवर्सिटी ने एक मुशतरका तहकीकी फंडिंग स्कीम के लिए एक माहदे पर दस्तखत किया है, जिसका मकसद दोनों इदारों के दरमियान तहकीकी शोबों में तआवुन को फ़रोग देना और कौमी सेहत की तरजीहात को हल करने में मुआवनत करने वाली तहकीक की हिमायत करना है। यह फंडिंग स्कीम दोनों इदारों के प्रोग्रामों की तकमील और ऐसे मंसूबों के लिए मुआविन व मददगार होंगी जो रियासत कतर में सेहत की देखभाल के कौमी अहदाफ से हम आहंग हैं। इस इकदाम के ज़रिए डॉक्टरों, मुहक्किकीन और माहिरीन तालीम को मुश्तरका तौर पर काम करने के नए मौक़े फराहम करना है, ताकि वो मरीज़ों की देखभाल को बेहतर बनाने और शोबे सेहत की खिदमात को तरक्की देने में मददगार साबित हों। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में साइंसी, तालीमी और तदरीसी उमूर के सरबराह डॉक्टर जासिम सुवैदी ने कहा कि हमद मेडिकल कॉरपोरेशन और कतर यूनिवर्सिटी की क़ियादत में ये स्कीम डॉक्टरों, मुहक्किकीन और एकेडमिक माहिरीन के लिए नए मौक़े पैदा करेगी, ताकि वह कौमी सेहत के तरजीही उमूर से मुतालिक मंसूबों पर मिलकर काम करें और कतर में शोबे सेहत की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने एक प्रेस बयान में मज़ीद कहा कि मुश्तरका फंडिंग की इस पहल का मकसद जिद्दत को फ़रोग देना और तहकीकाती सलाहियतों को मजबूत करना है, जो मरीजों की बेहतर देखभाल करें और कतर में सेहत की खिदमात की तरक्की में मुआविन साबित हों। उधर कतर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अयमन इरबद ने कहा कि दोनों इदारों के दरमियान तआवुन का मुआहदा साइंसी तहकीक और जिद्दत के उस माहौलियाती निज़ाम को मजबूत करने के मुश्तरक आज़म की अक्कासी करता है जो कौमी सेहत की तरजीहात की बेहतर खिदमत करेगा, क्योंकि मुश्तरक तहकीकी फंडिंग की पहल मुहक्किकीन, तिब्बी माहिरीन और एकेडमिक स्टाफ के दरमियान कसीर शुबा जाती तआवुन को फ़रोग देने और साइंसी इल्म को अमली तजर्बों में तब्दील करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है, जो आवामी सेहत की देखभाल के मेयार को बेहतर बनाने में मुआविन बनेगा। आज जनूबी गज़ा पट्टी में खान यूनुस पर काबिज़ इसराइली फ़िज़ाई हमले के नतीजे में 3 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी ख़बर रसा एजेंसी वफा ने बताया कि एक इसराइली ड्रोन ने खान यूनुस के शिमाल मगरिब में शहर असदा के करीब एक गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। काबिज़ इसराइली फ़ोर्स जंगबंदी माहदे की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए गज़ा पट्टी के कई इलाकों में मज़ीद कत्ल गारत गरी, तोपों से गोलाबारी, फ़िज़ाई हमले जारी रखे हुए है। तिब्बी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 अफराद शहीद और दीगर 43 ज़ख्मी हो गए हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि 11 अक्टूबर से जंगबंदी माहदे के बाद से अब तक 970 अफराद शहीद और 3063 ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 782 लाशें मलबे से निकाली गईं। ज़राए ने इस बात की भी वजाहत की कि कई मुतासरीन अब भी मलबे में और सड़कों पर मौजूद हैं, जहां तक रसाई में एम्बुलेंस और इमदादी टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गज़ा पट्टी पर 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में आज तक शहदा की तादाद 72,971, जबकि ज़ख्मियों की अब तक मजमूई तादाद 1,73,128 हो गई है। रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि उसकी फोर्सेज ने मशरक़ी यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में खेमक नामी कस्बे पर कब्ज़ा कर लिया है। वजारत दिफा के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूसी फोर्सेज ने यूक्रेनी मुसल्लह फोर्सेज के असलहों और ईंधन के ज़खायर, नेस ट्रांसपोर्ट और तवानाई के ढांचों को निशाना बनाया है। याद रहे कि 24 फरवरी 2022 को जंग के आगाज़ से अब तक रूस और यूक्रेन रोज़ाना लड़ाई और मुतासर इलाकों से मुतालिक रिपोर्ट्स जारी करते हैं, ताहम जारी जंगी हालात और लड़ाई के बाइस इन रिपोर्ट्स की दुरुस्तगी की मुकम्मल तस्दीक मुमकिन नहीं। नशे के अख्तिताम पर एक मरतबा फिर पेश खिदमत है अहम ख़बरों का खुलासा।
1: صاحب السمو أمير شيخ تميم بن حمد

वरना भाई ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी स्टोरीज डाली इसकी हद नहीं. सो इफ यू हैव बीन देयर ऑल्सो अपनी स्टोरीज अपने इन इवेंट्स के चर्चे हम तक जरूर पहुंचाया करें. FM 107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं एज यू नो. सो प्लीज लेट अस नो अगर आप किसी भी इवेंट का हिस्सा बने हैं तो. इसके अलावा एक और इवेंट है जो काफी काफी ज्यादा क्रिएटिव है. इट इज एन ऑन गोइंग इवेंट. ये शुरू हुआ था 18 मई से, ठीक है, और ये अभी चल रहा है. आई थिंक एक दो दिन और बाकी रहे होंगे इसके. ये जून के महीने तक इसलिए खींच के लाया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चों की छुट्टियां रही हैं, बहुत सारे लोग जो हैं दे कुड नॉट फ्लाई आउट एंड वो कुछ क्रिएटिव फ्रीडम, कुछ क्रिएटिविटी अपनाना चाहते हैं. दिस इज द राइट टाइम एंड इंडोर इवेंट्स सबसे बढ़िया है. तो एक पूरा 4 हफ्तों का एक क्रिएटिव सफर तैयार किया गया, डिजाइन किया गया ताकि जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, वो इम्प्रोवाइज कर सकें, इम्प्रूव कर सकें अपनी आर्टिस्टिक टेक्निक्स को, और हो सकता है कि इन वर्कशॉप्स के जरिए यू नेवर नो कि आप कुछ नया डिस्कवर कर सकें. सो जितने भी यंग माइंड्स हैं अलग अलग क्रिएटिव फील्ड में, उनके लिए बहुत ही बढ़िया इवेंट है. इवेंट के बारे में बताने से पहले बता दूं, इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं, आर्टिस्टिक डिस्कशंस हैं, बच्चों के लिए मौका है क्या वो स्केच फाउंडेशन जो है सो और एक्सप्लोर करें, कलर्स को समझें, कॉम्पोजिशन को समझें, पेंटिंग टेक्निक्स देखें, कैनवस क्रिएशन देखें, और साथ में फाइनल आर्ट प्रोजेक्ट्स को कैसे कम्प्लीशन तक पहुँचाते हैं वो समझ में आएगा. तो कोर्स ब्रेकडाउन ऐसा था कि जब मई में शुरू हुआ था तो पहला फाउंडेशन रखा गया, फंडामेंटल्स बताए गए, बेसिक वही स्केचिंग, शेप्स, शेडिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन. दूसरे हफ्ते में आते हुए इवेंट बड़ा शानदार रहा. इसमें स्किल बिल्डिंग टेक्निक रही, कलर्स को थियोरी के जरिए समझाया गया, ब्लेंडिंग कैसे होती है, टेक्सचर कैसे समझ में आए, और पेंटिंग टेक्निक्स पे. थर्ड वीक तक आते आते इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन तक मामला पहुंचा जहां पे आर्टवर्क्स, ओरिजिनल आर्टवर्क्स दिखाए गए ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. और चौथा जो वीक है पूरा ये फाइनल प्रोजेक्ट और रिफ्लेक्ट करता है पूरे ओवरऑल इस इवेंट पे. तो ये जो इवेंट है ये अयाली आर्ट सेंटर में नॉर्डिक टावर सीफ शाम को 4 बजे से है. एंड ये जो इवेंट है बड़ा खास है. इसमें हर 60 मिनट, इस वाले लास्ट वीक में हर 60 मिनट सेशंस रखे गए जिसमें गाइडेड लर्निंग है, डेमोन्स्ट्रेशन है, बहुत सारे डेमोज दिए जा रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं. मतलब ऐसा नहीं कि आपको बस छोड़ दिया जाएगा, जाओ जी जो मर्जी कर लो. इसमें बाकायदा हैंड्स ऑन क्रिएटिव टाइम देकर क्रिएटिविटी के साथ असिस्ट करके आगे आगे बढ़ाया जा रहा है, इंस्पायर किया जा रहा है, एंड एस्पायर किया जा रहा है. एंड इतना ही नहीं, जो आर्टिस्टिक डिस्कशन है वो हो सकता है कि आप और मैं ना कर पाए, मगर ये लोग जो आर्ट की दुनिया में बिल्कुल डूबे हुए हैं, जब ये बच्चों से बात करते हैं दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एंड बहुत अच्छे से समझा पाते हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि AI से कहते हैं ना, एक्सप्लेन दिस टू मी एज इफ आई एम अ 5-year-old. तो वो वैसे ही डिस्कशन को रखते हैं ताकि एक यंग माइंड उसे अपने माइंड में डाउनलोड कर सके. इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स का हिस्सा बने हैं उनको ये भी मौका मिला कि वो अपना पहला कैनवस, वो जर्नी कम से कम शुरू कर सके. कई मरतबा कुछ लोग घर पर पेंटिंग करते हैं, बच्चे पेंटिंग करते हैं, और उनको बढ़ावा देने के लिए आपको भी समझ में नहीं आता कि करना क्या है. वो जो बढ़ावा देना है वो ऐसे इवेंट्स देते हैं, और माशाल्लाह कतर में ऐसे इवेंट्स की कोई कमी नहीं है. दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड इवेंट जो रखा गया. सो ये फिर से बता दूँ कि अयाली आर्ट सेंटर नॉर्डिक टावर सीफ 4 बजे से है. ये आप देख सकते हैं, वैसे तो 8 जून ये तारीख है, मगर दे माइट एक्सटेंड इट, तो एक बार आप खुद जाके भी चेक कर सकते हैं. बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्टिक माइंड्स के लिए इवेंट रखा गया है, अयाली आर्ट सेंटर नॉर्डिक टावर. Okay. Qatar 2026. अब आगे बढ़ते हैं वो उस इवेंट की तरफ जो सेम टावर में है, और ये मेरे मतलब का है भाई, ये बिल्कुल मेरे मतलब का है. ये है एक फिल्म कोर्स. बहुत सारे फिल्म कोर्स आके जा चुके हैं, ये वाला अभी है, इसको जाने मत देना. ये बहुत बड़ा मौका है. ये 3 जून से शुरू हुआ है और 8 जुलाई तक है. 8 जुलाई तक ये इवेंट चला है शाम को 6 बजे लयाली आर्ट सेंटर में ही नॉर्डिक टावर सीफ. ये पूरा जो कोर्स है ये आप बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं. हालांकि 6 हफ्तों का पूरा फिल्म मेकिंग की जर्नी को डिजाइन करता है. इसे बनाया गया है पार्टिसिपेंट्स के लिए ताकि उन्हें एक आइडिया हो कि फिल्म मेकिंग होती क्या है. मैंने कॉलेज में फिल्म मेकिंग सीखी थी, लेकिन आज भी आई एम ओपन फॉर दीज प्रोजेक्ट्स. एंड जैसे जैसे मुझे पता लगा है, जैसे DFI है कतर में, दोहा फिल्म इंस्टीट्यूट, उन लोगों के भी बीच में समर के जो कोर्सेज हैं वो आते रहते हैं, उन पर भी नज़र रखिएगा. एंड दिस वन इज़ यूनिक. इसलिए खास करके स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है कि स्टोरी टेलिंग क्या होती है, किस तरीके से कहानी को एक कागज़ पर उतारते हैं और फिर कैमरे पर उतारा जाता है, कैसे एक फिल्म की स्क्रिप्टिंग की जाती है, स्क्रीन राइटिंग क्या होती है,

सबको सिखाने की कोशिश है. प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे होती है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी किसको कहते हैं, डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी में क्या फर्क होता है, एडिटिंग बहुत बहुत मेन पार्ट है. एज माई सेल्फ जिसको फिल्म मेकिंग से बहुत प्यार है, एडिटिंग इतना इंटीग्रल रोल है कि लोग बड़े हल्के में लेते हैं. तो एडिटर्स अगर आपके घर में, हो सकता है कि फिल्म मेकिंग का ये पार्ट उनको हल्का लगता हो तो उन्हें इस बारे में पता लगेगा एडिटिंग कितनी काम की चीज़ है. एंड माई फेवरेट AI फिल्म मेकिंग, इसके बारे में भी इस इवेंट के जरिए बताया जा रहा है. ऐसा डिस्कशन आप बिल्कुल ना छोड़ें. AI फिल्म मेकिंग हालांकि आप घर में भी खुद को सिखा सकते हैं, मगर वो गाइडेड नहीं है. यहाँ पर पूरी गाइडेड तरीके से, जैसे मैंने कहा पूरा ब्रेकडाउन 6 हफ्तों का है. पहले हफ्ते जो फिल्म की बात हुई, फिल्म लैंग्वेज की बात हुई, फिल्मी इतिहास थ्योरी और जो बेसिक सिनेमा का है, विजुअल स्टोरी टेलिंग किसे कहते हैं, फिल्म से कैसे कम्युनिकेट किया जाए. अच्छा एक फनी चीज़, नॉट फनी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, हम कहते हैं ना कि एक्टर्स को कहा जाता है तुम्हें यहाँ पे हाँ कहना. फिल्म मेकिंग में यहाँ पे इसमें कोर्स के जरिए बताया गया है कि आपको सामने वाले को ये नहीं बताना है कि उसे हाँ या ना कहना है या उसे सैड होना. डोंट गिव देम इमोशंस, गिव देम सिचुएशंस. फॉर एग्जांपल दो लोग बैठे हुए हैं, आप एज अ डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं, आप ये नहीं बोलेंगे कि यार तुम्हें ना सैड सीन करना. नो, यू विल से कि भाई इस सीन में तुम्हें सामने वाले को मनाना है. वो आपको ये भी टेक्निक सीखने को मिलेगी. फिल्म स्टोरी, फिल्म राइटिंग, फिल्म मेकिंग जब आप सीख लेते हैं तो आपका मूवीज देखने का नजरिया बदल जाता है एंड यू एंजॉय देम मोर इन अ वेरी डिफरेंट वे. दूसरे वीक में सिखाया गया इस कोर्स में कि स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक कैसे आते हैं. स्टोरी टेलिंग का एक स्ट्रक्चर होता है. स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक्स किसे कहते हैं, शॉर्ट सिलेक्शन क्या होता है, शॉर्ट से सीक्वेंस कैसे बनता है, ये सेकेंड वीक में सिखाया गया. थर्ड वीक में प्री प्रोडक्शन की बात की गई, जहां पर फिल्म के एसेंशियल्स होते हैं. भाई बैकग्राउंड में तो लोगों को काम करना पड़ेगा, कैसे प्रिपेयर होगा, ऑर्गेनाइज कैसे होगा सीन, प्लान कैसे करेंगे शॉट्स को, स्क्रिप्ट्स को देखेगा कौन, और चौथा पार्ट इज शूट, सेट पे पहुंच जाना कैसे होता है, उसके बारे में बात की गई. टीम वर्क कैसे होता है. पांचों वीक रहा एडिटिंग एसेंशियल्स का. इसमें ट्रिक्स सिखाई गई कि कैसे एडिटिंग सीखी जा सकती है, ट्रांजिशन क्या होता है, फिल्म की पेसिंग कैसी होती है. एंड छठे वीक में आते आते आर फेवरेट AI इम्प्लीमेंटेशन. तो फिल्म मेकिंग अब AI की तरफ जा चुकी है. अगर आपके घर में कोई फिल्म मेकर है या बनना चाहता है, दिस इज द राइट टाइम. इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका हिस्सा ज़रूर बने, बिकॉज दिस इज वन ऑफ अ काइंड इवेंट. मैं बता देता हूँ आपको कहाँ जाना है इसके लिए. ये इवेंट अभी भी अवेलेबल है. फिल्म कोर्सेज के लिए आप जा सकते हैं नॉर्डिक टार लयली आर्ट सेंटर. ओके, यहाँ पे आप जा सकते हैं एंड यू विल गेट द फिल्म कोर्स. और ये शाम के 6 बजे से शुरू है. आई थिंक इट्स वेरी इजी. जिनके ऑफिस ख़त्म हो जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसानी है. एंड जैसे मैंने कहा, इस कोर्स से मुझे ये भी याद आता है कि अगर आपको टाइम मिले आगे जाए तो आप DFI की तरफ भी जा सकते हैं. DFI के भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनमें आप एनरोल हो सकते हैं दिस समर. और यू वॉन्ट समबडी इन योर होम जो कि एनरोल होना चाहे फिल्म मेकिंग सीखने के लिए, ये बहुत सही अपॉर्चुनिटी है. और कतर आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत सही पैकेज में दे देता है, तो फायदा उठाइए इसका. ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अगला जी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है प्रोजेक्ट कतर 2026. DECC फिर से बिजी होने वाला है. DECC को बिजी करने से पहले मैं आपको बिजी करना चाहता हूँ. सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़े रहें, प्लीज गेट इन टच विद अस. तो FM107 Qatar इस नाम से हर जगह मौजूद है. ओके, सो दिस इवेंट DECC जैसे मैंने कहा काफी बिजी रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कतर एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स का जो एग्जीबिशन है वो कतर में आ रहा है 9 से 11 जून, दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर. इसमें ग्लोबली जितने भी इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो सब के सब अपने सामानों को, अपने इन्वेंशंस को, अपनी टेक्नोलॉजी को ला के रख देंगे आपके सामने. देख लो भाई ये कर रहे हैं हम. तो ये उनके लिए जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं. भाई देखो, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, ये उसी में से एक है. लेटेस्ट क्या चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी कौन सी लेटेस्ट आ चुकी है, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन में क्या क्या सोल्यूशन दुनिया ला रही है, ये आपको पता लगेगा. आपका इंडस्ट्री से लेना देना हो या ना हो, आप जाके देखिए, दिमाग खुलता है इन चीजों से. कटिंग एज इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में जो आप सोच भी नहीं सकते. आने वाले दिनों में आपको देखेंगे, आप बोलेंगे अरे ये भी आ गया, तो वो सब यहाँ पे इस एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलेगा. और ये जो एग्जीबिशन है, इट इज ऑल अलाइंड विद कतर्स विजन फॉर इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी.
कतर का जो टारगेट है 2030 का सब मिलेगा। तो 9 से 11 जून ये बड़ा ही खास इवेंट है और ये दोपहर के 1 बजे से रात के 9 बजे तक 8 घंटे एग्जीबिशन आपके लिए। पार्किंग की कोई समस्या है ये नहीं भाई, अंडरग्राउंड पार्किंग में लगाइए, आराम से एज कीजिए, उस इवेंट का हिस्सा बनिए। यू विल गेट टू नो अ लॉट, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस एक्सपेंड करने वाले लोग जो कुछ प्लान कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही मुफीद इवेंट हो सकता है। आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। कतर 2026 का मकसद इन इवेंट्स के अलावा, जैसे मैंने कहा, ये भी है आपको बताना कि समर एक्टिविटीज़ कतर में बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड समर एक्टिविटीज़ में आप काइकिंग अगर आपने ज़िंदगी में नहीं करी है, ट्राई काइकिंग, इसके लिए आप पर्ल जा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग आपको उठना पड़ेगा पर इट इज़ वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। पूरी की पूरी वहाँ पे एक ग्रुप है जो काइकिंग करवाते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में कभी फ़िशिंग का मज़ा नहीं लिया है, कुछ लोग सोचते हैं अरे बैठा कौन रहेगा, मैं भी यही सोचता था, कसम से बता रहा हूँ आपको, पेशेंस आ जाएगा और आपको सच में मज़ा आएगा। अगर आप इन इन इन इस गर्मी के सीज़न में सोच रहे हैं कि दोस्तों को इकट्ठा करके एक बार ज़रा यॉट पे घुमाएं, फिशिंग यॉट पे, तो ऑफर्स बहुत सारे हैं। फिर लुक एट विजिट कतर, आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्रीबीज के तौर पे भी दी जा रही हैं और आप फिशिंग भी कर सकते हैं, आप यॉट का सफ़र भी कर सकते हैं। तो इकट्ठे होके जाओ, ग्रुप बना के जाओ, मज़े करके आओ। यॉट का ये जो सीज़न है अभी ऑन है, यू विल इन्जॉय। कपल्स के लिए भी बहुत सारे ऑफर्स हैं यॉट में, यहाँ तक कि आप अगर आप मीना डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, जो बॉक्स पार्क के पीछे पूरा का पूरा एरिया है, दैट इज़ ऑल्सो ओपन। एंड इस वक्त पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग इस चक्कर में भाई साहब बोट लाइसेंस तक लेने लगे, उनमें से मैं भी, मेरा मन है इंशाल्लाह आगे जाके। तो कायकिंग, क्रूज, यॉट, इन सब के मज़े लेने का यही टाइम है। इन्जॉय दिस एक्टिविटीज, समर के अलावा नहीं आएंगे, तो प्लीज प्लीज प्लीज फोकस करें। नाउ मैं फोकस कर लेता अगले इवेंट की तरफ बढ़ के। अब जो अगला इवेंट है, इसका एड आपने बहुत मरतबा अपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, पर आपका मन शायद किया होगा, शायद नहीं किया होगा, आप समझ नहीं आ रहा होगा जाऊं कि ना जाऊं। ये ना इतना विजुअली स्टनिंग इवेंट है कि आप सिर्फ देखने भर के लिए अगर पहुंच गए तो आपको लगेगा भाई मैं कहाँ चला गया। होता ना, दिमाग आपका ट्रांसेंड कर जाता है, एक अलग दुनिया में चला जाता है। तो अगर आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं विच विल ओपन योर सेंसरी नर्व्स लाइक एनीथिंग, ये है कैंडल लाइट कॉन्सर्ट। मैं बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में एक ही मरतबा देखा है, दूसरा मौका मिला नहीं, इंशाल्लाह आई विल गो। बट कतर में जब तक हो रहा ना, ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसके टिकट्स बीच बीच में आते रहते हैं, आई थिंक अभी भी अवेलेबल है, रिसेंटली हुआ भी है कैंडल लाइट कॉन्सर्ट। ये बहुत लाइव होता है, मल्टी सेंसरी म्यूजिकल एक्सपीरियंस है ये। एंड चारों तरफ कैंडल, जस्ट इमेजिन, लेट मी मेक यू इमेजिन, चारों तरफ कैंडल्स, बीच में एक पियानिस्ट है, एंड वो जो आइकॉनिक अरब म्यूजिक क्रिएट करते हैं भाई, ऐसे ही इसका नाम नहीं है, डिस्कवर द म्यूजिक ऑफ सेंचुरी ऑफ आइकॉनिक अरबिक म्यूजिक। इतना लंबा चौड़ा नाम दिया, हल्के मत देना, फोर सीजन्स होटल में ये हो रहा है। Gentle glow of candlelight with music. It is absolutely stunning. इसमें dinner options भी हैं by the way. जो four seasons दोहा के जो elements हैं वो सारे के सारे इसमें आपको मिलेंगे. Vibrant Mediterranean inspired dining experience भी है. And it is led by a chef called Claudio Leanza. मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, मैंने क्लॉडियो के बारे में, और वो बहुत बहुत बड़े शेफ़ हैं। एंड उनके साथ पूरा ओपन किचन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, पूरा इंडोर आउटडोर एक्सपीरियंस है, खाना कैसे भी खाना चाहते हैं, एंड प्लस द कॉन्सर्ट जो साथ में है। इसके अलावा एक परफेक्ट सेटिंग आपको मिलेगी अगर आप ढूंढ रहे हैं ब्रेकफास्ट और फाइन डाइनिंग का एरिया, तो वो भी इस पूरे होटल में है। तो फोर सीजन्स होटल, डेट्स एंड टाइम्स आप देख सकते हैं, क्यू टिकट्स पे जाके भी आपको मिल जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली यू कैन बुक योर टिकट्स। जो ड्यूरेशन है, जो पूरे कॉन्सर्ट की ड्यूरेशन है, वो 60 मिनट की है। एंड प्लीज़ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कैंडल लाइट म्यूजिक इवेंट में जा रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप इसकी थोड़ी इज्जत करें, थोड़ा जल्दी पहुँचें। क्या होता है, जब म्यूजिक चल रहा होता है इसमें लेट अराइवल्स को वैसे भी अलाउड करते नहीं है, आपको लगेगा बुरा भी। तो लेट अराइवल्स अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है, बिकॉज व्हेन दे आर प्लेइंग उन्हें चाहिए पिन ड्रॉप साइलेंस। तो लेट मत पहुंचेगा, इन केस यू बुक योर टिकट्स, मेरे कहने पे कभी लाइफ में एक्सपीरियंस करने को ये मौका मिले मत छोड़ना, एक्सपीरियंस इस वन एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट। ठीक है, तो ये जो कैंडल लाइट कॉन्सर्ट्स कतर में होते हैं, कभी नेक्स्ट टाइम एड आप देखेंगे,
आंख बंद करके बुक कर लेना अपनी फैमिली के साथ, और इफ यू आर अ कपल गो फॉर इट।

0: हो जाने वाला इवेंट ओके नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन
1: कथा 2026 कथा 2026
0: अगला जो इवेंट है ये एक बंदा भाई साहब लाफ्टर की कैटेगरी को

थोड़ा सा अलग है, जो एक्सपीरियंस हम देसी लोगों को हमारे कॉमिक आर्टिस्ट से मिलता है उससे थोड़ा हटके है। बोल्ड स्टोरी टेलिंग है एक तो उनके ह्यूमर में, एक तो क्राउड वर्क होता है ना, तो क्राउड वर्क नहीं है इनका, इनका सिस्टम है कि ये बड़ी बोल्ड किस्म की स्टोरी टेलिंग करते हैं, काफ़ी शार्प इनका ह्यूमर है। दुनिया जहाँ में परफॉर्म कर चुके हैं और अब कतर में परफॉर्म करने वाले हैं, अलमयासा थिएटर में QNCC। इसमें कुछ एज रिस्ट्रिक्शन उनका ध्यान रखिएगा, सो 18 साल से ऊपर के ही लोग इसमें जा सकते हैं। एंड सिंस इट्स परफॉर्मिंग इन कतर, इट इज गोइंग टू बी एन अनफॉरगेटेबल कॉमेडी नाइट। इसमें जो इनका ह्यूमर है, अक्सर इनकी ज़िंदगी की कहानियाँ होती हैं या ये कहीं भी घूम फिर के आते हैं तो उन कहानियों को दो लैंग्वेज में सुनाते हैं, तो इफ़ यू अंडरस्टैंड अरेबिक तो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि अरेबिक ह्यूमर इज़ क्वाइट डिफरेंट। मैंने हालांकि जो ट्रांसलेशन में नीचे देखा, मुझे लगता है कि मुझे जब ट्रांसलेशन में हंसी आ रही है तो अगर लैंग्वेज में समझ सकता पूरी की पूरी अरेबिक तो कितना मजा आता। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड अरेबिक एंड इफ़ यू आर 18 एंड अबव तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको अलरियान रोड पहुँचना है और फॉलो करना है लुप्ता सर्विस रोड, और उसके बाद राउंड अबाउट लेके टेक फर्स्ट एग्जिट, फिर टर्न राइट और आपकी डेस्टिनेशन सामने होगी अलमयासा थिएटर QNCC का, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी यहाँ पे पहुँचते तब भी इजी है, आप ग्रीन लाइन ले लीजिए आराम से, पकड़िए मेट्रो की, ये नेशनल लाइब्रेरी की, और फिर स्टॉप लेके फिर एक हल्की सी वॉक है पहुँच जाएंगे आप। टैक्सी से तो आप ऑब्वियसली सीधे सीधे जा सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे मैंने कहा स्टेकेशन का मैंने जिक्र किया, वो इसलिए भी किया बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगे मगर ये कभी नहीं निकलेगा अभी, क्योंकि जुलाई तक, स्कूल खुलने तक, बच्चों के बिजी होने तक, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ सम स्टेकेशन तो आप ज़रूर जाइए। कतर में होटल्स की कोई कमी नहीं है, इवन होटल्स एक तरीके के नहीं है, आदमी बोर हो जाता है ना, कह रहे वही तो है इसमें क्या है, सारे होटल सेम नहीं है। बहुत सारे होटल्स आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं जहाँ पे बैम्बू रूफ्स है, अलग किस्म का खाना है, एक्सपीरियंस है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस वक्त बनाना आइलैंड पे भी हो रही हैं, पर वहाँ पे आप पैकेज लेके जाइएगा, ये मेरा सजेशन है आपके लिए, बिकॉज जब आप पैकेज डील में जाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है। एंड प्लीज़ ट्राई, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कतर के अंदर अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप तलाश रहे हैं। सो अगेन अ रिमाइंडर, अगर आपकी फैमिली यहाँ पर है, try and book events for your people out there. And इसके अलावा अब अगले इवेंट की तरफ बढ़ूंगा जो कि एक चैलेंज होने वाला है। ये चैलेंज हो रहा है स्पायर इंडोर ट्रैक में, अंदर ट्रैक्स बना दिए गए हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी कि जब वर्ल्ड बाइसिकल डे था, आई रिमेम्बर कि तकरीबन कुछ 3,200 समथिंग ट्रैक्स किलोमीटर के हिसाब से बनाए गए हैं अजगाल की तरफ से। एंड जो इंडोर ट्रैक है ये बड़ा खूबसूरत है स्पायर का, और ये 26 जून तक यहाँ पे इवेंट जारी है। इसकी एक मिनिमल फीस है, अगर वो पे कर देते हैं आप तो सुबह के 9:30 से सुबह के 10:30 बजे के बीच में एक इवेंट है जिसका नाम है SFA लेडीज ट्रैक चैलेंज। इस चैलेंज का हिस्सा बनिए, कतर स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से है, उन्होंने अनाउंस किया है कि ओपन रजिस्ट्रेशन है, आप आराम से इसमें हिस्सा ले सकती हैं। ये खवातीन के लिए इवेंट है, खास करके उनके स्पोर्टिंग एक्टिविटीज को हमेशा ऑन रखने के लिए और उनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट हो, एंड अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग इवेंट्स हैं। सो ये डेट्स हैं 6, 13, 20, 26 जून एस्पायर इंडोर ट्रैक, सुबह के 9:30 से 30 मिनट के लिए अडल्ट्स के लिए, फिर 9:30 से 15 मिनट अडल्ट्स के लिए, तकरीबन 10:10 के करीब 10 मिनट जूनियर के लिए, और फिर 10:30 बजे के करीब 5 मिनट के लिए जूनियर्स के लिए। इसकी जो वो जो ऐप है उस पर भी आप जा सकते हैं, कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल की, एंड यू कैन बुक योर टिकट्स। एब्सोल्युटली क्रेजी, ये इंडोर में है तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, एंड यू विल डेफिनेटली इन्जॉय। बाकी इवेंट्स जो आने वाले हैं उनमें अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा बताना, लेकिन सहेल कतर इंटरनेशनल फैल्कन हंटिंग जो एग्जीबिशन है वो भी आने को रेडी है, एकदम तैयार है। इसके अलावा कतारा वन लॉफ्ट रेस है जिस पे लोगों की नज़र बनी हुई है, आई बिन रीडिंग अबाउट इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनली इट इज़ गोइंग टू हैपन। सो 10 जून से 31 अगस्त तक एक बहुत खास इवेंट है, कतारा वन लॉफ्ट रेस, ये होने वाली है एट रेस पॉइंट हेडक्वार्टर्स ओम बराका। तो ये रात के 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। इसके एक रजिस्ट्रेशन फीस है, हालांकि वो आप देख लीजिएगा ऑनलाइन, पर

0: पिजन कंपटीशन है, इसमें एक प्राइस पूल भी रखा गया है, तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए इनामात भी हैं। और भाई इनाम हल्के फुल्के नहीं है, बहुत बड़े बड़े इनाम है। आप एक्सपीरियंस करने जा सकते हैं, आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो है जिसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपने सबमिट कर सकते हैं पिजन्स 10 जून से लेकर 31 अगस्त के पहले पहले इस वक्फे के बीच में। और बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर भी किया। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, बड़े सिंपल है। पार्टिसिपेशन ओपन फॉर ऑल है, होमिंग पिजन्स के जो ब्रीडर्स हैं, एंथूजियस्ट हैं, जो एंथूजियस्ट कतर में रहते हैं या बाहर रहते हैं, दे कैन ऑब्वियसली कम एंड पार्टिसिपेट। और इसमें बाहर से लोग जो शयातीन हैं वो आके पार्टिसिपेट करते हैं। एंड व्हेन द पिजन इज डिलीवर्ड वो लीगली ओन्ड हो जाता है बाय द लॉफ्ट। लॉफ्ट मैनेजमेंट जो है उनके पास पूरा राइट है रिजेक्ट करने का किसी भी बर्ड को, और वो हेल्थ चेक करने के बाद ही इसे एक्सेप्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स के लिए एक मिनिमल फीस है एंड इंडिविजुअल्स कैन ऑब्वियसली ज्वाइन। सो ये जो इवेंट है, जैसे मैंने कहा, इसमें एक तारीख दे दी गई है रजिस्ट्रेशन की, रात की 12 से अगले दिन 12 तक, एंड ये 10 जून से 31 अगस्त तक है। सो अगर आपकी नज़र में है, हम तो भाई वो कबूतरबाजी याद आती है, बट दिस इज नॉट कबूतरबाजी, दिस इज समथिंग एल्स और बड़े बड़े नाम। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर इवेंट, अ मेजर इवेंट, एग्जीबिशन, मेरी जबान को क्या हो गया, एग्जीबिशन ऑफ कल्चरल ओलंपियाड कॉम्पिटिशन। मेरी बात आपको याद है पहले एपिसोड से, मैंने बोला था कि अगर आप कतर में नए हैं, पुराने हैं, किसी भी आप एरा में आए हैं, यहाँ पर म्यूजियम सारे देख डालो भाई, ये बेसिक है, बेसिक। जिस तरह से लोग पकड़ पकड़ के कॉर्निश और सूक वाकिफ ले जाते हैं, सूक अल वखरा ले जाते हैं, वैसे ही म्यूजियम्स आप विजिट कर लीजिए, क्योंकि कतर के म्यूजियम बोरिंग नहीं है, बड़े इंटरेक्टिव है। और ऐसे ही एक इंटरेक्टिव म्यूजियम है जिसका नाम है 321 ओलंपिक म्यूजियम, वहाँ पे ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में होने जा रहा है एक इवेंट, एक एग्जीबिशन, एग्जीबिशन ऑफ कल्चरल ओलंपियाड कॉम्पिटिशन। ये 22 जून से लेकर 31 अगस्त तक है, 22 जून से 31 अगस्त तक, सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे। कोई टिकट नहीं चाहिए, एकदम फ्री, एकदम मुफ्त, किसी किस्म की कोई खरीदारी नहीं है। सेलिब्रेट किया जा रहा है इस एग्जीबिशन के जरिए जो विनर्स हैं ऑफ 321 कल्चरल ओलंपियाड 2026, एंड उनको सेलिब्रेट करने के लिए एक इंस्पायरिंग एग्जीबिशन रखी गई है जो उनके टैलेंट को दर्शाती है, जो उनकी क्रिएटिविटी को, एंड क्रिएटिविटी सिर्फ कतर के आर्टिस्ट की नहीं, दुनिया जहां के आर्टिस्ट जो उसमें हिस्सा ले चुके हैं उनकी क्रिएटिविटी आपको इस म्यूजियम में नजर आई। स्पेशली अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आपके अंदर किसी किस्म की आर्ट फॉर्म है, सो यहाँ के जो आर्ट वर्क्स हैं दे आर ब्रेथ टेकिंग। काफी इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हैं, यू गेट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ आर्ट वर्क्स, एंड काफी कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंसेस भी रखी गई हैं जो आपकी इमेजिनेशन की बत्ती को जला के रखते हैं। इसे एक सेकेंड फ्लोर भी है, सेकेंड फ्लोर पे वाइब्रेंट कल्चरल स्पेस रखी गई है जहाँ पे इनोवेशन, डाइवर्सिटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को जगह दी गई है, एंड जितने भी क्यूरियस हैं इस एग्जीबिशन को लेके वो इसका हिस्सा जरूर बने। एग्जीबिशन की जो दिन है वो नोट कर लीजिएगा, मंडे वेंसडे सैटरडे, संडे को भी रखा जाएगा, सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक। तारीख फिर से बता दूं, 22 जून से लेकर 31 अगस्त तक ये इवेंट बेहद खास है और उतना ही जरूरी भी। सो बी अ पार्ट ऑफ दीज इवेंट्स बिकॉज ये इवेंट्स आपके काम आएंगे। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और मेजर इवेंट है जो इसी म्यूजियम में हो रहा है। इसके लिए भी किसी किस्म के टिकट की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चीजा भाजी, सिर्फ जाके अपने बच्चों के साथ इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। 321 कतर ओलंपिक स्पोर्ट्स म्यूजियम में 19 जून से लेकर 27 जून के बीच में एक इवेंट है, शाम के 4 बजे से 2 घंटे का इवेंट है, 6 बजे तक। इसका नाम है वर्कशॉप वर्ल्ड कप 2026। बच्चों के लिए रखा गया है ये जो वर्कशॉप है, ये फुटबॉल जर्सी को डिज़ाइन करने के लिए है, फुटबॉल डिज़ाइन कैसे होती है, ट्रॉफी डिज़ाइनिंग, पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा कि वो अपनी खुद की फुटबॉल्स बनाएं, यू नो, ड्रॉ करें, ट्रॉफीज कैसे डिज़ाइन होती हैं, सब कुछ है। इसकी डेट बता देता हूँ, बच्चों को लेकर जाएगा बिकॉज उनके एज ग्रुप के लिए, 19, 20, 26, 27 जून शाम के 4 बजे से 6 बजे तक ये इवेंट है। एंड जैसे मैंने कहा कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है कि फुटबॉल जर्सीज बनाएंगे बच्चे, एक पूरा वर्कशॉप है जिसमें उन्हें दिखाया जाएगा कि हैंड्स ऑन आर्ट एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेके कैसे दे गेट टू डिज़ाइन जर्सीज एंड लेट देयर इमेजिनेशन फ्लो, एंड फुटबॉल के जो फिगरिंग्स होते हैं वो पेंटिंग यूज़ करके कैसे बनाए जा सकते हैं, एंड जो अपकमिंग जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसके लिए भी एक स्पिरिट तैयार किया थी बच्चों में एंड ऑफ कोर्स उनका आर्ट भरा था इन चीजों के जरिए. सेकंड वर्कशॉप जो डिजाइन करवाएगी वो है फुटबॉल और ट्रॉफीज का डिजाइन एंड इट विल ऑब्वियसली हेल्प दोस किड्स जिनकी ड्राइंग अच्छी है बट नीड इंप्रूवमेंट. वो अपनी ड्राइंग को एक अलग लेवल पे पहुंचा सकते हैं. कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ये बात तो सच है. कॉन्फिडेंस अभी बढ़ता है जब आप अपनी स्किल को बार बार अप्लाई करते हैं. तो कलरिंग स्किल्स हो गई, ड्राइंग स्किल्स हो गई, इन सबको इंकरेजमेंट मिलता है. तो प्लीज अगर आपके घर में बच्चे हैं उनको लेके इस इवेंट का जरूर हिस्सा बनिए शाम के 4 से 6. एंड ये इवेंट होगा जो मैंने दिन बताए 19 जून से 27 जून के बीच में. मेजर इवेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. बाकी कथा 2026 में बहुत सारे ऐसे इवेंट होंगे जो हो सकता है मुझसे मिस हुए हों, हो सकता है कि आप होके आए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. एंड ज़रूरी नहीं कि इवेंट ही हो, देर आर मेनी एक्टिविटीज़ जो आप खुद भी करते होंगे. जैसे मैंने बताया ना काइकिंग की एक्टिविटी मैंने कई सालों पहले करी थी, मुझे अभी भी याद है. अगर आप पढ़ जाते हैं तो आपको वहाँ पे काइकिंग का मौका मिल सकता है. अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल सनराइज़ के साथ आपके लिए धाव हैं, यॉट्स हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं. कपल्स के लिए हैं, फैमिलीज़ के लिए हैं, सिंगल के लिए हैं, जो लोग चाहते हैं फिशिंग में चले गए दोस्तों के साथ. सो प्लान आउट. गर्मी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देंगे, मैंने घर छोड़ के किधर भी नहीं जाना, ऐसा नहीं है. देर आर इवेंट्स जो आपको गर्मी में भी चार्ज रखेंगे. पर हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको दोपहर में निकाल लिया जाएगा 12 बजे सूरज के नीचे खड़ा कर दिए, ये कौन सी एक्टिविटी है, वैसा नहीं है. इवेंट्स आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड अपने अपने टाइम पर और ऐसे टाइम पर जहां पर आपको ज्यादा गर्मी या धूप का सामना ना करना पड़े. ऑलराइट, सजेशंस भेजते रहिएगा FM 107 Qatar एंड Qatar 2026 से. दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. बस इतना ही कहूंगा, सोशल मीडिया पर जुड़े, मुझे भी ढूंढें और अपना ख्याल रखें क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मास्सलाम.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी Qatar मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट कर

अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं आरजे सफा और मैं आपको आज लेकर जाने वाली हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको ले जाएगा वक्त और स्पेस के इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज राजों के बीच। ये है एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो कि इस शो का नाम भी है। एक ऐसा शो जो हर एपिसोड में सुनने वालों को एक ऑडियो एडवेंचर पर ले जाता है। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो कहीं खो सी गई हैं, और कभी कभी तो कॉस्मिक मिस्ट्रीज के बारे में भी बात की जाएगी जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर रही हैं। यह हर बात को हम बड़े ही सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी साइंस और फिक्शन का ट्विस्ट भी डाल देंगे भाई, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए बात। तो भाई अपनी क्यूरियोसिटी जगाइए, इमेजिनेशन को फ्री छोड़ दीजिए और हमारे साथ इस हैरत अंगेज सफर का हिस्सा बन जाइए। ये है वक्त और स्पेस की दुनिया सिर्फ आपके लिए, यानी एक्सप्लोरिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। साथियों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसके लिए ये कहना तो गलत ना होगा कि अगर मैं कहूँ एक ऐसी लाइब्रेरी जो शहर से ज्यादा मशहूर थी। जरा सोचिए, समंदर के किनारे एक ऐसा शहर जहाँ से हवाओं के साथ साथ इल्म की खुशबू भी आती हो, यानी अलेक्जेंड्रिया। ये नाम सिर्फ एक जगह का नहीं, एक दास्तान का है। और इस दास्तान का सबसे रोशन सितारा था यहाँ की लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये कोई आम सी किताबों की गोदाम नहीं थी साथियों, ये तो उस जमाने का वो सर्च इंजन था जहाँ सब कुछ एक जगह इकट्ठा था। बस फर्क इतना था कि यहाँ स्क्रोल्स होते थे, लैपटॉप्स नहीं। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी एक ख्वाब थी, वो भी एक ऐसा ख्वाब जहाँ दुनिया का हर इल्म, हर लिखी हुई बात एक छत के नीचे इकट्ठी हो जाती थी। क्या पोएट्री, क्या साइंस और क्या तारीख, यहाँ सब कुछ अवेलेबल था। और लोग यहाँ आते थे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इल्म के समंदर में डूब जाने के लिए। चलिए आपको बताती हूँ कि इस शानदार आइडिया की शुरुआत कहाँ से हुई। कहानी यूं शुरू होती है दोस्तों कि लगभग 3rd century BCE में इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया शहर उस वक्त दुनिया का कल्चरल हब बन रहा था। रस्ते रस्ते अलग अलग मुल्कों के लोग, अलग अलग जबानें, अलग सोचने के तरीके, यानी यहाँ से हर किस्म के शख्स का गुजर हुआ करता था। शहर में बाजार थे, पोर्ट्स थे और बेहतरीन इमारतें भी मौजूद थीं। इसी शहर में एक ऐसा प्लान बना जो सब प्लान से बड़ा था, यानी एक लाइब्रेरी जो सिर्फ इजिप्ट का नहीं पूरी दुनिया का इल्म संभाले। ये आइडिया इतना बड़ा था कि उस वक्त के स्कॉलर्स ने सोचा, अगर कहीं कोई चीज लिखी गई है, चाहे फिर वो कहीं भी हो, हमें उसका नुस्खा चाहिए। समंदर से आने वाले जहाजों का एक रूल था, अगर किसी के पास कोई किताब या स्क्रॉल है तो पहले वो लाइब्रेरी आएगी, उसकी कॉपी बनेगी, फिर असली या कॉपी उस शख्स को वापस कर दी जाएगी। जरा सोचिए कितना कमाल का सिस्टम था ना ये, जहां से गुजर रहे हैं वहां पर इल्म भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये ऐसा था जैसे आज हमारे फोन्स एयरपोर्ट पे चेक हों और वो हमारी सारी ई बुक्स का बैकअप ले लें। अच्छा, इस लाइब्रेरी के अंदर का माहौल भी बिल्कुल अलग था। यहाँ आकर ऐसा लगता था जैसे आप किसी इल्म के महल में आ गए हों। लाइब्रेरी का डिजाइन कोई बोरिंग शेल्फ और टेबल वाला नहीं था, ये एक पैलेस जैसा था। ऊंचे ऊंचे हॉल, मार्बल के फ्लोर, सूरज की रोशनी के लिए बड़ी बड़ी विंडोज और हर तरफ स्क्रॉल्स के रैक्स। और मजे की बात ये थी कि यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती थी, बल्कि डिबेट्स, लेक्चर्स और रिसर्चेस होती थी। स्कॉलर्स का काम था सवाल उठाना और फिर उनके जवाब तलाश करना। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ हजारों नहीं लाखों स्क्रॉल्स थे, यानी एस्ट्रोनॉमी से लेकर मेडिसिन, पोएट्री से लेकर जियोग्राफी, सब कुछ। और हर स्क्रॉल में उस वक्त की बेस्ट नॉलेज होती थी। इस लाइब्रेरी के लिए एक हिस्टोरियन ने ये भी लिखा है कि लाइब्रेरी का मकसद था

जो कुछ भी आज तक लिखा गया है वो यहाँ मौजूद हो। वाह भाई, मतलब ये जगह तो उस वक्त के OTT प्लेटफॉर्म जैसी थी, बस बिना मंथली सब्सक्रिप्शन के। अच्छा, इस दौर में इल्म का समंदर अपने उरूज पर था। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उस वक्त का स्कॉलर्स का डिज्नीलैंड था। लेकिन राइड्स की जगह यहाँ आइडियाज के रोलर कोस्टर्स मिलते थे। हर रोज नई सोचने वाली बातें की जाती थीं, नई डिस्कवरीज पे ध्यान दिया जाता था और नई थ्योरीज जन्म लेती थीं। स्कॉलर्स यहाँ दुनिया के कोने कोने से आते थे, ग्रीस के फिलोसोफर्स, इजिप्ट के मैथमेटिशियंस, इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स और एशिया के फिजिशियंस। यानी हर किसी के पास अपना एक अनोखा इल्म होता था जो वो यहाँ आकर शेयर किया करते थे। लाइब्रेरी का एक और कमाल ये था कि यहाँ सिर्फ किताबें कलेक्ट नहीं होती थीं, बल्कि ट्रांसलेशन का भी एक बड़ा डिपार्टमेंट था। अगर कोई इल्म किसी जबान में लिखा होता तो उसे दूसरी जबान में तब्दील कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाए जाने की कोशिश की जाती थी। जरा सोचिए, एक ग्रीक स्क्रॉल अरबिक में, एक संस्कृत स्क्रॉल ग्रीक में, एक इजिप्शियन स्क्रॉल लैटिन में। यानी ये था नॉलेज का वर्ल्ड टूर। अगर बात की जाए पढ़ने के स्टाइल की, तो स्क्रॉल्स और मेमोरी का मैजिक था। आज जैसे हम किताबें खोलकर पेज पलटकर पढ़ते हैं, उस वक्त स्क्रॉल्स होते थे, जैसे लंबे कपड़े या पेपिरस पे लिखे हुए लफ्ज जो एक रोलर पर लपेटे हुए होते थे। पढ़ते वक्त आप स्क्रॉल को एक साइड से खोलते और दूसरी साइड से लपेटते बंद करते चले जाते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लोग सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि याद भी करते थे, क्योंकि उस वक्त कोई सर्च बार थोड़ी हुआ करते थे। जैसे आज की तरह इंटरनेट खोला, सर्च बार में अपनी क्वेरी डाली और आपको सब कुछ पता चल गया। और तो और लाइब्रेरी में काम करना एक ऐसी जॉब थी जिसमें बोर्डरम का तो चांस ही नहीं था। रोज नए स्क्रॉल्स आते, नए लोग मिलते, नए एक्सपेरिमेंट्स होते। स्कॉलर्स अपनी नोटबुक्स यानी उस वक्त के स्लेट्स पर नोट लिखते और फिर रात को लैंटर्न के नीचे उस पर रिसर्च करते। वैसे अगर स्क्रॉल के स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंड्रिया में स्क्रॉल इतने कॉमन हो गए थे कि स्कॉलर्स उन्हें बेल्ट की तरह लटका के घुमा करते थे ताकि सबको पता चले कि भाई मैं इंटेलेक्चुअल हूँ। ये उस वक्त का एकेडमिक फैशन था। तो साथियों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का, जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। साथियों, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के बाहर एक ऐसा बाजार भी मौजूद था जहां सिर्फ आइडियाज बिका करते थे, है ना इंटरेस्टिंग बात। जरा सोचिए कि आप किसी फिलोसोफर को 5 copper coins दे दें और उसके बदले वो आपको एस्ट्रोनॉमी पर एक अच्छा खासा लेक्चर सुना दे, या किसी को एक छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिए तो वो आपको एक पोयम लिखकर दे देगा, वो भी आपके नाम पर। यानी इल्म यहाँ सिर्फ शेल्फ पर बंद नहीं था, सड़कों पर भी घूमता था। इस लाइब्रेरी की बदकिस्मती ये थी कि फेमस होने के बावजूद भी इस लाइब्रेरी को आग निकल गई। चलिए आपको बताते हैं कि आग कैसे इस किताबों के शहर को निकल गई। जरा सोचिए, रात का वक्त, अलेक्जेंड्रिया का आसमान समंदर की नमी से भरा पड़ा हो और मशालों की रोशनी से रोशन भी हो, शहर में हवा हल्की सी तेज चल रही है, लेकिन कहीं दूर एक इमारत के अंदर गर्मी और खामोशी हल्के घने बादल की तरह जमा हो रही है। फिर वो पल आता है कि एकदम से एक चिंगारी उठती है, सिर्फ एक चिंगारी जो शायद किसी मशाल से उठी या किसी की गलती से, और वो चिंगारी लाइब्रेरी के अंदर रखे हुए सूखे पेपर्स स्क्रॉल्स तक पहुंच जाती है। आपको ये याद दिला दूं कि पेपर्स कोई आम कागज नहीं, एक ऐसा मवाद है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है क्योंकि वो लकड़ी से बना होता है। जैसे ही आग एक स्क्रॉल को छूती है, वो चट्टान पे गिरी बिजली की तरह फैल जाती है। हर शेल्फ पर हजारों स्क्रॉल्स, हजारों की तादाद में, हर स्क्रॉल में सदियों का इल्म। आग एक एक शेल्फ को निगलती जा रही थी और धुआं उन ऊंची खिड़कियों से बाहर निकल रहा था जिनसे कभी आसमान से रोशनी आया करती थी। शहर के लोग दूर से देखते ही रह गए उस इमारत को, जो दिन के वक्त इल्म का महल थी, अब रात के वक्त आग का जंगल बन चुकी थी। कुछ स्कॉलर्स ने बहुत कोशिश की कुछ स्क्रॉल्स बचाने की। लोग उन स्क्रॉल्स को लपेट कर बाहर भागने लगे, लेकिन आग का गुस्सा इतना तेज था कि जो एक पल पहले उनके हाथ में था, अगले ही पल वो हवा में राख बन गया था। आग की गरज, लकड़ी के गिरने की आवाजें, लोगों की चीखन पुकार और बीच बीच में एक अजीब सी खामोशी, जैसे कि हर कोई समझ रहा हो कि कुछ ऐसा खत्म हो रहा है जो दोबारा कभी नहीं आएगा। धुआं इतना था कि यूं लगता था कि उसकी उदासी आहिस्ता आहिस्ता चांद तक पहुंच गई है। समंदर का पानी भी आग के उस अक्स से लाल हो चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि जलते हुए पेपायरस की एक अलग ही खुशबू होती है, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी दर्द भरी, और उस रात अलेक्जेंड्रिया के आसपास हवा में वही खुशबू थी, एक ऐसी खुशबू जो इनके खत्म होने की गवाही दे रही थी। तो दोस्तों, इस मंजर के बाद जब सुबह हुई तो लाइब्रेरी के

अंदर सिर्फ जली हुई लकड़ी, राख और कुछ टूटे हुए शीशे बचे थे। हजारों स्क्रॉल्स, सदियों का इल्म हवा में उड़ चुका था, जैसे कोई नीला समंदर एक रात में सूख गया हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ सब कुछ नहीं जला था। कुछ स्क्रॉल समंदर के रास्ते दूसरी लाइब्रेरीज तक पहुँचा दिए गए, और कहीं तो कुछ स्कॉलर्स ने अपनी याददाश्त में पूरा इल्म जिंदा रखा था, और इन्हीं स्कॉलर्स के बदौलत लाइब्रेरी राख से उठकर सफर पर निकल गई। यानी आग ने जरूर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी की इमारत को खत्म कर दिया, लेकिन जो चीज स्क्रॉल्स से भी ज्यादा ताकतवर थी वो थी उन स्कॉलर्स की याददाश्त। साथियों, उस वक्त के स्कॉलर्स सिर्फ पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि चलती फिरती लाइब्रेरीज थे। जो कुछ भी वो स्क्रॉल्स में पढ़ते थे वो उनके दिल और दिमाग में उतर जाया करता था। इसलिए जब इमारत जल गई, इल्म का एक हिस्सा इंसानों के साथ जिंदा रहा। कुछ स्क्रॉल्स तो आग लगने से पहले ही दूसरी जगहों पर भेज दिए गए थे, और उनमें से कुछ को स्कॉलर्स अपने हाथों से कॉपी बनाकर छापते थे, जैसे वो कोई आम कागज नहीं थे बल्कि एक खजाना थे। और फिर यही कॉपीज मेडिटेरेनियन के पोर्ट से गुजरकर ग्रीस, रोम और एशिया के शहरों में जा पहुंची, और इन्हीं कॉपीज ने किया इल्म का ग्लोबल टूर। जरा सोचिए, एक ग्रीक फिलोसोफर अपने शहर के छोटे से स्टडी रूम में बैठकर अलेक्जेंड्रिया का स्क्रॉल पढ़ रहा है, जो शायद किसी इजिप्शियन स्कॉलर ने लिखा था, जिसने अपना इल्म शायद किसी इंडियन मैथमेटिशियन से सीखा था। यानी एक स्क्रॉल का सफर 3 कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर सकता था, बिना इंटरनेट, बिना फोन, सिर्फ जहाजों और याददाश्त के जरिए। और यही वजह है कि आज हम तक कुछ अलेक्जेंड्रिया का इल्म पहुंच गया। एस्ट्रोनॉमी के नोट्स, ज्योमेट्री के रूल्स, हर्बल मेडिसिंस के फॉर्मूलास, यहां तक कि पोएट्री के टुकड़े भी। क्या आप जानते हैं, जब भी कोई नया स्क्रॉल मिलता, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी किसी छोटी लाइब्रेरी में रख दी जाती थी। यानी ये उस वक्त का अपना ऑफलाइन क्लाउड स्टोरेज था। साथियों, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी एक लेगेसी है, एक ऐसी दास्तान जो हमें आज भी इंस्पायर करती है। अलेक्जेंड्रिया के बाद जब भी कोई नई लाइब्रेरी बनाई जाती, लोग कहते हमें अलेक्जेंड्रिया जैसी लाइब्रेरी बनानी है। यानी ये लाइब्रेरी एक इंस्पायरेशन थी, जिसने दुनिया के बहुत बड़े लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स को जन्म दिया, जैसे मिसाल के तौर पर इस्तांबुल की लाइब्रेरीज, ब्रिटिश लाइब्रेरी का शुरुआती कॉन्सेप्ट और मॉडर्न एरा का लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो भाई, अलेक्जेंड्रिया ने एक बात तो क्लियर कर दी, इनको कैद नहीं किया जा सकता, और आग इमारत को खत्म कर सकती है लेकिन आइडियाज को नहीं। इस कहानी में एक मॉडर्न ट्विस्ट भी मौजूद है। यानी अगर आप आज इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको डिजिटल अलेक्जेंड्रिया जैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं, जहां स्कॉलर्स पुराने स्क्रॉल्स के बचे हुए हिस्से स्कैन करके ऑनलाइन डाल रहे हैं, ताकि वो हर इंसान के पास पहुंच सके। यानी जो ख्वाब 2300 साल पहले था, वो आज के जमाने में दोबारा जिंदा हो रहा है, लेकिन इस फर्क के साथ कि अब कोई आग इसे छू भी नहीं सकती। हाँ, बस चार्जर लगाना जरूरी है। साथियों, आग ने जरूर अलेक्जेंड्रिया की इमारत को खत्म कर दिया, लेकिन जो चीज स्क्रॉल से भी ज्यादा ताकतवर थी वो थी स्कॉलर्स की याददाश्त। उस वक्त के स्कॉलर्स सिर्फ पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि चलती फिरती लाइब्रेरीज थे। जो कुछ वो स्क्रॉल्स में पढ़ते वो दिल और दिमाग में उतार लेते। इसलिए जब इमारत जल गई, इल्म का एक हिस्सा इंसानों के साथ जिंदा रहा। तो साथियों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। साथियों, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी का जिक्र जब भी होता है तो लोग ज्यादातर उसकी आग और उसके गुम हो जाने पर बात करते हैं, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट भी मौजूद हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। चलिए उन बातों में से कुछ बातों का वीआईपी टूर हम आपको करवा देते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि ये एक लाइब्रेरी तो थी ही, और कुछ लोग इसके बारे में ये भी कहते हैं कि ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी भी थी। यानी इस लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें रखी हुई नहीं होती थी, यहाँ स्कॉलर्स एक्सपेरिमेंट्स भी किया करते थे। एस्ट्रोनॉमी के लिए टूल्स, मेडिसिन के लिए हर्बल गार्डन्स और ज्योमेट्री के लिए डायग्राम रूम्स तक यहाँ पे मौजूद थे। यानी कहा जा सकता है कि ये उस वक्त का हॉवर्ड प्लस नासा प्लस सर्च इंजन सब एक ही इमारत में था। और तो और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ आने वाले हर जहाज से इनका टूल टैक्स लिया जाता था। नहीं समझ में आया तो बताती हूँ भाई, अलेक्जेंड्रिया के पोर्ट पर आने वाले हर जहाज के पास अगर कोई किताब या स्क्रॉल होता तो वो पहले लाइब्रेरी में आता था। लाइब्रेरियंस उसकी कॉपी बनाकर ओरिजिनल वापस दे दिया करते थे, लेकिन कभी कभी ओरिजिनल लाइब्रेरी में ही रख लिया करते थे और कभी कभी मालिक को कॉपी पकड़ा दिया करते थे। यानी ये कहा जा सकता है कि ये पायरेटेड वर्जन का रिवाइज था। यानी यहाँ लाइब्रेरी को ओरिजिनल मटेरियल दिया जाता था। और तो और स्क्रॉल्स की डेकोरेशन भी एक आर्ट थी। स्क्रॉल्स पर सिर्फ लिखा नहीं होता था, उनकी आउटर कवरिंग पर आर्ट बनाए जाते थे, गोल्ड इंक, ज्योमेट्रिक डिजाइंस और कभी कभी छोटी छोटी पेंटिंग्स। इससे स्कॉलर्स को दूर से ही पता चल जाता था कि ये स्क्रॉल पोइट्री का है या साइंस का। और अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है

0: के आज के कलर्ड बुक कवर्स की शुरुआत शायद यहीं से हुई थी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरियंस का सीक्रेट रैंकिंग सिस्टम भी मौजूद था। यानी कहा जाता है कि यहाँ स्क्रोल्स को रैंक किया जाता था उनकी इल्म की क्वालिटी के हिसाब से। जैसे आज हम मूवीज को 5 स्टार देते हैं ना, टॉप रैंक स्क्रोल्स को एक अलग VIP शेल्फ में रखा जाता था जहाँ सिर्फ स्पेशल स्कॉलर्स ही एक्सेस कर सकते थे। इस लाइब्रेरी में एक खोया हुआ सेक्शन भी था। बहुत हिस्टोरियंस मानते हैं कि लाइब्रेरी के नीचे एक हिडन बेसमेंट था जहाँ रेयर स्क्रॉल्स रखे जाते थे। आग में ये हिस्सा जल गया कि नहीं, इस बात का तो कोई कंफर्म सबूत नहीं, लेकिन सोचें अगर वो बेसमेंट एक दिन मिल जाए तो क्या होगा। शायद हम फिर से अलेक्जेंड्रिया के उस असली ट्रेजर को देख सकेंगे। साथ ही जरा इमेजिन कीजिए कि आप उस दौर में वहां होते, एक स्कॉलर के जैसे जिसके हाथ में एक नया स्क्रॉल होता और आपको मालूम होता कि ये स्क्रॉल ऐसी नॉलेज रखता है जो दुनिया में कहीं और नहीं है, तो आप क्या करते? कॉपी बनाते, उसे छुपाते या पब्लिक को पढ़ाते? यही वो डिसीजंस थे जो उस वक्त के लोगों ने लिए और उनके फैसलों का असर हम आज तक महसूस करते हैं। दोस्तों, सही कहा जाता है कि इल्म कभी नहीं मरता। आग, राख, हवा में उड़ते अल्फाज, ये सब कुछ देखकर लगता है कि अलेक्जेंड्रिया का सफर यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी भी तो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि अलेक्जेंड्रिया सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं था, वो एक सोच थी कि दुनिया का हर इल्म एक दिन हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। सदियां बीत गईं, अलेक्जेंड्रिया की इमारत अब बस तस्वीरों में है, स्क्रॉल्स अब सिर्फ कुछ म्यूजियम्स में ही बच गए हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो कि एक ग्लोबल नॉलेज हब था, आज की लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज और इवन इंटरनेट में जिंदा है। आज हम अपने फोन पर बैठकर किसी भी मुल्क के रिसर्च पेपर को या किसी भी साइंटिस्ट की डिस्कवरी को या किसी भी शायर की नज़म को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यही अलेक्जेंड्रिया का ख्वाब था, इल्म वो भी बिना बॉर्डर्स के, बिना रुकावट के। अगर मॉडर्न वर्ल्ड में देखा जाए तो मॉडर्न अलेक्जेंड्रिया को यूं कहा जा सकता है कि इल्म आपकी जेब में। अगर आप सोचें आपका स्मार्टफोन या लैपटॉप एक छोटी अलेक्जेंड्रिया है, हर फाइल, हर PDF, हर सर्च रिजल्ट एक स्क्रॉल की तरह है जो आपके लिए खुला है। बस फर्क ये है कि आपको पोर्ट पर इल्म का टूल टेक्स्ट नहीं देना, इसको एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ वाईफाई का एक पासवर्ड चाहिए होता है। साथियों, अलेक्जेंड्रिया ने हमें ये सबक दिया कि इमारतें गिर सकती हैं, कागज जल सकते हैं, लेकिन आइडियाज हमेशा जिंदा रहते हैं। हर दफा जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, आप उस चेन का हिस्सा बन जाते हैं जो अलेक्जेंड्रिया से शुरू हुई थी। इसलिए चाहे किताबों से सीखें, ऑनलाइन लेक्चर से या किसी उस्ताद से, ये जरूर याद रखिएगा कि आपका सीखना एक तरह से अलेक्जेंड्रिया की आखिरी स्कॉल जिंदा रखने जैसा है। अलेक्जेंड्रिया एक लाइब्रेरी थी जो आग में जली लेकिन कभी नहीं मरी, क्योंकि वो अब हमारे दिमाग, हमारे दिल और हमारे इंटरनेट के सर्च बार में जिंदा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे होगी मुलाकात इसी शो में, लेकिन एक नए टॉपिक के साथ, एक भूले हुए सिविलाइजेशन या पुरानी टेक्नोलॉजीज जो कि खो गई हैं, या कॉस्मिक मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए RJ सफा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ प्रोग्राम तहफीमुल कुरान
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आपका खैर मकदम है सामीन इकराम कुरान मजीद की दास्तानों में सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए गहरे रहन

सच है, तुम दोनों एक दूसरे का एहतराम करते हो, तुम्हारी नीयत तो साफ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हदूद टूटने लगती हैं। और जब इंसान किसी हराम काम तक पहुंच जाता है तो शैतान का काम खत्म नहीं होता, बल्कि असल काम तो अब शुरू होता है। अब वो इंसान को कहता है, ये तुम्हारा जाती मामला है, ये तुम्हारी आजादी है, किसी को तुम्हें जज करने का हक नहीं। जमाना बदल गया है, अब इंसान गुनाह नहीं कर रहा होता बल्कि गुनाह का दिफा कर रहा होता है। यही वो मकाम है जहां इंसानी कमजोरी शैतानी बीमारी में तब्दील होने लगती है। अब सामिनी किराम, नमाज की मिसाल लीजिए। किसी इंसान से सुस्ती की वजह से नमाज रह जाए, ये यकीनन एक गलती है। लेकिन अगर वो नादिम हो, अफसोस करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे तो उसके लिए उम्मीद मौजूद है। मगर ख़तरा वहाँ शुरू होता है जब इंसान नमाज की अहमियत ही कम करने लगे, जब वो कहने लगे दिल साफ होना चाहिए, नमाज ज़रूरी नहीं, ये सब रस्मी इबादात हैं, अल्लाह दिल देखता है नमाज नहीं। अब मसला सिर्फ नमाज छोड़ने का नहीं रहा, अब मसला अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी राय को तरजीह देने का है, और यही तकब्बुर की इब्तिदा है। सामने किराम, कुरान मजीद में बार बार कुफार मक्का और साबका उम्मतों का जिक्र आता है। कई मरतबा उन्होंने मोजज़ात का मुतालबा किया, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर उनके लिए आसमान का दरवाज़ा भी खोल दिया जाए और वो अपनी आँखों से मोजज़ात देख लें, तब भी बाज़ लोग ईमान नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि मसला दलाइल की कमी नहीं होता, मसला दिल के तकब्बुर का होता है। जब दिल तकब्बुर से भर जाए तो इंसान हक को देखकर भी कबूल नहीं करता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। गौर कीजिए, ज़र्रा बराबर तकब्बुर, इतनी सख्त वाइद। क्योंकि तकब्बुर इंसान को तौबा से दूर कर देता है। मुतकब्बिर शख्स अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, और जो गलती मानने के लिए तैयार ना हो वो तौबा कैसे करेगा। तो सामने कराम, यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। इस्लाम गुनाहगार के हवाले से मायूसी की बात नहीं करता। इस्लाम तो कहता है, अगर तुम हज़ार मरतबा गुनाह करो और हज़ार मरतबा सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह की रहमत वसी है। लेकिन इस्लाम तकब्बुर के बारे में बहुत सख्त है, क्योंकि इंसान गुनाह करने के बाद भी अल्लाह के दरवाजे तक पहुँच सकता है, जबकि तकब्बुर इंसान को उस दरवाजे से दूर कर देता है। आदम अलैहिस्सलाम से भी ख़ता हुई थी, लेकिन उन्होंने फौरन कहा, रब्बना ज़लमना अन्फुसना, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, गलती मानी, तौबा की और अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। जबकि इब्लीस ने अपनी गलती को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की और रहमत इलाही से दूर हो गया। सामने किराम, इसी तरह आज हमें भी अपने दिलों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। क्या हम हक बात सुनकर उसे कबूल कर लेते हैं या अपने अना के दिफा में लग जाते हैं। याद रखिए, नजात का रास्ता बेखता होना नहीं, नजात का रास्ता आजिज़ी में है, नजात का रास्ता अपनी कमज़ोरी को पहचानना है, और हलाकत का रास्ता वो तकब्बुर है जिसने इब्लीस को तबाह किया था। अल्लाह ताला हमें शैतान के कदमों से महफूज रखे और हमें हक को हक मानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين। सामने किराम, प्रोग्राम तफहीम القرآن के इस मरहले में अब हम आज के हलके का खुलासा बयान करेंगे। हमारी आज की आयात का खुलासा यही है कि गुनाह से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ गुनाह का दिफा करना है, तबरीर और बहानेबाजी से बचना ज़रूरी है। जैसे कि हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में भी कहा था कि आज के दौर की एक बड़ी बीमारी जवाज़ तराशना है। गलती को गलत मानने के बजाय हम उसके लिए दलाइल तलाश करते हैं, कभी हालात को कसूरवार ठहराते हैं, कभी

Assalamualaikum listeners, आप सुन रहे हैं कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स. मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम एक और लेजेंडरी फुटबॉलर के बारे में बात करेंगे एंड उनका नाम है मंसूर मुफ्ता. या दोस्तों, मंसूर मुफ्ता कतर के तारीखी फुटबॉलर्स में से एक हैं जिन्होंने 1970 और 1980 में अपनी शानदार गोल स्कोरिंग एबिलिटी से पूरे गल्फ रीजन में शोहरत हासिल की. वो ज़्यादातर अर्रायान क्लब के लिए खेलते रहे और क्लब हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स में शुमार किए जाते हैं. मंसूर मुफ्ता ने अपनी स्पीड, फिनिशिंग और अटैकिंग स्टाइल की वजह से फैंस के दिल जीते. उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 1986 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में देखने को मिली, जब उन्होंने कतर के लिए अहम गोल्स स्कोर किए और नेशनल टीम को एशिया में एक मजबूत टीम बनाने में मदद दी. वो कई सालों तक कतर नेशनल टीम के टॉप स्कोरर रहे और गल्फ कप टूर्नामेंट्स में भी नुमाया परफॉर्मेंस देते रहे. मंसूर मुफ्ता ने कतर स्टार लीग में कई दफा टॉप स्कोरर का अवार्ड हासिल किया. उन्होंने अर्रायान क्लब को कई डोमेस्टिक टाइटल जितवाने में भी अहम किरदार अदा किया. उनकी कंसिस्टेंसी और लीडरशिप ने उन्हें कतरी फुटबॉल का आइकन बना दिया. दोस्तों, फुटबॉल से रिटायरमेंट के बाद भी मंसूर मुफ्ता कतरी फुटबॉल के साथ जुड़े रहे और यंग प्लेयर्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में हिस्सा लेते रहे. आज भी उनका नाम कतर फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे अजीम तरीन खिलाड़ियों में लिया जाता है. इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है. अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए

0: दोस्तों, सर्दियों के मौसम में फॉग या धुंध की वजह से बाज सड़कों और खास तौर से हाईवेज पर गाड़ी चलाते वक्त विजिबिलिटी में कमी की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। आप सभी से गुजारिश है कि गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतें और जरूरी हिफाजती इकदाम करें। याद रखें कि आपकी गाड़ी के रियर विंडो में ऑटो डिफॉगर का ऑप्शन होता है, जिसको इस्तेमाल करके आप गाड़ी के पीछे वाले ग्लास को क्लियर कर सकते हैं। कोहरे या धुंध के वक्त अपनी गाड़ी के फॉग लैंप्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपका विजन क्लियर होगा और गाड़ी चलाने में आसानी होगी। अगर आपकी गाड़ी में फॉग लैंप्स नहीं है तो आप हजार्ड बटन को दबाकर चारों इंडिकेटर को ऑन कर सकते हैं, जिससे पीछे आने वाली गाड़ी को आपकी गाड़ी देखने में मदद मिलेगी। FM 107 आपके खुशगवार सफर की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, मैं हूँ फौजी शफीक। आज हम एक ऐसी जिस्मानी सरगर्मी के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर में सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मकबूल हो चुकी है, और वो है योगा। योगा जिस्मानी हरकत, सांस की जो मशकें हैं, और जहनी यकसुई का एक ऐसा मजमूआ है जो हमारे जिस्म और जहन दोनों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है। बहुत से अफराद योगा को सिर्फ एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा तरीका है जो जिस्मानी, जहनी और जज्बाती तवाजुन पैदा करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। योगा का एक अहम फायदा जिस्म की लचक या फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाना है। बाकायदा योगा एक्सरसाइजेस से मसल्स और जॉइंट्स ज्यादा मुतहरक होते हैं और जिस्म में खिंचाव कम होता है और हरकत करना आसान हो जाता है। खास तौर पर वो अफराद जो ज्यादा वक्त ऑफिस में बैठकर गुजारते हैं या जिस्मानी अकड़ाव महसूस करते हैं, उनके लिए हल्की फुल्की योगा एक्सरसाइजेस फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहनी दबाव एक आम मसला बन चुका है। योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और तवज्जो मरकूज करने की टेक्निक्स के जरिए जहन को सुकून मिलता है। रिसर्चेस से मालूम हुआ है कि बाकायदा योगा करने से तनाव, बेचैनी और जहनी थकन में कमी आ सकती है। चंद मिनट की गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज में इंसान को ज्यादा पुरसुकून और मुतवाजन महसूस करा सकती है। योगा सिर्फ लचक ही नहीं बढ़ाता बल्कि जिस्मानी तवाजुन और मसल्स की मजबूती में भी अहम किरदार अदा करता है। मुख्तलिफ पोजीशंस जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतहरक करती है, जिससे जिस्मानी कंट्रोल और इस्तेहकाम बेहतर होता है। ये फायदा खास तौर पर उम्र रसीदा अफराद के लिए अहम है, क्योंकि बेहतर तवाजुन गिरने और चोट लगने के खतरात को कम कर सकता है। योगा नींद के मायार को बेहतर बनाने, जिस्मानी थकन कम करने और रोजमर्रा की जिंदगी में तवानाई के एहसास को ज्यादा करता है। आप योगा शुरू करना चाहते हैं तो आसान जो उसकी एक्सरसाइजेस हैं वहाँ से आगाज कीजिए। अपनी जिस्मानी सलाहियत के मुताबिक एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर आपको कोई तिबी मसला है, कमर में दर्द है, जॉइंट्स की कोई बीमारी है, या फिर आप प्रेगनेंसी की हालत में हैं, तो पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा कीजिए। योगा एक ऐसी सरगर्मी है जो जिस्मानी लचक, जहनी सुकून और मजमू सेहत के फ़रोग में मदद दे सकती है। ताहम याद रखें कि अच्छी सेहत के लिए मुतवाजन ग़िज़ा, मुनासिब नींद, बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी भी इतने ही अहम हैं। सेहतमंद रहिए, मुतहरक रहिए और अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत का ख्याल रखिए।

वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा, लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। यहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो ना सिर्फ एनवायरनमेंट को बेनिफिट देती हैं बल्कि इंसानी जिंदगी में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकती हैं। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं पुराने कपड़े डोनेट करने की। साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं एक रिलेटेबल सीन से जो कि मुझे लगता है हर घर में होता है। घर में वार्डरोब खोलते हैं और फिर एक फेमिलियर सिचुएशन होती है। एक साइड पर नए कपड़े और दूसरी साइड पर वो कपड़े जिनके बारे में कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये अब शायद हमें फिट नहीं होने वाला, या वो पुराना हो गया होता है या वो कभी पहना ही नहीं गया होता। फिर हम सोचते हैं कि इसको रख लेते, शायद कभी तो काम आ जाएगा। ये हम सबका मसला है। और रिजल्ट क्या होता है, वार्डरोब फुल हो जाता है लेकिन यूज कम होता है। देखिए अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। फास्ट फैशन और फ्रीक्वेंट शॉपिंग की वजह से हम लोगों के पास कपड़ों की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है लेकिन हर कपड़ा रेगुलरली यूज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कपड़े सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं हमारी कबर्ड में, जबकि कहीं

और किसी और को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब इस सिचुएशन में इको स्विच क्या है भाई? सिंपल सा आइडिया है, जो कपड़े आप यूज नहीं कर रहे उन्हें किसी और के काम को दे देना। पुराने कपड़ों को डोनेट करना एक ऐसी हैबिट है जो एनवायरमेंट और सोसाइटी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। चलिए अब बात करते हैं ये हैबिट कैसे हमारी हेल्प करती है। देखिए, सबसे पहला फायदा ये है कि वेस्ट रिडक्शन होता है। जब कपड़े लैंडफिल में जाने के बजाय रीयूज होते हैं ना, तो टेक्सटाइल वेस्ट कम होता है। दूसरा फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए, कपड़े बनाने में वाटर, एनर्जी और रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। जब कपड़े रीयूज होते हैं ना, तो नए प्रोडक्शन की डिमांड कम होती है। इसी के साथ तीसरा फायदा है सोशल इम्पैक्ट। आपके पुराने लेकिन पहनने वाले जो कपड़े होते हैं, जो सही प्रॉपर कंडीशन में होते हैं, वो किसी जरूरतमंद इंसान के लिए बहुत वैल्यूबल हो सकते हैं। चौथा फायदा है डीक्लटरिंग। आपका घर ऑर्गेनाइज्ड होता है भाई, स्पेस क्लियर हो जाती है और मेंटल क्लैरिटी भी इम्प्रूव होती है। अच्छा, अगर एक रिलेटेबल एग्जांपल लूँ ना, तो जरा सोचिए कि आपके पास एक जैकेट है जो आप पिछले 2 साल से आपने नहीं पहनी। आप सोच रहे हैं कि भाई कभी ना कभी तो मेरे काम आ ही जाएगी, लेकिन वही जैकेट किसी ऐसे इंसान के लिए विंटर में कंफर्ट बन सकती है जिसे सही क्लोथिंग अवेलेबल नहीं है। आपके लिए वो अनयूज आइटम है भाई, लेकिन किसी और के लिए वो किसी की नीड हो सकती है। लेकिन दोहा जैसे सिटी में जहाँ डाइवर्स कम्युनिटी रहती है, ये हैबिट और भी मीनिंगफुल हो जाती है। यहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग रहते हैं और डोनेशन कल्चर ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है। आप इजीली चैरिटीज, डोनेशन बिन्स या कम्युनिटी इनिशिएटिव्स के थ्रू अपने कपड़े फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करूं, तो वार्डरोब डीक्लटर रूटीन बनाएं अपनी। हर 3 से 6 महीने बाद अपने कपड़ों को रिव्यू करें और जो यूज नहीं कर रहे उन्हें सेपरेट करें। कंडीशन चेक करें ना कपड़ों की। सिर्फ क्लीन और रीयूजेबल कपड़े डोनेट करें ताकि वो डायरेक्टली किसी के काम आ सके। तो ये सीजनल डोनेशन भी आप चाहें तो कर सकते हैं। विंटर क्लोथ्स विंटर से पहले और समर क्लोथ्स समर से पहले आप डोनेट कर सकते हैं टाइमिंगली। ऑर्गेनाइज्ड पैकिंग करें, कपड़ों को फोल्ड या पैक करके डोनेट करें ताकि डिस्ट्रीब्यूशन इजी हो। अच्छा हाँ, एक और चीज ये कि किड्स को, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। बच्चों को सिखाएं कि अपने आउटग्रोन कपड़े किसी और के साथ शेयर करना एक पॉजिटिव हैबिट है। अच्छा, इस चीज का ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया का सबसे रिसोर्स इंटेंसिव इंडस्ट्री में से एक है। एक सिंगल कॉटन शर्ट बनाने के लिए काफी वाटर यूज होता है और मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए जब आप एक कपड़ा रीयूज या डोनेट करते हैं ना, तो आप इनडायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक और रिलेटेबल बात मुझे याद आती है। देखिए, अक्सर हम ना इमोशनल अटैचमेंट की वजह से कपड़े रख लेते हैं। ये शर्ट मेरी पहली जॉब इंटरव्यू पे मैंने पहनी थी, ओ माय गॉड। या फिर होता है कि भाई ये ड्रेस मैंने किसी फलाने स्पेशल ओकेजन पे पहना था, तो ओ माय गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लेकिन याद रखें, मेमोरी दिल में होती है ना, वार्डरोब में नहीं। कपड़े आगे किसी और के काम आ सकते हैं, जबकि यादें आपके साथ रहती हैं। तो भाई, आज का इको स्विच सिंपल है। जो कपड़े आप यूज नहीं कर रहे उन्हें डोनेट कर दें मेहरबानी करके। आज का चैलेंज ये है कि भाई आज या इस वीक आप अपने वार्डरोब को सेक्शन करें, खोलें, देखें। कम से कम 3 या 4 आइटम आप ऐसे निकालें, आइडेंटिफाई करें। एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो करें पहले कि आप इन्हें यूज करते भी हैं कि नहीं, और उन्हें डोनेशन के लिए सेपरेट करें अगर आप उन्हें यूज नहीं करते, और अगर पॉसिबल हो किसी लोकल चैरिटी या कलेक्शन पॉइंट तक उन्हें पहुंचा दें, या वो जो बॉक्सेस होते हैं डोनेशन के उनके अंदर डाल दें। तो साथियों, जेनरोसिटी सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं होती। कभी कभी एक सिंपल शर्ट, एक जैकेट या एक ड्रेस किसी की लाइफ में कम्फर्ट और डिग्निटी ला सकता है। और जब हम अपनी एक्स्ट्रा चीजें शेयर करते हैं ना, तो हम सिर्फ कपड़े नहीं देते बल्कि रिस्पेक्ट और केयर भी शेयर कर रहे होते हैं। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे सच बोलने की अहमियत पर। सच बोलना एक मोमिन की पहचान होती है। सच्चाई इंसान को इज्जत और भरोसा देती है, जबकि झूठ इंसान की वैल्यू कम कर देता है। कभी कभी हमें लगता है कि छोटा सा झूठ बोलकर किसी मुश्किल से बच जाएंगे, लेकिन असल में ये आदत धीरे धीरे जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर हाल में सच बोलना चाहिए, चाहे वो कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो। सच्चाई थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन आखिर में इज्जत और सुकून देती है। आज का अमल ये है कि पूरे दिन अपनी बातों पर फोकस करें और सिर्फ सच बोलने की कोशिश करें, चाहे छोटी बात हो या बड़ी। सच दिल को हल्का करता है और रिश्तों को मजबूत करता है। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी। One step to 2030.
2: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.

0: पड़ी।
1: आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं दोस्तों कि रिन्यूएबल एनर्जी फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। रिन्यूएबल एनर्जी है क्या? रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जो खत्म ना हो, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स जैसे ऑयल या फिर गैस लिमिटेड है और एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए क्लीन एनर्जी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है और पोल्यूशन कम करती है। ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में मदद करती है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये एनर्जी हमारे बच्चों के लिए भी अवेलेबल रहेगी। आज के दौर में इसकी रेलेवेंस और बढ़ चुकी है। बिजली की डिमांड बढ़ रही है और पॉपुलेशन भी। सोलर पैनल्स और ग्रीन या क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस जो है वो इसका एक बेहतर जवाब है। वहीं पर आप और हम बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, बहुत ही अहम रोल। घरों में सोलर पैनल्स लगाना, बिजली को जाया होने से रोकना और क्लीन एनर्जी पॉलिसीज को सपोर्ट करके हम जो है गवर्नमेंट के इस विजन को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। नेशनल विजन 2030 का सबसे अहम मैसेज ये है कि डेवलपमेंट का मरकज इंसान होना चाहिए। अगर लोग सेहतमंद, तालीम याफ्ता और स्किल्ड होंगे तो मुल्क खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। शायद इसीलिए मैंने बात की थी ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है दोस्तों? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है बेहतर एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर और ऐसे स्किल्स जो फ्यूचर जॉब मार्केट से मैच करते हो। विजन इस बात पर भी यकीन रखती है कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन ह्यूमन पोटेंशियल अनलिमिटेड। इसीलिए कतर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन और टैलेंट डेवलपमेंट में हैवी इंस्ट्रूमेंट्स और हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। विजन ये भी इंश्योर करती है कि लोग सिर्फ अर्निंग मशीन्स ना बन जाएं, बल्कि बैलेंस्ड और प्रोडक्टिव सिटीजंस रहें। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ चॉइस नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल की एक जरूरत है। सो आज के डिसीजंस कल की सिक्योरिटी बनाते हैं। आज सही फैसला कीजिए। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

सर अपना QID और हेल्थ कार्ड अपडेट करा लीजिए, वरना आपका QID कैंसिल हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। कॉल्स या व्हाट्सएप पर ये कुछ ऐसी कही जाने वाली बात है जिसको सुनकर कोई भी शख्स ऐसे स्कैम में फंस सकता है। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे मैं हूं फजील और आज हम बात करेंगे QID अपडेट हेल्थ कार्ड अपडेट स्कैम के बारे में। QID हेल्थ कार्ड अपडेट फ्रॉड है और ये फ्रॉड कतर में बेहद तेजी से पनप रहा है। स्कैम अलर्ट। कतर की आईडी यानी कि QID एक एसेंशियल आइडेंटिटी कार्ड है, चाहे वो कतरी सिटीजन्स हो या रेसिडेंट्स हो उनके लिए, और इसका इस्तेमाल करते हुए पब्लिक सर्विसेज और बाकी सर्विसेज का फायदा उठाया जाता है, फायदा लिया जाता है यहाँ के रेसिडेंट्स और सिटीजन्स के द्वारा। इसी तरह से हेल्थ कार्ड जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ इश्यू करती है इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के लिए और सर्विसेज को इजियर बनाने के लिए, इनका इस्तेमाल कतर में बेहद जरूरी है। और ऐसे जरूरी चीज को लेकर जब आपको डराया जाए तो आप डरेंगे लाजमी। रिसेंटली अथॉरिटीज ने यह अनकवर किया है कि कई अलग तरह के फ्रॉड स्कीम्स चल रहे हैं जहां पर इंडिविजुअल्स यानी कि लोगों को कॉल जाती है और QID और हेल्थ कार्ड को अपडेट करने के लिए कहा जाता है। अब यहीं पर खेल शुरू होता है और ये फ्रॉड यूजुअली शुरू होता है एक कॉल के रिसीव होने से। आपको एक कॉल या ईमेल आएगी जहां पर आपको कहा जाता है कि वो शख्स गवर्नमेंट ऑफिशियल है और QID और हेल्थ कार्ड आपको अपडेट करना पड़ेगा, जिसकी फीस बहुत ही कम होगी, बहुत ही मिनिमल होगी। सम ऑफ दीज स्कैमर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जो कि फेक वेबसाइट है, विच इज प्योरली आइडेंटिकल टू द ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल्स, और आपको ट्रिक करते हैं उस वेबसाइट को भेजकर, जहां पर अब आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हैं क्योंकि आपको QID और हेल्थ कार्ड अपडेट करना है। मेरे खुद की जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की कॉल आई और उनको लगा कि सही में उनकी QID एक्सपायर होने वाली है और होने भी वाली थी, तो उन्होंने उस वेबसाइट पर क्लिक किया, डिटेल्स डाली, फीस डाली और फिर जब लास्ट में क्लिक किया तो बैंक वालों को अंदाजा हुआ कि ये अमाउंट किसी अनजान मुल्क में जा रही है जहां पर अभी तक उन्होंने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया था, और इस वजह से बैंक ने उनका कार्ड किया ब्लॉक। मेरे जो जानने वाले थे वो तो बच गए, लेकिन आपके साथ ये ट्रिक ना हो, यही वजह है कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इस तरह के QID और हेल्थ कार्ड के अपडेट से बच सकते हैं, स्कैम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कोई भी व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन लिंक आए कि आपको QID और हेल्थ कार्ड अपडेट करनी है, तो वहां पर क्लिक करके अपडेट बिल्कुल तुरंत से मत करने लग जाइएगा। पहले आपको वेरीफाई करना है सोर्स का कि जो कम्युनिकेशन करने वाला शख्स है क्या वो सही है। ऑल्दो आपको कभी भी अथॉरिटी व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट नहीं करती है, नंबर आपको पहचानना है, कॉन्टेक्ट आपको देखना है कि वो गवर्नमेंट रिलेटेड है या नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करनी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि फेक वेबसाइट जो स्कैमर्स ने बनाई होती है वो प्योरली आपको समझ में आ जाती है कि ये फेक है, लेकिन कभी कभी बहुत ही आइडेंटिकल होती है, लेकिन ग्लिच फिर भी होता है। ये आपको ध्यान देना होगा, बी कॉशियस। पेमेंट करते हुए आपको देखना होगा कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही वो पेमेंट का लिंक आया है या नहीं, और बेहतर होगा कि अगर आप ऑफलाइन काम करें। रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे कि इसमें कुछ सस्पिशियस है, आप फंस सकते हैं, तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको जरा सी रेड फ्लैग लगे तो आप बिल्कुल वो इंफॉर्मेशन ना डालें। तो दोस्तों, कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कंक्लूजन में कि डिजिटल सर्विसेज जितनी ही आपकी जिंदगी आसान बनाती हैं, आपको और अपॉर्चुनिटीज देती हैं, वैसे ही फ्रॉस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटीज देती हैं कि कैसे वो अपने पैसे बना पाए, कैसे वो आपको ठग पाए। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सिंपल स्टेप्स हैं, आप अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बचा सकते हैं, और किसी भी स्कैमर के हाथों में जाने से पहले अपने आप को सुरक्षित करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे जिसके बारे में मैंने बताया, तो आप बचे रहेंगे। और अगर इस तरह का स्कैम आपको हो जाए तो शुरुआत के एक घंटे के अंदर अंदर ऑफिशियल अथॉरिटीज से बात करें, कॉन्टेक्ट करें, और आप इस तरह की स्कैम से बच सकते हैं, आपके पैसे उम्मीदन वापस

आ भी सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोशिश पूरी करें कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना बैंक अकाउंट डिटेल, ओटीपी कहीं पर भी ना दें। बाकी सुनते रहें एफएम 107। एक बार फिर से प्रोग्राम में वापस आएंगे, तब बात करेंगे एक नए और बेहद ही पॉपुलर स्कैम के बारे में, जो बहुत ही तेजी से जारी है और लोगों को करोड़ों का नुकसान दे रहा है। तब तक सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पे ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुए और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं एक कहानी, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट बना। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशन, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वाली जिंदगियों को शेप किया। सामईन, आज हम एक ऐसी पहली कहानी का जिक्र करेंगे जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को एक खूबसूरत शक्ल दे रही है, और वो है कतर की पहली यूनिवर्सिटी यानी कतर यूनिवर्सिटी। तो चलिए जरा माजी में चलते हैं, जहां सन 1973 में कतर में हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। उस वक्त लोग सोच रहे थे कि हमारे मुल्क के लिए यूनिवर्सिटी और एडवांस्ड एजुकेशन का क्या फ्यूचर हो सकता है, और तब एक छोटा सा कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश हुआ जहां पहली बार स्टूडेंट को फॉर्मल हायर एजुकेशन का मौका मिला। ये छोटा सा कॉलेज ना सिर्फ एक बिल्डिंग थी बल्कि एक नई सोच का सिंबल था, एक नई राह का स्टार्टिंग पॉइंट। दोस्तों जरा सोचिए, उस वक्त स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी लिमिटेड हुआ करती होंगी, और आज हमारी सोसाइटी का हर कॉर्नर नॉलेज और इनोवेशन से भरा हुआ है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सिर्फ प्लानिंग और विजन की वजह से हुआ है। फिर आगे 1977 तक वही छोटा सा कॉलेज बढ़कर एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बन गया, कतर यूनिवर्सिटी। शुरुआत सिर्फ 150 स्टूडेंट्स के साथ हुई थी, लेकिन ये छोटी सी कम्युनिटी आगे चलकर पूरे मुल्क के लीडर्स, स्कॉलर्स और प्रोफेशनल्स तैयार करने का फाउंडेशन बन गई। और सोचिए, एक स्टूडेंट जो 1973 में इस कॉलेज का हिस्सा था, आज के स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल बन गया, एक रोल मॉडल। ये स्टूडेंट्स सिर्फ अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़े बल्कि कतर के लिए भी एक नई सोच और नई पॉसिबिलिटीज लाए। दोस्तों, आज के स्टूडेंट्स की दुनिया और भी ज्यादा एडवांस हो गई है। टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ में हैं। लेकिन ये सब शुरुआत यहीं से हुई, इस छोटे से कॉलेज से। यही तो सबब बनता है एजुकेशन का, छोटी सी शुरुआत से पूरे मुल्क का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और सोशल मीडिया पर कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आज का शो आपके फीडबैक और एक्सपीरियंसेस के साथ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। अगर आपने खुद कभी यूनिवर्सिटी लाइफ का एक्सपीरियंस लिया हो, या आप सोच रहे हो कि कैसे हायर एजुकेशन आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, तो हमें जरूर बताइए। हम साथ मिलकर इस जर्नी को और लाइवली और इंगेजिंग बना सकते हैं। दोस्तों, एक फन थॉट सोचिए, अगर आपको चांस मिले कि आप 1973 में इस कॉलेज का स्टूडेंट होते, तो आप क्या करते? क्या लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करते या अपनी पहली लेक्चर की एक्साइटमेंट फील करते, हमारे व्हाट्सएप पे जरूर बताएं। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। समईन, कतर में एजुकेशन सिर्फ डिग्री का रास्ता नहीं बल्कि एक मुल्क के मुस्तकबिल का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। कतर में यही सोच ली गई और इसलिए कतर यूनिवर्सिटी का रोल बहुत अहम है। रिसर्च, ग्लोबल पार्टनरशिप और इनोवेशन ड्राइविंग पॉलिसीज के जरिए ये यूनिवर्सिटी एक डाइवर्सिफाइड, रेजिलिएंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सोसाइटी तैयार कर रही है। और ये सफर शुरू हुआ 1973 में जब कतर का पहला कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ, कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यही वो वक्त था जब इमीन ने एक डिग्री के जरिए एजुकेशन को मुल्क की तरक्की का बुनियादी पिलर बनाया। उस वक्त सिर्फ 57 मेल और 93 फीमेल स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, मतलब टोटल 150 स्टूडेंट्स। दोस्तों जरा सोचिए, इतने छोटे से नंबर से एक बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट हुआ था। क्या आपको लगता है कि आज की स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन के सामने उनका स्ट्रगल इजी था? शायद नहीं। फिर 1977 में कतर यूनिवर्सिटी ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुई, महज 4 कॉलेज के साथ। कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, कॉलेज ऑफ शरिया लॉ एंड इस्लामिक स्टडीज और कॉलेज ऑफ साइंस। और धीरे धीरे नए कॉलेजेस शामिल होना शुरू हुए, जैसे कि 1980 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 1985 में कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, 2006 में फार्मेसी प्रोग्राम लॉन्च, जो 2007 में इंडिपेंडेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी बन गया, 2015 में कॉलेज ऑफ मेडिसिन, 2016 में कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, 2019 में कॉलेज ऑफ डेंटल मेडिसिन, 2022 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग और 2024 में कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज। सोचिए जनाब, एक छोटी सी शुरुआत

से आज पूरी यूनिवर्सिटी सिस्टम बन गई जो हर फील्ड कवर करती है तो जानिए कि यही तो होता है विजन का सबब दोस्तों अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की कतर यूनिवर्सिटी में 23,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं यही वो नई नस्ल है जो कल के लीडर्स रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स और इंस्पायर्ड आर्टिशंस बनेंगे और ये स्टूडेंट्स सिर्फ क्लासरूम्स में ही नहीं उन्हें मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज नेशनल कॉम्पिटिशंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एक्सक्लूसिव स्टडी अब्रॉड और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स और रिसर्च पोजीशंस बात करें कैंपस लाइफ की तो वाह आप इमेजिन कीजिए अवार्ड विनिंग कैंपस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और इजी नेविगेशन के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी थाउजेंड्स ऑफ बुक्स और एकेडमिक जर्नल्स स्टूडेंट एक्टिविटीज बिल्डिंग्स जहां नेटवर्किंग और सोशलाइजेशन का मौका मिलता है स्टूडेंट लर्निंग सपोर्ट सेंटर और काउंसलिंग सेंटर जो एकेडमिक और पर्सनल गाइडेंस देते हैं कैफेटेरियाज और डाइनिंग ऑप्शंस हर टेस्ट और हेल्थ रिक्वायरमेंट के लिए और यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर इवेंट और ट्रिप्स जो स्टूडेंट्स की लाइफ को और एक्साइटिंग बनाते हैं और फैकल्टी ये सिर्फ टीचर्स नहीं मेंटर्स हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और कतर के टॉप नेशनल माइंड्स स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं इंस्पायर करते हैं और उन्हें रीजनल और ग्लोबल चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं दोस्तों जब आप कतर यूनिवर्सिटी की कहानी सुनते हैं समझ आता है कि ये सिर्फ एजुकेशन नहीं ये एक विजन है एक मिशन है और एक पूरे मुल्क के लिए फाउंडेशन है तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और यहाँ मैं करूँगा आपसे एक छोटा सा सवाल अगर आपको कतर यूनिवर्सिटी में एक दिन गुजारने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे लाइब्रेरी एक्सप्लोर करेंगे या कैफेटेरिया की कॉफी ट्राई करेंगे अपने जवाब आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 666-22-107 तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि एक यूनिवर्सिटी की असली स्ट्रेंथ सिर्फ उसके कैंपस और स्टूडेंट से नहीं जुड़ी होती, बल्कि उसकी रिकॉग्निशन ग्लोबल और रीजनल स्टैंडिंग से भी होती है। क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन की असली वैल्यू तभी समझ आती है जब दुनिया उसको कैसे परसीव करती है और कितने स्टैंडर्ड्स पर ये खरी उतरती है। तो ये जानिए कि ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो कतर यूनिवर्सिटी ने अपनी एक सॉलिड पहचान बनाई है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कतर यूनिवर्सिटी 201 से 250 तक की रेंज में रैंक करती है और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में ये ग्लोबली 112वीं पोजीशन पर है। अब दोस्तों, थोड़ा रीजन की तरफ नजर डालते हैं क्योंकि यहाँ भी परफॉर्मेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है और अरब वर्ल्ड में ये यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है QS अरब रीजन रैंकिंग 2024 के मुताबिक। एशिया में ये 28वीं नंबर की रैंक पर है द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक और ग्लोबली QS 2024 के मुताबिक 173rd पोजीशन पर है। समय जरा सोचिए, ये नंबर सिर्फ नंबर्स ही नहीं, ये दिखाते हैं कि कतर यूनिवर्सिटी हर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर रही है और रीजनल और ग्लोबल लेवल पर स्टूडेंट्स के लिए एक रिलायबल और प्रेस्टिजियस ऑप्शन है। और दोस्तों, क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक्रेडिटेशन। सिर्फ रैंकिंग्स ही नहीं, एक्रेडिटेशन भी गारंटी होती है कि यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरी है। दोस्तों, कतर यूनिवर्सिटी को वास्ट सीनियर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कमीशन WSCUC से एक्रेडिटेशन मिली हुई है। पहली एक्रेडिटेशन फरवरी 2023 में ग्रांट हुई थी और ये 6 साल के लिए वैलिड है। सोचिए, एक ग्लोबल एक्रेडिटेशन मिलना मतलब दुनिया के टॉप स्टैंडर्ड्स पर इवैल्यूएशन होना और पास करना। ये सिर्फ एक बैज नहीं है दोस्तों, ये एक रिकॉग्निशन है कि कतर यूनिवर्सिटी हर स्टैंडर्ड पर खरी उतरती है और स्टूडेंट्स को टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, ये रैंकिंग्स और एक्रेडिटेशन फ्यूचर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हैं। आप जैसे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स सोच रहे हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, ये नंबर्स और एक्रेडिटेशन आपको ये एश्योरेंस देते हैं कि कतर यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम की नहीं बल्कि क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी में भी वर्ल्ड क्लास है। तो दोस्तों, जब हम कतर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री, स्टूडेंट लाइफ और अब इसकी ग्लोबल और रीजनल स्टैंडिंग्स देखते हैं, समझ आता है कि ये सिर्फ एजुकेशन का एक सेंटर नहीं बल्कि एक विजन और मिशन है जो कतर के फ्यूचर के लिए फाउंडेशन का काम कर रहा है और इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये एक इंस्पिरेशन है क्योंकि उनका कैंपस सिर्फ क्लासरूम्स का ही नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जो उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रिपेयर करती है। दोस्तों, कतर यूनिवर्सिटी सिर्फ क्लासरूम्स और डिग्री का ही नाम नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां आइडियाज पैदा होते हैं, फ्यूचर शेप होते हैं और हमारी नेशनल आइडेंटिटी मजबूत होती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, एक एलुमनस या आप कोई ऐसे शख्स हैं जो एजुकेशन से इंस्पायर होते हैं, कतर यूनिवर्सिटी हमारे मुल्क की कहानी में एक खास जगह रखती है। और दोस्तों, हर ग्रेजुएटिंग क्लास के साथ ये यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट ही नहीं करती बल्कि कतर के नॉलेज, इनोवेशन और प्रोग्रेस के

सफर में एक अहम कंट्रीब्यूशन भी देती है। हर नया आइडिया, हर रिसर्च प्रोजेक्ट, हर स्टूडेंट जो अपनी फील्ड में आगे बढ़ता है, ये सब कतर के फ्यूचर को शेप कर रहा है। तो दोस्तों, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे, जहां आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। साथ ही आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप सबसे पहले क्या सुनना पसंद करेंगे, कतर में वो पहली बार होने वाली कहानी या किसी और चीज का भी अगर आप इंतजार कर रहे हैं जो आप यहाँ फ्यूचर में देखना चाहते हैं, तो मुझे आप जरूर बताइए। मैं इंतजार करूंगा आपके मैसेजेस का। और दोस्तों, याद रखिए, आपकी हर सोच और आइडिया भी एक दिन शायद रियलिटी बन सकता है, क्योंकि कतर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और एलुमनाई भी वही कर रहे हैं, ख्वाबों को शेप दे रहे हैं और मुल्क के फ्यूचर को आगे ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कतर यूनिवर्सिटी की इंस्पायरिंग कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। याद रखिए, एजुकेशन की कहानी असल में एक मुल्क की कहानी है, और कतर यूनिवर्सिटी की कहानी इस मुल्क के फ्यूचर को शेप कर रही है। अगला शो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, जहां आपको मिलेंगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज। इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देश।

0: हार के वो जा रहा है कोई शबम गुजार के, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बाहर।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

दोस्तों हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें, छुरियां और काटने

0: चलने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी-छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन FM 107।

0: आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियत खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم